0: रहने दें। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, आपके वचन को सुनकर अपने आप को समर्पित कर रहे हर परिवार के लोगों को आशीर्वाद दें। प्रभु, आप ही हैं जो बहन को सामर्थ्य के साथ उपयोग करते हैं। इसके लिए जैसा कि आपने किया है, हम लाखों बार धन्यवाद देते हैं। जैसे हमने मांगा, वैसे ही आपने हमें हमारे संकटों से दूर किया और हमें आशीर्वाद देने के लिए ही मसीह जीवित होकर उठे। क्या हम सब आज इस दिन प्रार्थना कर सकते हैं? हे प्रभु, हमें हमारे संकटों से दूर कर आशीर्वाद दीजिए। हे परमेश्वर, हमें आत्मिक आशीर्वाद दीजिए, हमें सांसारिक आशीर्वाद दीजिए और हमें सभी भलाइयां दीजिए। स्तुति हो प्रभु, हम कृतज्ञता के साथ आपकी स्तुति करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। स्वामी, इस आनंदमय दिन के लिए हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु, आप मृत देवता नहीं हैं। आपने कहा था, मैं मर गया था, फिर भी देखो, मैं सदा सर्वदा जीवित हूं। ये परमेश्वर हमेशा के लिए अनंत काल तक हमारे परमेश्वर हैं, मृत्यु तक हमें मार्गदर्शन करने वाले। प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं, प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं, हम कृतज्ञता के साथ आपकी महिमा करते हैं। यहाँ उपस्थित सभी सभा के लोगों के लिए जिन्हें हम आमने सामने देख रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं सभी को आशीर्वाद दें और सामर्थ्य प्रदान करें। प्रभु, कृपया शांति दें, आनंद दें। प्रभु, चाहे मेरी कोई भी कमजोरी हो, उसे दूर कर दें। जो भी बंधन है, उन्हें तोड़ दें। शैतान के सभी कार्यों को नष्ट कर दें। यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं कि सारी बुरी शक्तियां समाप्त हो जाएं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोगों को आशीर्वाद दें और उन्हें ऊंचा उठाएं। हे राजा, हम आपकी स्तुति करते हैं क्योंकि आप हमें बुराई से दूर रखकर आशीर्वाद देने में सामर्थ्य हैं। प्रभु, आपकी कृपा हमें सशक्त बनाए रखे। हे पिता, किसी भी परिवार पर कोई जादू या टोना असर न करे। यीशु मसीह के नाम से हम सभी बुरी शक्तियों को नष्ट और दूर करते हैं। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने और शत्रु की सारी शक्ति पर अधिकार दिया है और कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचाएगा, ऐसा आपने कहा था। प्रभु, हम शैतान के सभी कार्यों को नासरी यीशु मसीह के नाम में डांटते, बांधते और दूर करते हैं। प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं। चाहे कोई भी बीमारी हो, आप चंगा करते हैं। चाहे कोई भी रोग हो, आप चंगा करते हैं। चाहे कोई भी कमजोरी हो, आप उसे दूर करते हैं। हे परमेश्वर, आप जादू टोने की सारी बंधनों को तोड़ते हैं, शैतान के कार्यों को नष्ट कर देते हैं। हे राजा, जो लोग बेरोजगार हैं, उन्हें नौकरी दीजिए। जिनका विवाह नहीं हुआ है, उनका विवाह संपन्न हो। जिनके पास संतान का सुख नहीं है, उन्हें संतान का आशीर्वाद दीजिए। हे परमेश्वर, जिनके जीवन में शांति नहीं है, उन्हें शांति दीजिए। जो लोग कर्ज की समस्या, आंसू और पीड़ा में हैं, उन्हें मुक्ति दीजिए। हे पिता, प्रभु, जो परिवार शराब पीते हैं, उन्हें मुक्ति दीजिए। हे पिता, जो परिवार व्यवसाय कर रहे हैं, उन्हें आशीर्वाद दीजिए। जो परिवार व्यापार कर रहे हैं, उन्हें भी आशीर्वाद दीजिए। हे प्रभु, जो लोग केश में हैं, उन्हें विजय प्रदान करें। बिछड़े हुए परिवारों को फिर से एक करें। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, वे ज्ञान, भक्ति, शिक्षा, बुद्धि और क्षमता में उत्कृष्ट बने और चमके। हे प्रभु, सभी बच्चों को स्तुति करने वाले और प्रार्थना करने वाले बच्चों में बदल दें। प्रभु, हमारे छोटे बच्चों पर प्रार्थना की आत्मा उंडेलने वाले परमेश्वर हैं। सभी बच्चों को प्रार्थना करनी चाहिए, स्तुति करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए, प्रभु की कृपा को धारण करना चाहिए। हम प्रार्थना करते हैं कि छोटे बच्चों को आशीर्वाद दें। हे प्रभु, महान कार्य करने वाले प्रभु, चाहे मुझमें कोई भी कमजोरी हो, चंगा करने वाले राजा, दया करे, दया करे, दया करे हर एक कमजोर व्यक्ति पर, और परमेश्वर की सामर्थ उन पर दया करे। हे प्रभु, चंगा करे, चमत्कार करे, अद्भुत कार्य करे। हे राजा, हम आपकी स्तुति करते हैं, हर एक के जीवन में, उनके हृदय में और बाहर अद्भुत कार्य करे। हे प्रभु, मुझे विश्वास है कि आप हर एक की आवश्यकता को जानते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हर एक की आवश्यकता को पूरा करें। हे पिता, जिनके पास घर नहीं है उन्हें घर दें। जो लोग घर बनाते समय बीच में हैं, उन्हें घर पूरा करने के लिए अनुग्रह दें। हे प्रभु, हम आपके नाम की महिमा के लिए आपके चरणों में गिरकर विनती करते हैं, जो परमेश्वर सोचने और मांगने से भी बढ़कर कार्य करते हैं। हे प्रभु, आपको धन्यवाद। आपके बच्चे जो कुछ भी प्रार्थना करते हैं वो प्रभु के सामने हर्ष का कारण बने। आपने कहा था कि मैं तुम्हारे हृदय की इच्छाओं को तुम्हें प्रदान करूंगा। हम प्रार्थना करते हैं कि हर किसी की आवश्यकताओं को आप पूरी करें। प्रभु की आशीर्वाद देने वाली और ऊंचा उठाने वाली कृपा, प्रभु की प्रसन्नता, प्रभु की महिमा हर एक पर शासन करे। हे प्रभु, हम सारी स्तुति, आदर, महिमा और महानता आपको ही अर्पित करते हैं, जो जिम्मेदारी लेकर हमारी रक्षा करते हैं। हम ये सब कुछ हमारे प्रिय उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में विनम्रता से मांगते हैं। हे परमपिता, आमीन।
1: इंगलिन एज्रिन करम मादांद्र इदलानदु तमिल आंगिलम हिंदी मलयालम तेलुगु आगे आर मोळिगळिल कर्त्तरिन कृपयाल वेलिवरिक्किंजदु इप्पत्रिकै वेंडोर एंगलदु मुगवरै तोडर्बु कोळ्ळलाम।
2: एंगल मुगवरि एज्रिन करम 12-80 அம்பேத்கர் நகர் டார்லிங்டன் பிரிட்ஜ் குன்னூர் 6431101 நீலகிரி மாவட்டம் தென்னிந்தியா. எங்கள் தொலைபேசி எண்கள் 944-30-780-19 மற்றும் 7598-11-2435. இன் இங்கிலீஷ் ஹேண்ட் ஆஃப் ஜீசஸ் மினிஸ்ட்ரிஸ் 12-80 அம்பேத்கர் நகர் டார்லிங்டன் பிரிட்ஜ் கூனூர் 643-101 நீலகிரி சவுத் இந்தியா. செல்போன் நம்பர்ஸ் 9443078019 and 7598112435. Our email address aslinkaram@gmail.com. Our website handofjesus.in. God bless you.

0: मसीह में प्रिय, हम आपको हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर बड़े प्रेम से नमस्कार करते हैं। इस दुनिया में आपके पास चाहे कितने भी बड़े घर, संपत्ति और जमीन क्यों ना हो, जब आप इस दुनिया से जाएंगे तो आप इसे अपने साथ नहीं ले जा सकेंगे।
1: इसीलिए प्रेरित पौलुस ने कहा,
0: पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने ही बात जो रहे हैं। हमारा निवास स्थान इस संसार का नहीं है, हमारा घर स्वर्ग में है। हमें उस गौरवशाली स्थान पर जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि एक मानव दिवस कैसा होता है? क्योंकि हम तो कल ही के हैं और कुछ नहीं जानते, और पृथ्वी पर हमारे दिन छाया की नाई बीतते जाते हैं। अय्यूब 8:9।
1: इतना ही नहीं, भजनकार कहता है, मेरी आयु ढलती हुई छाया के समान है और मैं आप घास की नाई सूख चला हूँ।
0: भजन संहिता 102:11।
1: प्रेरित याकूब लिखते हैं, और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा, सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम तो मानो भाप समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। याकूब 4:14। इसलिए यह सांसारिक जीवन, इसके खजाने और पृथ्वी स्थाई नहीं है।
0: यीशु ने कहा, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। यूहन्ना 14:3।
1: तो आइए हम उस शानदार शहर, उस शानदार घर में जाने के लिए खुद को प्रतिबद्ध करें।
0: पौलुस लिखता है, और इस संसार के बरतने वाले ऐसे हों कि संसार ही के न हो ले, क्योंकि इस संसार की रीति और व्यवहार बदलते जाते हैं। 1 कुरिन्थियों 7:31।
1: तो फिर उस शानदार शहर तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना होगा? क्या हम थोड़ा ध्यान करें?
0: पहले धर्म ग्रंथ कहता है,
1: पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं, इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता, सो उसने उनके लिए एक नदर तैयार किया है। इब्रानियों 11:16।
0: प्रभु उन लोगों के लिए एक शहर तैयार कर रहे हैं जो शानदार स्वर्गीय भूमि की इच्छा रखते हैं। अगर हम खुद इसकी इच्छा नहीं रखते तो वह हमें यह कैसे देगा? इसलिए स्वर्गीय देश से, उस सनातन नगर से प्रेम रखो। वहां जाने के लिए प्रार्थना करें, तभी प्रभु तुम्हें वह नगर देगा।
1: इसीलिए प्रेरित पौलुस कहता है,
0: सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। कुलुसियों 3:1-2।
1: हमें स्वर्ग की चाहत और अभिलाषा की आवश्यकता है, इसीलिए यीशु ने कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य पर जोर होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं।
0: मत्ती 11:12। इसलिए सबसे पहले हमें स्वर्गीय नगर में जाने की इच्छा रखनी चाहिए।
1: प्रेरित पौलुस कहता है,
0: इसलिए हम धाडस बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। 2 कुरिन्थियों 5:8।
1: मसीह में परमेश्वर के प्रिय बच्चों, आपकी प्राथमिकता क्या है?
0: प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम वहां आएं।
1: यीशु ने पिता से कहा, हे पिता, मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूं वहां वे भी मेरे साथ हों, कि वे मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा।
0: यूहन्ना 17:24।
1: यदि हमारी इच्छा हो तो हम निश्चित रूप से उस शहर में प्रवेश कर सकते हैं।
0: दाऊद कहते हैं, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। भजन संहिता 23:6।
1: क्या हम भी परमेश्वर के नगर की लालसा करें?
0: दूसरा, पवित्र बाइबल कहती है, क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थिर रहने वाला नगर नहीं, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाया करें। इब्रानियों 13:14-15।
1: इस दुनिया में हमारा कोई स्थायी शहर नहीं है, हम आने वाले इस राज्य की खोज में हैं।
0: इसलिए बाइबल हमें साफ साफ बताती है कि हमें क्या करना चाहिए। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाया करें। इब्रानियों 13:15। यदि हम परमेश्वर के नगर में जाना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद करना चाहिए। जिस शहर में हम रहेंगे वह प्रशंसा का शहर है। यदि आप वहां जाना चाहते हैं तो आपको ईश्वर की स्तुति करने वाला व्यक्ति होना चाहिए।
1: भजनकार कहता है, क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। भजन संहिता 84:4। यदि आप और मैं स्वर्गीय घर में रहना चाहते हैं, हमें ऐसे लोग बनना चाहिए जो परमेश्वर की स्तुति करे। पवित्र बाइबल कहती है, इसके बाद मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना कि हल्लेलुया, उद्धार और महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर ही की है। प्रकाशित वाक्य 19:1। पवित्र बाइबल कहती है, फिर दूसरी बार उन्होंने हल्लेलुया कहा और उसके जलने का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा, और 2400 प्राचीनों और चारों प्राणियों ने गिरकर परमेश्वर को दंडवत किया जो सिंहासन पर बैठा था और कहा, आमीन, हल्लेलुया। प्रकाशित वाक्य 19:3-4। बाइबल हमें एक आदर्श दिखाती है कि हमें कैसे प्रशंसा करनी चाहिए। इतना ही नहीं, और सिंहासन में से एक शब्द निकला कि हे हमारे परमेश्वर से सब डरने वाले दासों, क्या छोटे क्या बड़े, तुम सब उसकी स्तुति करो। प्रकाशित वाक्य 19:5। क्या आप देखते हैं कि परमेश्वर की स्तुति करना कितना महत्वपूर्ण है? हमें प्रभु की स्तुति कैसे करनी चाहिए? पवित्र बाइबल कहती है, और जब तुम यहोवा के लिए धन्यवाद का मेलबलि चढ़ाओ तो उसे इसी प्रकार से करना जिससे वह ग्रहण योग्य ठहरे। इसलिए स्वर्ग प्रशंसा का शहर है। यदि आप वहां जाना चाहते हैं तो आपको ईश्वर की स्तुति करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। पवित्र बाइबल कहती है, और चारों प्राणियों ने आमीन कहा और प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया। तीसरा, प्रेरित याकूब लिखते हैं, हे मेरे प्रिय भाइयों सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हों जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं? याकूब 2:5। इसके बाद हमें उससे प्रेम करना चाहिए। परमेश्वर स्वर्ग में जाने का विशेषाधिकार केवल उन्हीं को देता है जो उससे प्रेम करते हैं। तो क्या हम प्रभु से प्रेम करें?
2: हमें प्रभु से कैसे प्रेम करना चाहिए?
1: यीशु ने कहा, उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। मत्ती 22:37।
0: प्रभु चाहता है कि हम उससे पूरी तरह प्रेम करें।
1: उससे प्रेम करने का क्या अर्थ है?
0: यीशु ने कहा। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। यूहन्ना 14:23। प्रभु से प्रेम करना उनके वचन का पालन करना है। यदि हम उसका वचन मानना चाहते हैं तो हमें उसका वचन अधिक पढ़ना होगा और उसे जानना होगा। हम में से बहुत से लोग बाइबल नहीं पढ़ते,
1: तो फिर हम प्रभु के वचन को कैसे जानें?
0: इसलिए प्रभु के वचन को अधिक बार पढ़ें, प्रभु के वचन पर अधिक मनन करें।
1: इसका ध्यान रखना,
0: प्रभु से प्रेम करने का यही अर्थ है। जब हम प्रभु से पूर्णतः प्रेम करेंगे तो परमेश्वर हमें अपना राज्य देगा। उसने अपना राज्य केवल उन लोगों को देने का वादा किया है जो उससे प्रेम करते हैं।
1: चौथा, प्रभु यीशु ने कहा, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है।
0: मत्ती 5:10। क्या आपने इस बात पर गौर किया है?
1: यह हमारे अपने लिए कष्ट उठाने की बात नहीं है।
0: उसके वचन के कारण, धार्मिकता के कारण, जब हम सताए जाते हैं और कष्ट उठाते हैं तो हम धन्य लोगों में बदल जाते हैं। उसका राज्य भी हमारा हो जाता है। क्लेश निश्चित रूप से मसीही जीवन का एक हिस्सा है।
1: प्रेरित पौलुस यही कहता है कि कोई इन क्लेशों के कारण डगमगा ना जाए, क्योंकि तुम आप जानते हो कि हम इन्हीं के लिए ठहराए गए हैं। क्योंकि पहले भी जब हम तुम्हारे यहाँ थे तो तुमसे कहा करते थे
2: कि हमें क्लेश उठाने पड़ेंगे और ऐसा ही हुआ है और तुम जानते भी हो। 1 थिस्सलुनीकियों 3:3-4।
1: इसलिए हमें कभी भी कठिनाइयों का सामना करके हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, उनका सामना करने में संकोच न करें।
0: ईश ने कहा, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझमें शांति मिले।
1: संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है।
2: यूहन्ना 16:33।
1: इसलिए हमें दुख तकलीफों से निराश नहीं होना चाहिए।
2: स्वर्ग का राज्य तभी हमारा होगा जब हम धार्मिकता के लिए कष्ट उठाएंगे।
1: इसीलिए पौलुस लिखते हैं, और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा।
2: प्रेरितों के काम 14:22।
3: क्लेश स्वर्गीय नगर में जाएंगे सीढ़ियां।
1: इसलिए कठिनाइयों से निराश मत होइए। हमारा जीवन इस संसार के साथ खत्म नहीं होता।
0: हमारे पास एक शानदार शहर है। उस गौरवशाली शहर में जाना हमारा लक्ष्य होना चाहिए।
1: हमें उस गौरवशाली राष्ट्र को कभी नहीं खोना चाहिए।
0: इसलिए इस संसार पर भरोसा करके धोखा मत खाओ।
1: प्रभु आपको अपना राज्य प्राप्त करने के लिए तैयार करें।
0: परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है।
1: हम सभी ने इस पर चिंतन किया।
0: ईश्वर स्वयं आपको आशीर्वाद दे और आपको ऐसे महान आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन।
4: करम तमिल आंगलम हिंदी मलयालम तेलुगु आगे आर मोड़ कर्तन कृपया
5: मुखवरी करम 12 अंबेडकर नगर डार्लिंगटन ब्रिज कुन्नूर 6431101 நீலகிரி மாவட்டம் தென்னிந்தியா. எங்கள் தொலைபேசி எண்கள் 9443078019 மற்றும் 7598112435. இன் இங்கிலீஷ் ஹேண்ட் ஆஃப் ஜீசஸ் மினிஸ்ட்ரிஸ் 12/80 அம்பேத்கர் நகர் டார்லிங்டன் பிரிட்ஜ் கோனூர் 643101 Nilgiri, South India. Cell phone numbers 9443078019 and 7598112435. Our email address aslinkaram@gmail.com. Our website handofjesus.in. God bless you.
6: हजार स्तुति। हे अब्बा, हे पिता, आपकी स्तुति हो। प्रेमी पिता, आपकी स्तुति हो। अनंतकाल का पिता, आपकी स्तुति हो। स्वर्गीय पिता, आपकी स्तुति हो। आत्माओं के पिता, आपकी स्तुति हो। ज्योतियों के पिता, आपकी स्तुति हो। दया का पिता, आपकी स्तुति हो। महिमा का पिता, आपकी स्तुति हो। पिता जिसने मुझे मोल लिया है, आपकी स्तुति हो। पिता जिसने मुझे बनाया है, आपकी स्तुति हो। पिता जिसने मुझे स्थिर किया है, आपकी स्तुति हो। मेरा पिता, आपकी स्तुति हो। हम सबों का एक ही पिता, आपकी स्तुति हो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता, आपकी स्तुति हो। धार्मिक पिता, आपकी स्तुति हो। पिता मुक्त में है, आपकी स्तुति हो। धर्म के पिता, आपकी स्तुति हो। इज़राइल के पिता, आपकी स्तुति हो। जीवित पिता, आपकी स्तुति हो। पिता को यह पसंद आया है कि वह तुम्हें राज्य दे, इसलिए आपकी स्तुति हो। परम प्रधान परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। महान परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। ईश्वरों का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। जीवित परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। प्रेमी परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। प्रेम और शांति का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। अनादि परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। सब प्रकार की शांति के परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। धीरज और शांति देने वाले परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। तेजोमय परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। करुणामय परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। परमेश्वर जिसने अपने अनुग्रह से मुझे बुलाया है, आपकी स्तुति हो। अब्राहम का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। ईसा का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। याकोब का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। यशुरून का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। इज़राइल का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। एलिया का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। दाऊद का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। दानियेल का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। शाद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। परमेश्वर पिता, आपकी स्तुति हो। हमारे पितरों का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। मेरे पूर्वजों के परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। घाटी का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। पहाड़ों का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। सारी पृथ्वी का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। सबके ऊपर युगानुयुग परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। पृथ्वी के सब राज्यों के परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी के परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। याकूब पर वर्णों पृथ्वी की छोर तक प्रभुता करने वाला परमेश्वर आपकी स्तुति हो। आश्चर्य कर्म का परमेश्वर आपकी स्तुति हो। पराक्रमी परमेश्वर आपकी स्तुति हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी स्तुति हो। समुद्र के गर्व को तोड़ने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। सच्चे परमेश्वर आपकी स्तुति हो। सुच अद्वैत सच्चे परमेश्वर आपकी स्तुति हो। एक ही परमेश्वर पिता आपकी स्तुति हो। अद्वैत परमेश्वर आपकी स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर आपकी स्तुति हो। स्वर्ग के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। पवित्र परमेश्वर आपकी स्तुति हो। सच्चे परमेश्वर आपकी स्तुति हो। कतन के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। वाचा के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। आशा के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। दयालु परमेश्वर आपकी स्तुति हो। दयालु में धनी परमेश्वर आपकी स्तुति हो। धर्ममय परमेश्वर आपकी स्तुति हो। हे अन्याय के प्रति प्रतिशोध के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। आप सच्चा ईश्वर जिसमें कुटिलता नहीं है आपकी स्तुति हो। सेनाओं के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। मेरे परमेश्वर मेरे परमेश्वर आपकी स्तुति हो। परमेश्वर जिसमें मेरी उत्पत्ति हुई आपकी स्तुति हो। मेरा देखने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। दर्शन देने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। सब प्राणियों की आत्माओं के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। सदा धन्य परमेश्वर आपकी स्तुति हो। अनंत काल के लिए जीवित परमेश्वर आपकी स्तुति हो। सदा राज्य करने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। सब ईश्वरों का ईश्वर आपकी स्तुति हो। वेदों को खोलने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। हे मेरे परमेश्वर हे राजा आपकी स्तुति हो। बड़ा परमेश्वर आपकी स्तुति हो। धन के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। तुम्हारे हमारी सारे आवश्यकताओं को पूरा करने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। सब कुछ बढ़ाने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। विजय प्रदान करने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। शांति का परमेश्वर आपकी स्तुति हो। अधर्मी से क्रोध करने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। जलन रखने वाला परमेश्वर आपकी स्तुति हो। क्षमा करने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। अद्भुत काम करने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। सब कुछ करने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। उदार करने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। हमारे उदारकर्ता परमेश्वर आपकी स्तुति हो।

परमेश्वर आपकी स्तुति हो। मेरे सुख की चमक के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। मेरे अति आनंद के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। परम धन्य परमेश्वर आपकी स्तुति हो।

क्या आप लोग तैयार हैं नाचने के लिए? यदि आप तैयार हैं तो आप आगे आ सकते हैं। यदि आप अपने आप को जवान मानते हैं तो आगे आके नाचते हुए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। अपने दोनों हाथ को उठाकर बोलो यीशु मसीह की। अपने स्थान में आप खड़े हो सकते हैं। हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। Come on, church. अपने दोनों हाथों को ऊपर वाले अपने दोनों हाथ

Thank you.

मैं आशिक तेरा।

चाहे आपके माँ आपको भूल जाए, चाहे आपके दोस्त आपको भूल जाए, मैं परमेश्वर आपको कभी नहीं भूलेगा, वह आपके साथ हमेशा बना रहेगा। ताली बजा कर उसको महिमा दे प्रियो। आमीन, आमीन। लोग तुझको भूल जाए माँ क्यों ना भूल जाए, वो तुझको ना भूलेगा। दोस्त तुझको भूल जाए, रिश्ते क्यों ना भूल जाए, वो तुझको ना भूलेगा। दोस्त तुझको भूल जाए, रिश्ते क्यों ना भूल जाए, वो तुझको ना भूलेगा। दोस्त तुझको भूल जाए माँ क्यों ना भूल जाए, वो तुझको ना

प्रेम है, ताली बजा कर उसके नाम पे मकर आत्मा सच्चाई के साथ उसकी आराधना करे। यस लॉर्ड, उसने ना सोना मांगा ना चांदी मांगा है, सोना उसने मांगा नहीं, चांदी उसने मांगा नहीं, दिल उसने मांगा मेरा, जाति उसने पूछा नहीं, भाषा उसने पूछा नहीं, मन उसने मांगा।

मसीह में प्रिय, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं। क्या आपने देखा है कि समय कितनी तेजी से उड़ता है? यह ऐसा था जैसे ये पिछले साल शुरू हुआ हो, ये कितनी जल्दी खत्म हो गया। प्रभु ने दयालुता पूर्वक हमारा नेतृत्व किया है, वो हमारा हाथ पकड़कर हमें इस नए साल में ले आया है। इस नए साल में प्रभु हमारे साथ रहें, वो अपनी आंख के तारे की तरह हमारी रक्षा करेगा। निराश मत होइए, आइए एक नज़र डालते हैं कि इस नए साल में हमें क्या करना है। इस नए वर्ष में प्रभु हम पर दृष्टि डालते हैं और कहते हैं, प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 शब्द 11, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। दुनिया में जो कुछ भी चल रहा है उससे ये स्पष्ट है कि प्रभु का आगमन बहुत निकट है ना? इसलिए हमें सावधान रहना होगा। प्रभु शीघ्र आते हैं, इसलिए प्रभु हमें स्पष्ट रूप से बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 शब्द 11, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। हमारे पास जो कुछ है हमें उसे पकड़कर रखना चाहिए ताकि कोई हमारे मुकुट न ले सके। हमारे मुकुट कौन लेगा? ईश ने कहा। यूहन्ना अध्याय 10 शब्द 10, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। शैतान हमेशा धोखा देने के लिए तैयार रहता है, वो हमारा मुकुट चुराने की कोशिश करेगा। इसलिए प्रभु के बच्चों को सावधान रहना चाहिए। ताज क्या है? इसका मतलब क्या है? अब हम इस पर चिंतन करने जा रहे हैं कि इसकी सुरक्षा कैसे की जाए। पहले देखते हैं ताज का क्या मतलब है। प्रभु कहते हैं, लेव्य व्यवस्था अध्याय 21 शब्द 12, क्योंकि वह अपने परमेश्वर के अभिषेक का तेल रूपी मुकुट धारण किए हुए है, मैं यहोवा हूँ। मुकुट पवित्र आत्मा के अभिषेक का प्रतिनिधित्व करता है। प्रेरित पौलुस कहते हैं, 2 कुरिन्थियों अध्याय 1 शब्द 21, और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिसने हमें अभिषेक किया वही परमेश्वर है। प्रभु हमारा अभिषेक करते हैं। क्या होता है जब भगवान का अभिषेक हमारे पास आता है? यूहन्ना लिखते हैं, 1 यूहन्ना अध्याय 2 शब्द 27, और तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। जब प्रभु का अभिषेक हमारे पास आता है तो ये हमें सब कुछ सिखाता है। फिर से प्रेरित यूहन्ना लिखता है, 1 यूहन्ना अध्याय 2 शब्द 20, और तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। जब प्रभु का अभिषेक हम पर आता है तो हमें सब कुछ जानने का सौभाग्य मिलता है। शैतान इस विशेषाधिकार को हमसे छीनने की कोशिश करता है, इसलिए शास्त्र कहते हैं, 1 पत्रस अध्याय 5 शब्द 8, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। इसलिए यहोवा कहता है, अपना मुकुट दृढ़ रखो कि कोई उसे छीन न सके। इसलिए पौलुस लिखते हैं, 2 कुरिन्थियों अध्याय 11 शब्द 3, परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाएं। तो सावधान रहो, शैतान को कभी रास्ता मत दो। इसलिए शास्त्र कहते हैं, इफिसियों अध्याय 4 शब्द 27, और न शैतान को अवसर दो। आइए दूसरी बात देखें। बाइबल कहती है, एस्तेर अध्याय 2 शब्द 17, और राजा ने एस्तेर को और सब स्त्रियों से अधिक प्यार किया, और सब कुवारियों से अधिक उसके अनुग्रह और कृपा की दृष्टि उसी पर हुई, इस कारण उसने उसके सिर पर राजमुकुट रखा और उसको वशती के स्थान पर रानी बनाया।
यीशु हमसे वैसे ही प्रेम करते हैं जैसे राजा क्षयर्ष ने एस्तेर से प्रेम किया था, इसलिए शास्त्र कहते हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 1:6, और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया, उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे, आमीन। यीशु ने हमारे लिए अपना खून बहाया और हमारे सभी पापों को माफ कर दिया और हमें परमपिता परमेश्वर के सामने राजा और रानी बनाया। वो हमें राजा और रानी के रूप में ताज पहनाता है। यह मुकुट क्या दर्शाता है? ताकत का प्रतिनिधित्व करता है। ये किस प्राधिकार का प्रतिनिधित्व करता है? जब फिरौन ने यूसुफ को अधिकारी बनाया तो उसने क्या कहा? उत्पत्ति अध्याय 41:44। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, फिरौन तो मैं हूँ, और सारे मिस्र देश में कोई भी तेरी आज्ञा के बिना हाथ पांव न हिलाएगा। इसका क्या मतलब है? ताकत को दर्शाता है। इसी तरह यीशु मसीह अपने खून से हमें राजा और रानी बनाते हैं और हमारे सिर पर अधिकार का ताज रखते हैं। हाँ परमेश्वर के बच्चे, यीशु हमें अपना अधिकार देता है। यीशु कहते हैं, लूका अध्याय 10:19, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। आप कितने धन्य हैं। शैतान इस शक्ति को हमसे छीनने का प्रयास करेगा। शैतान हमें पाप करने के लिए प्रलोभित करने का प्रयास करता है, तो सावधान रहो। वस्ती लापरवाह थी, वह ताज हार गई। राजा ने वस्ती को लाने के लिए प्रजा भेजी। एस्तेर अध्याय 1:10-12। परंतु वशती ने कहा कि वह नहीं आएगी। तब राजा क्रोधित हुआ और भीतर ही भीतर क्रोधित हुआ। यीशु राजा हमें कई बार बुलाते हैं। यीशु हमें प्रार्थना करने के लिए बुलाते हैं, हमें अपने सामने अंतराल में खड़े होने के लिए बुलाते हैं, हमें सेवा करने के लिए बुलाते हैं। जब हम उस आह्वान को अनदेखा करते हैं तो राजा यीशु का क्रोध हम पर आता है। रानी वशती का क्या हुआ? एस्तेर अध्याय 1:19। यदि राजा सहमत हो तो उसके सामने से एक शाही आदेश जारी किया जाना चाहिए कि वशति राजा क्षयर्ष के सामने दोबारा न आए, और इसे फौसियों और मेदियों के शाही धर्म में लिखा जाना चाहिए ताकि इसे बदला न जाए, और राजा को उसका राजपद उससे बेहतर किसी व्यक्ति को सौंप देना चाहिए। आपने देखा, अपने अभिमान और अवज्ञा के कारण वशति ने अपनी शाही गरिमा और अधिकार खो दिया। यह उपाधि एस्तेर को दी गई जो उससे बेहतर थी। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, अवज्ञा, घमंड और जिद जैसी चीजों को जगह न दें। सत्ता और राजसी गौरव का ताज मत खोना। तीसरा, आइए देखें, पवित्र पुस्तक कहती है, भजन संहिता अध्याय 65:11, अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट धर दिया है, तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। प्रभु हर साल आशीर्वाद देते हैं और अच्छाई देते हैं। वह साल को अच्छाइयों से सराबोर करता है। अच्छाई एक मुकुट है, आइए हम इस ताज को न खोएं। बाइबल कहती है, भजन संहिता अध्याय 85:12, फिर यहोवा उत्तम पदार्थ देगा और हमारी भूमि अपनी उपज देगी। हमें इन मुकुटों की रक्षा करनी चाहिए, अच्छी चीजों को न चूकें। पवित्र शास्त्र कहता है, सभोपदेशक अध्याय 9:18, परंतु एक पापी बहुत भलाई नाश करता है। यदि हम पाप को जगह देंगे तो हम खराब हो जाएंगे और कई लाभ खो देंगे, तो सावधान रहो। सावधान रहें कि जो लोग पाप कर रहे हैं उनके साथ न मिलें। बाइबल कहती है, नीतिवचन अध्याय 22:24-25, क्रोधी मनुष्य का मित्र न होना और झट क्रोध करने वाले के संग न चलना। कहीं ऐसा न हो कि तू उसकी चाल सीखे और तेरा प्राण फंदे में फंस जाए। गलत लोगों से दोस्ती न करें, उसके कारण हम वह अच्छाई खो देंगे जो हमारे परमेश्वर ने हमें दी है। पाप में फंसे लोगों के लिए प्रार्थना करें। यदि हम उनके साथ जुड़ते हैं तो हम उन लाभों को खो देंगे जो ईश्वर ने हमें दिए हैं। प्रभु ने हमें जो दिया है उसे हम खो देंगे, तो सावधान रहो, अपना ताज रखो। आइए चौथे पर नजर डालें। शास्त्र कहता है,
भजन संहिता अध्याय 103, शब्द 4। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। इसके बाद ईश्वर की कृपा और दया हमें मुकुट के रूप में दी गई है। हमें उन मुकुटों की रक्षा करनी चाहिए। इसलिए बाइबल चेतावनी देती है। इब्रानियों अध्याय 12, शब्द 15। और ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए, या कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। प्रभु का आशीर्वाद खो जाने की संभावना है, इसलिए कड़वाहट को जगह न दें। दूसरों को क्षमा करें, दूसरों से प्यार करो, अनुग्रह मत खोना। पौलुस तीमुथियुस को लिखता है, 2 तीमुथियुस अध्याय 2, शब्द 1। इसलिए ही मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। अनुग्रह से मजबूत होने के बजाय हमें इसे खोना नहीं चाहिए। जब हम ईश्वर की स्तुति करते हैं तो कृपा प्रचुर मात्रा में मिलती है, पौलुस ने कहा। 2 कुरिन्थियों अध्याय 4, शब्द 15। क्योंकि सब वस्तुएं तुम्हारे लिए हैं, ताकि अनुग्रह बहुतों के द्वारा अधिक होकर परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद भी बढ़ाए। जब हम प्रभु की स्तुति करते हैं तो अनुग्रह प्रचुर मात्रा में होता है। इतना ही नहीं, प्रेरित याकूब लिखते हैं, 4, शब्द 6। वो तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण ये लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए हमें उस अनुग्रह को बनाए रखने के लिए सावधान रहना चाहिए जो ईश्वर हमें देता है। प्रभु की कृपा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। पौलुस कहते हैं, 1 कुरिन्थियों अध्याय 15, शब्द 10। परंतु मैं जो कुछ भी हूँ, परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, और उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वो व्यर्थ नहीं हुआ। परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। इसके अलावा ये ईश्वर की कृपा है जो हमें जीवित रखती है और कड़ी मेहनत करती है। भविष्यवक्ता यिर्मयाह कहते हैं, विलाप गीत अध्याय 3, शब्द 22। हम मिथ नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। इसलिए हमें उस अनुग्रह और दया की रक्षा करनी चाहिए जो हमें मुकुट के रूप में मिली है। आइए 5वें पर नजर डालें। सेंट पौलुस ने थिसलुनीके के लोगों से कहा, 1 थिसलुनीकियों अध्याय 2, शब्द 19-20। भला हमारी आशा या आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु के सम्मुख उसके आने के समय तुम ही न होगे? हमारी बड़ाई और आनंद तुम ही हो। मुकुट उन आत्माओं का प्रतिनिधित्व करता है जो प्रभु हमें मंत्रालय में देते हैं। हमें आत्माओं की रक्षा करनी चाहिए। फिर जब प्रेरित पौलुस ने फिलिप्पी के विश्वासियों को लिखा, 4, शब्द 1। इसलिए मेरे प्रिय और अभिलाषित भाइयों, मेरे आनंद और मुकुट, इस प्रकार प्रभु में बने रहो। प्रिय ताज चच के लोग हैं जो प्रभु हमें देते हैं। मुकुट उन आत्माओं का प्रतिनिधित्व करता है जो प्रभु हमें मंत्रालय में देते हैं। हमें उन्हें सुरक्षित रखना चाहिए। इन अंतिम दिनों में झूठे मंत्री, झूठे शिक्षक और झूठे भविष्यवक्ता आत्माओं को भटकाने के लिए उठ खड़े होंगे। पवित्र पुस्तक कहती है, 2 तीमुथियुस अध्याय 3, शब्द 6-7। इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और छिछोरे स्त्रियों को वश में कर लेते हैं, जो पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में हैं, और सदा सीखती तो रहती हैं पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। इसलिए हमें लोगों

करने का ध्यान रखना चाहिए, जो उस मुकुट की तरह है जो प्रभु ने हमें दिया है। आत्माओं को खोना नहीं चाहिए। पौलुस तीमुथियुस को लिखता है, 1 तीमुथियुस अध्याय 1 शब्द 10। व्याभिचारियों, पुरुषगामियों, मनुष्य के बेचने वालों, झूठों और झूठी शपथ खाने वालों और इनको छोड़ खरे उपदेश के सब विरोधियों के लिए ठहराई गई है। इसलिए हमें अपने हाथ में सौंपे गए मंत्रालय की सावधानी पूर्वक रक्षा करने की जरूरत है। इसलिए प्रभु कहते हैं, यहेजकेल अध्याय 38 शब्द 7, इसलिए तू तैयार हो जा, तू और जितनी भीड़ तेरे पास इकट्ठी हो, तैयार रहना और तू उनका अगुवा बनना। हमें हमारी देखभाल के लिए सौंपी गई आत्माओं के लिए जमानत बनना चाहिए, उनकी रक्षा की जानी चाहिए। प्रभु यही चाहते हैं। इन समयों में कुछ मंत्री लापरवाह होते हैं और उस चर्च को खो देते हैं जो प्रभु ने उन्हें सौंपा है। वे अपना मंत्रालय खो रहे हैं और हमें जो मंत्रालय सौंपा गया है उससे सावधान रहना चाहिए। पौलुस आर्चिपोस को लिखता है, कुलुसियों अध्याय 4 शब्द 17, फिर अखिरपुस से कहना कि जो सेवा प्रभु में तुझे सौंपी गई है उसे सावधानी के साथ पूरी करना। हमें जो काम सौंपा गया है उसे सावधानी से करना चाहिए। हमें उन लोगों का भी ख्याल रखना होगा जो हमें दिए गए हैं। कुलुसियों अध्याय 1 शब्द 9, पौलुस ने उन लोगों के लिए बिना रुके प्रार्थना की जिन्हें उसे सौंपा गया था। हमें इसी प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। जब हम लापरवाह होंगे तो इस अंत समय में आत्माएं ठोकर खाएंगी। इसलिए पत्रस लिखते हैं, 1 पत्रस अध्याय 5 शब्द 1-3, मां में जो प्राचीन है मैं उनकी नई प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें ये समझाता हूँ कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और ये दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। और जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। हमें आत्माओं के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए। यिर्मयाह कहते हैं, यिर्मयाह अध्याय 10 शब्द 21, क्योंकि चरवाहे पशु सरीखे हैं और वे यहोवा को नहीं पुकारते, इसी कारण वे बुद्धि से नहीं चलते और उनकी सब भेड़ें तितर बितर हो गई हैं। परमेश्वर के सेवक वे होने चाहिए जो परमेश्वर को खोजते हैं। यदि हम ईश्वर को नहीं खोजते तो हम सफल नहीं हो सकते। हमारे लोग तितर बितर हो जाएंगे। तो सावधान रहो, यहोवा उन लोगों की रक्षा करेगा जिन्हें हमारे हाथों में सौंपा गया है। प्रभु कहते हैं, यशायाह अध्याय 60 शब्द 3-5, और अन्य जातियां तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। अपनी आंखें चारों ओर उठाकर देख, वे सबके सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं। तेरे पुत्र दूर से आ रहे हैं और तेरी पुत्रियां हाथों हाथ पहुंचाई जा रही हैं। तब तू इसे देखेगी और तेरा मुख चमकेगा, तेरा हृदय थरथराएगा और आनंद से भर जाएगा, क्योंकि समुद्र का सारा धन और अन्य जातियों की धन संपत्ति तुझको मिलेगी। यदि हम उस मंत्रालय में वफादार हैं जो प्रभु ने हमें दिया है, तो परमेश्वर हमें जो आत्माएं दी हैं उनके संरक्षण के कारण प्रभु तट की भीड़ को हमारे पास भेज देंगे। इसलिए प्रभु इस वर्ष हमें बताते हैं, प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 शब्द 11, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। आमीन।

चाहे आपके माँ आपको भूल जाए, चाहे आपके दोस्त आपको भूल जाए, मैं परमेश्वर आपको कभी नहीं भूलेगा, वह आपके साथ हमेशा बना रहेगा। ताली बजा कर उसको महिमा दे प्रियो। आमीन। आमीन। लोग तुझको भूल जाए माँ क्यों ना भूल जाए, वो तुझको ना भूलेगा। दोस्त तुझको भूल जाए, रिश्ते क्यों ना भूल जाए, वो तुझको ना भूलेगा। दोस्त तुझको भूल जाए, रिश्ते क्यों ना भूल जाए, वो तुझको ना भूलेगा। दोस्त तुझको भूल जाए माँ क्यों ना भूल जाए, वो तुझको ना भूल

रही हूँ, ताले बजा कर उसके नाम में मकर आत्मा सच्चाई के साथ उसके आराधना करें। Yes, Lord. उसने सोना मांगा ना चांदी मांगा है, सोना उसने मांगा नहीं, चांदी उसने मांगा नहीं, दिल उसने मांगा मेरा, जाति उसने पूछा नहीं, भाषा उसने पूछा नहीं, मन उसने मांगा।

0: आगे बढ़ो, पीछे मुड़कर मत देखो।
1: स्टेशन गिर रहा है,
2: पीछे मुड़कर मत देखो, स्टेशन गिर रहा है।
3: सभी लोग अभी तुरंत सीढ़ियों से ऊपर जाएं।
4: आगे बढ़ो, पीछे मुड़कर मत देखो, स्टेशन गिर रहा है।

दौड़ना हमारे शरीर के लिए एक बहुत ही बेहतरीन व्यायाम माना जाता है, जो न केवल हमारे हृदय को स्वस्थ रखता है बल्कि हमारी मांसपेशियों को भी मजबूती प्रदान करता है और हमें दिन भर ऊर्जावान बनाए रखने में मदद करता है।

सारा रुको मैं आ रहा हूं, आप जहां हैं वहीं रहेंगे।

0: चल दर।
1: धमकाना
0: सारा।
1: एलेक्स, क्या हो रहा है? पूरी इमारत झंस रही है।
0: जब हेम्पटोट गिर रहा है तब चट्टान भी गिर रही है। हमें इस टावर के गिरने से पहले 10 मिनट में निकलना होगा। अब

0: मैं उन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। इस मंजिल पर अभी भी सैकड़ों लोग हैं।
1: अगर तुम 10,000 टन कंक्रीट के नीचे दब गए तो उन्हें बचा नहीं पाओगे। दौड़ो,

0: देखो पानी चला गया है, सब चला गया है।
1: ये एक ड्रॉकेट है, लहर आ रही है। रुको,
2: ये टूट रहा है क्या?
3: ट्रांसपोर्ट छत पर क्यों नहीं है? अगर मैं मर गया तो तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा।
4: चुप रहो, मूवर शेयरिंग। इमारत कट रही है।
5: आखिरी बचे हुए इंसान बनने के नाम मैंने कहा था निवेश काम आएगा।
6: क्या तुमने वो महसूस किया?
7: हमें तो ग्रेनाइट के 400

0: आखिरी बचे हुए इंसान बनने के नाम। मैंने कहा था निवेश काम आएगा।
1: क्या तुमने वो महसूस किया?
2: हमें तो ग्रेनाइट के 400 फीट नीचे होना चाहिए था।

0: ये चला गया। एलेक्स न्यूयॉर्क अब बस खत्म हो गया है।
1: पीछे मत देखो, हमें पश्चिम की ओर बढ़ते रहना होगा। पानी अभी रुका नहीं है,

0: हमारे पास एक सिग्नल है।
1: ये बहुत तेजी से फैल रहा है। कृपया मुझे वो सैटेलाइट फीड्स तुरंत ऑनलाइन चाहिए। आंदोलन को ट्रैक करो और पुष्टि करो कि पानी किस दिशा में जा रहा है।

0: मास मीडिया की प्लेटें खिसक रही हैं,
1: प्लेटें खिसक रही हैं। गहराई की निगरानी कर रहा हूं।

0: एलेक्स इन्हें देखो,
1: हम जबरदस्ती अपना रास्ता नहीं बना सकते।
2: उन कारों में लोग हैं,
3: अगर हम रुक गए तो लहर हमें बहा ले जाएगी। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। यातायात जाम पकड़ना।

प्रीति को बंद कर, मुझे सेकेंडरी मैनिफेस्ट की परवाह नहीं है। अगर वे अभी यहाँ नहीं है तो वे बोझ मात्र हैं।

नमस्कार, मेरा नाम है बनाने में आसान।

0: नमस्ते टेल, धन्यवाद। 1-2.5 अभियान याद है, कैटलिस्ट से खुशी हुई।
1: टीम ये दिलचस्प है, इंटरमीडिया क्रिएशन और प्रॉम्प्ट आधारित काम मेरे सिनेमैटिक एआई कंटेंट के लिए सटीक रहेगा। यूट्यूब और 4,500 में शामिल है लोग।

हमें बड़े पैमाने पर हिंसा बढ़ने की पुष्ट रिपोर्टें मिल रही हैं। सिग्नल, ये प्रतियोगिता से बाहर हो रहा है। Les signaux qu'il disparaissent, Tito. यदि आप मुझे पसंद करते हैं तो आपको क्षेत्र और प्रासंगिकता की समस्या का सामना करना पड़ता है। हे भगवान।

0: इलेक्स हीटर से ठंडी हवा आ रही है। मैं नहीं कर सकता, मुझे अपने हाथों में कोई संवेदना नहीं है।
1: दबाव, वह चला गया।
2: वातावरण में रिसाव हो रहा है,

0: आश्रय जगह में 101.3 एफए एक सिग्नल खराब हो रहा है। जल्दी करो, हमें उस पेट्रोल की जरूरत है।
1: ट्रंक की जांच करें, जल्दी करो।
0: मदद करो, हमें अंदर आने दो, दरवाजे से दूर रहो, मैं इसे खोल नहीं सकता।
1: एलेक्स, बस जाओ जाओ,

0: वो क्या था? ऐसा लगा जैसे पूरा पहाड़ ही उछल गया।
1: प्लेट, ये अभी भी फिसल रही है।
2: ये मेंटल की धड़कन है। हमें अगले झटके से पहले चलते रहना होगा।

ये भूकंप नहीं है, ये बस जम रहा है। पूरी प्लेट अपना नया ठिकाना ढूंढ रही है। ये हो रहा है सारा।

0: गायब हो गया। एलेक्स, सूरज गायब हो गया है। इतना अंधेरा पहले कभी नहीं हुआ। मैं अपने ही हाथ नहीं देख पा रहा हूँ।
1: उस रोशनी को कम रखो, हमें बैटरियों को बचाना होगा। राख सब कुछ बंद कर रही है।

चलो बस कुछ गैलन ही चाहिए। मुझे कुछ गैलन दे दो।

आपातकालीन सेवाएं रिवर कीक और स्टेबल के साथ बड़े व्यवधान की रिपोर्ट कर रही हैं। तटीय निगरानी स्टेशन असामान्य समुद्री हलचल की रिपोर्ट कर रहे हैं। सिग्नल बार बार गायब हो रहे हैं। हर जगह कुछ ना कुछ हो रहा है।

0: इन्हें अंदर ले जाओ, इन्हें मेडिकल टेंट के अंदर ले जाओ, अभी के अभी। चलते रहो, उन्हें अंदर ले आओ।
1: टिकोर, मुझे डीसी से आने वाले आदेशों की परवाह नहीं है। डीसी पानी के नीचे है। हम आखिरी मछली के मिलने तक इस पहाड़ी पर डटे रहेंगे। उन लाइट्स को और ऊपर करो।
0: इधर आओ, चलते रहो, तुम लगभग पहुंच ही गए हो। उसे मजबूती से पकड़ कर रखिए, लाइन को पूरी तरह से स्थिर कर दीजिए और उस फ्लैप को सावधानी से बंद कर दें। हमारी शारीरिक गति बहुत तेजी से कम हो रही है और हम धीरे धीरे अपनी पूरी तापीय ऊर्जा को इस ठंडे वातावरण में खोते जा रहे हैं।

0: हवा वह चली गई है।
1: हम नीचे हैं, हम दब गए हैं सारा। क्या आपको सच में लगता है कि यह सच है?

0: ध्रुव 40 डिग्री शिफ्ट हो गया है। हम संरक्षित हैं अर्जमिज, वे सतह के नीचे हैं, वे और भी आर्कटिक की तरह हैं।
1: वे कह रहे हैं कि उत्तरी ध्रुव 40 डिग्री खिसक गया है, ग्रह पलट गया है।

मैं अब भी मॉनिटर्स की आवाज सुन सकता हूँ। एलेक्स ट्रायर्स वार्ड में मैं बीपिंग की आवाज और फिर कांच की आवाज सुन सकता हूँ।

0: सुनो, हवा रुक गई है, बर्फ अब दरवाजे तक पूरी तरह से आ गई है,
1: हम इसके नीचे दब गए हैं

0: धूल बहुत घनी है,
1: हम सांस ले रहे हैं
2: पहाड़ की।

संरचनात्मक अखंडता शून्य। मैनहट्टन में

0: रुको, पेड़ों को मजबूती से पकड़ लो। मैं नहीं कर सकता,
1: मैं हवा को फिल्टर नहीं कर सकता,
0: ये सांस लेने जैसा है।
1: कांच,
0: पकड़ना।

0: सारा पुरानी दुनिया बर्फ के नीचे दबी हुई है,
1: लेकिन हम अभी भी यहीं हैं।
2: वह चला गया।
3: हमें फिर से शुरू करना होगा,
4: हमें फिर से निर्माण करना होगा।

0: प्रभु सभी सत्य की ओर मार्गदर्शन करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रभु क्या करेंगे, वे हमें सिखाएंगे, और अगर हम उनकी कही बातों को भूल जाएं, तो वे हमें याद दिलाएंगे। यदि पवित्र आत्मा हमारे भीतर है तो किसी और को हमें सिखाने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। इसी कारण पवित्र आत्मा को हम पर उंडेला गया है। सबसे पहले प्रभु ने क्या किया, पुनरुत्थान के बाद वे हमें आशीर्वाद देते हैं। दूसरे, उन्होंने हमें पश्चाताप और पापों की क्षमा प्रदान की। तीसरे, उन्होंने पवित्र आत्मा को हम पर उंडेला, उन्होंने हम पर पवित्र आत्मा का अभिषेक उंडेला। चौथे, वे हमारे लिए मध्यस्थता करते हैं। पढ़कर देखिए रोमियों को लिखे गए पत्र में अध्याय 8 वचन 34, दोषी ठहराने वाला कौन है? मसीह ही है जो मरा, बल्कि जो जी भी उठा है वही परमेश्वर के दाहिने और विराजमान है, और हमारे लिए विनती कर रहे हैं। वही हैं। हालेलुया। उन्होंने केवल हमारे लिए मरण ही नहीं सहा, हमारे लिए वे क्या कर रहे हैं? वे हमारे लिए विनती कर रहे हैं। प्रभु हमारे लिए निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं। क्या हमने नहीं गाया था? हमने गाया था कि मेरा उद्धारकर्ता जीवित है। तीसरी बात, उन्होंने हम पर पवित्र आत्मा उंडेला। चौथी बात, हमारे लिए वे क्या कर रहे हैं? वे हमारे लिए विनती कर रहे हैं। हालेलुया। वे किस बात के लिए विनती कर रहे हैं? योहन रचित सुसमाचार अध्याय 70 वचन 21 में लिखा है, वे सब एक हूं और हमें भी कैसे रहना चाहिए, हमें एक दूसरे से अलग नहीं रहना चाहिए, वे सब एक हों जैसे हे पिता आप मुझ में हैं और मैं आप में हूं, वैसे ही वे भी हम में एक हों, ताकि दुनिया ये विश्वास करे कि आपने मुझे भेजा है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि वे सब हम में एक हों। हालेलुया। उन्होंने क्या प्रार्थना की कि हम सब एक हों? हालेलुया। हमारे बीच कोई विभाजन नहीं आना चाहिए, हमारे बीच कोई भ्रम नहीं आना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? हमें एकजुट रहना चाहिए। जानते हैं इसका कारण क्या है? प्रभु ने हम सबको एक ही रक्त से उत्पन्न किया है। उस वचन को पढ़कर देखिए, प्रेरितों के काम अध्याय 17 वचन 26। क्या आपने देखा कि मानव जाति की सभी जातियों को उन्होंने एक ही रक्त से उत्पन्न किया है? देखिए हम सबको उन्होंने कैसे उत्पन्न किया है। प्रभु ने हम सबको एक ही रक्त से उत्पन्न किया है। हमें एक दूसरे से प्रेम पूर्वक रहना चाहिए, हर किसी को स्थिर रहना चाहिए। यही उन्होंने प्रार्थना की। हालेलुया। हमारे लिए वो क्या कर रही है? वे पिता के दाहिने और खड़े होकर हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। उन्होंने हमें एक ही रक्त से उत्पन्न किया है। हम ही हैं जिन्होंने जाति के नाम पर खुद को अलग अलग कर लिया है। तुम कौन सी जाति, मैं कौन सी जाति, हमने ही जाति का भेद बनाया। प्रभु ने क्या किया? उन्होंने हम सभी को एक ही रक्त से उत्पन्न किया। हालेलुया। इतना ही नहीं, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 17 वचन 15, मैं ये प्रार्थना नहीं करता कि तू उन्हें संसार से उठा ले, बल्कि ये कि तू उन्हें बुराई से बचाए रख। परमेश्वर ने हमारे लिए प्रार्थना की कि वो हमें बुराई से बचाए। हालेलुया। देखिए परमेश्वर कितना प्रेमी है। प्रभु यीशु मसीह जैसा प्रेमी व्यक्ति संसार में कहीं और नहीं मिल सकता। इतने प्रेमी हैं हमारे परमेश्वर। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 17 वचन 24, हे पिता जैसे तूने मुझे संसार की उत्पत्ति से पहले प्रेम किया था, वैसे ही तूने जो महिमा मुझे दी है, वे जिन्हें तूने मुझे दिया है वे भी उसे देख सके। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जहाँ मैं हूँ वे भी मेरे साथ हों। हालेलुया। ये परमेश्वर ने हमारे लिए कहा है। उन्होंने प्रार्थना की कि जहाँ मैं हूँ वे भी वहाँ रहे, मेरे साथ, मेरे निकट, मेरे पास। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जीवित होकर उठे और उन्होंने कहा, मैं मर गया था, फिर भी देखो मैं सदा सर्वदा जीवित हूँ, हमेशा के लिए, अनंत काल तक। सबसे पहले वे क्या करते हैं जब वे पुनर्जीवित होकर प्रकट होते हैं? वे हमें बुराई से बचाकर आशीर्वाद देते हैं। दूसरे, वे हमें पापों की क्षमा और मन फिराव का वरदान देते हैं। तीसरे, उन्होंने हम पर पवित्र आत्मा उंडेला। चौथे, वे हमारे लिए मध्यस्थता करते हैं। हालेलुया। क्या हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे? प्रभु, आपको मेरे हृदय में आना चाहिए, हमारे भीतर वास करें, मेरे अंदर निवास करें, आपको मेरे भीतर रहना चाहिए। हम संघर्ष करके प्रार्थना करेंगे, प्रभु निश्चित रूप से हमें आशीर्वाद देंगे। कई साल पहले ही अय्यूब ने भविष्यवाणी की थी कि मेरा उद्धारकर्ता जीवित है और अंतिम दिन वो पृथ्वी पर खड़ा होगा, ये मैं जानता हूँ। इसलिए आज के दिन हमारा उद्धारकर्ता जीवित है। हमने संदेश के माध्यम से सुना कि जीवित होकर उठे यीशु मसीह हमें क्या भलाई देते हैं। अभी भी वही अच्छे चरवाहे की उपस्थिति हमारे हृदय को भर दे। ऐसी प्रार्थना है कि उनकी उपस्थिति हमारे भीतर उतर आए। हम सब प्रभु की ओर देखकर जो वचन हमने सुने हैं उन्हें समर्पित करके प्रार्थना करने जा रहे हैं। यीशु राजा हमारे साथ हैं, वे हमें सामर्थ देने आए हैं, वे हमें जीवन देने आए हैं। इस दिन हम सब अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। क्या हम सुनी गई बातों के लिए प्रार्थना करें? यीशु ने क्यों पुनर्जीवित हुए? सबसे पहले वे हमें आशीर्वाद देने के लिए पुनर्जीवित हुए हैं। दूसरा, यीशु पुनर्जीवित होकर हमें क्या देते हैं? वे हमें पापों की क्षमा और मन परिवर्तन देते हैं। वे हमें धर्मी बनाते हैं। हमें धर्मी बनाकर वे क्या करते हैं? वे न केवल हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, बल्कि स्वर्ग में पिता के राज्य में हमें सूर्य की तरह चमकने योग्य भी बनाते हैं। देखिए, ये कितनी बड़ी आशीर्वाद है। तीसरी बात, यीशु जीवित होकर क्या करते हैं? वे हम पर पवित्र आत्मा को उंडेलते हैं। जब पवित्र आत्मा हमारे भीतर आते हैं तो वे हमें सत्य की ओर ले जाते हैं। वे हमें समझाते और प्रबुद्ध करते हैं। वे हमें सब कुछ सिखाते हैं। इसलिए पुनर्जीवित मसीह ने अपने शिष्यों पर पवित्र आत्मा को फूंका। उन्होंने कहा, पवित्र आत्मा को प्राप्त करो। आज भी क्या हम ये प्रार्थना करेंगे? हे प्रभु, मुझे आशीर्वाद दो। प्रभु, मुझे मेरी बुराइयों से दूर रखो और मुझे आशीर्वादित करो। क्या हम प्रभु की ओर देखकर ये प्रार्थना कर सकते हैं? मुझे पश्चाताप की आत्मा दो, मुझे धर्मी बनाओ, मेरे सारे पापों को क्षमा करो और अपने लहू से मेरे हृदय को शुद्ध करो। हम कहेंगे, हे परमेश्वर, मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक दो। केवल इतना ही नहीं कि हे आत्मा, मेरे भीतर आओ। पुनरुत्थित मसीह हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर प्रार्थना कर रहे हैं कि हम एक हों। वे प्रार्थना करते हैं कि हमारे बीच कोई विभाजन ना हो। वे प्रार्थना करते हैं कि हम बुराई से सुरक्षित रहें। वे प्रार्थना करते हैं कि जहां वे हैं, हम भी वहीं हों। क्या हम ऐसी आशीषों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं? क्या हम प्रभु की ओर देखकर प्रार्थना कर सकते हैं? हे प्रभु, मुझे आशीर्वाद दो और बुराई से बचाओ। हे भगवान, मुझे अलग करके आशीर्वाद दो। हे पिता, हमें मन फिराने की आत्मा दो। हे प्रभु, हमारे सारे पापों को क्षमा करो। हे प्रभु, हमें अपनी पवित्र आत्मा दो। प्रभु यीशु मसीह, हमें एकता में रहने के लिए अपनी कृपा दो। आप कहाँ हैं? क्या हम प्रार्थना कर सकते हैं कि जहां आप हैं वहां हम भी रहे और आप हमारी सहायता करें? प्रभु, हम धन्यवाद और सच्चाई के साथ आपकी स्तुति करते हैं। स्वर्ग में विराजमान पवित्र प्रभु, हम आपकी स्तुति और महिमा करते हैं। हे प्रभु, आज के इस दिन भी आपने जो वचन दिए हैं उसके लिए धन्यवाद। मेरा उद्धारकर्ता जीवित है। हे जीवित उद्धारकर्ता, हम आपकी स्तुति करते हैं। चाहे कोई मर जाए या कोई हमें छोड़कर चला जाए, यीशु जीवित है। हे पिता, आप हमें आशीर्वाद दें और हर बुराई से दूर रखें। इसी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, जैसे याकूब ने प्रार्थना की, वैसे ही हमें भी प्रार्थना करनी चाहिए। प्रभु, हमें भी आशीर्वाद दें। आपने कहा है कि प्रभु का आशीर्वाद समृद्धि लाता है। प्रभु, हम सभी को आशीर्वाद दें और हमें पश्चाताप की आत्मा दें। प्रभु, हमें पश्चाताप की आत्मा दें। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे सभी पापों को दया करके क्षमा करें।
1: हे पिता, आपने पवित्र आत्मा को बिना माप के प्राप्त किया था।
0: हमें भी अपनी अभिषेक को बिना माप के प्रदान करें। हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी अभिषेक का संपूर्ण तेल हम पर उंडेला जाए, ताकि हम आपकी अभिषेक को प्राप्त कर सकें। प्रभु, हमें एकता में रहना चाहिए, हमारे बीच में कोई विभाजन या कड़वाहट ना आए, हमें बुराई से बचाए रखा जाए। प्रभु, आप जहां भी हैं, हमें भी वही रहने का वो अनुग्रह दें। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, आपके वचन को सुनकर अपने आप को समर्पित कर रहे हर परिवार के लोगों को आशीर्वाद दें। प्रभु, आप ही हैं जो बहन को सामर्थ्य के साथ उपयोग करते हैं। इसके लिए जैसा कि आपने किया है, हम लाखों बार धन्यवाद देते हैं। जैसे हमने मांगा, वैसे ही आपने हमें हमारे संकटों से दूर किया और हमें आशीर्वाद देने के लिए ही मसीह जीवित होकर उठे। क्या हम सब आज इस दिन प्रार्थना कर सकते हैं? हे प्रभु, हमें हमारे संकटों से दूर कर आशीर्वाद दीजिए। हे परमेश्वर, हमें आत्मिक आशीर्वाद दीजिए, हमें सांसारिक आशीर्वाद दीजिए और हमें सभी भलाइयां दीजिए। स्तुति हो प्रभु, हम कृतज्ञता के साथ आपकी स्तुति करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। स्वामी, इस आनंदमय दिन के लिए हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु, आप मृत देवता नहीं हैं। आपने कहा था, मैं मर गया था, फिर भी देखो, मैं सदा सर्वदा जीवित हूँ। ये परमेश्वर हमेशा के लिए अनंत काल तक हमारे परमेश्वर हैं, मृत्यु तक हमें मार्गदर्शन करने वाले। प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं, प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं, हम कृतज्ञता के साथ आपकी महिमा करते हैं। यहाँ उपस्थित सभी सभा के लोगों के लिए जिन्हें हम आमने सामने देख रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं सभी को आशीर्वाद दें और सामर्थ्य प्रदान करें। प्रभु, कृपया शांति दें, आनंद दें। प्रभु, चाहे मेरी कोई भी कमजोरी हो, उसे दूर कर दें, जो भी बंधन है उन्हें तोड़ दें, शैतान के सभी कार्यों को नष्ट कर दें। यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं कि सारी बुरी शक्तियां समाप्त हो जाएं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोगों को आशीर्वाद दें और उन्हें ऊंचा उठाएं। हे राजा, हम आपकी स्तुति करते हैं, क्योंकि आप हमें बुराई से दूर रखकर आशीर्वाद देने में सामर्थ्य हैं। प्रभु, आपकी कृपा हमें सशक्त बनाए रखे। हे पिता, किसी भी परिवार पर कोई जादू या टोना असर न करे। यीशु मसीह के नाम से हम सभी बुरी शक्तियों को नष्ट और दूर करते हैं। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने और शत्रु की सारी शक्ति पर अधिकार दिया है, और कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचाएगा, ऐसा आपने कहा था। प्रभु, हम शैतान के सभी कार्यों को नासरी यीशु मसीह के नाम में डांटते, बांधते और दूर करते हैं। प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं। चाहे कोई भी बीमारी हो, आप चंगा करते हैं, चाहे कोई भी रोग हो, आप चंगा करते हैं, चाहे कोई भी कमजोरी हो, आप उसे दूर करते हैं। हे परमेश्वर, आप जादू टोने की सारी बंधनों को तोड़ते हैं, शैतान के कार्यों को नष्ट कर देते हैं। हे राजा, जो लोग बेरोजगार हैं, उन्हें नौकरी दीजिए, जिनका विवाह नहीं हुआ है, उनका विवाह संपन्न हो, जिनके पास संतान का सुख नहीं है, उन्हें संतान का आशीर्वाद दीजिए। हे परमेश्वर, जिनके जीवन में शांति नहीं है, उन्हें शांति दीजिए। जो लोग कर्ज की समस्या, आंसू और पीड़ा में हैं, उन्हें मुक्ति दीजिए। हे पिता, प्रभु, जो परिवार शराब पीते हैं, उन्हें मुक्ति दीजिए। हे पिता, जो परिवार व्यवसाय कर रहे हैं, उन्हें आशीर्वाद दीजिए। जो परिवार व्यापार कर रहे हैं, उन्हें भी आशीर्वाद दीजिए। हे प्रभु, जो लोग केश में हैं, उन्हें विजय प्रदान करें। बिछड़े हुए परिवारों को फिर से एक करें। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, वे ज्ञान, भक्ति, शिक्षा, बुद्धि और क्षमता में उत्कृष्ट बने और चमके। हे प्रभु, सभी बच्चों को स्तुति करने वाले और प्रार्थना करने वाले बच्चों में बदल दे। प्रभु, हमारे छोटे बच्चों पर प्रार्थना की आत्मा उंडेलने वाले परमेश्वर हैं। सभी बच्चों को प्रार्थना करनी चाहिए, स्तुति करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए, प्रभु की कृपा को धारण करना चाहिए। हम प्रार्थना करते हैं कि छोटे बच्चों को आशीर्वाद दें। हे प्रभु, महान कार्य करने वाले प्रभु, चाहे मुझ में कोई भी कमजोरी हो, चंगा करने वाले राजा, दया करे, दया करे, दया करे हर एक कमजोर व्यक्ति पर, और परमेश्वर की सामर्थ उन पर दया करे। हे प्रभु, चंगा करे, चमत्कार करे, अद्भुत कार्य करे। हे राजा, हम आपकी स्तुति करते हैं, हर एक के जीवन में, उनके हृदय में और बाहर अद्भुत कार्य करे। हे प्रभु, मुझे विश्वास है कि आप हर एक की आवश्यकता को जानते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हर एक की आवश्यकता को पूरा करें। हे पिता, जिनके पास घर नहीं है उन्हें घर दें। जो लोग घर बनाते समय बीच में हैं, उन्हें घर पूरा करने के लिए अनुग्रह दें। हे प्रभु, हम आपके नाम की महिमा के लिए आपके चरणों में गिरकर विनती करते हैं, जो परमेश्वर सोचने और मांगने से भी बढ़कर कार्य करते हैं। हे प्रभु, आपको धन्यवाद। आपके बच्चे जो कुछ भी प्रार्थना करते हैं वो प्रभु के सामने हर्ष का कारण बने। आपने कहा था कि मैं तुम्हारे हृदय की इच्छाओं को तुम्हें प्रदान करूंगा। हम प्रार्थना करते हैं कि हर किसी की आवश्यकताओं को आप पूरी करें। प्रभु की आशीर्वाद देने वाली और ऊंचा उठाने वाली कृपा, प्रभु की प्रसन्नता, प्रभु की महिमा हर एक पर शासन करे। हे प्रभु, हम सारी स्तुति, आदर, महिमा और महानता आपको ही अर्पित करते हैं, जो जिम्मेदारी लेकर हमारी रक्षा करते हैं। हम ये सब कुछ हमारे प्रिय उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में विनम्रता से मांगते हैं। हे परमपिता,
1: தமிழ், ஆங்கிலம், ஹிந்தி, மலையாளம், தெலுங்கு ஆகிய ஆறு மொழிகளில் கர்த்தரின் கிருபையால் வெளிவருகின்றது. இப்ப பத்திரிக்கை வேண்டோர் எங்களது முகவரியை தொடர்பு கொள்ளலாம்.
2: எங்கள் முகவரி இயேசுவின் கரம், 12-80 அம்பேத்கர் நகர், டார்லிங்டன் பிரிட்ஜ், குன்னூர், 643-101, நீலகிரி மாவட்டம், தென்னிந்தியா. எங்கள் தொலைபேசி எண்கள் 944-30-780-19 மற்றும் 75-98-11-2435. இன் இங்கிலீஷ், ஹேண்ட் ஆஃப் ஜீசஸ் மினிஸ்ட்ரிஸ், 12-80 அம்பேத்கர் நகர், டார்லிங்டன் பிரிட்ஜ், கூனூர், 643-101, நீலகிரி, சவுத் இந்தியா. செல்போன் நம்பர்ஸ் 9443078019 and 7598112435. Our email address acvinkaram@gmail.com. Our website handofjesus.in. God bless you.

0: मसीह में प्रिय, हम आपको हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर बड़े प्रेम से नमस्कार करते हैं। इस दुनिया में आपके पास चाहे कितने भी बड़े घर, संपत्ति और जमीन क्यों ना हो, जब आप इस दुनिया से जाएंगे तो आप इसे अपने साथ नहीं ले जा सकेंगे।
1: इसीलिए प्रेरित पौलुस ने कहा,
0: पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने ही बात जो रहे हैं। हमारा निवास स्थान इस संसार का नहीं है, हमारा घर स्वर्ग में है। हमें उस गौरवशाली स्थान पर जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि एक मानव दिवस कैसा होता है? क्योंकि हम तो कल ही के हैं और कुछ नहीं जानते, और पृथ्वी पर हमारे दिन छाया की नाई बीतते जाते हैं। अय्यूब 8:9।
1: इतना ही नहीं, भजनकार कहता है, मेरी आयु ढलती हुई छाया के समान है और मैं आप घास की नाई सूख चला हूँ।
0: भजन संहिता 102:11।
1: प्रेरित याकूब लिखते हैं, और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा, सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम तो मानो भाप समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती है, फिर लोप हो जाती है।
0: याकूब 4:14।
1: इसलिए यह सांसारिक जीवन, इसके खजाने और पृथ्वी स्थाई नहीं है।
0: यीशु ने कहा, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं, वहां तुम भी रहो।
1: यूहन्ना 14:3। तो आइए हम उस शानदार शहर, उस शानदार घर में जाने के लिए खुद को प्रतिबद्ध करें।
0: पौलुस लिखता है, और इस संसार के बरतने वाले ऐसे हों कि संसार ही के न हो ले, क्योंकि इस संसार की रीति और व्यवहार बदलते जाते हैं। 1 कुरिन्थियों 7:31।
1: तो फिर उस शानदार शहर तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना होगा? क्या हम थोड़ा ध्यान करें?
0: पहले धर्म ग्रंथ कहता है,
1: पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं, इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता, सो उसने उनके लिए एक नदर तैयार किया है।
0: इब्रानियों 11:16।
1: प्रभु उन लोगों के लिए एक शहर तैयार कर रहे हैं जो शानदार स्वर्गीय भूमि की इच्छा रखते हैं। अगर हम खुद इसकी इच्छा नहीं रखते तो वह हमें यह कैसे देगा? इसलिए स्वर्गीय देश से, उस सनातन नगर से प्रेम रखो, वहां जाने के लिए प्रार्थना करें, तभी प्रभु तुम्हें वह नगर देगा।
0: इसीलिए प्रेरित पौलुस कहता है,
1: सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है।
0: पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ।
1: कुलुसियों 3:1-2। हमें स्वर्ग की चाहत और अभिलाषा की आवश्यकता है।
0: इसीलिए यीशु ने कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य पर जोर होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं।
1: मत्ती 11:12। इसलिए सबसे पहले हमें स्वर्गीय नगर में जाने की इच्छा रखनी चाहिए।
0: प्रेरित पौलुस कहता है,
1: इसलिए हम धाड़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं।
0: 2 कुरिन्थियों 5:8।
1: मसीह में परमेश्वर के प्रिय बच्चों, आपकी प्राथमिकता क्या है?
0: प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम वहां आएं।
1: यीशु ने पिता से कहा,
0: हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हों, कि वे मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा।
1: यूहन्ना 17:24।
0: यदि हमारी इच्छा हो तो हम निश्चित रूप से उस शहर में प्रवेश कर सकते हैं।
1: दाऊद कहते हैं, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा।
0: भजन संहिता 23:6।
1: क्या हम भी परमेश्वर के नगर की लालसा करें?
0: दूसरा, पवित्र बाइबल कहती है,
1: क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थिर रहने वाला नगर नहीं, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं।
0: इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाया करें।
1: इब्रानियों 13:14-15।
0: इस दुनिया में हमारा कोई स्थायी शहर नहीं है, हम आने वाले इस राज्य की खोज में हैं।
1: इसलिए बाइबल हमें साफ साफ बताती है कि हमें क्या करना चाहिए।
0: इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान
1: अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाया करें। इब्रानियों 13:15। यदि हम परमेश्वर के नगर में जाना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद करना चाहिए। जिस शहर में हम रहेंगे वह प्रशंसा का शहर है। यदि आप वहां जाना चाहते हैं तो आपको ईश्वर की स्तुति करने वाला व्यक्ति होना चाहिए।
2: भजनकार कहता है, क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। भजन संहिता 84:4। यदि आप और मैं स्वर्गीय घर में रहना चाहते हैं, हमें ऐसे लोग बनना चाहिए जो परमेश्वर की स्तुति करे। पवित्र बाइबल कहती है, इसके बाद मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना कि हल्लेलुया, उद्धार और महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर ही की है। प्रकाशित वाक्य 19:1। पवित्र बाइबल कहती है, फिर दूसरी बार उन्होंने हल्लेलुया कहा और उसके जलने का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा, और 2400 प्राचीनों और चारों प्राणियों ने गिरकर परमेश्वर को दंडवत किया जो सिंहासन पर बैठा था और कहा, आमीन, हल्लेलुया। प्रकाशित वाक्य 19:3-4। बाइबल हमें एक आदर्श दिखाती है कि हमें कैसे प्रशंसा करनी चाहिए। इतना ही नहीं, और सिंहासन में से एक शब्द निकला कि हे हमारे परमेश्वर से सब डरने वाले दासों, क्या छोटे क्या बड़े, तुम सब उसकी स्तुति करो। प्रकाशित वाक्य 19:5। क्या आप देखते हैं कि परमेश्वर की स्तुति करना कितना महत्वपूर्ण है? हमें प्रभु की स्तुति कैसे करनी चाहिए? पवित्र बाइबल कहती है, और जब तुम यहोवा के लिए धन्यवाद का मेलबलि चढ़ाओ तो उसे इसी प्रकार से करना जिससे वह ग्रहण योग्य ठहरे। इसलिए स्वर्ग प्रशंसा का शहर है। यदि आप वहां जाना चाहते हैं तो आपको ईश्वर की स्तुति करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। पवित्र बाइबल कहती है, और चारों प्राणियों ने आमीन कहा और प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया। तीसरा, प्रेरित याकूब लिखते हैं, हे मेरे प्रिय भाइयों सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हों जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं? याकूब 2:5। इसके बाद हमें उससे प्रेम करना चाहिए। परमेश्वर स्वर्ग में जाने का विशेषाधिकार केवल उन्हीं को देता है जो उससे प्रेम करते हैं। तो क्या हम प्रभु से प्रेम करें? हमें प्रभु से कैसे प्रेम करना चाहिए? यीशु ने कहा, उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। मत्ती 22:37। प्रभु चाहता है कि हम उससे पूरी तरह प्रेम करें। उससे प्रेम करने का क्या अर्थ है? यीशु ने कहा। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। यूहन्ना 14:23। प्रभु से प्रेम करना उनके वचन का पालन करना है। यदि हम उसका वचन मानना चाहते हैं तो हमें उसका वचन अधिक पढ़ना होगा और उसे जानना होगा। हम में से बहुत से लोग बाइबल नहीं पढ़ते, तो फिर हम प्रभु के वचन को कैसे जाने? इसलिए प्रभु के वचन को अधिक बार पढ़ें, प्रभु के वचन पर अधिक मनन करें। इसका ध्यान रखना, प्रभु से प्रेम करने का यही अर्थ है। जब हम प्रभु से पूर्णतः प्रेम करेंगे तो परमेश्वर हमें अपना राज्य देगा। उसने अपना राज्य केवल उन लोगों को देने का वादा किया है जो उससे प्रेम करते हैं। चौथा, प्रभु यीशु ने कहा, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। मत्ती 5:10। क्या आपने इस बात पर गौर किया है कि हमारे अपने लिए कष्ट उठाने की बात नहीं है? उसके वचन के कारण, धार्मिकता के कारण जब हम सताए जाते हैं और कष्ट उठाते हैं तो हम धन्य लोगों में बदल जाते हैं। उसका राज्य भी हमारा हो जाता है। क्लेश निश्चित रूप से मसीही जीवन का एक हिस्सा है। प्रेरित पौलुस यही कहता है कि कोई इन क्लेशों के कारण डगमगा ना जाए, क्योंकि तुम आप जानते हो कि हम इन्हीं के लिए ठहराए गए हैं। क्योंकि पहले भी जब हम तुम्हारे यहाँ थे तो तुमसे कहा करते थे कि हमें क्लेश उठाने पड़ेंगे और ऐसा ही हुआ है और तुम जानते भी हो। एक थिस्सलुनीकियों 3:3-4। इसलिए हमें कभी भी कठिनाइयों का सामना करके हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। उनका सामना करने में संकोच न करें।
1: ईश ने कहा, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझमें शांति मिले।
2: संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। यूहन्ना 16:33। इसलिए हमें दुख तकलीफों से निराश नहीं होना चाहिए। स्वर्ग का राज्य तभी हमारा होगा जब हम धार्मिकता के लिए कष्ट उठाएंगे। इसीलिए पौलुस लिखते हैं, और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। प्रेरितों के काम 14:22।
3: क्लेश स्वर्गीय नगर में जाएंगे सीढ़ियां।
2: इसलिए कठिनाइयों से निराश मत होइए। हमारा जीवन इस संसार के साथ खत्म नहीं होता। हमारे पास एक शानदार शहर है। उस गौरवशाली शहर में जाना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमें उस गौरवशाली राष्ट्र को कभी नहीं खोना चाहिए। इसलिए इस संसार पर भरोसा करके धोखा मत खाओ। प्रभु आपको अपना राज्य प्राप्त करने के लिए तैयार करें। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। हम सभी ने इस पर चिंतन किया। ईश्वर स्वयं आपको आशीर्वाद दे और आपको ऐसे महान आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन।
4: करम तमिल आंगिलम हिंदी मलयालम तेलुगु आगे आर मोड़ी कर्तन कृपया वेवरिकोर मुगवरे
5: मुगवरी करम 12 अंबेडकर नगर डार्लिंगटन ब्रिज कुन्नूर 6431101 நீலகிரி மாவட்டம் தென்னிந்தியா. எங்கள் தொலைபேசி எண்கள் 9443078019 மற்றும் 7598112435. இன் இங்கிலீஷ் ஹேண்ட் ஆஃப் ஜீசஸ் மினிஸ்ட்ரிஸ் 12/80 அம்பேத்கர் நகர் டார்லிங்டன் பிரிட்ஜ் கூனூர் 643101 Nilgiri, South India. Cell phone numbers 9443078019 and 7598112435. Our email address aswinkaram@gmail.com. Our website handofjesus.in. God bless you.
6: हजार स्तुति। हे अब्बा, हे पिता, आपकी स्तुति हो। प्रेमी पिता, आपकी स्तुति हो। अनंतकाल का पिता, आपकी स्तुति हो। स्वर्गीय पिता, आपकी स्तुति हो। आत्माओं के पिता, आपकी स्तुति हो। ज्योतियों के पिता, आपकी स्तुति हो। दया का पिता, आपकी स्तुति हो। महिमा का पिता, आपकी स्तुति हो। पिता जिसने मुझे मोल लिया है, आपकी स्तुति हो। पिता जिसने मुझे बनाया है, आपकी स्तुति हो। पिता जिसने मुझे स्थिर किया है, आपकी स्तुति हो। मेरा पिता, आपकी स्तुति हो। हम सबों का एक ही पिता, आपकी स्तुति हो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता, आपकी स्तुति हो। धार्मिक पिता, आपकी स्तुति हो। पिता मुक्त में है, आपकी स्तुति हो। धर्म के पिता, आपकी स्तुति हो। इज़राइल के पिता, आपकी स्तुति हो। जीवित पिता, आपकी स्तुति हो। पिता को यह पसंद आया है कि वह तुम्हें राज्य दे, इसलिए आपकी स्तुति हो। परम प्रधान परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। महान परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। ईश्वरों का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। जीवित परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। प्रेमी परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। प्रेम और शांति का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। अनादि परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। सब प्रकार की शांति के परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। धीरज और शांति देने वाले परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। तेजोमय परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। करुणामय परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। परमेश्वर जिसने अपने अनुग्रह से मुझे बुलाया है, आपकी स्तुति हो। अब्राहम का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। ईसा का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। याकोब का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। यशुरून का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। इज़राइल का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। एलिया का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। दाऊद का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। दानियेल का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। शाद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। परमेश्वर पिता, आपकी स्तुति हो। हमारे पितरों का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। मेरे पूर्वजों के परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। घाटी का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। पहाड़ों का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। सारी पृथ्वी का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। सबके ऊपर युगानुयुग परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। पृथ्वी के सब राज्यों के परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी के परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। याकूब पर वरनों पृथ्वी की छोर तक प्रभुता करने वाला परमेश्वर आपकी स्तुति हो। आश्चर्य कर्म का परमेश्वर आपकी स्तुति हो। पराक्रमी परमेश्वर आपकी स्तुति हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी स्तुति हो। समुद्र के गर्भ को तोड़ने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। सच्चे परमेश्वर आपकी स्तुति हो। सुच अद्वैत सच्चे परमेश्वर आपकी स्तुति हो। एक ही परमेश्वर पिता आपकी स्तुति हो। अद्वैत परमेश्वर आपकी स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर आपकी स्तुति हो। स्वर्ग के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। पवित्र परमेश्वर आपकी स्तुति हो। सच्चे परमेश्वर आपकी स्तुति हो। कतन के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। वाचा के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। आशा के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। दयालु परमेश्वर आपकी स्तुति हो। दयालु में धनी परमेश्वर आपकी स्तुति हो। धर्ममय परमेश्वर आपकी स्तुति हो। हे अन्याय के प्रति प्रतिशोध के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। आप सच्चा ईश्वर जिसमें कुटिलता नहीं है आपकी स्तुति हो। सेनाओं के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। मेरे परमेश्वर मेरे परमेश्वर आपकी स्तुति हो। परमेश्वर जिसमें मेरी उत्पत्ति हुई आपकी स्तुति हो। मेरा देखने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। दर्शन देने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। सब प्राणियों की आत्माओं के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। सदा धन्य परमेश्वर आपकी स्तुति हो। अनंत काल के लिए जीवित परमेश्वर आपकी स्तुति हो। सदा राज्य करने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। सब ईश्वरों का ईश्वर आपकी स्तुति हो। वेदों को खोलने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। हे मेरे परमेश्वर हे राजा आपकी स्तुति हो। बड़ा परमेश्वर आपकी स्तुति हो। धन के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। तुम्हारी सारे आवश्यकताओं को पूरा करने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। सब कुछ बढ़ाने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। विजय प्रदान करने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। शांति का परमेश्वर आपकी स्तुति हो। अधर्मी से क्रोध करने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। जलन रखने वाला परमेश्वर आपकी स्तुति हो। क्षमा करने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। अद्भुत काम करने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। सब कुछ करने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। उदार करने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर आपकी स्तुति हो। मेरे सुख की चमक के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। मेरे अति आनंद के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। परम धन्य परमेश्वर आपकी स्तुति हो।

क्या आप लोग तैयार हैं नाचने के लिए? यदि आप तैयार हैं तो आप आगे आ सकते हैं। यदि आप अपने आप को जवान मानते हैं तो आगे आके नाचते हुए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। अपने दोनों हाथ को उठाकर बोलो यीशु मसीह की। अपने स्थान में आप खड़े हो सकते हैं। हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। Come on, church!

चाहे आपके माँ आपको भूल जाए, चाहे आपके दोस्त आपको भूल जाए, मैं परमेश्वर आपको कभी नहीं भूलेगा, वह आपके साथ हमेशा बना रहेगा। ताली बजा के उसको महिमा दे प्रियो। आमीन, आमीन। लोग तुझको भूल जाए माँ क्यों ना भूल जाए, वो तुझको ना भूलेगा। दोस्त तुझको भूल जाए, रिश्ते क्यों ना भूल जाए, वो तुझको ना भूलेगा। दोस्त तुझको भूल जाए, रिश्ते क्यों ना भूल जाए, वो तुझको ना भूलेगा। दोस्त तुझको भूल जाए माँ क्यों ना भूल जाए, वो तुझको ना

प्रियम है, ताली बजा कर उसके नाम को महिमा करें, आत्मा सच्चाई के साथ उसकी आराधना करें। यस लॉर्ड, उसने ना सोना मांगा ना चांदी मांगा है, सोना उसने मांगा नहीं, चांदी उसने मांगा नहीं, दिल उसने मांगा मेरा, जाति उसने पूछा नहीं, भाषा उसने पूछा नहीं, मन उसने मांगा।

मसीह में प्रिय, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं। क्या आपने देखा है कि समय कितनी तेजी से उड़ता है? यह ऐसा था जैसे ये पिछले साल शुरू हुआ हो, ये कितनी जल्दी खत्म हो गया। प्रभु ने दयालुता पूर्वक हमारा नेतृत्व किया है, वो हमारा हाथ पकड़कर हमें इस नए साल में ले आया है। इस नए साल में प्रभु हमारे साथ रहें, वो अपनी आंख के तारे की तरह हमारी रक्षा करेगा। निराश मत होइए, आइए एक नजर डालते हैं कि इस नए साल में हमें क्या करना है। इस नए वर्ष में प्रभु हम पर दृष्टि डालते हैं और कहते हैं, प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 शब्द 11, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। दुनिया में जो कुछ भी चल रहा है उससे ये स्पष्ट है कि प्रभु का आगमन बहुत निकट है ना? इसलिए हमें सावधान रहना होगा। प्रभु शीघ्र आते हैं, इसलिए प्रभु हमें स्पष्ट रूप से बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 शब्द 11, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। हमारे पास जो कुछ है हमें उसे पकड़कर रखना चाहिए ताकि कोई हमारे मुकुट न ले सके। हमारे मुकुट कौन लेगा? ईश ने कहा, यूहन्ना अध्याय 10 शब्द 10, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। शैतान हमेशा धोखा देने के लिए तैयार रहता है, वो हमारा मुकुट चुराने की कोशिश करेगा, इसलिए प्रभु के बच्चों को सावधान रहना चाहिए। ताज क्या है, इसका मतलब क्या है? अब हम इस पर चिंतन करने जा रहे हैं कि इसकी सुरक्षा कैसे की जाए। पहले देखते हैं ताज का क्या मतलब है। प्रभु कहते हैं, लेव्य व्यवस्था अध्याय 21 शब्द 12, क्योंकि वह अपने परमेश्वर के अभिषेक का तेल रूपी मुकुट धारण किए हुए है, मैं यहोवा हूँ। मुकुट पवित्र आत्मा के अभिषेक का प्रतिनिधित्व करता है। प्रेरित पौलुस कहते हैं, 2 कुरिन्थियों अध्याय 1 शब्द 21, और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिसने हमें अभिषेक किया वही परमेश्वर है। प्रभु हमारा अभिषेक करते हैं। क्या होता है जब भगवान का अभिषेक हमारे पास आता है? यूहन्ना लिखते हैं, 1 यूहन्ना अध्याय 2 शब्द 27, और तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। जब प्रभु का अभिषेक हमारे पास आता है तो ये हमें सब कुछ सिखाता है। फिर से प्रेरित यूहन्ना लिखता है, 1 यूहन्ना अध्याय 2 शब्द 20, और तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। जब प्रभु का अभिषेक हम पर आता है तो हमें सब कुछ जानने का सौभाग्य मिलता है। शैतान इस विशेषाधिकार को हमसे छीनने की कोशिश करता है, इसलिए शास्त्र कहते हैं, 1 पत्रस अध्याय 5 शब्द 8, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। इसलिए यहोवा कहता है, अपना मुकुट दृढ़ रखो कि कोई उसे छीन न सके। इसलिए पौलुस लिखते हैं, 2 कुरिन्थियों अध्याय 11 शब्द 3, परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाएं। तो सावधान रहो, शैतान को कभी रास्ता मत दो। इसलिए शास्त्र कहते हैं, इफिसियों अध्याय 4 शब्द 27, और न शैतान को अवसर दो। आइए दूसरी बात देखें। बाइबल कहती है, एस्तेर अध्याय 2 शब्द 17, और राजा ने एस्तेर को और सब स्त्रियों से अधिक प्यार किया, और सब कुवारियों से अधिक उसके अनुग्रह और कृपा की दृष्टि उसी पर हुई, इस कारण उसने उसके सिर पर राजमुकुट रखा और उसको वशती के स्थान पर रानी बनाया।
यीशु हमसे वैसे ही प्रेम करते हैं जैसे राजा क्षयर्ष ने एस्तेर से प्रेम किया था। इसलिए शास्त्र कहते हैं, प्रकाशित वाक्य अध्याय 1:6, और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया, उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे, आमीन। यीशु ने हमारे लिए अपना खून बहाया और हमारे सभी पापों को माफ कर दिया और हमें परमपिता परमेश्वर के सामने राजा और रानी बनाया। वो हमें राजा और रानी के रूप में ताज पहनाता है। यह मुकुट क्या दर्शाता है? ताकत का प्रतिनिधित्व करता है। ये किस प्राधिकार का प्रतिनिधित्व करता है? जब फिरौन ने यूसुफ को अधिकारी बनाया तो उसने क्या कहा? उत्पत्ति अध्याय 41:44। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, फिरौन तो मैं हूँ, और सारे मिस्र देश में कोई भी तेरी आज्ञा के बिना हाथ पांव न हिलाएगा। इसका क्या मतलब है? ताकत को दर्शाता है। इसी तरह यीशु मसीह अपने खून से हमें राजा और रानी बनाते हैं और हमारे सिर पर अधिकार का ताज रखते हैं। हाँ परमेश्वर के बच्चे, यीशु हमें अपना अधिकार देता है। यीशु कहते हैं, लूका अध्याय 10:19, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। आप कितने धन्य हैं। शैतान इस शक्ति को हमसे छीनने का प्रयास करेगा। शैतान हमें पाप करने के लिए प्रलोभित करने का प्रयास करता है, तो सावधान रहो। वस्ती लापरवाह थी, वह ताज हार गई। राजा ने वस्ती को लाने के लिए प्रजा भेजी। एस्तेर अध्याय 1:10-12। परंतु वशती ने कहा कि वह नहीं आएगी। तब राजा क्रोधित हुआ और भीतर ही भीतर क्रोधित हुआ। यीशु राजा हमें कई बार बुलाते हैं। यीशु हमें प्रार्थना करने के लिए बुलाते हैं, हमें अपने सामने अंतराल में खड़े होने के लिए बुलाते हैं, हमें सेवा करने के लिए बुलाते हैं। जब हम उस आह्वान को अनदेखा करते हैं तो राजा यीशु का क्रोध हम पर आता है। रानी वशती का क्या हुआ? एस्तेर अध्याय 1:19। यदि राजा सहमत हो तो उसके सामने से एक शाही आदेश जारी किया जाना चाहिए कि वशती राजा क्षयर्ष के सामने दोबारा न आए, और इसे फौसियों और मेदियों के शाही धर्म में लिखा जाना चाहिए ताकि इसे बदला न जाए, और राजा को उसका राजपद उससे बेहतर किसी व्यक्ति को सौंप देना चाहिए। आपने देखा, अपने अभिमान और अवज्ञा के कारण वशती ने अपनी शाही गरिमा और अधिकार खो दिया। यह उपाधि एस्तेर को दी गई जो उससे बेहतर थी। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, अवज्ञा, घमंड और जिद जैसी चीजों को जगह न दें। सत्ता और राजसी गौरव का ताज मत खोना। तीसरा, आइए देखें, पवित्र पुस्तक कहती है, भजन संहिता अध्याय 65:11, अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट धर दिया है, तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। प्रभु हर साल आशीर्वाद देते हैं और अच्छाई देते हैं। वह साल को अच्छाइयों से सराबोर करता है। अच्छाई एक मुकुट है, आइए हम इस ताज को न खोएं। बाइबल कहती है, भजन संहिता अध्याय 85:12, फिर यहोवा उत्तम पदार्थ देगा और हमारी भूमि अपनी उपज देगी। हमें इन मुकुटों की रक्षा करनी चाहिए, अच्छी चीजों को न चूकें। पवित्र शास्त्र कहता है, सभोपदेशक अध्याय 9:18, परंतु एक पापी बहुत भलाई नाश करता है। यदि हम पाप को जगह देंगे तो हम खराब हो जाएंगे और कई लाभ खो देंगे, तो सावधान रहो। सावधान रहें कि जो लोग पाप कर रहे हैं उनके साथ न मिलें। बाइबल कहती है, नीतिवचन अध्याय 22:24-25, क्रोधी मनुष्य का मित्र न होना और झट क्रोध करने वाले के संग न चलना। कहीं ऐसा न हो कि तू उसकी चाल सीखे और तेरा प्राण फंदे में फंस जाए। गलत लोगों से दोस्ती न करें, उसके कारण हम वह अच्छाई खो देंगे जो हमारे परमेश्वर ने हमें दी है। पाप में फंसे लोगों के लिए प्रार्थना करें। यदि हम उनके साथ जुड़ते हैं तो हम उन लाभों को खो देंगे जो ईश्वर ने हमें दिए हैं। प्रभु ने हमें जो दिया है उसे हम खो देंगे, तो सावधान रहो, अपना ताज रखो। आइए चौथे पर नजर डालें,
शास्त्र कहता है, भजन संहिता अध्याय 103 शब्द 4, वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। इसके बाद ईश्वर की कृपा और दया हमें मुकुट के रूप में दी गई है। हमें उन मुकुटों की रक्षा करनी चाहिए। इसलिए बाइबल चेतावनी देती है, इब्रानियों अध्याय 12 शब्द 15, और ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए, या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। प्रभु का आशीर्वाद खो जाने की संभावना है, इसलिए कड़वाहट को जगह न दें। दूसरों को क्षमा करें, दूसरों से प्यार करो, अनुग्रह मत खोना। पौलुस तीमुथियुस को लिखता है, 2 तीमुथियुस अध्याय 2 शब्द 1, इसलिए ही मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। अनुग्रह से मजबूत होने के बजाय हमें इसे खोना नहीं चाहिए। जब हम ईश्वर की स्तुति करते हैं तो कृपा प्रचुर मात्रा में मिलती है, पौलुस ने कहा, 2 कुरिन्थियों अध्याय 4 शब्द 15, क्योंकि सब वस्तुएं तुम्हारे लिए हैं, ताकि अनुग्रह बहुतों के द्वारा अधिक होकर परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद भी बढ़ाए। जब हम प्रभु की स्तुति करते हैं तो अनुग्रह प्रचुर मात्रा में होता है। इतना ही नहीं, प्रेरित याकूब लिखते हैं, 4 शब्द 6, वो तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण ये लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए हमें उस अनुग्रह को बनाए रखने के लिए सावधान रहना चाहिए जो ईश्वर हमें देता है। प्रभु की कृपा हमारे लिए महत्वपूर्ण है, पौलुस कहते हैं, 1 कुरिन्थियों अध्याय 15 शब्द 10, परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, और उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वो व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। इसके अलावा ये ईश्वर की कृपा है जो हमें जीवित रखती है और कड़ी मेहनत करती है। भविष्यवक्ता यिर्मयाह कहते हैं, विलप गीत अध्याय 3 शब्द 22, हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। इसलिए हमें उस अनुग्रह और दया की रक्षा करनी चाहिए जो हमें मुकुट के रूप में मिली है। आइए 5वें पर नजर डालें। सेंट पौलुस ने थिसलुनीके के लोगों से कहा, 1 थिसलुनीकियों अध्याय 2 शब्द 19-20, भला हमारी आशा या आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु के सम्मुख उसके आने के समय तुम ही न होगे? हमारी बड़ाई और आनंद तुम ही हो। मुकुट उन आत्माओं का प्रतिनिधित्व करता है जो प्रभु हमें मंत्रालय में देते हैं। हमें आत्माओं की रक्षा करनी चाहिए। फिर जब प्रेरित पौलुस ने फिलिप्पी के विश्वासियों को लिखा, 4 फिलिप्पियों अध्याय 4 शब्द 1, इसलिए मेरे प्रिय और अभिलाषित भाइयों, मेरे आनंद और मुकुट, इस प्रकार प्रभु में बने रहो। प्रिय ताज चच के लोग हैं जो प्रभु हमें देते हैं। मुकुट उन आत्माओं का प्रतिनिधित्व करता है जो प्रभु हमें मंत्रालय में देते हैं। हमें उन्हें सुरक्षित रखना चाहिए। इन अंतिम दिनों में झूठे मंत्री, झूठे शिक्षक और झूठे भविष्यवक्ता आत्माओं को भटकाने के लिए उठ खड़े होंगे। पवित्र पुस्तक कहती है, 2 तीमुथियुस अध्याय 3 शब्द 6-7, इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और छिछोरे स्त्रियों को वश में कर लेते हैं, जो पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में हैं, और सदा सीखती तो रहती हैं पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। इसलिए हमें लोगों, चर्च की रक्षा करने का ध्यान रखना चाहिए जो उस मुकुट की तरह हैं जो प्रभु ने हमें दिया है। आत्माओं को खोना नहीं चाहिए, पौलुस तीमुथियुस को लिखता है, 1 तीमुथियुस अध्याय 1 शब्द 10, व्याभिचारियों, पुरुषगामियों, मनुष्य के बेचने वाले

पुरुषगामियों, मनुष्य के बेचने वालों, झूठों और झूठी शपथ खाने वालों और इनको छोड़ खरे उद्देश्य के सब विरोधियों के लिए ठहराई गई है। इसलिए हमें अपने हाथ में सौंपे गए मंत्रालय की सावधानी पूर्वक रक्षा करने की जरूरत है। इसलिए प्रभु कहते हैं, यहेजकेल अध्याय 38 शब्द 7, इसलिए तू तैयार हो जा, तू और जितनी भीड़ तेरे पास इकट्ठी हो, तैयार रहना और तू उनका अगुवा बनना। हमें हमारी देखभाल के लिए सौंपी गई आत्माओं के लिए जमानत बनना चाहिए, उनकी रक्षा की जानी चाहिए। प्रभु यही चाहते हैं। इन समयों में कुछ मंत्री लापरवाह होते हैं और उस चर्च को खो देते हैं जो प्रभु ने उन्हें सौंपा है। वे अपना मंत्रालय खो रहे हैं और हमें जो मंत्रालय सौंपा गया है उससे सावधान रहना चाहिए। पौलुस आर्चिपोस को लिखता है, कुलुसियों अध्याय 4 शब्द 17, फिर अखिपुस से कहना कि जो सेवा प्रभु में तुझे सौंपी गई है उसे सावधानी के साथ पूरी करना। हमें जो काम सौंपा गया है उसे सावधानी से करना चाहिए। हमें उन लोगों का भी ख्याल रखना होगा जो हमें दिए गए हैं। कुलुसियों अध्याय 1 शब्द 9, पौलुस ने उन लोगों के लिए बिना रुके प्रार्थना की जिन्हें उसे सौंपा गया था। हमें इसी प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। जब हम लापरवाह होंगे तो इस अंत समय में आत्माएं ठोकर खाएंगी। इसलिए पत्रस लिखते हैं, 1 पत्रस अध्याय 5 शब्द 1-3, मैं जो प्राचीन है, मैं उनकी नई प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें ये समझाता हूँ कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और ये दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। और जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। हमें आत्माओं के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए। यिर्मयाह कहते हैं, यिर्मयाह अध्याय 10 शब्द 21, क्योंकि चरवाहे पशु सरीखे हैं और वे यहोवा को नहीं पुकारते, इसी कारण वे बुद्धि से नहीं चलते और उनकी सब भेड़े तितर बितर हो गई हैं। परमेश्वर के सेवक वे होने चाहिए जो परमेश्वर को खोजते हैं। यदि हम ईश्वर को नहीं खोजते तो हम सफल नहीं हो सकते। हमारे लोग तितर बितर हो जाएंगे। तो सावधान रहो, यहोवा उन लोगों की रक्षा करेगा जिन्हें हमारे हाथों में सौंपा गया है। प्रभु कहते हैं, यशाया अध्याय 60 शब्द 3-5, और अन्य जातियां तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। अपनी आंखें चारों ओर उठाकर देख, वे सब के सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं, तेरे पुत्र दूर से आ रहे हैं और तेरी पुत्रियां हाथों हाथ पहुंचाई जा रही हैं। तब तू इसे देखेगी और तेरा मुख चमकेगा, तेरा हृदय थरथराएगा और आनंद से भर जाएगा, क्योंकि समुद्र का सारा धन और अन्य जातियों की धन संपत्ति तुझको मिलेगी। यदि हम उस मंत्रालय में वफादार हैं जो प्रभु ने हमें दिया है, तो परमेश्वर हमें जो आत्माएं दी हैं उनके संरक्षण के कारण प्रभु तट की भीड़ को हमारे पास भेज देंगे। इसलिए प्रभु इस वर्ष हमें बताते हैं, प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 शब्द 11, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। आमीन।

चाहे आपके माँ आपको भूल जाए, चाहे आपके दोस्त आपको भूल जाए, मैं परमेश्वर आपको कभी नहीं भूलेगा, वो आपके साथ हमेशा बना रहेगा। ताली बजा कर उसको महिमा देती हूँ। आमीन, आमीन। लोग तुझको भूल जाए माँ क्यों ना भूल जाए, वो तुझको ना भूलेगा। दोस्त तुझको भूल जाए, रिश्ते क्यों ना भूल जाए, वो तुझको ना भूलेगा। दोस्त तुझको भूल जाए, रिश्ते क्यों ना भूल जाए, वो तुझको ना भूलेगा। दोस्त तुझको भूल जाए माँ क्यों ना भूल जाए, वो तुझको ना भूलेगा।

प्रेम ताली बजा कर उसके नाम में करे आत्मा सच्चाई के साथ उसकी आराधना करे। यस लॉर्ड, उसने ना सोना मांगा ना चांदी मांगा है, सोना उसने मांगा नहीं चांदी उसने मांगा नहीं, दिल उसने मांगा मेरा, जाति उसने पूछा नहीं भाषा उसने पूछा नहीं मन।

0: आगे बढ़ो, पीछे मुड़कर मत देखो।
1: स्टेशन गिर रहा है।
2: पीछे मुड़कर मत देखो, स्टेशन गिर रहा है।
3: सभी लोग अभी तुरंत सीढ़ियों से ऊपर जाएं।
4: आगे बढ़ो, पीछे मुड़कर मत देखो,
5: स्टेशन गिर रहा है।

दौड़ना हमारे शरीर के लिए एक बहुत ही बेहतरीन व्यायाम माना जाता है, जो न केवल हमारे हृदय को स्वस्थ रखता है बल्कि हमारी मांसपेशियों को भी मजबूती प्रदान करता है और हमें दिन भर ऊर्जावान बनाए रखने में मदद करता है।

सारा रुको, मैं आ रहा हूं। आप जहां हैं वहीं रहें।

0: चल दर।
1: धमकाना
0: सारा।
1: एलेक्स, क्या हो रहा है? पूरी इमारत धंस रही है।
0: जब हेम्पटोट गिर रहा है तब चट्टान भी गिर रही है। हमें इस टावर के गिरने से पहले 10 मिनट में निकलना होगा। अब

0: मैं उन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। इस मंजिल पर अभी भी सैकड़ों लोग हैं।
1: अगर तुम 10,000 टन कंक्रीट के नीचे दब गए तो उन्हें बचा नहीं पाओगे। दौड़ो,

0: देखो पानी चला गया है, सब चला गया है।
1: ये एक ड्रॉकेट है, लहर आ रही है। रुको,
2: ये टूट रहा है क्या?
3: ट्रांसपोर्ट छत पर क्यों नहीं है? अगर मैं मर गया तो तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा।
4: चुप रहो, मूवर शेयरिंग। इमारत कट रही है।
5: आखिरी बचे हुए इंसान बनने के नाम मैंने कहा था निवेश काम आएगा।
6: क्या तुमने वो महसूस किया?
7: हमें तो ग्रेनाइट के 400

0: आखिरी बचे हुए इंसान बनने के नाम। मैंने कहा था निवेश काम आएगा।
1: क्या तुमने वो महसूस किया?
2: हमें तो ग्रेनाइट के 400 फीट नीचे होना चाहिए था।

0: लेके चला गया। एलेक्स न्यूयॉर्क अब बस खत्म हो गया है।
1: पीछे मत देखो, हमें पश्चिम की ओर बढ़ते रहना होगा। पानी अभी रुका नहीं है।

0: हमारे पास एक सिग्नल है।
1: ये बहुत तेजी से फैल रहा है। कृपया मुझे वो सैटेलाइट फीड्स तुरंत ऑनलाइन चाहिए। आंदोलन को ट्रैक करो और पुष्टि करो कि पानी किस दिशा में जा रहा है।
2: मास मीडिया की प्लेटें खिसक रही हैं।
3: प्लेटें खिसक रही हैं।
4: गहराई की निगरानी कर रहा हूं।

0: एलेक्स इन्हें देखो,
1: हम जबरदस्ती अपना रास्ता नहीं बना सकते।
2: उन कारों में लोग हैं,
3: अगर हम रुक गए तो लहर हमें बहा ले जाएगी। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। यातायात जाम पकड़ना।

नमस्कार, मेरा नाम है बनाने में आसान।

0: नमस्ते टेल, धन्यवाद। 1-2.5 अभियान याद है, कैटलिस्ट से खुशी हुई।
1: टीम ये दिलचस्प है, इंटरमीडिया क्रिएशन और प्रॉम्प्ट आधारित काम मेरे सिनेमैटिक एआई कंटेंट के लिए सटीक रहेगा। यूट्यूब और 4,500 में शामिल है लोग।

हमें बड़े पैमाने पर हिंसा बढ़ने की पुष्ट रिपोर्टें मिल रही हैं। सिग्नल, ये प्रतियोगिता से बाहर हो रहा है। यदि आप मुझे पसंद करते हैं तो आपको क्षेत्र और प्रासंगिकता की समस्या का सामना करना पड़ता है। हे भगवान,

0: इलेक्स हीटर से ठंडी हवा आ रही है। मैं नहीं कर सकता, मुझे अपने हाथों में कोई संवेदना नहीं है।
1: दबाव वह चला गया, वातावरण में रिसाव हो रहा है।

0: आश्रय जगह में 101.3 एफए एक सिग्नल खराब हो रहा है। जल्दी करो, हमें उस पेट्रोल की जरूरत है।
1: ट्रंक की जांच करें, जल्दी करो।
0: मदद करो, हमें अंदर आने दो, दरवाजे से दूर रहो, मैं इसे खोल नहीं सकता।
1: एलेक्स, बस जाओ जाओ।

0: वो क्या था? ऐसा लगा जैसे पूरा पहाड़ ही उछल गया।
1: प्लेट, ये अभी भी फिसल रही है।
2: ये मेंटल की धड़कन है। हमें अगले झटके से पहले चलते रहना होगा।

ये भूकंप नहीं है, ये बस जम रहा है। पूरी प्लेट अपना नया ठिकाना ढूंढ रही है। ये हो रहा है सारा।

चलो बस कुछ गैलन ही चाहिए। मुझे कुछ गैलन दे दो।

आपातकालीन सेवाएं रिवर कीक और स्टेबल के साथ बड़े व्यवधान की रिपोर्ट कर रही हैं। तटीय निगरानी स्टेशन असामान्य समुद्री हलचल की रिपोर्ट कर रहे हैं। सिग्नल बार बार गायब हो रहे हैं। हर जगह कुछ न कुछ हो रहा है।

0: इन्हें अंदर ले जाओ, इन्हें मेडिकल टेंट के अंदर ले जाओ, अभी के अभी। चलते रहो, उन्हें अंदर ले आओ।
1: और मुझे डीसी से आने वाले आदेशों की परवाह नहीं है। डीसी पानी के नीचे है। हम आखिरी मछली के मिलने तक इस पहाड़ी पर डटे रहेंगे। उन लाइट्स को और ऊपर करो।

इधर आओ, चलते रहो, तुम लगभग पहुंच ही गए हो। उसे मजबूती से पकड़ कर रखिए, लाइन को पूरी तरह से स्थिर कर दीजिए और उस ब्लैक को सावधानी से बंद कर दें। हमारी शारीरिक गति बहुत तेजी से कम हो रही है और हम धीरे धीरे अपनी पूरी तापीय ऊर्जा को इस ठंडे वातावरण में खोते जा रहे हैं।

0: हवा वह चली गई है।
1: हम नीचे हैं, हम दब गए हैं सारा। क्या आपको सच में लगता है कि यह सच है?

0: ध्रुव 40 डिग्री शिफ्ट हो गया है। हम संरक्षित हैं अर्जमिज, वे सतह के नीचे हैं, वे और भी आर्कटिक की तरह हैं।
1: वे कह रहे हैं कि उत्तरी ध्रुव 40 डिग्री खिसक गया है, वे पलट गया है।

मैं अब भी मॉनिटर्स की आवाज सुन सकता हूँ। एलेक्स ट्रायर्स वार्ड में मैं बीपिंग की आवाज और फिर कांच की आवाज सुन सकता हूँ।

0: सुनो, हवा रुक गई है, बर्फ अब दरवाजे तक पूरी तरह से आ गई है,
1: हम इसके नीचे दब गए हैं।

0: धूल बहुत घनी है,
1: हम सांस ले रहे हैं
2: पहाड़ की।

संरचनात्मक अखंडता शून्य। मैनहट्टन में

0: अरे रुको, पेड़ों को मजबूती से पकड़ लो।
1: मैं नहीं कर सकता,
2: मैं हवा को फिल्टर नहीं कर सकता,
3: ये सांस लेने जैसा है।
2: कांच,
1: पकड़ना।

0: सारा पुरानी दुनिया बर्फ के नीचे दबी हुई है,
1: लेकिन हम अभी भी यहीं हैं।
2: वह चला गया।
3: हमें फिर से शुरू करना होगा,
4: हमें फिर से निर्माण करना होगा।

0: प्रभु सभी सत्य की ओर मार्गदर्शन करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रभु क्या करेंगे, वे हमें सिखाएंगे, और अगर हम उनकी कही बातों को भूल जाएं, तो वे हमें याद दिलाएंगे। यदि पवित्र आत्मा हमारे भीतर है तो किसी और को हमें सिखाने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। इसी कारण पवित्र आत्मा को हम पर उंडेला गया है। सबसे पहले प्रभु ने क्या किया, पुनरुत्थान के बाद वह हमें आशीर्वाद देते हैं। दूसरे, उन्होंने हमें पश्चाताप और पापों की क्षमा प्रदान की। तीसरे, उन्होंने पवित्र आत्मा को हम पर उंडेला, उन्होंने हम पर पवित्र आत्मा का अभिषेक उंडेला। चौथे, वे हमारे लिए मध्यस्थता करते हैं। पढ़कर देखिए रोमियो को लिखे गए पत्र में अध्याय 8
1: वचन 34,
0: दोषी ठहराने वाला कौन है? मसीह ही है जो मरा, बल्कि जो जी भी उठा है वही परमेश्वर के दाहिने और विराजमान है, और हमारे लिए विनती कर रहे हैं। वही हैं। हालेलुया। उन्होंने केवल हमारे लिए मरण ही नहीं सहा, हमारे लिए वे क्या कर रहे हैं? वे हमारे लिए विनती कर रहे हैं। प्रभु हमारे लिए निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं। क्या हमने नहीं गाया था? हमने गाया था कि मेरा उद्धारकर्ता जीवित है। तीसरी बात, उन्होंने हम पर पवित्र आत्मा उंडेला। चौथी बात, हमारे लिए वे क्या कर रहे हैं? वे हमारे लिए विनती कर रहे हैं। हालेलुया। वे किस बात के लिए विनती कर रहे हैं? योहन रचित सुसमाचार अध्याय 70
1: वचन 21 में लिखा है, वे सब एक हूं और हमें भी कैसे रहना चाहिए, हमें एक दूसरे से अलग नहीं रहना चाहिए, वे सब एक हों जैसे हे पिता आप मुझ में हैं और मैं आप में हूं, वैसे ही वे भी हम में एक हों, ताकि दुनिया ये विश्वास करे कि आपने मुझे भेजा है।
0: मैं प्रार्थना करता हूं कि वे सब हम में एक हों। हालेलुया।
1: उन्होंने क्या प्रार्थना की? कि हम सब एक हों। हालेलुया। हमारे बीच कोई विभाजन नहीं आना चाहिए, हमारे बीच कोई भ्रम नहीं आना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? हमें एकजुट रहना चाहिए। जानते हैं इसका कारण क्या है? प्रभु ने हम सबको एक ही रक्त से उत्पन्न किया है। उस वचन को पढ़कर देखिए, प्रेरितों के काम अध्याय 17
0: वचन 26। क्या आपने देखा कि मानव जाति की सभी जातियों को उन्होंने एक ही रक्त से उत्पन्न किया है? देखिए हम सबको उन्होंने कैसे उत्पन्न किया है। प्रभु ने हम सबको एक ही रक्त से उत्पन्न किया है। हमें एक दूसरे से प्रेम पूर्वक रहना चाहिए, हर किसी को स्थिर रहना चाहिए। यही उन्होंने प्रार्थना की। हालेलुया। हमारे लिए वो क्या कर रही है? वे पिता के दाहिने और खड़े होकर हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। उन्होंने हमें एक ही रक्त से उत्पन्न किया है। हम ही हैं जिन्होंने जाति के नाम पर खुद को अलग अलग कर लिया है। तुम कौन सी जाति, मैं कौन सी जाति, हमने ही जाति का भेद बनाया। प्रभु ने क्या किया? उन्होंने हम सभी को एक ही रक्त से उत्पन्न किया। हालेलुया। इतना ही नहीं, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 17
1: वचन 15, मैं ये प्रार्थना नहीं करता कि तू उन्हें संसार से उठा ले, बल्कि ये कि तू उन्हें बुराई से बचाए रख। परमेश्वर ने हमारे लिए प्रार्थना की कि वो हमें बुराई से बचाए। हालेलुया। देखिए परमेश्वर कितना प्रेमी है। प्रभु यीशु मसीह जैसा प्रेमी व्यक्ति संसार में कहीं और नहीं मिल सकता। इतने प्रेमी हैं हमारे परमेश्वर। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 17
0: वचन 24, हे पिता जैसे तूने मुझे संसार की उत्पत्ति से पहले प्रेम किया था, वैसे ही तूने जो महिमा मुझे दी है, वे जिन्हें तूने मुझे दिया है वे भी उसे देख सके। इसीलिए मैं चाहता हूं कि जहां मैं हूं वे भी मेरे साथ हों। हालेलुया। ये परमेश्वर ने हमारे लिए कहा है। उन्होंने प्रार्थना की कि जहां मैं हूं वे भी वहां रहे, मेरे साथ, मेरे निकट, मेरे पास। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जीवित होकर उठे और उन्होंने कहा, मैं मर गया था, फिर भी देखो मैं सदा सर्वदा जीवित हूं, हमेशा के लिए, अनंत काल तक। सबसे पहले वे क्या करते हैं जब वे पुनर्जीवित होकर प्रकट होते हैं? वे हमें बुराई से बचाकर आशीर्वाद देते हैं। दूसरे, वे हमें पापों की क्षमा और मन फिराव का वरदान देते हैं। तीसरे, उन्होंने हम पर पवित्र आत्मा उंडेला।
1: चौथे, वे हमारे लिए मध्यस्थता करते हैं। हालेलुया। क्या हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे? प्रभु, आपको मेरे हृदय में आना चाहिए, हमारे भीतर वास करें, मेरे अंदर निवास करें। आपको मेरे भीतर रहना चाहिए। हम संघर्ष करके प्रार्थना करेंगे,
0: प्रभु निश्चित रूप से हमें आशीर्वाद देंगे। कई साल पहले ही अय्यूब ने भविष्यवाणी की थी कि मेरा उद्धारकर्ता जीवित है और अंतिम दिन वो पृथ्वी पर खड़ा होगा, ये मैं जानता हूँ। इसलिए आज के दिन हमारा उद्धारकर्ता जीवित है। हमने संदेश के माध्यम से सुना कि जीवित होकर उठे यीशु मसीह हमें क्या भलाई देते हैं। अभी भी वही अच्छे चरवाहे की उपस्थिति हमारे हृदय को भर दे। ऐसी प्रार्थना है कि उनकी उपस्थिति हमारे भीतर उतर आए। हम सब प्रभु की ओर देखकर जो वचन हमने सुने हैं उन्हें समर्पित करके प्रार्थना करने जा रहे हैं। यीशु राजा हमारे साथ हैं, वे हमें सामर्थ्य देने आए हैं, वे हमें जीवन देने आए हैं। इस दिन हम सब अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। क्या हम सुनी गई बातों के लिए प्रार्थना करें? यीशु ने क्यों पुनर्जीवित हुए? सबसे पहले वे हमें आशीर्वाद देने के लिए पुनर्जीवित हुए हैं। दूसरा, यीशु पुनर्जीवित होकर हमें क्या देते हैं? वे हमें पापों की क्षमा और मन परिवर्तन देते हैं। वे हमें धर्मी बनाते हैं। हमें धर्मी बनाकर वे क्या करते हैं? वे न केवल हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, बल्कि स्वर्ग में पिता के राज्य में हमें सूर्य की तरह चमकने योग्य भी बनाते हैं। देखिए, ये कितनी बड़ी आशीर्वाद है। तीसरी बात, यीशु जीवित होकर क्या करते हैं? वे हम पर पवित्र आत्मा को उंडेलते हैं। जब पवित्र आत्मा हमारे भीतर आते हैं तो वे हमें सत्य की ओर ले जाते हैं। वे हमें समझाते और प्रबुद्ध करते हैं। वे हमें सब कुछ सिखाते हैं। इसलिए पुनर्जीवित मसीह ने अपने शिष्यों पर पवित्र आत्मा को फूंका। उन्होंने कहा, पवित्र आत्मा को प्राप्त करो। आज भी क्या हम ये प्रार्थना करेंगे? हे प्रभु, मुझे आशीर्वाद दो। प्रभु, मुझे मेरी बुराइयों से दूर रखो और मुझे आशीर्वादित करो। क्या हम प्रभु की ओर देखकर ये प्रार्थना कर सकते हैं? मुझे पश्चाताप की आत्मा दो, मुझे धर्मी बनाओ, मेरे सारे पापों को क्षमा करो और अपने लहू से मेरे हृदय को शुद्ध करो। हम कहेंगे, हे परमेश्वर, मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक दो। केवल इतना ही नहीं कि हे आत्मा, मेरे भीतर आओ। पुनरुत्थित मसीह हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर प्रार्थना कर रहे हैं कि हम एक हों। वे प्रार्थना करते हैं कि हमारे बीच कोई विभाजन ना हो। वे प्रार्थना करते हैं कि हम बुराई से सुरक्षित रहें। वे प्रार्थना करते हैं कि जहां वे हैं, हम भी वहीं हों। क्या हम ऐसी आशीषों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं? क्या हम प्रभु की ओर देखकर प्रार्थना कर सकते हैं? हे प्रभु, मुझे आशीर्वाद दो और बुराई से बचाओ। हे भगवान, मुझे अलग करके आशीर्वाद दो। हे पिता, हमें मन फिराने की आत्मा दो। हे प्रभु, हमारे सारे पापों को क्षमा करो। हे प्रभु, हमें अपनी पवित्र आत्मा दो। प्रभु यीशु मसीह, हमें एकता में रहने के लिए अपनी कृपा दो। आप कहाँ हैं? क्या हम प्रार्थना कर सकते हैं कि जहां आप हैं वहां हम भी रहे और आप हमारी सहायता करें? प्रभु, हम धन्यवाद और सच्चाई के साथ आपकी स्तुति करते हैं। स्वर्ग में विराजमान पवित्र प्रभु, हम आपकी स्तुति और महिमा करते हैं। हे प्रभु, आज के इस दिन भी आपने जो वचन दिए हैं उसके लिए धन्यवाद। मेरा उद्धारकर्ता जीवित है। हे जीवित उद्धारकर्ता, हम आपकी स्तुति करते हैं। चाहे कोई मर जाए या कोई हमें छोड़कर चला जाए, यीशु जीवित है। हे पिता, आप हमें आशीर्वाद दें और हर बुराई से दूर रखें। इसी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, जैसे याकूब ने प्रार्थना की, वैसे ही हमें भी प्रार्थना करनी चाहिए। प्रभु, हमें भी आशीर्वाद दें। आपने कहा है कि प्रभु का आशीर्वाद समृद्धि लाता है। प्रभु, हम सभी को आशीर्वाद दें और हमें पश्चाताप की आत्मा दें। प्रभु, हमें पश्चाताप की आत्मा दें। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे सभी पापों को दया करके क्षमा करें।
2: हे पिता, आपने पवित्र आत्मा को बिना माप के प्राप्त किया था।
1: हमें भी अपनी अभिषेक को बिना माप के प्रदान करें। हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी अभिषेक का संपूर्ण तेल हम पर उंडेला जाए, ताकि हम आपकी अभिषेक को प्राप्त कर सकें। प्रभु, हमें एकता में रहना चाहिए, हमारे बीच में कोई विभाजन या कड़वाहट ना आए, हमें बुराई से बचाए रखा जाए। प्रभु, आप जहां भी हैं, हमें भी वही रहने का वो अनुग्रह दें। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, आपके वचन को सुनकर अपने आप को समर्पित कर रहे हर परिवार के लोगों को आशीर्वाद दें। प्रभु, आप ही हैं जो बहन को सामर्थ्य के साथ उपयोग करते हैं। इसके लिए जैसा कि आपने किया है, हम लाखों बार धन्यवाद देते हैं। जैसे हमने मांगा, वैसे ही आपने हमें हमारे संकटों से दूर किया और हमें आशीर्वाद देने के लिए ही मसीह जीवित होकर उठे। क्या हम सब आज इस दिन प्रार्थना कर सकते हैं? हे प्रभु, हमें हमारे संकटों से दूर कर आशीर्वाद दीजिए। हे परमेश्वर, हमें आत्मिक आशीर्वाद दीजिए, हमें सांसारिक आशीर्वाद दीजिए और हमें सभी भलाइयां दीजिए। स्तुति हो प्रभु, हम कृतज्ञता के साथ आपकी स्तुति करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। स्वामी, इस आनंदमय दिन के लिए हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु, आप मृत देवता नहीं हैं। आपने कहा था, मैं मर गया था, फिर भी देखो, मैं सदा सर्वदा जीवित हूं। ये परमेश्वर हमेशा के लिए अनंत काल तक हमारे परमेश्वर हैं, मृत्यु तक हमें मार्गदर्शन करने वाले। प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं, प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं, हम कृतज्ञता के साथ आपकी महिमा करते हैं। यहाँ उपस्थित सभी सभा के लोगों के लिए जिन्हें हम आमने सामने देख रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं सभी को आशीर्वाद दें और सामर्थ प्रदान करें। प्रभु, कृपया शांति दें, आनंद दें। प्रभु, चाहे मेरी कोई भी कमजोरी हो उसे दूर कर दें, जो भी बंधन है उन्हें तोड़ दें, शैतान के सभी कार्यों को नष्ट कर दें। यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं कि सारी बुरी शक्तियां समाप्त हो जाएं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोगों को आशीर्वाद दें और उन्हें ऊंचा उठाएं। हे राजा, हम आपकी स्तुति करते हैं क्योंकि आप हमें बुराई से दूर रखकर आशीर्वाद देने में सामर्थ्य हैं। प्रभु, आपकी कृपा हमें सशक्त बनाए रखे। हे पिता, किसी भी परिवार पर कोई जादू या टोना असर न करे। यीशु मसीह के नाम से हम सभी बुरी शक्तियों को नष्ट और दूर करते हैं। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने और शत्रु की सारी शक्ति पर अधिकार दिया है और कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचाएगा, ऐसा आपने कहा था। प्रभु, हम शैतान के सभी कार्यों को नासरी यीशु मसीह के नाम में डांटते, बांधते और दूर करते हैं। प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं। चाहे कोई भी बीमारी हो, आप चंगा करते हैं। चाहे कोई भी रोग हो, आप चंगा करते हैं। चाहे कोई भी कमजोरी हो, आप उसे दूर करते हैं। हे परमेश्वर, आप जादू टोने की सारी बंधनों को तोड़ते हैं, शैतान के कार्यों को नष्ट कर देते हैं। हे राजा, जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें नौकरी दीजिए, जिनका विवाह नहीं हुआ है उनका विवाह संपन्न हो, जिनके पास संतान का सुख नहीं है उन्हें संतान का आशीर्वाद दीजिए। हे परमेश्वर, जिनके जीवन में शांति नहीं है उन्हें शांति दीजिए, जो लोग कर्ज की समस्या, आंसू और पीड़ा में हैं उन्हें मुक्ति दीजिए। हे पिता, प्रभु, जो परिवार शराब पीते हैं उन्हें मुक्ति दीजिए। हे पिता, जो परिवार व्यवसाय कर रहे हैं उन्हें आशीर्वाद दीजिए, जो परिवार व्यापार कर रहे हैं उन्हें भी आशीर्वाद दीजिए। हे प्रभु, जो लोग केश में हैं उन्हें विजय प्रदान करें, बिछड़े हुए परिवारों को फिर से एक करें, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वे ज्ञान, भक्ति, शिक्षा, बुद्धि और क्षमता में उत्कृष्ट बने और चमके। हे प्रभु, सभी बच्चों को स्तुति करने वाले और प्रार्थना करने वाले बच्चों में बदल दे। प्रभु, हमारे छोटे बच्चों पर प्रार्थना की आत्मा उंडेलने वाले परमेश्वर हैं। सभी बच्चों को प्रार्थना करनी चाहिए, स्तुति करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए, प्रभु की कृपा को धारण करना चाहिए। हम प्रार्थना करते हैं कि छोटे बच्चों को आशीर्वाद दें। हे प्रभु, महान कार्य करने वाले प्रभु, चाहे मुझ में कोई भी कमजोरी हो, चंगा करने वाले राजा, दया करे, दया करे, दया करे हर एक कमजोर व्यक्ति पर, और परमेश्वर की सामर्थ उन पर दया करे। हे प्रभु, चंगा करे, चमत्कार करे, अद्भुत कार्य करे। हे राजा, हम आपकी स्तुति करते हैं, हर एक के जीवन में, उनके हृदय में और बाहर अद्भुत कार्य करे। हे प्रभु, मुझे विश्वास है कि आप हर एक की आवश्यकता को जानते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हर एक की आवश्यकता को पूरा करें। हे पिता, जिनके पास घर नहीं है उन्हें घर दें। जो लोग घर बनाते समय बीच में हैं उन्हें घर पूरा करने के लिए अनुग्रह दें। हे प्रभु, हम आपके नाम की महिमा के लिए आपके चरणों में गिरकर विनती करते हैं। जो परमेश्वर सोचने और मांगने से भी बढ़कर कार्य करते हैं। हे प्रभु, आपको धन्यवाद। आपके बच्चे जो कुछ भी प्रार्थना करते हैं वो प्रभु के सामने हर्ष का कारण बने। आपने कहा था कि मैं तुम्हारे हृदय की इच्छाओं को तुम्हें प्रदान करूंगा। हम प्रार्थना करते हैं कि हर किसी की आवश्यकताओं को आप पूरी करें। प्रभु की आशीर्वाद देने वाली और ऊंचा उठाने वाली कृपा, प्रभु की प्रसन्नता, प्रभु की महिमा हर एक पर शासन करे। हे प्रभु, हम सारी स्तुति, आदर, महिमा और महानता आपको ही अर्पित करते हैं, जो जिम्मेदारी लेकर हमारी रक्षा करते हैं। हम ये सब कुछ हमारे प्रिय उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में विनम्रता से मांगते हैं। हे परमपिता, आमीन।
2: எங்களின் ஏசுவின் கரம் மாதாந்திர இதழானது தமிழ், ஆங்கிலம், ஹிந்தி, மலையாளம், தெலுங்கு ஆகிய 6 மொழிகளில் கர்த்தரின் கிருபையால் வெளிவருகின்றது. இப்பத்திரிகை வேண்டோர் எங்களது முகவரியை தொடர்பு கொள்ளலாம்.
3: எங்கள் முகவரி இயேசுவின் கரம், 12-80 அம்பேத்கர் நகர், டார்லிங்டன் பிரிட்ஜ், குன்னூர், 643-101, நீலகிரி மாவட்டம், தென்னிந்தியா. எங்கள் தொலைபேசி எண்கள் 944-30-780-19 மற்றும் 75-98-11-2435. இன் இங்கிலீஷ், ஹேண்ட் ஆஃப் ஜீசஸ் மினிஸ்ட்ரிஸ், 12-80 அம்பேத்கர் நகர், டார்லிங்டன் பிரிட்ஜ், கோனூர், 643-101, நீலகிரி, சவுத் இந்தியா. செல்போன் நம்பர்ஸ் 9443078019 and 7598112435. Our email address aslinkaram@gmail.com. Our website handofjesus.in. God bless you.

0: मसीह में प्रिय, हम आपको हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर बड़े प्रेम से नमस्कार करते हैं। इस दुनिया में आपके पास चाहे कितने भी बड़े घर, संपत्ति और जमीन क्यों ना हो, जब आप इस दुनिया से जाएंगे तो आप इसे अपने साथ नहीं ले जा सकेंगे।
1: इसीलिए प्रेरित पौलुस ने कहा, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है
0: और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने ही बात जो रहे हैं।
1: हमारा निवास स्थान इस संसार का नहीं है, हमारा घर स्वर्ग में है। हमें उस गौरवशाली स्थान पर जाने के लिए तैयार रहना चाहिए।
0: क्या आप जानते हैं कि एक मानव दिवस कैसा होता है?
1: क्योंकि हम तो कल ही के हैं और कुछ नहीं जानते, और पृथ्वी पर हमारे दिन छाया की नाई बीतते जाते हैं।
0: अय्यूब 8:9।
1: इतना ही नहीं, भजनकार कहता है, मेरी आयु ढलती हुई छाया के समान है और मैं आप घास की नाई सूख चला हूँ।
0: भजन संहिता 102:11।
1: प्रेरित याकूब लिखते हैं, और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा, सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम तो मानो भाप समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है।
0: याकूब 4:14।
1: इसलिए यह सांसारिक जीवन, इसके खजाने और पृथ्वी स्थाई नहीं है।
0: यीशु ने कहा, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो।
1: यूहन्ना 14:3। तो आइए हम उस शानदार शहर, उस शानदार घर में जाने के लिए खुद को प्रतिबद्ध करें।
0: पौलुस लिखता है, और इस संसार के बरतने वाले ऐसे हों कि संसार ही के न हो ले, क्योंकि इस संसार की रीति और व्यवहार बदलते जाते हैं।
1: 1 कुरिन्थियों 7:31। तो फिर उस शानदार शहर तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना होगा? क्या हम थोड़ा ध्यान करें?
0: पहले धर्म ग्रंथ कहता है, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं, इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता, सो उसने उनके लिए एक नदर तैयार किया है।
1: इब्रानियों 11:16।
0: प्रभु उन लोगों के लिए एक शहर तैयार कर रहे हैं जो शानदार स्वर्गीय भूमि की इच्छा रखते हैं। अगर हम खुद इसकी इच्छा नहीं रखते तो वह हमें यह कैसे देगा? इसलिए स्वर्गीय देश से, उस सनातन नगर से प्रेम रखो, वहां जाने के लिए प्रार्थना करें, तभी प्रभु तुम्हें वह नगर देगा।
1: इसीलिए प्रेरित पौलुस कहता है, सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है।
0: पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ।
1: कुलुसियों 3:1-2। हमें स्वर्ग की चाहत और अभिलाषा की आवश्यकता है।
0: इसीलिए यीशु ने कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य पर जोर होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं।
1: मत्ती 11:12। इसलिए सबसे पहले हमें स्वर्गीय नगर में जाने की इच्छा रखनी चाहिए।
0: प्रेरित पौलुस कहता है, इसलिए हम धाड़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं।
1: 2 कुरिन्थियों 5:8।
0: मसीह में परमेश्वर के प्रिय बच्चों, आपकी प्राथमिकता क्या है?
1: प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम वहां आएं।
0: यीशु ने पिता से कहा, हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हों, कि वे मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा।
1: यूहन्ना 17:24।
0: यदि हमारी इच्छा हो तो हम निश्चित रूप से उस शहर में प्रवेश कर सकते हैं।
1: दाऊद कहते हैं, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा।
0: भजन संहिता 23:6।
1: क्या हम भी परमेश्वर के नगर की लालसा करें?
0: दूसरा, पवित्र बाइबल कहती है, क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थिर रहने वाला नगर नहीं, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं।
1: इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाया करें।
0: इब्रानियों 13:14-15।
1: इस दुनिया में हमारा कोई स्थायी शहर नहीं है, हम आने वाले इस राज्य की खोज में हैं।
0: इसलिए बाइबल हमें साफ साफ बताती है कि हमें क्या करना चाहिए।
1: इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान
0: अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाया करें। इब्रानियों 13:15।
1: यदि हम परमेश्वर के नगर में जाना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद करना चाहिए। जिस शहर में हम रहेंगे वह प्रशंसा का शहर है। यदि आप वहां जाना चाहते हैं तो आपको ईश्वर की स्तुति करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। भजनकार कहता है, क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। भजन संहिता 84:4। यदि आप और मैं स्वर्गीय घर में रहना चाहते हैं, हमें ऐसे लोग बनना चाहिए जो परमेश्वर की स्तुति करे। पवित्र बाइबल कहती है, इसके बाद मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना कि हल्लेलुया, उद्धार और महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर ही की है। प्रकाशित वाक्य 19:1। पवित्र बाइबल कहती है, फिर दूसरी बार उन्होंने हल्लेलुया कहा और उसके जलने का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा, और 2400 प्राचीनों और चारों प्राणियों ने गिरकर परमेश्वर को दंडवत किया जो सिंहासन पर बैठा था और कहा, आमीन, हल्लेलुया। प्रकाशित वाक्य 19:3-4। बाइबल हमें एक आदर्श दिखाती है कि हमें कैसे प्रशंसा करनी चाहिए। इतना ही नहीं, और सिंहासन में से एक शब्द निकला कि हे हमारे परमेश्वर से सब डरने वाले दासो, क्या छोटे क्या बड़े, तुम सब उसकी स्तुति करो। प्रकाशित वाक्य 19:5। क्या आप देखते हैं कि परमेश्वर की स्तुति करना कितना महत्वपूर्ण है? हमें प्रभु की स्तुति कैसे करनी चाहिए? पवित्र बाइबल कहती है, और जब तुम यहोवा के लिए धन्यवाद का मेलबलि चढ़ाओ तो उसे इसी प्रकार से करना जिससे वह ग्रहण योग्य ठहरे। इसलिए स्वर्ग प्रशंसा का शहर है। यदि आप वहां जाना चाहते हैं तो आपको ईश्वर की स्तुति करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। पवित्र बाइबल कहती है, और चारों प्राणियों ने आमीन कहा और प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया। तीसरा, प्रेरित याकूब लिखते हैं, हे मेरे प्रिय भाइयों सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हों जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं? याकूब 2:5। इसके बाद हमें उससे प्रेम करना चाहिए। परमेश्वर स्वर्ग में जाने का विशेषाधिकार केवल उन्हीं को देता है जो उससे प्रेम करते हैं। तो क्या हम प्रभु से प्रेम करें?
2: हमें प्रभु से कैसे प्रेम करना चाहिए?
1: यीशु ने कहा, उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। मत्ती 22:37।
0: प्रभु चाहता है कि हम उससे पूरी तरह प्रेम करें।
1: उससे प्रेम करने का क्या अर्थ है?
0: यीशु ने कहा। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। यूहन्ना 14:23। प्रभु से प्रेम करना उनके वचन का पालन करना है। यदि हम उसका वचन मानना चाहते हैं तो हमें उसका वचन अधिक पढ़ना होगा और उसे जानना होगा। हम में से बहुत से लोग बाइबल नहीं पढ़ते,
1: तो फिर हम प्रभु के वचन को कैसे जानें?
0: इसलिए प्रभु के वचन को अधिक बार पढ़ें, प्रभु के वचन पर अधिक मनन करें। इसका ध्यान रखना, प्रभु से प्रेम करने का यही अर्थ है। जब हम प्रभु से पूर्णतः प्रेम करेंगे तो परमेश्वर हमें अपना राज्य देगा। उसने अपना राज्य केवल उन लोगों को देने का वादा किया है जो उससे प्रेम करते हैं।
1: चौथा, प्रभु यीशु ने कहा, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। मत्ती 5:10। क्या आपने इस बात पर गौर किया है कि हमारे अपने लिए कष्ट उठाने की बात नहीं है? उसके वचन के कारण, धार्मिकता के कारण जब हम सताए जाते हैं और कष्ट उठाते हैं तो हम धन्य लोगों में बदल जाते हैं। उसका राज्य भी हमारा हो जाता है। क्लेश निश्चित रूप से मसीही जीवन का एक हिस्सा है। प्रेरित पौलुस यही कहता है कि कोई इन क्लेशों के कारण डगमगा ना जाए, क्योंकि तुम आप जानते हो कि हम इन ही के लिए ठहराए गए हैं।
2: क्योंकि पहले भी जब हम तुम्हारे यहाँ थे
1: तो तुमसे कहा करते थे कि हमें क्लेश उठाने पड़ेंगे और ऐसा ही हुआ है और तुम जानते भी हो। एक थिस्सलुनीकियों 3:3-4। इसलिए हमें कभी भी कठिनाइयों का सामना करके हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। उनका सामना करने में संकोच न करें। ईश ने कहा, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझमें शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। यूहन्ना 16:33। इसलिए हमें दुख तकलीफों से निराश नहीं होना चाहिए। स्वर्ग का राज्य तभी हमारा होगा जब हम धार्मिकता के लिए कष्ट उठाएंगे। इसीलिए पौलुस लिखते हैं, और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। प्रेरितों के काम 14:22।
3: क्लेश स्वर्गीय नगर में जाएंगे सीढ़ियां।
1: इसलिए कठिनाइयों से निराश मत होइए। हमारा जीवन इस संसार के साथ खत्म नहीं होता। हमारे पास एक शानदार शहर है। उस गौरवशाली शहर में जाना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमें उस गौरवशाली राष्ट्र को कभी नहीं खोना चाहिए। इसलिए इस संसार पर भरोसा करके धोखा मत खाओ। प्रभु आपको अपना राज्य प्राप्त करने के लिए तैयार करें। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। हम सभी ने इस पर चिंतन किया। ईश्वर स्वयं आपको आशीर्वाद दे और आपको ऐसे महान आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन।
4: ஆங்கிலம் ஹிந்தி மலையாளம் தெலுங்கு ஆகிய 6 மொழிகளில் கர்த்தரின் கிருபையால் வெளிவருகின்றது. இப்பத்திரிகை வேண்டோர் எங்களது முகவரியை தொடர்பு கொள்ளலாம்.
5: எங்கள் முகவரி இயேசுவின் கரம், 12-80 அம்பேத்கர் நகர், டார்லிங்டன் பிரிட்ஜ், குன்னூர், 643-101, நீலகிரி மாவட்டம், தென்னிந்தியா. எங்கள் தொலைபேசி எண்கள் 9443-07-09 மற்றும் 7598-11-2435. இன் இங்கிலீஷ் ஹேண்ட் ஆஃப் ஜீசஸ் மினிஸ்ட்ரிஸ், 12-80 அம்பேத்கர் நகர், டார்லிங்டன் பிரிட்ஜ், கோனு 643-101, நீலகிரி, சவுத் இந்தியா. செல்போன் நம்பர்ஸ் 9443078019 and 7598112435. Our email address aslinkaram@gmail.com. Our website handofjesus.in. God bless you.
6: Hazar Stuti. Hey Abba, Hey Pita, आपकी स्तुति हो। प्रेमी पिता, आपकी स्तुति हो। अनंतकाल का पिता, आपकी स्तुति हो। स्वर्गीय पिता, आपकी स्तुति हो। आत्माओं के पिता, आपकी स्तुति हो। ज्योतियों के पिता, आपकी स्तुति हो। दया का पिता, आपकी स्तुति हो। महिमा का पिता, आपकी स्तुति हो। पिता जिसने मुझे मोल लिया है, आपकी स्तुति हो। पिता जिसने मुझे बनाया है, आपकी स्तुति हो। पिता जिसने मुझे स्थिर किया है, आपकी स्तुति हो। मेरा पिता, आपकी स्तुति हो। हम सबों का एक ही पिता, आपकी स्तुति हो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता, आपकी स्तुति हो। धार्मिक पिता, आपकी स्तुति हो। पिता मुक्त में है, आपकी स्तुति हो। धर्म के पिता, आपकी स्तुति हो। इज़राइल के पिता, आपकी स्तुति हो। जीवित पिता, आपकी स्तुति हो। पिता को यह पसंद आया है कि वह तुम्हें राज्य दे, इसलिए आपकी स्तुति हो। परम प्रधान परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। महान परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। ईश्वरों का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। जीवित परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। प्रेमी परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। प्रेम और शांति का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। अनादि परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। सब प्रकार की शांति के परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। धीरज और शांति देने वाले परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। तेजोमय परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। करुणामय परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। परमेश्वर जिसने अपने अनुग्रह से मुझे बुलाया है, आपकी स्तुति हो। अब्राहम का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। ईसा का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। याकोब का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। यशुरून का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। इज़राइल का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। एलिया का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। दाऊद का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। दानियेल का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। शाद्रक, मेशाक और अबेदनगो के परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। परमेश्वर पिता, आपकी स्तुति हो। हमारे पितरों का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। मेरे पूर्वजों के परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। घाटी का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। पहाड़ों का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। सारी पृथ्वी का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। सबके ऊपर युगानुयुग परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। पृथ्वी के सब राज्यों के परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। याकूब पर वर्णों पृथ्वी की छोर तक प्रभुता करने वाला परमेश्वर आपकी स्तुति हो। आश्चर्य कर्म का परमेश्वर आपकी स्तुति हो। पराक्रमी परमेश्वर आपकी स्तुति हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी स्तुति हो। समुद्र के गर्व को तोड़ने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। सच्चे परमेश्वर आपकी स्तुति हो। सुच अद्वैत सच्चे परमेश्वर आपकी स्तुति हो। एक ही परमेश्वर पिता आपकी स्तुति हो। अद्वैत परमेश्वर आपकी स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर आपकी स्तुति हो। स्वर्ग के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। पवित्र परमेश्वर आपकी स्तुति हो। सच्चे परमेश्वर आपकी स्तुति हो। कतन के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। वाचा के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। आशा के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। दयालु परमेश्वर आपकी स्तुति हो। दयालु में धनी परमेश्वर आपकी स्तुति हो। धर्ममय परमेश्वर आपकी स्तुति हो। हे अन्याय के प्रति प्रतिशोध के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। आप सच्चा ईश्वर जिसमें कुटिलता नहीं है आपकी स्तुति हो। सेनाओं के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। मेरे परमेश्वर आपकी स्तुति हो। परमेश्वर जिसमें मेरी उत्पत्ति हुई आपकी स्तुति हो। मेरा देखने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। दर्शन देने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। सब प्राणियों की आत्माओं के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। सदा धन्य परमेश्वर आपकी स्तुति हो। अनंत काल के लिए जीवित परमेश्वर आपकी स्तुति हो। सदा राज्य करने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। सब ईश्वरों का ईश्वर आपकी स्तुति हो। वेदों को खोलने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। हे मेरे परमेश्वर, हे राजा, आपकी स्तुति हो। बड़ा परमेश्वर आपकी स्तुति हो। धर्म के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। तुम्हारी सारे आवश्यकताओं को पूरा करने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। सब कुछ बढ़ाने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। विजय प्रदान करने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। शांति का परमेश्वर आपकी स्तुति हो। अधर्मी से क्रोध करने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। जलन रखने वाला परमेश्वर आपकी स्तुति हो। क्षमा करने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। अद्भुत काम करने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। सब कुछ करने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। उदार करने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर आपकी स्तुति हो। मेरे सुख की चमक के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। मेरे अति आनंद के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। परम धन्य परमेश्वर आपकी स्तुति हो।

क्या आप लोग तैयार हैं नाचने के लिए? यदि आप तैयार हैं तो आप आगे आ सकते हैं। यदि आप अपने आप को जवान मानते हैं तो आगे आके नाचते हुए परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, अपने दोनों हाथ को उठाकर बोलो यीशु मसीह की। अपने स्थान में आप खड़े हो सकते हैं, हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे।

चाहे आपके माँ आपको भूल जाए, चाहे आपके दोस्त आपको भूल जाए, मैं परमेश्वर आपको कभी नहीं भूलेगा, वो आपके साथ हमेशा बना रहेगा। ताली बजा कर उसको महिमा दे प्रियो। आमीन, आमीन। लोग तुझको भूल जाए माँ क्यों ना भूल जाए, वो तुझको ना भूलेगा। दोस्त तुझको भूल जाए, रिश्ते क्यों ना भूल जाए, वो तुझको ना भूलेगा। दोस्त तुझको भूल जाए, रिश्ते क्यों ना भूल जाए, वो तुझको ना भूलेगा। दोस्त तुझको भूल जाए माँ क्यों ना भूल जाए, वो तुझको ना भूले।

प्रियो ताले बजा कर उसके नाम की महिमा करें, आत्मा सच्चाई के साथ उसकी आराधना करें। यस लॉर्ड, उसने ना सोना मांगा ना चांदी मांगा है, सोना उसने मांगा नहीं, चांदी उसने मांगा नहीं, दिल उसने मांगा मेरा, जाति उसने पूछा नहीं, भाषा उसने पूछा नहीं, मन उसने मांगा मेरा, सोना उसने मांगा नहीं, चांदी उसने मांगा नहीं, दिल उसने मांगा मेरा, जाति उसने पूछा नहीं, भाषा मैंने पूछा नहीं, दिल

मसीह में प्रिय, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं। क्या आपने देखा है कि समय कितनी तेजी से उड़ता है? यह ऐसा था जैसे ये पिछले साल शुरू हुआ हो, ये कितनी जल्दी खत्म हो गया। प्रभु ने दयालुता पूर्वक हमारा नेतृत्व किया है, वो हमारा हाथ पकड़कर हमें इस नए साल में ले आया है। इस नए साल में प्रभु हमारे साथ रहे, वो अपनी आंख के तारे की तरह हमारी रक्षा करेगा। निराश मत होइए। आइए एक नजर डालते हैं कि इस नए साल में हमें क्या करना है। इस नए वर्ष में प्रभु हम पर दृष्टि डालते हैं और कहते हैं, प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 शब्द 11, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। दुनिया में जो कुछ भी चल रहा है उससे ये स्पष्ट है कि प्रभु का आगमन बहुत निकट है ना? इसलिए हमें सावधान रहना होगा। प्रभु शीघ्र आते हैं, इसलिए प्रभु हमें स्पष्ट रूप से बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 शब्द 11, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। हमारे पास जो कुछ है हमें उसे पकड़ कर रखना चाहिए ताकि कोई हमारे मुकुट न ले सके। हमारे मुकुट कौन लेगा? ईश ने कहा, यूहन्ना अध्याय 10 शब्द 10, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। शैतान हमेशा धोखा देने के लिए तैयार रहता है, वो हमारा मुकुट चुराने की कोशिश करेगा। इसलिए प्रभु के बच्चों को सावधान रहना चाहिए। ताज क्या है? इसका मतलब क्या है? अब हम इस पर चिंतन करने जा रहे हैं कि इसकी सुरक्षा कैसे की जाए। पहले देखते हैं ताज का क्या मतलब है। प्रभु कहते हैं, लेव्य व्यवस्था अध्याय 21 शब्द 12, क्योंकि वह अपने परमेश्वर के अभिषेक का तेल रूपी मुकुट धारण किए हुए है, मैं यहोवा हूँ। मुकुट पवित्र आत्मा के अभिषेक का प्रतिनिधित्व करता है। प्रेरित पौलुस कहते हैं, 2 कुरिन्थियों अध्याय 1 शब्द 21, और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिसने हमें अभिषेक किया वही परमेश्वर है। प्रभु हमारा अभिषेक करते हैं। क्या होता है जब भगवान का अभिषेक हमारे पास आता है? यूहन्ना लिखते हैं, 1 यूहन्ना अध्याय 2 शब्द 27, और तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। जब प्रभु का अभिषेक हमारे पास आता है तो ये हमें सब कुछ सिखाता है। फिर से प्रेरित यूहन्ना लिखता है, 1 यूहन्ना अध्याय 2 शब्द 20, और तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। जब प्रभु का अभिषेक हम पर आता है तो हमें सब कुछ जानने का सौभाग्य मिलता है। शैतान इस विशेषाधिकार को हमसे छीनने की कोशिश करता है, इसलिए शास्त्र कहते हैं, 1 पत्रस अध्याय 5 शब्द 8, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। इसलिए यहोवा कहता है, अपना मुकुट दृढ़ रखो कि कोई उसे छीन न सके। इसलिए पौलुस लिखते हैं, 2 कुरिन्थियों अध्याय 11 शब्द 3, परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाएं। तो सावधान रहो, शैतान को कभी रास्ता मत दो। इसलिए शास्त्र कहते हैं, इफिसियों अध्याय 4 शब्द 27, और न शैतान को अवसर दो। आइए दूसरी बात देखें। बाइबल कहती है, एस्तेर अध्याय 2 शब्द 17, और राजा ने एस्तेर को और सब स्त्रियों से अधिक प्यार किया, और सब कुवारियों से अधिक उसके अनुग्रह और कृपा की दृष्टि उसी पर हुई, इस कारण उसने उसके सिर पर राजमुकुट रखा और उसको वशती के स्थान पर रानी बनाया।
यीशु हमसे वैसे ही प्रेम करते हैं जैसे राजा क्षयर्ष ने एस्तेर से प्रेम किया था। इसलिए शास्त्र कहते हैं, प्रकाशित वाक्य अध्याय 1:6, और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया, उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे। आमीन। यीशु ने हमारे लिए अपना खून बहाया और हमारे सभी पापों को माफ कर दिया और हमें परमपिता परमेश्वर के सामने राजा और रानी बनाया। वो हमें राजा और रानी के रूप में ताज पहनाता है। यह मुकुट क्या दर्शाता है? ताकत का प्रतिनिधित्व करता है। ये किस प्राधिकार का प्रतिनिधित्व करता है? जब फिरौन ने यूसुफ को अधिकारी बनाया तो उसने क्या कहा? उत्पत्ति अध्याय 41:44। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, फिरौन तो मैं हूँ और सारे मिस्र देश में कोई भी तेरी आज्ञा के बिना हाथ पांव न हिलाएगा। इसका क्या मतलब है? ताकत को दर्शाता है। इसी तरह यीशु मसीह अपने खून से हमें राजा और रानी बनाते हैं और हमारे सिर पर अधिकार का ताज रखते हैं। हाँ परमेश्वर के बच्चे, यीशु हमें अपना अधिकार देता है। यीशु कहते हैं, लूका अध्याय 10:19, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। आप कितने धन्य हैं। शैतान इस शक्ति को हमसे छीनने का प्रयास करेगा। शैतान हमें पाप करने के लिए प्रलोभित करने का प्रयास करता है। तो सावधान रहो। वस्ती लापरवाह थी, वह ताज हार गई। राजा ने वस्ती को लाने के लिए प्रजा भेजी। एस्तेर अध्याय 1:10-12। परंतु वशती ने कहा कि वह नहीं आएगी। तब राजा क्रोधित हुआ और भीतर ही भीतर क्रोधित हुआ। यीशु राजा हमें कई बार बुलाते हैं। यीशु हमें प्रार्थना करने के लिए बुलाते हैं, हमें अपने सामने अंतराल में खड़े होने के लिए बुलाते हैं, हमें सेवा करने के लिए बुलाते हैं। जब हम उस आह्वान को अनदेखा करते हैं तो राजा यीशु का क्रोध हम पर आता है। रानी वशती का क्या हुआ? एस्तेर अध्याय 1:19। यदि राजा सहमत हो तो उसके सामने से एक शाही आदेश जारी किया जाना चाहिए कि वशती राजा क्षयर्ष के सामने दोबारा न आए और इसे फौसियों और मेदियों के शाही धर्म में लिखा जाना चाहिए ताकि इसे बदला न जाए और राजा को उसका राजपद उससे बेहतर किसी व्यक्ति को सौंप देना चाहिए। आपने देखा, अपने अभिमान और अवज्ञा के कारण वशती ने अपनी शाही गरिमा और अधिकार खो दिया। यह उपाधि एस्तेर को दी गई जो उससे बेहतर थी। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, अवज्ञा, घमंड और जिद जैसी चीजों को जगह न दें। सत्ता और राजसी गौरव का ताज मत खोना। तीसरा, आइए देखें, पवित्र पुस्तक कहती है, भजन संहिता अध्याय 65:11, अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट धर दिया है, तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। प्रभु हर साल आशीर्वाद देते हैं और अच्छाई देते हैं। वह साल को अच्छाइयों से सराबोर करता है। अच्छाई एक मुकुट है। आइए हम इस ताज को न खोएं। बाइबल कहती है, भजन संहिता अध्याय 85:12, फिर यहोवा उत्तम पदार्थ देगा और हमारी भूमि अपनी उपज देगी। हमें इन मुकुटों की रक्षा करनी चाहिए। अच्छी चीजों को न चूकें। पवित्र शास्त्र कहता है, सभोपदेशक अध्याय 9:18, परंतु एक पापी बहुत भलाई नाश करता है। यदि हम पाप को जगह देंगे तो हम खराब हो जाएंगे और कई लाभ खो देंगे। तो सावधान रहो। सावधान रहें कि जो लोग पाप कर रहे हैं उनके साथ न मिलें। बाइबल कहती है, नीतिवचन अध्याय 22:24-25, क्रोधी मनुष्य का मित्र न होना और झट क्रोध करने वाले के संग न चलना। कहीं ऐसा न हो कि तू उसकी चाल सीखे और तेरा प्राण फंदे में फंस जाए। गलत लोगों से दोस्ती न करें। उसके कारण हम वह अच्छाई खो देंगे जो हमारे परमेश्वर ने हमें दी है। पाप में फंसे लोगों के लिए प्रार्थना करें। यदि हम उनके साथ जुड़ते हैं तो हम उन लाभों को खो देंगे जो ईश्वर ने हमें दिए हैं। प्रभु ने हमें जो दिया है उसे हम खो देंगे। तो सावधान रहो, अपना ताज रखो। आइए चौथे पर नजर डालें। शास्त्र कहता है,
भजन संहिता अध्याय 103, शब्द 4। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। इसके बाद ईश्वर की कृपा और दया हमें मुकुट के रूप में दी गई है। हमें उन मुकुटों की रक्षा करनी चाहिए। इसलिए बाइबल चेतावनी देती है। इब्रानियों अध्याय 12, शब्द 15। और ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए, या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। प्रभु का आशीर्वाद खो जाने की संभावना है, इसलिए कड़वाहट को जगह न दें। दूसरों को क्षमा करें, दूसरों से प्यार करो, अनुग्रह मत खोना। पौलुस तीमुथियुस को लिखता है। 2 तीमुथियुस अध्याय 2, शब्द 1। इसलिए ही मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। अनुग्रह से मजबूत होने के बजाय हमें इसे खोना नहीं चाहिए। जब हम ईश्वर की स्तुति करते हैं तो कृपा प्रचुर मात्रा में मिलती है, पौलुस ने कहा। 2 कुरिन्थियों अध्याय 4, शब्द 15। क्योंकि सब वस्तुएं तुम्हारे लिए हैं, ताकि अनुग्रह बहुतों के द्वारा अधिक होकर परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद भी बढ़ाए। जब हम प्रभु की स्तुति करते हैं तो अनुग्रह प्रचुर मात्रा में होता है। इतना ही नहीं, प्रेरित याकूब लिखते हैं, याकूब अध्याय 4, शब्द 6। वो तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण ये लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है, पर दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए हमें उस अनुग्रह को बनाए रखने के लिए सावधान रहना चाहिए जो ईश्वर हमें देता है। प्रभु की कृपा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। पौलुस कहते हैं, 1 कुरिन्थियों अध्याय 15, शब्द 10। परंतु मैं जो कुछ भी हूँ, परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, और उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वो व्यर्थ नहीं हुआ। परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। इसके अलावा ये ईश्वर की कृपा है जो हमें जीवित रखती है और कड़ी मेहनत करती है। भविष्यवक्ता यिर्मयाह कहते हैं, विलापगीत अध्याय 3, शब्द 22। हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। इसलिए हमें उस अनुग्रह और दया की रक्षा करनी चाहिए जो हमें मुकुट के रूप में मिली है। आइए 5वें पर नजर डालें। सेंट पौलुस ने थिसलुनीके के लोगों से कहा, 1 थिसलुनीकियों अध्याय 2, शब्द 19-20। भला हमारी आशा या आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु के सम्मुख उसके आने के समय तुम ही न होगे? हमारी बड़ाई और आनंद तुम ही हो। मुकुट उन आत्माओं का प्रतिनिधित्व करता है जो प्रभु हमें मंत्रालय में देते हैं। हमें आत्माओं की रक्षा करनी चाहिए। फिर जब प्रेरित पौलुस ने फिलिप्पी के विश्वासियों को लिखा, फिलिप्पियों अध्याय 4, शब्द 1। इसलिए मेरे प्रिय और अभिलाषित भाइयों, मेरे आनंद और मुकुट, इस प्रकार प्रभु में बने रहो। प्रिय ताज चच के लोग हैं जो प्रभु हमें देते हैं। मुकुट उन आत्माओं का प्रतिनिधित्व करता है जो प्रभु हमें मंत्रालय में देते हैं। हमें उन्हें सुरक्षित रखना चाहिए। इन अंतिम दिनों में झूठे मंत्री, झूठे शिक्षक और झूठे भविष्यवक्ता आत्माओं को भटकाने के लिए उठ खड़े होंगे। पवित्र पुस्तक कहती है, 2 तीमुथियुस अध्याय 3, शब्द 6-7। इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और छिछोरी स्त्रियों को वश में कर लेते हैं, जो पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में हैं, और सदा सीखती तो रहती हैं पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। इसलिए हमें लोगों, चर्च की रक्षा करने का ध्यान रखना चाहिए जो उस मुकुट की तरह हैं जो प्रभु ने हमें दिया है। आत्माओं को खोना नहीं चाहिए। पौलुस तीमुथियुस को लिखता है, 1 तीमुथियुस अध्याय 1, शब्द

तीमुथियुस अध्याय एक शब्द दस। व्याभिचारियों, पुरुषगामियों, मनुष्य के बेचने वालों, झूठों और झूठी शपथ खाने वालों और इनको छोड़ खरे उद्देश्य के सब विरोधियों के लिए ठहराई गई है। इसलिए हमें अपने हाथ में सौंपे गए मंत्रालय की सावधानी पूर्वक रक्षा करने की जरूरत है। इसलिए प्रभु कहते हैं, यहेजकेल अध्याय 38 शब्द सात। इसलिए तू तैयार हो जा, तू और जितनी भीड़ तेरे पास इकट्ठी हो, तैयार रहना और तू उनका अगुवा बनना। हमें हमारी देखभाल के लिए सौंपी गई आत्माओं के लिए जमानत बनना चाहिए, उनकी रक्षा की जानी चाहिए। प्रभु यही चाहते हैं। इन समयों में कुछ मंत्री लापरवाह होते हैं और उस चर्च को खो देते हैं जो प्रभु ने उन्हें सौंपा है। वे अपना मंत्रालय खो रहे हैं और हमें जो मंत्रालय सौंपा गया है उससे सावधान रहना चाहिए। पौलुस आर्चिपोस को लिखता है, कुलुसियों अध्याय 4 शब्द 17। फिर अखिप्पुस से कहना कि जो सेवा प्रभु में तुझे सौंपी गई है उसे सावधानी के साथ पूरी करना। हमें जो काम सौंपा गया है उसे सावधानी से करना चाहिए। हमें उन लोगों का भी ख्याल रखना होगा जो हमें दिए गए हैं। कुलुसियों अध्याय 1 शब्द 9। पौलुस ने उन लोगों के लिए बिना रुके प्रार्थना की जिन्हें उसे सौंपा गया था। हमें इसी प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। जब हम लापरवाह होंगे तो इस अंत समय में आत्माएं ठोकर खाएंगी। इसलिए पत्रस लिखते हैं, एक पत्रस अध्याय 5 शब्द 1-3। मैं जो प्राचीन है, मैं उनकी नई प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें ये समझाता हूँ कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और ये दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। और जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। हमें आत्माओं के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए। यिर्मयाह कहते हैं, यिर्मयाह अध्याय 10 शब्द 21। क्योंकि चरवाहे पशु सरीखे हैं और वे यहोवा को नहीं पुकारते, इसी कारण वे बुद्धि से नहीं चलते और उनकी सब भेड़ें तितर बितर हो गई हैं। परमेश्वर के सेवक वे होने चाहिए जो परमेश्वर को खोजते हैं। यदि हम ईश्वर को नहीं खोजते तो हम सफल नहीं हो सकते। हमारे लोग तितर बितर हो जाएंगे। तो सावधान रहो, यहोवा उन लोगों की रक्षा करेगा जिन्हें हमारे हाथों में सौंपा गया है। प्रभु कहते हैं, यशायाह अध्याय 60 शब्द 3-5। और अन्य जातियां तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। अपनी आंखें चारों ओर उठाकर देख, वे सब के सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं। तेरे पुत्र दूर से आ रहे हैं और तेरी पुत्रियां हाथों हाथ पहुंचाई जा रही हैं। तब तू इसे देखेगी और तेरा मुख चमकेगा, तेरा हृदय थरथराएगा और आनंद से भर जाएगा, क्योंकि समुद्र का सारा धन और अन्य जातियों की धन संपत्ति तुझको मिलेगी। यदि हम उस मंत्रालय में वफादार हैं जो प्रभु ने हमें दिया है, तो परमेश्वर हमें जो आत्माएं दी हैं उनके संरक्षण के कारण प्रभु तट की भीड़ को हमारे पास भेज देंगे। इसलिए प्रभु इस वर्ष हमें बताते हैं, प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 शब्द 11। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। आमीन।

चाहे आपके माँ आपको भूल जाए, चाहे आपके दोस्त आपको भूल जाए, मैं परमेश्वर आपको कभी नहीं भूलेगा, वो आपके साथ हमेशा बना रहेगा। ताली बजा के उसको महिमा दे प्रियो। आमीन, आमीन। लोग तुझको भूल जाए माँ क्यों ना भूल जाए, वो तुझको ना भूलेगा। दोस्त तुझको भूल जाए, रिश्ते क्यों ना भूल जाए, वो तुझको ना भूलेगा। दोस्त तुझको भूल जाए, रिश्ते क्यों ना भूल जाए, वो तुझको ना भूलेगा। दोस्त तुझको भूल जाए माँ क्यों ना भूल जाए, वो तुझको ना भूल

प्रियम ताली बजा कर उसके नाम की महिमा करें, आत्मा सच्चाई के साथ उसकी आराधना करें। यस लॉर्ड, उसने ना सोना मांगा ना चांदी मांगा है, सोना उसने मांगा नहीं, चांदी उसने मांगा नहीं, दिल उसने मांगा मेरा, जाति उसने पूछा नहीं, भाषा उसने पूछा नहीं।

0: आगे बढ़ो, पीछे मुड़कर मत देखो।
1: स्टेशन गिर रहा है,
2: पीछे मुड़कर मत देखो, स्टेशन गिर रहा है।
3: सभी लोग अभी तुरंत सीढ़ियों से ऊपर जाएं।
4: आगे बढ़ो, पीछे मुड़कर मत देखो,
5: स्टेशन गिर रहा है।

दौड़ना हमारे शरीर के लिए एक बहुत ही बेहतरीन व्यायाम माना जाता है, जो न केवल हमारे हृदय को स्वस्थ रखता है बल्कि हमारी मांसपेशियों को भी मजबूती प्रदान करता है और हमें दिन भर ऊर्जावान बनाए रखने में मदद करता है।

सारा रुको मैं आ रहा हूं, आप जहां हैं वहीं रहेंगे।

0: चल दर।
1: धमकाना
0: सारा।
1: एलेक्स, क्या हो रहा है? पूरी इमारत झंस रही है।
0: जब हेम्पटोट गिर रहा है तब चट्टान भी गिर रही है। हमें इस टावर के गिरने से पहले 10 मिनट में निकलना होगा। अब

0: उन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। इस मंजिल पर अभी भी सैकड़ों लोग हैं।
1: अगर तुम 10,000 टन कंक्रीट के नीचे दब गए तो उन्हें बचा नहीं पाओगे। दौड़ो,

0: पानी चला गया है, सब चला गया है।
1: ये एक ब्रॉकेट है, लहर आ रही है। रुको,
2: ये टूट रहा है क्या?
3: ट्रांसपोर्ट छत पर क्यों नहीं है? अगर मैं मर गया तो तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा।
4: चुप रहो, मूवर शेयरिंग। इमारत कट रही है।
5: आखिरी बचे हुए इंसान बनने के नाम मैंने कहा था निवेश काम आएगा।
6: क्या तुमने वो महसूस किया

0: आखिरी बचे हुए इंसान बनने के नाम। मैंने कहा था निवेश काम आएगा।
1: क्या तुमने वो महसूस किया?
2: हमें तो ग्रेनाइट के 400 फीट नीचे होना चाहिए था।

0: लेके चला गया। एलेक्स न्यूयॉर्क अब बस खत्म हो गया है।
1: पीछे मत देखो, हमें पश्चिम की ओर बढ़ते रहना होगा। पानी अभी रुका नहीं है।

0: हमारे पास एक सिग्नल है।
1: ये बहुत तेजी से फैल रहा है। कृपया मुझे वो सैटेलाइट फीड्स तुरंत ऑनलाइन चाहिए। आंदोलन को ट्रैक करो और पुष्टि करो कि पानी किस दिशा में जा रहा है।

0: मास मीडिया की प्लेटें खिसक रही हैं,
1: प्लेटें खिसक रही हैं।
2: गहराई की निगरानी कर रहा हूं।

0: एलेक्स इन्हें देखो,
1: हम जबरदस्ती अपना रास्ता नहीं बना सकते।
2: उन कारों में लोग हैं,
3: अगर हम रुक गए तो लहर हमें बहा ले जाएगी। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। यातायात जाम, पकड़ना।

परिधि को बंद करें। मुझे सेकेंडरी मैनिफेस्ट की परवाह नहीं है। अगर वे अभी यहां नहीं है तो वे बोझ मात्र हैं।

नमस्कार, मेरा नाम है बनाने में आसान।

0: नमस्ते टेल, धन्यवाद। 1-2.5 अभियान याद है, कैटलिस्ट से खुशी हुई।
1: टीम ये दिलचस्प है, इंटरमीडिया क्रिएशन और प्रॉम्प्ट आधारित काम मेरे सिनेमैटिक एआई कंटेंट के लिए सटीक रहेगा। यूट्यूब और 4,500 में शामिल है लोग।

हमें बड़े पैमाने पर हिंसा बढ़ने की पुष्ट रिपोर्टें मिल रही हैं। सिग्नल, ये प्रतियोगिता से बाहर हो रहा है। यदि आप मुझे पसंद करते हैं तो आपको क्षेत्र और प्रासंगिकता की समस्या का सामना करना पड़ता है। हे भगवान,

0: इलेक्स हीटर से ठंडी हवा आ रही है। मैं नहीं कर सकता, मुझे अपने हाथों में कोई संवेदना नहीं है।
1: दबाव, वह चला गया।
2: वातावरण में रिसाव हो रहा है,

0: आश्रय जगह में 101.3 FA एक सिग्नल खराब हो रहा है। जल्दी करो, हमें उस पेट्रोल की जरूरत है।
1: ट्रंक की जांच करें, जल्दी करो।
0: मदद करो, हमें अंदर आने दो, दरवाजे से दूर रहो, मैं इसे खोल नहीं सकता।
1: एलेक्स, बस जाओ जाओ।

0: वो क्या था? ऐसा लगा जैसे पूरा पहाड़ ही उछल गया।
1: प्लेट, ये अभी भी फिसल रही है।
2: ये मेंटल की धड़कन है। हमें अगले झटके से पहले चलते रहना होगा।

ये भूकंप नहीं है, ये बस जम रहा है। पूरी प्लेट अपना नया ठिकाना ढूंढ रही है। ये हो रहा है सारा।

0: एलेक्स, सूरज गायब हो गया है। इतना अंधेरा पहले कभी नहीं हुआ। मैं अपने ही हाथ नहीं देख पा रहा हूँ।
1: उस रोशनी को कम रखो, हमें बैटरियों को बचाना होगा। राख सब कुछ बंद कर रही है।

आपातकालीन सेवाएं रिवर कीक और स्टेबल के साथ बड़े व्यवधान की रिपोर्ट कर रही हैं। तटीय निगरानी स्टेशन असामान्य समुद्री हलचल की रिपोर्ट कर रहे हैं। सिग्नल बार बार गायब हो रहे हैं। हर जगह कुछ न कुछ हो रहा है।

0: अंदर ले जाओ, इन्हें मेडिकल टेंट के अंदर ले जाओ अभी के अभी। चलते रहो, उन्हें अंदर ले आओ।
1: और मुझे डीसी से आने वाले आदेशों की परवाह नहीं है। डीसी पानी के नीचे है, हम आखिरी मछली के मिलने तक इस पहाड़ी पर डटे रहेंगे। उन लाइट्स को और ऊपर करो।
0: इधर आओ, चलते रहो, तुम लगभग पहुंच ही गए हो। मजबूती से पकड़ कर रखिए, लाइन को पूरी तरह से स्थिर कर दीजिए और उस फ्लैप को सावधानी से बंद कर दें। हमारी शारीरिक गति बहुत तेजी से कम हो रही है और हम धीरे धीरे अपनी पूरी तापीय ऊर्जा को इस ठंडे वातावरण में खोते जा रहे हैं।

0: हवा वह चली गई है।
1: हम नीचे हैं, हम दब गए हैं सारा। क्या आपको सच में लगता है कि यह सच है?

0: ध्रुव 40 डिग्री शिफ्ट हो गया है। हम संरक्षित हैं अर्जमिज, वे सतह के नीचे हैं, वे और भी आर्कटिक की तरह हैं।
1: वे कह रहे हैं कि उत्तरी ध्रुव 40 डिग्री खिसक गया है, ग्रह पलट गया है।

मैं अब भी मॉनिटर्स की आवाज सुन सकता हूँ. इलेक्स ट्रायर्स वार्ड में मैं बीपिंग की आवाज और फिर कांच की आवाज सुन सकता हूँ.

0: सुनो, हवा रुक गई है, बर्फ अब दरवाजे तक पूरी तरह से आ गई है।
1: हम इसके नीचे दब गए हैं

0: धूल बहुत घनी है,
1: हम सांस ले रहे हैं
2: पहाड़ की।

0: अरे रुको, पेड़ों को मजबूती से पकड़ लो।
1: मैं नहीं कर सकता,
2: मैं हवा को फिल्टर नहीं कर सकता,
3: ये सांस लेने जैसा है।
2: कांच,
1: पकड़ना।

मैं इसे पूरी पर्वत श्रृंखला जा रही है

0: सारा पुरानी दुनिया बर्फ के नीचे दबी हुई है,
1: लेकिन हम अभी भी यहीं हैं।
2: वह चला गया।
3: हमें फिर से शुरू करना होगा,
1: हमें फिर से निर्माण करना होगा।

0: प्रभु सभी सत्य की ओर मार्गदर्शन करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रभु क्या करेंगे, वे हमें सिखाएंगे, और अगर हम उनकी कही बातों को भूल जाएं, तो वे हमें याद दिलाएंगे। यदि पवित्र आत्मा हमारे भीतर है तो किसी और को हमें सिखाने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। इसी कारण पवित्र आत्मा को हम पर उंडेला गया है। सबसे पहले प्रभु ने क्या किया, पुनरुत्थान के बाद वह हमें आशीर्वाद देते हैं। दूसरे, उन्होंने हमें पश्चाताप और पापों की क्षमा प्रदान की। तीसरे, उन्होंने पवित्र आत्मा को हम पर उंडेला। उन्होंने हम पर पवित्र आत्मा का अभिषेक उंडेला। चौथे, वे हमारे लिए मध्यस्थता करते हैं। पढ़कर देखिए रोमियो को लिखे गए पत्र में अध्याय 8 वचन 34। दोषी ठहराने वाला कौन है? मसीह ही है जो मरा, बल्कि जो जी भी उठा है वही परमेश्वर के दाहिने और विराजमान है, और हमारे लिए विनती कर रहे हैं। वही हैं। हालेलुया। उन्होंने केवल हमारे लिए मरण ही नहीं सहा, हमारे लिए वे क्या कर रहे हैं? वे हमारे लिए विनती कर रहे हैं। प्रभु हमारे लिए निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं। क्या हमने नहीं गाया था? हमने गाया था कि मेरा उद्धारकर्ता जीवित है। तीसरी बात, उन्होंने हम पर पवित्र आत्मा उंडेला। चौथी बात, हमारे लिए वे क्या कर रहे हैं? वे हमारे लिए विनती कर रहे हैं। हालेलुया। वे किस बात के लिए विनती कर रहे हैं? योहन रचित सुसमाचार अध्याय 70 वचन 21 में लिखा है, वे सब एक हूं और हमें भी कैसे रहना चाहिए? हमें एक दूसरे से अलग नहीं रहना चाहिए। वे सब एक हों, जैसे हे पिता आप मुझ में हैं और मैं आप में हूं, वैसे ही वे भी हम में एक हों, ताकि दुनिया ये विश्वास करे कि आपने मुझे भेजा है। मैं प्रार्थना करता हूं कि वे सब हम में एक हों। हालेलुया। उन्होंने क्या प्रार्थना की? कि हम सब एक हों। हालेलुया। हमारे बीच कोई विभाजन नहीं आना चाहिए, हमारे बीच कोई भ्रम नहीं आना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? हमें एकजुट रहना चाहिए। जानते हैं इसका कारण क्या है? प्रभु ने हम सबको एक ही रक्त से उत्पन्न किया है। उस वचन को पढ़कर देखिए, प्रेरितों के काम अध्याय 17 वचन 26। क्या आपने देखा कि मानव जाति की सभी जातियों को उन्होंने एक ही रक्त से उत्पन्न किया है? देखिए, हम सबको उन्होंने कैसे उत्पन्न किया है। प्रभु ने हम सबको एक ही रक्त से उत्पन्न किया है। हमें एक दूसरे से प्रेम पूर्वक रहना चाहिए, हर किसी को स्थिर रहना चाहिए। यही उन्होंने प्रार्थना की। हालेलुया। हमारे लिए वो क्या कर रही है? वे पिता के दाहिने और खड़े होकर हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। उन्होंने हमें एक ही रक्त से उत्पन्न किया है। हम ही हैं जिन्होंने जाति के नाम पर खुद को अलग अलग कर लिया है। तुम कौन सी जाति, मैं कौन सी जाति, हमने ही जाति का भेद बनाया। प्रभु ने क्या किया? उन्होंने हम सभी को एक ही रक्त से उत्पन्न किया। हालेलुया। इतना ही नहीं, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 17 वचन 15। मैं ये प्रार्थना नहीं करता कि तू उन्हें संसार से उठा ले, बल्कि ये कि तू उन्हें बुराई से बचाए रख। परमेश्वर ने हमारे लिए प्रार्थना की कि वो हमें बुराई से बचाए। हालेलुया। देखिए परमेश्वर कितना प्रेमी है। प्रभु यीशु मसीह जैसा प्रेमी व्यक्ति संसार में कहीं और नहीं मिल सकता। इतने प्रेमी हैं हमारे परमेश्वर। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 17 वचन 24। हे पिता, जैसे तूने मुझे संसार की उत्पत्ति से पहले प्रेम किया था, वैसे ही तूने जो महिमा मुझे दी है, वे जिन्हें तूने मुझे दिया है वे भी उसे देख सके। इसीलिए मैं चाहता हूं कि जहां मैं हूं वे भी मेरे साथ हों। हालेलुया। ये परमेश्वर ने हमारे लिए कहा है। उन्होंने प्रार्थना की कि जहां मैं हूं वे भी वहां रहे, मेरे साथ, मेरे निकट, मेरे पास। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जीवित होकर उठे और उन्होंने कहा, मैं मर गया था, फिर भी देखो मैं सदा सर्वदा जीवित हूं, हमेशा के लिए, अनंत काल तक। सबसे पहले वे क्या करते हैं जब वे पुनर्जीवित होकर प्रकट होते हैं? वे हमें बुराई से बचाकर आशीर्वाद देते हैं। दूसरे, वे हमें पापों की क्षमा और मन फिराव का वरदान देते हैं। तीसरे, उन्होंने हम पर पवित्र आत्मा उंडेला। चौथे, वे हमारे लिए मध्यस्थता करते हैं। हालेलुया। क्या हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे? प्रभु, आपको मेरे हृदय में आना चाहिए, हमारे भीतर वास करें, मेरे अंदर निवास करें, आपको मेरे भीतर रहना चाहिए। हम संघर्ष करके प्रार्थना करेंगे, प्रभु निश्चित रूप से हमें आशीर्वाद देंगे। कई साल पहले ही अय्यूब ने भविष्यवाणी की थी कि मेरा उद्धारकर्ता जीवित है और अंतिम दिन वो पृथ्वी पर खड़ा होगा, ये मैं जानता हूँ। इसलिए आज के दिन हमारा उद्धारकर्ता जीवित है। हमने संदेश के माध्यम से सुना कि जीवित होकर उठे यीशु मसीह हमें क्या भलाई देते हैं। अभी भी वही अच्छे चरवाहे की उपस्थिति हमारे हृदय को भर दे। ऐसी प्रार्थना है कि उनकी उपस्थिति हमारे भीतर उतर आए। हम सब प्रभु की ओर देखकर जो वचन हमने सुने हैं उन्हें समर्पित करके प्रार्थना करने जा रहे हैं। यीशु राजा हमारे साथ हैं, वे हमें सामर्थ देने आए हैं, वे हमें जीवन देने आए हैं। इस दिन हम सब अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। क्या हम सुनी गई बातों के लिए प्रार्थना करें? यीशु ने क्यों पुनर्जीवित हुए? सबसे पहले वे हमें आशीर्वाद देने के लिए पुनर्जीवित हुए हैं। दूसरा, यीशु पुनर्जीवित होकर हमें क्या देते हैं? वे हमें पापों की क्षमा और मन परिवर्तन देते हैं। वे हमें धर्मी बनाते हैं। हमें धर्मी बनाकर वे क्या करते हैं? वे न केवल हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं बल्कि स्वर्ग में पिता के राज्य में हमें सूर्य की तरह चमकने योग्य भी बनाते हैं। देखिए, ये कितनी बड़ी आशीर्वाद है। तीसरी बात, यीशु जीवित होकर क्या करते हैं? वे हम पर पवित्र आत्मा को उंडेलते हैं। जब पवित्र आत्मा हमारे भीतर आते हैं तो वे हमें सत्य की ओर ले जाते हैं। वे हमें समझाते और प्रबुद्ध करते हैं। वे हमें सब कुछ सिखाते हैं। इसलिए पुनर्जीवित मसीह ने अपने शिष्यों पर पवित्र आत्मा को फूंका। उन्होंने कहा, पवित्र आत्मा को प्राप्त करो। आज भी क्या हम ये प्रार्थना करेंगे? हे प्रभु, मुझे आशीर्वाद दो। प्रभु, मुझे मेरी बुराइयों से दूर रखो और मुझे आशीर्वादित करो। क्या हम प्रभु की ओर देखकर ये प्रार्थना कर सकते हैं? मुझे पश्चाताप की आत्मा दो, मुझे धर्मी बनाओ, मेरे सारे पापों को क्षमा करो और अपने लहू से मेरे हृदय को शुद्ध करो। हम कहेंगे, हे परमेश्वर, मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक दो। केवल इतना ही नहीं कि हे आत्मा, मेरे भीतर आओ। पुनरुत्थित मसीह हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर प्रार्थना कर रहे हैं कि हम एक हों। वे प्रार्थना करते हैं कि हमारे बीच कोई विभाजन ना हो। वे प्रार्थना करते हैं कि हम बुराई से सुरक्षित रहें। वे प्रार्थना करते हैं कि जहां वे हैं हम भी वहीं हों। क्या हम ऐसी आशीषों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं? क्या हम प्रभु की ओर देखकर प्रार्थना कर सकते हैं? हे प्रभु, मुझे आशीर्वाद दो और बुराई से बचाओ। हे भगवान, मुझे अलग करके आशीर्वाद दो। हे पिता, हमें मन फिराने की आत्मा दो। हे प्रभु, हमारे सारे पापों को क्षमा करो। हे प्रभु, हमें अपनी पवित्र आत्मा दो। प्रभु यीशु मसीह, हमें एकता में रहने के लिए अपनी कृपा दो। आप कहाँ हैं? क्या हम प्रार्थना कर सकते हैं कि जहां आप हैं वहां हम भी रहे और आप हमारी सहायता करें? प्रभु, हम धन्यवाद और सच्चाई के साथ आपकी स्तुति करते हैं। स्वर्ग में विराजमान पवित्र प्रभु, हम आपकी स्तुति और महिमा करते हैं। हे प्रभु, आज के इस दिन भी आपने जो वचन दिए हैं उसके लिए धन्यवाद। मेरा उद्धारकर्ता जीवित है। हे जीवित उद्धारकर्ता, हम आपकी स्तुति करते हैं। चाहे कोई मर जाए या कोई हमें छोड़कर चला जाए, यीशु जीवित है। हे पिता, आप हमें आशीर्वाद दें और हर बुराई से दूर रखें। इसी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, जैसे याकूब ने प्रार्थना की, वैसे ही हमें भी प्रार्थना करनी चाहिए। प्रभु, हमें भी आशीर्वाद दें। आपने कहा है कि प्रभु का आशीर्वाद समृद्धि लाता है। प्रभु, हम सभी को आशीर्वाद दें और हमें पश्चाताप की आत्मा दें। प्रभु, हमें पश्चाताप की आत्मा दें। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे सभी पापों को दया करके क्षमा करें।
1: हे पिता, आपने पवित्र आत्मा को बिना माप के प्राप्त किया था।
0: हमें भी अपनी अभिषेक को बिना माप के प्रदान करें। हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी अभिषेक का संपूर्ण तेल हम पर उंडेला जाए, ताकि हम आपकी अभिषेक को प्राप्त कर सकें। प्रभु, हमें एकता में रहना चाहिए, हमारे बीच में कोई विभाजन या कड़वाहट ना आए, हमें बुराई से बचाए रखा जाए। प्रभु, आप जहां भी हैं, हमें भी वही रहने का वो अनुग्रह दें। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, आपके वचन को सुनकर अपने आप को समर्पित कर रहे हर परिवार के लोगों को आशीर्वाद दें। प्रभु, आप ही हैं जो बहन को सामर्थ्य के साथ उपयोग करते हैं। इसके लिए जैसा कि आपने किया है, हम लाखों बार धन्यवाद देते हैं। जैसे हमने मांगा, वैसे ही आपने हमें हमारे संकटों से दूर किया और हमें आशीर्वाद देने के लिए ही मसीह जीवित होकर उठे। क्या हम सब आज इस दिन प्रार्थना कर सकते हैं? हे प्रभु, हमें हमारे संकटों से दूर कर आशीर्वाद दीजिए। हे परमेश्वर, हमें आत्मिक आशीर्वाद दीजिए, हमें सांसारिक आशीर्वाद दीजिए और हमें सभी भलाइयां दीजिए। स्तुति हो प्रभु, हम कृतज्ञता के साथ आपकी स्तुति करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। स्वामी, इस आनंदमय दिन के लिए हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, मेरे परमेश्वर। प्रभु, आप मृत देवता नहीं हैं। आपने कहा था, मैं मर गया था, फिर भी देखो, मैं सदा सर्वदा जीवित हूं। ये परमेश्वर हमेशा के लिए अनंत काल तक हमारे परमेश्वर हैं, मृत्यु तक हमें मार्गदर्शन करने वाले। प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं, प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं, हम कृतज्ञता के साथ आपकी महिमा करते हैं। यहाँ उपस्थित सभी सभा के लोगों के लिए जिन्हें हम आमने सामने देख रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं सभी को आशीर्वाद दें और सामर्थ्य प्रदान करें। प्रभु, कृपया शांति दें, आनंद दें। प्रभु, चाहे मेरी कोई भी कमजोरी हो, उसे दूर कर दें, जो भी बंधन है उन्हें तोड़ दें, शैतान के सभी कार्यों को नष्ट कर दें। यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं कि सारी बुरी शक्तियां समाप्त हो जाएं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोगों को आशीर्वाद दें और उन्हें ऊंचा उठाएं। हे राजा, हम आपकी स्तुति करते हैं, क्योंकि आप हमें बुराई से दूर रखकर आशीर्वाद देने में सामर्थ्य हैं। प्रभु, आपकी कृपा हमें सशक्त बनाए रखे। हे पिता, किसी भी परिवार पर कोई जादू या टोना असर न करे। यीशु मसीह के नाम से हम सभी बुरी शक्तियों को नष्ट और दूर करते हैं। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने और शत्रु की सारी शक्ति पर अधिकार दिया है, और कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचाएगा, ऐसा आपने कहा था। प्रभु, हम शैतान के सभी कार्यों को नासरी यीशु मसीह के नाम में डांटते, बांधते और दूर करते हैं। प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं। चाहे कोई भी बीमारी हो, आप चंगा करते हैं। चाहे कोई भी रोग हो, आप चंगा करते हैं। चाहे कोई भी कमजोरी हो, आप उसे दूर करते हैं। हे परमेश्वर, आप जादू टोने की सारी बंधनों को तोड़ते हैं, शैतान के कार्यों को नष्ट कर देते हैं। हे राजा, जो लोग बेरोजगार हैं, उन्हें नौकरी दीजिए। जिनका विवाह नहीं हुआ है, उनका विवाह संपन्न हो। जिनके पास संतान का सुख नहीं है, उन्हें संतान का आशीर्वाद दीजिए। हे परमेश्वर, जिनके जीवन में शांति नहीं है, उन्हें शांति दीजिए। जो लोग कर्ज की समस्या, आंसू और पीड़ा में हैं, उन्हें मुक्ति दीजिए। हे पिता, प्रभु, जो परिवार शराब पीते हैं, उन्हें मुक्ति दीजिए। हे पिता, जो परिवार व्यवसाय कर रहे हैं, उन्हें आशीर्वाद दीजिए। जो परिवार व्यापार कर रहे हैं, उन्हें भी आशीर्वाद दीजिए। हे प्रभु, जो लोग केश में हैं, उन्हें विजय प्रदान करें। बिछड़े हुए परिवारों को फिर से एक करें। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, वे ज्ञान, भक्ति, शिक्षा, बुद्धि और क्षमता में उत्कृष्ट बने और चमके। हे प्रभु, सभी बच्चों को स्तुति करने वाले और प्रार्थना करने वाले बच्चों में बदल दें। प्रभु, हमारे छोटे बच्चों पर प्रार्थना की आत्मा उंडेलने वाले परमेश्वर हैं। सभी बच्चों को प्रार्थना करनी चाहिए, स्तुति करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए, प्रभु की कृपा को धारण करना चाहिए। हम प्रार्थना करते हैं कि छोटे बच्चों को आशीर्वाद दें। हे प्रभु, महान कार्य करने वाले प्रभु, चाहे मुझ में कोई भी कमजोरी हो, चंगा करने वाले राजा, दया करे, दया करे, दया करे हर एक कमजोर व्यक्ति पर, और परमेश्वर की सामर्थ उन पर दया करे। हे प्रभु, चंगा करे, चमत्कार करे, अद्भुत कार्य करे। हे राजा, हम आपकी स्तुति करते हैं, हर एक के जीवन में, उनके हृदय में और बाहर अद्भुत कार्य करे। हे प्रभु, मुझे विश्वास है कि आप हर एक की आवश्यकता को जानते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हर एक की आवश्यकता को पूरा करें। हे पिता, जिनके पास घर नहीं है उन्हें घर दे। जो लोग घर बनाते समय बीच में हैं, उन्हें घर पूरा करने के लिए अनुग्रह दे। हे प्रभु, हम आपके नाम की महिमा के लिए आपके चरणों में गिरकर विनती करते हैं। जो परमेश्वर सोचने और मांगने से भी बढ़कर कार्य करते हैं। हे प्रभु, आपको धन्यवाद। आपके बच्चे जो कुछ भी प्रार्थना करते हैं वो प्रभु के सामने हर्ष का कारण बने। आपने कहा था कि मैं तुम्हारे हृदय की इच्छाओं को तुम्हें प्रदान करूंगा। हम प्रार्थना करते हैं कि हर किसी की आवश्यकताओं को आप पूरी करें। प्रभु की आशीर्वाद देने वाली और ऊंचा उठाने वाली कृपा, प्रभु की प्रसन्नता, प्रभु की महिमा हर एक पर शासन करे। हे प्रभु, हम सारी स्तुति, आदर, महिमा और महानता आपको ही अर्पित करते हैं, जो जिम्मेदारी लेकर हमारी रक्षा करते हैं। हम ये सब कुछ हमारे प्रिय उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में विनम्रता से मांगते हैं। हे परमपिता, आमीन।
1: எங்களின் ஏசிரின் கரம் மாதாந்திர இதழானது தமிழ், ஆங்கிலம், ஹிந்தி, மலையாளம், தெலுங்கு ஆகிய 6 மொழிகளில் கர்த்தரின் கிருபையால் வெளிவருகின்றது. இப்பத்திரிகை வேண்டோர் எங்களது முகவரியை தொடர்பு கொள்ளலாம்.
2: எங்கள் முகவரி ஏசிரின் கரம், 12-80 அம்பேத்கர் நகர், டார்லிங்டன் பிரிட்ஜ், குன்னூர், 643-101, நீலகிரி மாவட்டம், தென்னிந்தியா. எங்கள் தொலைபேசி எண்கள் 944-30-780-19 மற்றும் 75-98-11-2435. In English, Hand of Jesus Ministries, 12/80, Ambedkar Nagar, Darlington Bridge, Kono, 643-101, Nilgiri, South India. Cell phone numbers 944-30-780-19 and 75-98-11-2435. Our email address asinkaram@gmail.com. Our website handofjesus.in. God bless you.

0: मसीह में प्रिय, हम आपको हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर बड़े प्रेम से नमस्कार करते हैं। इस दुनिया में आपके पास चाहे कितने भी बड़े घर, संपत्ति और जमीन क्यों ना हो, जब आप इस दुनिया से जाएंगे तो आप इसे अपने साथ नहीं ले जा सकेंगे।
1: इसीलिए प्रेरित पौलुस ने कहा,
0: पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने ही बात जो रहे हैं। हमारा निवास स्थान इस संसार का नहीं है, हमारा घर स्वर्ग में है। हमें उस गौरवशाली स्थान पर जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि एक मानव दिवस कैसा होता है? क्योंकि हम तो कल ही के हैं और कुछ नहीं जानते, और पृथ्वी पर हमारे दिन छाया की नाई बीतते जाते हैं। अय्यूब 8:9।
1: इतना ही नहीं, भजनकार कहता है, मेरी आयु ढलती हुई छाया के समान है और मैं आप घास की नाई सूख चला हूँ।
0: भजन संहिता 102:11।
1: प्रेरित याकूब लिखते हैं, और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा, सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम तो मानो भाप समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। याकूब 4:14।
0: इसलिए यह सांसारिक जीवन, इसके खजाने और पृथ्वी स्थाई नहीं है।
1: यीशु ने कहा, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूं वहां तुम भी रहो। यूहन्ना 14:3। तो आइए हम उस शानदार शहर, उस शानदार घर में जाने के लिए खुद को प्रतिबद्ध करें।
0: पौलुस लिखता है, और इस संसार के बरतने वाले ऐसे हों कि संसार ही के न हो ले, क्योंकि इस संसार की रीति और व्यवहार बदलते जाते हैं। 1 कुरिन्थियों 7:31।
1: तो फिर उस शानदार शहर तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना होगा? क्या हम थोड़ा ध्यान करें?
0: पहले
1: धर्म ग्रंथ कहता है, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं। इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता, सो उसने उनके लिए एक नदर तैयार किया है। इब्रानियों 11:16।
0: प्रभु उन लोगों के लिए एक शहर तैयार कर रहे हैं जो शानदार स्वर्गीय भूमि की इच्छा रखते हैं। अगर हम खुद इसकी इच्छा नहीं रखते तो वह हमें यह कैसे देगा? इसलिए स्वर्गीय देश से, उस सनातन नगर से प्रेम रखो, वहां जाने के लिए प्रार्थना करें, तभी प्रभु तुम्हें वह नगर देगा।
1: इसीलिए प्रेरित पौलुस कहता है,
0: सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है।
1: पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ।
0: कुलुसियों 3:1-2।
1: हमें स्वर्ग की चाहत और अभिलाषा की आवश्यकता है।
0: इसीलिए यीशु ने कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य पर जोर होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं।
1: मत्ती 11:12।
0: इसलिए सबसे पहले हमें स्वर्गीय नगर में जाने की इच्छा रखनी चाहिए।
1: प्रेरित पौलुस कहता है,
0: इसलिए हम धाड़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। 2 कुरिन्थियों 5:8।
1: मसीह में परमेश्वर के प्रिय बच्चों, आपकी प्राथमिकता क्या है?
0: प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम वहां आए।
1: यीशु ने पिता से कहा, हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हों, कि वे मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा।
0: यूहन्ना 17:24।
1: यदि हमारी इच्छा हो तो हम निश्चित रूप से उस शहर में प्रवेश कर सकते हैं।
0: दाऊद कहते हैं, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। भजन संहिता 23:6।
1: क्या हम भी परमेश्वर के नगर की लालसा करें?
0: दूसरा, पवित्र बाइबल कहती है, क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थिर रहने वाला नगर नहीं, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं।
1: इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाया करें।
0: इब्रानियों 13:14-15।
1: इस दुनिया में हमारा कोई स्थायी शहर नहीं है, हम आने वाले इस राज्य की खोज में हैं।
0: इसलिए बाइबल हमें साफ साफ बताती है कि हमें क्या करना चाहिए।
1: इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाया करें। इब्रानियों 13:15। यदि हम परमेश्वर के नगर में जाना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद करना चाहिए। जिस शहर में हम रहेंगे वह प्रशंसा का शहर है। यदि आप वहां जाना चाहते हैं तो आपको ईश्वर की स्तुति करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। भजनकार कहता है, क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। भजन संहिता 84:4। यदि आप और मैं स्वर्गीय घर में रहना चाहते हैं, हमें ऐसे लोग बनना चाहिए जो परमेश्वर की स्तुति करे। पवित्र बाइबल कहती है, इसके बाद मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना कि हल्लेलुया, उद्धार और महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर ही की है। प्रकाशित वाक्य 19:1। पवित्र बाइबल कहती है, फिर दूसरी बार उन्होंने हल्लेलुया कहा और उसके जलने का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा, और 2400 प्राचीनों और चारों प्राणियों ने गिरकर परमेश्वर को दंडवत किया जो सिंहासन पर बैठा था और कहा, आमीन, हल्लेलुया। प्रकाशित वाक्य 19:3-4। बाइबल हमें एक आदर्श दिखाती है कि हमें कैसे प्रशंसा करनी चाहिए। इतना ही नहीं, और सिंहासन में से एक शब्द निकला कि हे हमारे परमेश्वर से सब डरने वाले दासों, क्या छोटे क्या बड़े, तुम सब उसकी स्तुति करो। प्रकाशित वाक्य 19:5। क्या आप देखते हैं कि परमेश्वर की स्तुति करना कितना महत्वपूर्ण है? हमें प्रभु की स्तुति कैसे करनी चाहिए? पवित्र बाइबल कहती है, और जब तुम यहोवा के लिए धन्यवाद का मेलबलि चढ़ाओ तो उसे इसी प्रकार से करना जिससे वह ग्रहण योग्य ठहरे। इसलिए स्वर्ग प्रशंसा का शहर है। यदि आप वहां जाना चाहते हैं तो आपको ईश्वर की स्तुति करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। पवित्र बाइबल कहती है, और चारों प्राणियों ने आमीन कहा और प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया। तीसरा, प्रेरित याकूब लिखते हैं, हे मेरे प्रिय भाइयों सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हों जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं? याकूब 2:5। इसके बाद हमें उससे प्रेम करना चाहिए। परमेश्वर स्वर्ग में जाने का विशेषाधिकार केवल उन्हीं को देता है जो उससे प्रेम करते हैं। तो क्या हम प्रभु से प्रेम करें? हमें प्रभु से कैसे प्रेम करना चाहिए? यीशु ने कहा, उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। मत्ती 22:37। प्रभु चाहता है कि हम उससे पूरी तरह प्रेम करें। उससे प्रेम करने का क्या अर्थ है? यीशु ने कहा, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। यूहन्ना 14:23। प्रभु से प्रेम करना उनके वचन का पालन करना है। यदि हम उसका वचन मानना चाहते हैं तो हमें उसका वचन अधिक पढ़ना होगा और उसे जानना होगा। हम में से बहुत से लोग बाइबल नहीं पढ़ते, तो फिर हम प्रभु के वचन को कैसे जानें? इसलिए प्रभु के वचन को अधिक बार पढ़ें, प्रभु के वचन पर अधिक मनन करें। इसका ध्यान रखना, प्रभु से प्रेम करने का यही अर्थ है। जब हम प्रभु से पूर्णतः प्रेम करेंगे तो परमेश्वर हमें अपना राज्य देगा। उसने अपना राज्य केवल उन लोगों को देने का वादा किया है जो उससे प्रेम करते हैं। चौथा, प्रभु यीशु ने कहा, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। मत्ती 5:10। क्या आपने इस बात पर गौर किया है कि हमारे अपने लिए कष्ट उठाने की बात नहीं है? उसके वचन के कारण, धार्मिकता के कारण जब हम सताए जाते हैं और कष्ट उठाते हैं तो हम धन्य लोगों में बदल जाते हैं। उसका राज्य भी हमारा हो जाता है। क्लेश निश्चित रूप से मसीही जीवन का एक हिस्सा है। प्रेरित पौलुस यही कहता है कि कोई इन क्लेशों के कारण डगमगा ना जाए, क्योंकि तुम आप जानते हो कि हम इन्हीं के लिए ठहराए गए हैं। क्योंकि पहले भी जब हम तुम्हारे यहाँ थे तो तुमसे कहा करते थे कि हमें क्लेश उठाने पड़ेंगे, और ऐसा ही हुआ है, और तुम जानते भी हो। 1 थिस्सलुनीकियों 3:3-4। इसलिए हमें कभी भी कठिनाइयों का सामना करके हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, उनका सामना करने में संकोच न करें। ईश ने कहा, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझमें शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। यूहन्ना 16:33। इसलिए हमें दुख तकलीफों से निराश नहीं होना चाहिए। स्वर्ग का राज्य तभी हमारा होगा जब हम धार्मिकता के लिए कष्ट उठाएंगे। इसीलिए पौलुस लिखते हैं, और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। प्रेरितों के काम 14:22।
2: क्लेश स्वर्गीय नगर में जाएंगे सीढ़ियां।
1: इसलिए कठिनाइयों से निराश मत होइए। हमारा जीवन इस संसार के साथ खत्म नहीं होता। हमारे पास एक शानदार शहर है। उस गौरवशाली शहर में जाना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमें उस गौरवशाली राष्ट्र को कभी नहीं खोना चाहिए। इसलिए इस संसार पर भरोसा करके धोखा मत खाओ। प्रभु आपको अपना राज्य प्राप्त करने के लिए तैयार करें। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। हम सभी ने इस पर चिंतन किया। ईश्वर स्वयं आपको आशीर्वाद दे और आपको ऐसे महान आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन।
3: கரம் மாதாந்திர இதழானது தமிழ், ஆங்கிலம், ஹிந்தி, மலையாளம், தெலுங்கு ஆகிய 6 மொழிகளில் கர்த்தரின் கிருபையால் வெளிவருகின்றது. இப்பத்திரிகை வேண்டோர் எங்களது முகவரியை தொடர்பு கொள்ளலாம்.
4: எங்கள் முகவரி இயேசுவின் கரம், 12:80 அம்பேத்கர் நகர், டார்லிங்டன் பிரிட்ஜ், குன்னூர், 643-101, நீலகிரி மாவட்டம், தென்னிந்தியா. எங்கள் தொலைபேசி எண்கள் 9443078019 மற்றும் 7598112435. In English, Hand of Jesus Ministries, 12/80, Ambedkar Nagar, Darlington Bridge, Kono, 643101, Nilgiri, South India. Cell phone numbers 9443078019 and 7598112435. Our email address aslinkaram@gmail.com. Our website handofjesus.in. God bless you.
5: Hazar Stuti. हे अब्बा, हे पिता, आपकी स्तुति हो। प्रेमी पिता, आपकी स्तुति हो। अनंतकाल का पिता, आपकी स्तुति हो। स्वर्गीय पिता, आपकी स्तुति हो। आत्माओं के पिता, आपकी स्तुति हो। ज्योतियों के पिता, आपकी स्तुति हो। दया का पिता, आपकी स्तुति हो। महिमा का पिता, आपकी स्तुति हो। जिसने मुझे मोल लिया है, आपकी स्तुति हो। पिता, जिसने मुझे बनाया है, आपकी स्तुति हो। पिता, जिसने मुझे स्थिर किया है, आपकी स्तुति हो। मेरा पिता, आपकी स्तुति हो। हम सबों का एक ही पिता, आपकी स्तुति हो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता, आपकी स्तुति हो। धार्मिक पिता, आपकी स्तुति हो। पिता मुक्त में है, आपकी स्तुति हो। धर्म के पिता, आपकी स्तुति हो। इज़राइल के पिता, आपकी स्तुति हो। जीवित पिता, आपकी स्तुति हो। पिता को यह पसंद आया है कि वह तुम्हें राज्य दे, इसलिए आपकी स्तुति हो। परम प्रधान परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। महान परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। ईश्वरों का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। जीवित परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। प्रेमी परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। प्रेम और शांति का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। अनादि परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। सब प्रकार की शांति के परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। धीरज और शांति देने वाले परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। तेजोमय परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। करुणामय परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। परमेश्वर जिसने अपने अनुग्रह से मुझे बुलाया है, आपकी स्तुति हो। अब्राहम का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। ईसा का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। याकोब का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। यशुरून का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। इज़राइल का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। एलिया का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। दाऊद का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। दानियेल का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। शाद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। परमेश्वर पिता, आपकी स्तुति हो। हमारे पितरों का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। मेरे पूर्वजों के परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। घाटी का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। पहाड़ों का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। सारी पृथ्वी का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। सबके ऊपर युगानुयुग परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। पृथ्वी के सब राज्यों के परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी के परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। याकूब पर वरनों पृथ्वी की छोर तक प्रभुता करने वाला परमेश्वर आपकी स्तुति हो। आश्चर्य कर्म का परमेश्वर आपकी स्तुति हो। पराक्रमी परमेश्वर आपकी स्तुति हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी स्तुति हो। समुद्र के गर्भ को तोड़ने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। सच्चे परमेश्वर आपकी स्तुति हो। सुच अद्वैत सच्चे परमेश्वर आपकी स्तुति हो। एक ही परमेश्वर पिता आपकी स्तुति हो। अद्वैत परमेश्वर आपकी स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर आपकी स्तुति हो। स्वर्ग के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। पवित्र परमेश्वर आपकी स्तुति हो। सच्चे परमेश्वर आपकी स्तुति हो। कतन के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। वाचा के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। आशा के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। दयालु परमेश्वर आपकी स्तुति हो। दयालु में धनी परमेश्वर आपकी स्तुति हो। धर्ममय परमेश्वर आपकी स्तुति हो। हे अन्याय के प्रति प्रतिशोध के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। आप सच्चा ईश्वर जिसमें कुटिलता नहीं है आपकी स्तुति हो। सेनाओं के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। मेरे परमेश्वर मेरे परमेश्वर आपकी स्तुति हो। परमेश्वर जिसमें मेरी उत्पत्ति हुई आपकी स्तुति हो। मेरा देखने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। दर्शन देने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। सब प्राणियों की आत्माओं के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। सदा धन्य परमेश्वर आपकी स्तुति हो। अनंत काल के लिए जीवित परमेश्वर आपकी स्तुति हो। सदा राज्य करने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। सब ईश्वरों का ईश्वर आपकी स्तुति हो। वेदों को खोलने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। हे मेरे परमेश्वर हे राजा आपकी स्तुति हो। बड़ा परमेश्वर आपकी स्तुति हो। धन के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। हमारी सारे आवश्यकताओं को पूरा करने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। सब कुछ बढ़ाने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। विजय प्रदान करने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। शांति का परमेश्वर आपकी स्तुति हो। अधर्मी से क्रोध करने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। जलन रखने वाला परमेश्वर आपकी स्तुति हो। क्षमा करने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। अद्भुत काम करने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। सब कुछ करने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। उदार करने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर आपकी स्तुति हो। मेरे सुख की चमक के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। मेरे अति आनंद के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। परम धन्य परमेश्वर आपकी स्तुति हो।

क्या आप लोग तैयार हैं नाचने के लिए? यदि आप तैयार हैं तो आप आगे आ सकते हैं। यदि आप अपने आप को जवान मानते हैं तो आगे आके नाचते हुए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। अपने दोनों हाथ को उठाकर बोलो यीशु मसीह की। अपने स्थान में आप खड़े हो सकते हैं। हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे।

Give your hand.

को क्षमा करने, शापों को दूर करने, समीपे आया मसीहा, रोगों से मुक्ति देने, अनंत जीवन देने, सूली पे जा दे दिया, पापों को क्षमा करने, शापों को दूर करने, समीपे आया मसीहा।

चाहे आपके माँ आपको भूल जाए, चाहे आपके दोस्त आपको भूल जाए, मैं परमेश्वर आपको कभी नहीं भूलेगा, वो आपके साथ हमेशा बना रहेगा। ताली बजा के उसको महिमा दे प्रियो। आमीन। लोग तुझको भूल जाए माँ क्यों ना भूल जाए, वो तुझको ना भूलेगा। दोस्त तुझको भूल जाए रिश्ते क्यों ना भूल जाए, वो तुझको ना भूलेगा। दोस्त तुझको भूल जाए रिश्ते क्यों ना भूल जाए, वो तुझको ना भूलेगा। दोस्त तुझको भूल जाए माँ क्यों ना भूल जाए, वो तुझको ना

प्रेम है, ताली बजा कर उसके नाम को महिमा करें, आत्मा सच्चाई के साथ उसकी आराधना करें। यस लॉर्ड, उसने सोना मांगा ना चांदी मांगा है, सोना उसने मांगा नहीं, चांदी उसने मांगा नहीं, दिल उसने मांगा मेरा, जाति उसने पूछा नहीं, भाषा उसने पूछा नहीं, मन उसने मांगा।

मसीह में प्रिय, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं। क्या आपने देखा है कि समय कितनी तेजी से उड़ता है? यह ऐसा था जैसे ये पिछले साल शुरू हुआ हो, ये कितनी जल्दी खत्म हो गया। प्रभु ने दयालुता पूर्वक हमारा नेतृत्व किया है, वो हमारा हाथ पकड़कर हमें इस नए साल में ले आया है। इस नए साल में प्रभु हमारे साथ रहें, वो अपनी आंख के तारे की तरह हमारी रक्षा करेगा। निराश मत होइए, आइए एक नज़र डालते हैं कि इस नए साल में हमें क्या करना है। इस नए वर्ष में प्रभु हम पर दृष्टि डालते हैं और कहते हैं, प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 शब्द 11, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। दुनिया में जो कुछ भी चल रहा है उससे ये स्पष्ट है कि प्रभु का आगमन बहुत निकट है ना? इसलिए हमें सावधान रहना होगा। प्रभु शीघ्र आते हैं, इसलिए प्रभु हमें स्पष्ट रूप से बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 शब्द 11, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। हमारे पास जो कुछ है हमें उसे पकड़कर रखना चाहिए ताकि कोई हमारे मुकुट न ले सके। हमारे मुकुट कौन लेगा? ईश ने कहा। यूहन्ना अध्याय 10 शब्द 10, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। शैतान हमेशा धोखा देने के लिए तैयार रहता है, वो हमारा मुकुट चुराने की कोशिश करेगा। इसलिए प्रभु के बच्चों को सावधान रहना चाहिए। ताज क्या है, इसका मतलब क्या है? अब हम इस पर चिंतन करने जा रहे हैं कि इसकी सुरक्षा कैसे की जाए। पहले देखते हैं ताज का क्या मतलब है। प्रभु कहते हैं, लेवी व्यवस्था अध्याय 21 शब्द 12, क्योंकि वह अपने परमेश्वर के अभिषेक का तेल रूपी मुकुट धारण किए हुए है, मैं यहोवा हूँ। मुकुट पवित्र आत्मा के अभिषेक का प्रतिनिधित्व करता है। प्रेरित पौलुस कहते हैं, 2 कुरिन्थियों अध्याय 1 शब्द 21, और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिसने हमें अभिषेक किया वही परमेश्वर है। प्रभु हमारा अभिषेक करते हैं। क्या होता है जब भगवान का अभिषेक हमारे पास आता है? यूहन्ना लिखते हैं, 1 यूहन्ना अध्याय 2 शब्द 27, और तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। जब प्रभु का अभिषेक हमारे पास आता है तो ये हमें सब कुछ सिखाता है। फिर से प्रेरित यूहन्ना लिखता है, 1 यूहन्ना अध्याय 2 शब्द 20, और तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। जब प्रभु का अभिषेक हम पर आता है तो हमें सब कुछ जानने का सौभाग्य मिलता है। शैतान इस विशेषाधिकार को हमसे छीनने की कोशिश करता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं, 1 पत्रस अध्याय 5 शब्द 8, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। इसलिए यहोवा कहता है, अपना मुकुट दृढ़ रखो कि कोई उसे छीन न सके। इसलिए पौलुस लिखते हैं, 2 कुरिन्थियों अध्याय 11 शब्द 3, परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाएं। तो सावधान रहो, शैतान को कभी रास्ता मत दो। इसलिए शास्त्र कहते हैं, इफिसियों अध्याय 4 शब्द 27, और न शैतान को अवसर दो। आइए दूसरी बात देखें। बाइबल कहती है, एस्तेर अध्याय 2 शब्द 17, और राजा ने एस्तेर को और सब स्त्रियों से अधिक प्यार किया, और सब कुवारियों से अधिक उसके अनुग्रह और कृपा की दृष्टि उसी पर हुई, इस कारण उसने उसके सिर पर राजमुकुट रखा और उसको वशती के स्थान पर रानी बनाया।
यीशु हमसे वैसे ही प्रेम करते हैं जैसे राजा क्षयर्ष ने एस्तेर से प्रेम किया था। इसलिए शास्त्र कहते हैं, प्रकाशित वाक्य अध्याय 1:6, और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया, उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे। आमीन। यीशु ने हमारे लिए अपना खून बहाया और हमारे सभी पापों को माफ कर दिया और हमें परमपिता परमेश्वर के सामने राजा और रानी बनाया। वो हमें राजा और रानी के रूप में ताज पहनाता है। यह मुकुट क्या दर्शाता है? ताकत का प्रतिनिधित्व करता है। ये किस प्राधिकार का प्रतिनिधित्व करता है? जब फिरौन ने यूसुफ को अधिकारी बनाया तो उसने क्या कहा? उत्पत्ति अध्याय 41:44। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, फिरौन तो मैं हूँ और सारे मिस्र देश में कोई भी तेरी आज्ञा के बिना हाथ पांव न हिलाएगा। इसका क्या मतलब है? ताकत को दर्शाता है। इसी तरह यीशु मसीह अपने खून से हमें राजा और रानी बनाते हैं और हमारे सिर पर अधिकार का ताज रखते हैं। हाँ परमेश्वर के बच्चे, यीशु हमें अपना अधिकार देता है। यीशु कहते हैं, लूका अध्याय 10:19, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। आप कितने धन्य हैं। शैतान इस शक्ति को हमसे छीनने का प्रयास करेगा। शैतान हमें पाप करने के लिए प्रलोभित करने का प्रयास करता है। तो सावधान रहो। वस्ती लापरवाह थी, वह ताज हार गई। राजा ने वस्ती को लाने के लिए प्रजा भेजी। एस्तेर अध्याय 1:10-12। परंतु वशती ने कहा कि वह नहीं आएगी। तब राजा क्रोधित हुआ और भीतर ही भीतर क्रोधित हुआ। यीशु राजा हमें कई बार बुलाते हैं। यीशु हमें प्रार्थना करने के लिए बुलाते हैं, हमें अपने सामने अंतराल में खड़े होने के लिए बुलाते हैं, हमें सेवा करने के लिए बुलाते हैं। जब हम उस आह्वान को अनदेखा करते हैं तो राजा यीशु का क्रोध हम पर आता है। रानी वशती का क्या हुआ? एस्तेर अध्याय 1:19, यदि राजा सहमत हो तो उसके सामने से एक शाही आदेश जारी किया जाना चाहिए कि वशती राजा क्षयर्ष के सामने दोबारा न आए और इसे फौसियों और मेदियों के शाही धर्म में लिखा जाना चाहिए ताकि इसे बदला न जाए और राजा को उसका राजपद उससे बेहतर किसी व्यक्ति को सौंप देना चाहिए। आपने देखा, अपने अभिमान और अवज्ञा के कारण वशती ने अपनी शाही गरिमा और अधिकार खो दिया। यह उपाधि एस्तेर को दी गई जो उससे बेहतर थी। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, अवज्ञा, घमंड और जिद जैसी चीजों को जगह न दें। सत्ता और राजसी गौरव का ताज मत खोना। तीसरा, आइए देखें, पवित्र पुस्तक कहती है, भजन संहिता अध्याय 65:11, अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट धर दिया है, तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। प्रभु हर साल आशीर्वाद देते हैं और अच्छाई देते हैं। वह साल को अच्छाइयों से सराबोर करता है। अच्छाई एक मुकुट है। आइए हम इस ताज को न खोएं। बाइबल कहती है, भजन संहिता अध्याय 85:12, फिर यहोवा उत्तम पदार्थ देगा और हमारी भूमि अपनी उपज देगी। हमें इन मुकुटों की रक्षा करनी चाहिए। अच्छी चीजों को न चूकें। पवित्र शास्त्र कहता है, सभोपदेशक अध्याय 9:18, परंतु एक पापी बहुत भलाई नाश करता है। यदि हम पाप को जगह देंगे तो हम खराब हो जाएंगे और कई लाभ खो देंगे। तो सावधान रहो। सावधान रहें कि जो लोग पाप कर रहे हैं उनके साथ न मिलें। बाइबल कहती है, नीतिवचन अध्याय 22:24-25, क्रोधी मनुष्य का मित्र न होना और झट क्रोध करने वाले के संग न चलना। कहीं ऐसा न हो कि तू उसकी चाल सीखे और तेरा प्राण फंदे में फंस जाए। गलत लोगों से दोस्ती न करें। उसके कारण हम वह अच्छाई खो देंगे जो हमारे परमेश्वर ने हमें दी है। पाप में फंसे लोगों के लिए प्रार्थना करें। यदि हम उनके साथ जुड़ते हैं तो हम उन लाभों को खो देंगे जो ईश्वर ने हमें दिए हैं। प्रभु ने हमें जो दिया है उसे हम खो देंगे। तो सावधान रहो, अपना ताज रखो। आइए चौथे पर नजर डालें। शास्त्र कहता है,
भजन संहिता अध्याय 103, शब्द 4। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। इसके बाद ईश्वर की कृपा और दया हमें मुकुट के रूप में दी गई है। हमें उन मुकुटों की रक्षा करनी चाहिए। इसलिए बाइबल चेतावनी देती है। इब्रानियों अध्याय 12, शब्द 15। और ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए, या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। प्रभु का आशीर्वाद खो जाने की संभावना है, इसलिए कड़वाहट को जगह न दें। दूसरों को क्षमा करें, दूसरों से प्यार करो, अनुग्रह मत खोना। पौलुस तीमुथियुस को लिखता है। 2 तीमुथियुस अध्याय 2, शब्द 1। इसलिए ही मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। अनुग्रह से मजबूत होने के बजाय हमें इसे खोना नहीं चाहिए। जब हम ईश्वर की स्तुति करते हैं तो कृपा प्रचुर मात्रा में मिलती है, पौलुस ने कहा। 2 कुरिन्थियों अध्याय 4, शब्द 15। क्योंकि सब वस्तुएं तुम्हारे लिए हैं, ताकि अनुग्रह बहुतों के द्वारा अधिक होकर परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद भी बढ़ाए। जब हम प्रभु की स्तुति करते हैं तो अनुग्रह प्रचुर मात्रा में होता है। इतना ही नहीं, प्रेरित याकूब लिखते हैं, याकूब अध्याय 4, शब्द 6। वो तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण ये लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है, पर दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए हमें उस अनुग्रह को बनाए रखने के लिए सावधान रहना चाहिए जो ईश्वर हमें देता है। प्रभु की कृपा हमारे लिए महत्वपूर्ण है, पौलुस कहते हैं। 1 कुरिन्थियों अध्याय 15, शब्द 10। परंतु मैं जो कुछ भी हूँ, परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, और उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वो व्यर्थ नहीं हुआ। परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। इसके अलावा ये ईश्वर की कृपा है जो हमें जीवित रखती है और कड़ी मेहनत करती है। भविष्यवक्ता यिर्मयाह कहते हैं, विलापगीत अध्याय 3, शब्द 22। हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। इसलिए हमें उस अनुग्रह और दया की रक्षा करनी चाहिए जो हमें मुकुट के रूप में मिली है। आइए 5वें पर नजर डालें। सेंट पौलुस ने थिसलुनीके के लोगों से कहा। 1 थिसलुनीकियों अध्याय 2, शब्द 19-20। भला हमारी आशा या आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु के सम्मुख उसके आने के समय तुम ही न होगे? हमारी बड़ाई और आनंद तुम ही हो। मुकुट उन आत्माओं का प्रतिनिधित्व करता है जो प्रभु हमें मंत्रालय में देते हैं। हमें आत्माओं की रक्षा करनी चाहिए। फिर जब प्रेरित पौलुस ने फिलिप्पी के विश्वासियों को लिखा, फिलिप्पियों अध्याय 4, शब्द 1। इसलिए मेरे प्रिय और अभिलाषित भाइयों, मेरे आनंद और मुकुट, इस प्रकार प्रभु में बने रहो। प्रिय ताज चच के लोग हैं जो प्रभु हमें देते हैं। मुकुट उन आत्माओं का प्रतिनिधित्व करता है जो प्रभु हमें मंत्रालय में देते हैं। हमें उन्हें सुरक्षित रखना चाहिए। इन अंतिम दिनों में झूठे मंत्री, झूठे शिक्षक और झूठे भविष्यवक्ता आत्माओं को भटकाने के लिए उठ खड़े होंगे। पवित्र पुस्तक कहती है, 2 तीमुथियुस अध्याय 3, शब्द 6-7। इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और छिछोरे स्त्रियों को वश में कर लेते हैं, जो पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में हैं, और सदा सीखती तो रहती हैं पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। इसलिए हमें लोगों चर्च की रक्षा करने का ध्यान रखना चाहिए जो उस मुकुट की तरह है जो प्रभु ने हमें दिया है। आत्माओं को खोना नहीं चाहिए, पौलुस तीमुथियुस को लिखता है। 1 तीमुथियुस अध्याय 1, शब्द 10। व्याभिचारियों, पुरुषगामियों, मनुष्य के बेचने वालों, झूठों और झूठी शपथ खाने वालों, और इनको छोड़ खा

को छोड़ खरे उद्देश्य के सब विरोधियों के लिए ठहराई गई है। इसलिए हमें अपने हाथ में सौंपे गए मंत्रालय की सावधानी पूर्वक रक्षा करने की जरूरत है। इसलिए प्रभु कहते हैं यहेजकेल अध्याय 38 शब्द 7, इसलिए तू तैयार हो जा, तू और जितनी भीड़ तेरे पास इकट्ठी हो, तैयार रहना और तू उनका अगुवा बनना। हमें हमारी देखभाल के लिए सौंपी गई आत्माओं के लिए जमानत बनना चाहिए, उनकी रक्षा की जानी चाहिए। प्रभु यही चाहते हैं। इन समयों में कुछ मंत्री लापरवाह होते हैं और उस चर्च को खो देते हैं जो प्रभु ने उन्हें सौंपा है। वे अपना मंत्रालय खो रहे हैं और हमें जो मंत्रालय सौंपा गया है उससे सावधान रहना चाहिए। पौलुस आर्चिपोस को लिखता है कुलुसियों अध्याय 4 शब्द 17, फिर अखिरपुस से कहना कि जो सेवा प्रभु में तुझे सौंपी गई है उसे सावधानी के साथ पूरी करना। हमें जो काम सौंपा गया है उसे सावधानी से करना चाहिए। हमें उन लोगों का भी ख्याल रखना होगा जो हमें दिए गए हैं। कुलुसियों अध्याय 1 शब्द 9, पौलुस ने उन लोगों के लिए बिना रुके प्रार्थना की जिन्हें उसे सौंपा गया था। हमें इसी प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। जब हम लापरवाह होंगे तो इस अंत समय में आत्माएं ठोकर खाएंगी। इसलिए पत्रस लिखते हैं 1 पत्रस अध्याय 5 शब्द 1-3, मां में जो प्राचीन हैं, मैं उनकी नई प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें ये समझाता हूँ कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और ये दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। और जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। हमें आत्माओं के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए। यिर्मयाह कहते हैं यिर्मयाह अध्याय 10 शब्द 21, क्योंकि चरवाहे पशु सरीखे हैं और वे यहोवा को नहीं पुकारते, इसी कारण वे बुद्धि से नहीं चलते और उनकी सब भेड़ें तितर बितर हो गई हैं। परमेश्वर के सेवक वे होने चाहिए जो परमेश्वर को खोजते हैं। यदि हम ईश्वर को नहीं खोजते तो हम सफल नहीं हो सकते। हमारे लोग तितर बितर हो जाएंगे। तो सावधान रहो, यहोवा उन लोगों की रक्षा करेगा जिन्हें हमारे हाथों में सौंपा गया है। प्रभु कहते हैं यशायाह अध्याय 60 शब्द 3-5, और अन्य जातियां तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। अपनी आंखें चारों ओर उठाकर देख, वे सब के सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं। तेरे पुत्र दूर से आ रहे हैं और तेरी पुत्रियां हाथों हाथ पहुंचाई जा रही हैं। तब तू इसे देखेगी और तेरा मुख चमकेगा, तेरा हृदय थरथराएगा और आनंद से भर जाएगा, क्योंकि समुद्र का सारा धन और अन्य जातियों की धन संपत्ति तुझको मिलेगी। यदि हम उस मंत्रालय में वफादार हैं जो प्रभु ने हमें दिया है, तो परमेश्वर हमें जो आत्माएं दी हैं उनके संरक्षण के कारण प्रभु तट की भीड़ को हमारे पास भेज देंगे। इसलिए प्रभु इस वर्ष हमें बताते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 शब्द 11, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। आमीन।

आपको भूल जाए, वो परमेश्वर आपको कभी नहीं भूलेगा, वो आपके साथ हमेशा बना रहेगा। ताली बजा कर उसको महिमा दे प्रियो। आमीन, आमीन। लोग तुझको भूल जाए माँ क्यों ना भूल जाए, वो तुझको ना भूलेगा। दोस्त तुझको भूल जाए, रिश्ते क्यों ना भूल जाए, वो तुझको ना भूलेगा। दोस्त तुझको भूल जाए, रिश्ते क्यों ना भूल जाए, वो तुझको ना भूलेगा। दोस्त तुझको भूल जाए माँ क्यों ना भूल जाए, वो तुझको ना

प्रेम ताने बजा कर उसके नाम में मकर आत्मा सच्चाई के साथ उसकी आराधना करें। यस लॉर्ड, उसने ना सोना मांगा ना चांदी मांगा है, सोना उसने मांगा नहीं, चांदी उसने मांगा नहीं, दिल उसने मांगा मेरा, जाति उसने पूछा नहीं, भाषा उसने पूछा नहीं, मन

0: आगे बढ़ो, पीछे मुड़कर मत देखो। स्टेशन गिर रहा है।
1: पीछे मुड़कर मत देखो, स्टेशन गिर रहा है।
2: सभी लोग अभी तुरंत सीढ़ियों से ऊपर जाएं।
3: आगे बढ़ो, पीछे मुड़कर मत देखो, स्टेशन गिर रहा है।

दौड़ना हमारे शरीर के लिए एक बहुत ही बेहतरीन व्यायाम माना जाता है, जो न केवल हमारे हृदय को स्वस्थ रखता है बल्कि हमारी मांसपेशियों को भी मजबूती प्रदान करता है और हमें दिन भर ऊर्जावान बनाए रखने में मदद करता है।

सारा रुको मैं आ रहा हूं, आप जहां हैं वहीं रहें।

0: चल दर।
1: धमकाना
0: सारा।
1: एलेक्स, क्या हो रहा है? पूरी इमारत झंस रही है।
0: जब हेम्पटोट गिर रहा है तब चट्टान भी गिर रही है। हमें इस टावर के गिरने से पहले 10 मिनट में निकलना होगा। अब

0: उन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। इस मंजिल पर अभी भी सैकड़ों लोग हैं।
1: अगर तुम 10,000 टन कंक्रीट के नीचे दब गए तो उन्हें बचा नहीं पाओगे। दौड़ो,

0: एलेक्स देखो पानी चला गया है, सब चला गया है।
1: ये एक ड्रॉकेट है, लहर आ रही है। रुको,
2: ये टूट रहा है क्या?
3: ट्रांसपोर्ट छत पर क्यों नहीं है? अगर मैं मर गया तो तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा।
4: चुप रहो, मूवर शेयरिंग। इमारत कट रही है।
5: आखिरी बचे हुए इंसान बनने के नाम मैंने कहा था निवेश काम आएगा।
6: क्या तुमने वो महसूस किया?
7: हमें तो ग्रेनाइट के 400 फीट नीचे

0: आखिरी बचे हुए इंसान बनने के नाम। मैंने कहा था निवेश काम आएगा।
1: क्या तुमने वो महसूस किया?
2: हमें तो ग्रेनाइट के 400 फीट नीचे होना चाहिए था।

0: हमारे पास एक सिग्नल है।
1: ये बहुत तेजी से फैल रहा है। कृपया मुझे वो सैटेलाइट फीड्स तुरंत ऑनलाइन चाहिए। आंदोलन को ट्रैक करो और पुष्टि करो कि पानी किस दिशा में जा रहा है।
2: मास मीडिया की प्लेटें खिसक रही हैं,
3: प्लेटें खिसक रही हैं।
4: गहराई की निगरानी कर रहा हूं।

0: एलेक्स इन्हें देखो,
1: हम जबरदस्ती अपना रास्ता नहीं बना सकते।
2: उन कारों में लोग हैं।
3: अगर हम रुक गए तो लहर हमें बहा ले जाएगी। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। यातायात जाम,

परिधि को बंद करें। मुझे सेकेंडरी मैनिफेस्ट की परवाह नहीं है। अगर वे अभी यहां नहीं है तो वे बोझ मात्र हैं।

0: मेरा नाम है।
1: आज के इस विशेष वीडियो में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आज मैं

बनाने में आसान, बनाने में आसान, बनाने में आसान।

0: नमस्ते टेल, धन्यवाद। 1-2.5 अभियान याद है, कैटलिस्ट से खुशी हुई।
1: टीम, ये दिलचस्प है। इंटरमीडिया क्रिएशन और प्रॉम्प्ट आधारित काम मेरे सिनेमैटिक एआई कंटेंट के लिए सटीक रहेगा। यूट्यूब और 4,500 में शामिल है लोग।

हमें बड़े पैमाने पर हिंसा बढ़ने की पुष्ट रिपोर्टें मिल रही हैं। सिग्नल, ये प्रतियोगिता से बाहर हो रहा है। यदि आप मुझे पसंद करते हैं तो आपको क्षेत्र और प्रासंगिकता की समस्या का सामना करना पड़ता है। हे भगवान।

0: इलेक्स हीटर से ठंडी हवा आ रही है। मैं नहीं कर सकता, मुझे अपने हाथों में कोई संवेदना नहीं है।
1: दबाव, वह चला गया।
2: वातावरण में रिसाव हो रहा है,

0: आश्रय जगह में 101.3 एफए एक सिग्नल खराब हो रहा है। जल्दी करो, हमें उस पेट्रोल की जरूरत है।
1: ट्रंक की जांच करें, जल्दी करो।
0: मदद करो, हमें अंदर आने दो, दरवाजे से दूर रहो, मैं इसे खोल नहीं सकता।
1: एलेक्स, बस जाओ जाओ।

0: वो क्या था? ऐसा लगा जैसे पूरा पहाड़ ही उछल गया।
1: प्लेट, ये अभी भी फिसल रही है।
2: ये मेंटल की धड़कन है। हमें अगले झटके से पहले चलते रहना होगा।

ये भूकंप नहीं है, ये बस जम रहा है। पूरी प्लेट अपना नया ठिकाना ढूंढ रही है। ये हो रहा है सारा।

चलो बस कुछ गैलन ही चाहिए। मुझे कुछ गैलन दे दो।

आपातकालीन सेवाएं रिवर कीक और स्टेबल के साथ बड़े व्यवधान की रिपोर्ट कर रही हैं। तटीय निगरानी स्टेशन असामान्य समुद्री हलचल की रिपोर्ट कर रहे हैं। सिग्नल बार बार गायब हो रहे हैं। हर जगह कुछ न कुछ हो रहा है।

0: इन्हें अंदर ले जाओ, इन्हें मेडिकल टेंट के अंदर ले जाओ, अभी के अभी। चलते रहो, उन्हें अंदर ले आओ।
1: टिकोर, मुझे डीसी से आने वाले आदेशों की परवाह नहीं है। डीसी पानी के नीचे है। हम आखिरी मछली के मिलने तक इस पहाड़ी पर डटे रहेंगे। उन लाइट्स को और ऊपर करो।
0: इधर आओ, चलते रहो, तुम लगभग पहुंच ही गए हो। मजबूती से रखिए, लाइन को पूरी तरह से स्थिर कर दीजिए और उस फ्लैप को सावधानी से बंद कर दें। हमारी शारीरिक शक्ति बहुत तेजी से कम हो रही है और हम धीरे धीरे अपनी पूरी तापीय ऊर्जा को इस ठंडे वातावरण में खोते जा रहे हैं।

0: हवा वह चली गई है।
1: हम नीचे हैं, हम दब गए हैं सारा। क्या आपको सच में लगता है कि यह सच है?

0: ध्रुव 40 डिग्री शिफ्ट हो गया है। हम संरक्षित हैं अर्जमिच, वे सतह के नीचे हैं, वे और भी आर्कटिक की तरह हैं।
1: वे कह रहे हैं कि उत्तरी ध्रुव 40 डिग्री खिसक गया है, ग्रह पलट गया है।

मैं अब भी मॉनिटर्स की आवाज सुन सकता हूँ। इलेक्स ट्रायर्स वार्ड में मैं बीपिंग की आवाज और फिर कांच की आवाज सुन सकता हूँ।

0: सुनो, हवा रुक गई है, बर्फ अब दरवाजे तक पूरी तरह से आ गई है,
1: हम इसके नीचे दब गए हैं,

0: धूल बहुत घनी है,
1: हम सांस ले रहे हैं
2: पहाड़ की।

संरचनात्मक अखंडता शून्य। मैनहट्टन।

0: अरे रुको, पेड़ों को मजबूती से पकड़ लो। मैं नहीं कर सकता,
1: मैं हवा को फिल्टर नहीं कर सकता।
0: ये सांस लेने जैसा है।
1: कांच,
0: पकड़ना।

0: सारा पुरानी दुनिया बर्फ के नीचे दबी हुई है,
1: लेकिन हम अभी भी यहीं हैं।
2: वह चला गया।
3: हमें फिर से शुरू करना होगा,
4: हमें फिर से निर्माण करना होगा।

0: प्रभु सभी सत्य की ओर मार्गदर्शन करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रभु क्या करेंगे, वे हमें सिखाएंगे, और अगर हम उनकी कही बातों को भूल जाएं, तो वे हमें याद दिलाएंगे। यदि पवित्र आत्मा हमारे भीतर है तो किसी और को हमें सिखाने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। इसी कारण पवित्र आत्मा को हम पर उंडेला गया है। सबसे पहले प्रभु ने क्या किया, पुनरुत्थान के बाद वे हमें आशीर्वाद देते हैं। दूसरे, उन्होंने हमें पश्चाताप और पापों की क्षमा प्रदान की। तीसरे, उन्होंने पवित्र आत्मा को हम पर उंडेला, उन्होंने हम पर पवित्र आत्मा का अभिषेक उंडेला। चौथे, वे हमारे लिए मध्यस्थता करते हैं। पढ़कर देखिए रोमियो को लिखे गए पत्र में अध्याय 8:34, दोषी ठहराने वाला कौन है? मसीह ही है जो मरा, बल्कि जो जी भी उठा है वही परमेश्वर के दाहिने और विराजमान है और हमारे लिए विनती कर रहे हैं। वही है, हालेलुया। उन्होंने केवल हमारे लिए मरण ही नहीं सहा, हमारे लिए वे क्या कर रहे हैं? वे हमारे लिए विनती कर रहे हैं। प्रभु हमारे लिए निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं। क्या हमने नहीं गाया था? हमने गाया था कि मेरा उद्धारकर्ता जीवित है। तीसरी बात, उन्होंने हम पर पवित्र आत्मा उंडेला। चौथी बात, हमारे लिए वे क्या कर रहे हैं? वे हमारे लिए विनती कर रहे हैं। हालेलुया। वे किस बात के लिए विनती कर रहे हैं? योहन रचित सुसमाचार अध्याय 70:21 में लिखा है, वे सब एक हूं और हमें भी कैसे रहना चाहिए, हमें एक दूसरे से अलग नहीं रहना चाहिए, वे सब एक हों जैसे हे पिता आप मुझ में हैं और मैं आप में हूं, वैसे ही वे भी हम में एक हों, ताकि दुनिया ये विश्वास करे कि आपने मुझे भेजा है। मैं प्रार्थना करता हूं कि वे सब हम में एक हों। हालेलुया। उन्होंने क्या प्रार्थना की? कि हम सब एक हों। हालेलुया। हमारे बीच कोई विभाजन नहीं आना चाहिए, हमारे बीच कोई भ्रम नहीं आना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? हमें एकजुट रहना चाहिए। जानते हैं इसका कारण क्या है? प्रभु ने हम सबको एक ही रक्त से उत्पन्न किया है। उस वचन को पढ़कर देखिए, प्रेरितों के काम अध्याय 17:26। क्या आपने देखा कि मानव जाति की सभी जातियों को उन्होंने एक ही रक्त से उत्पन्न किया है? देखिए, हम सबको उन्होंने कैसे उत्पन्न किया है। प्रभु ने हम सबको एक ही रक्त से उत्पन्न किया है। हमें एक दूसरे से प्रेम पूर्वक रहना चाहिए, हर किसी को स्थिर रहना चाहिए। यही उन्होंने प्रार्थना की। हालेलुया। हमारे लिए वो क्या कर रही है? वे पिता के दाहिने और खड़े होकर हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। उन्होंने हमें एक ही रक्त से उत्पन्न किया है। हम ही हैं जिन्होंने जाति के नाम पर खुद को अलग अलग कर लिया है। तुम कौन सी जाति, मैं कौन सी जाति, हमने ही जाति का भेद बनाया। प्रभु ने क्या किया? उन्होंने हम सभी को एक ही रक्त से उत्पन्न किया। हालेलुया। इतना ही नहीं, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 17:15, मैं ये प्रार्थना नहीं करता कि तू उन्हें संसार से उठा ले, बल्कि ये कि तू उन्हें बुराई से बचाए रख। परमेश्वर ने हमारे लिए प्रार्थना की कि वो हमें बुराई से बचाए। हालेलुया। देखिए परमेश्वर कितना प्रेमी है। प्रभु यीशु मसीह जैसा प्रेमी व्यक्ति संसार में कहीं और नहीं मिल सकता। इतने प्रेमी हैं हमारे परमेश्वर। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 17:24, हे पिता जैसे तूने मुझे संसार की उत्पत्ति से पहले प्रेम किया था, वैसे ही तूने जो महिमा मुझे दी है, वे जिन्हें तूने मुझे दिया है वे भी उसे देख सके। इसीलिए मैं चाहता हूं कि जहां मैं हूं वे भी मेरे साथ हों। हालेलुया। ये परमेश्वर ने हमारे लिए कहा है। उन्होंने प्रार्थना की कि जहां मैं हूं वे भी वहां रहे, मेरे साथ, मेरे निकट, मेरे पास। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जीवित होकर उठे और उन्होंने कहा, मैं मर गया था, फिर भी देखो मैं सदा सर्वदा जीवित हूं, हमेशा के लिए, अनंत काल तक। सबसे पहले वे क्या करते हैं जब वे पुनर्जीवित होकर प्रकट होते हैं? वे हमें बुराई से बचाकर आशीर्वाद देते हैं। दूसरे, वे हमें पापों की क्षमा और मन फिराव का वरदान देते हैं। तीसरे, उन्होंने हम पर पवित्र आत्मा उंडेला। चौथे वे हमारे लिए मध्यस्थता करते हैं। हालेलुया। क्या हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे? प्रभु आपको मेरे हृदय में आना चाहिए, हमारे भीतर वास करें, मेरे अंदर निवास करें, आपको मेरे भीतर रहना चाहिए। हम संघर्ष करके प्रार्थना करेंगे, प्रभु निश्चित रूप से हमें आशीर्वाद देंगे। कई साल पहले ही अय्यूब ने भविष्यवाणी की थी कि मेरा उद्धारकर्ता जीवित है और अंतिम दिन वो पृथ्वी पर खड़ा होगा, ये मैं जानता हूँ। इसलिए आज के दिन हमारा उद्धारकर्ता जीवित है। हमने संदेश के माध्यम से सुना कि जीवित होकर उठे यीशु मसीह हमें क्या भलाई देते हैं। अभी भी वही अच्छे चरवाहे की उपस्थिति हमारे हृदय को भर दे। ऐसी प्रार्थना है कि उनकी उपस्थिति हमारे भीतर उतर आए। हम सब प्रभु की ओर देखकर जो वचन हमने सुने हैं उन्हें समर्पित करके प्रार्थना करने जा रहे हैं। यीशु राजा हमारे साथ हैं, वे हमें सामर्थ्य देने आए हैं, वे हमें जीवन देने आए हैं। इस दिन हम सब अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। क्या हम सुनी गई बातों के लिए प्रार्थना करें? यीशु ने क्यों पुनर्जीवित हुए? सबसे पहले वे हमें आशीर्वाद देने के लिए पुनर्जीवित हुए हैं। दूसरा, यीशु पुनर्जीवित होकर हमें क्या देते हैं? वे हमें पापों की क्षमा और मन परिवर्तन देते हैं। वे हमें धर्मी बनाते हैं। हमें धर्मी बनाकर वे क्या करते हैं? वे ना केवल हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं बल्कि स्वर्ग में पिता के राज्य में हमें सूर्य की तरह चमकने योग्य भी बनाते हैं। देखिए ये कितनी बड़ी आशीर्वाद है। तीसरी बात, यीशु जीवित होकर क्या करते हैं? वे हम पर पवित्र आत्मा को उंडेलते हैं। जब पवित्र आत्मा हमारे भीतर आते हैं तो वे हमें सत्य की ओर ले जाते हैं। वे हमें समझाते और प्रबुद्ध करते हैं। वे हमें सब कुछ सिखाते हैं। इसलिए पुनर्जीवित मसीह ने अपने शिष्यों पर पवित्र आत्मा को फूंका। उन्होंने कहा, पवित्र आत्मा को प्राप्त करो। आज भी क्या हम ये प्रार्थना करेंगे? हे प्रभु, मुझे आशीर्वाद दो। प्रभु, मुझे मेरी बुराइयों से दूर रखो और मुझे आशीर्वादित करो। क्या हम प्रभु की ओर देखकर ये प्रार्थना कर सकते हैं? मुझे पश्चाताप की आत्मा दो, मुझे धर्मी बनाओ, मेरे सारे पापों को क्षमा करो और अपने लहू से मेरे हृदय को शुद्ध करो। हम कहेंगे, हे परमेश्वर, मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक दो। केवल इतना ही नहीं कि हे आत्मा मेरे भीतर आओ। पुनरुत्थित मसीह हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर प्रार्थना कर रहे हैं कि हम एक हों। वे प्रार्थना करते हैं कि हमारे बीच कोई विभाजन ना हो। वे प्रार्थना करते हैं कि हम बुराई से सुरक्षित रहें। वे प्रार्थना करते हैं कि जहां वे हैं हम भी वहीं हों। क्या हम ऐसी आशीषों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं? क्या हम प्रभु की ओर देखकर प्रार्थना कर सकते हैं? हे प्रभु, मुझे आशीर्वाद दो और बुराई से बचाओ। हे भगवान, मुझे अलग करके आशीर्वाद दो। हे पिता, हमें मन फिराने की आत्मा दो। हे प्रभु, हमारे सारे पापों को क्षमा करो। हे प्रभु, हमें अपनी पवित्र आत्मा दो। प्रभु यीशु मसीह, हमें एकता में रहने के लिए अपनी कृपा दो। आप कहाँ हैं? क्या हम प्रार्थना कर सकते हैं कि जहां आप हैं वहां हम भी रहे और आप हमारी सहायता करें? प्रभु, हम धन्यवाद और सच्चाई के साथ आपकी स्तुति करते हैं। स्वर्ग में विराजमान पवित्र प्रभु, हम आपकी स्तुति और महिमा करते हैं। हे प्रभु, आज के इस दिन भी आपने जो वचन दिए हैं उसके लिए धन्यवाद। मेरा उद्धारकर्ता जीवित है। हे जीवित उद्धारकर्ता, हम आपकी स्तुति करते हैं। चाहे कोई मर जाए या कोई हमें छोड़कर चला जाए, यीशु जीवित है। हे पिता, आप हमें आशीर्वाद दें और हर बुराई से दूर रखें। इसी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, जैसे याकूब ने प्रार्थना की, वैसे ही हमें भी प्रार्थना करनी चाहिए। प्रभु, हमें भी आशीर्वाद दें। आपने कहा है कि प्रभु का आशीर्वाद समृद्धि लाता है। प्रभु, हम सभी को आशीर्वाद दें और हमें पश्चाताप की आत्मा दें। प्रभु, हमें पश्चाताप की आत्मा दें। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे सभी पापों को दया करके क्षमा करें। हे पिता, आपने पवित्र आत्मा को बिना माप के प्राप्त किया था। हमें भी अपनी अभिषेक को बिना माप के प्रदान करें। हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी अभिषेक का संपूर्ण तेल हम पर उंडेला जाए, ताकि हम आपकी अभिषेक को प्राप्त कर सकें। प्रभु, हमें एकता में रहना चाहिए, हमारे बीच में कोई विभाजन या कड़वाहट ना आए, हमें बुराई से बचाए रखा जाए। प्रभु, आप जहां भी हैं, हमें भी वही रहने का वो अनुग्रह दें। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, आपके वचन को सुनकर अपने आप को समर्पित कर रहे हर परिवार के लोगों को आशीर्वाद दें। प्रभु, आप ही हैं जो बहन को सामर्थ्य के साथ उपयोग करते हैं। इसके लिए जैसा कि आपने किया है, हम लाखों बार धन्यवाद देते हैं। जैसे हमने मांगा, वैसे ही आपने हमें हमारे संकटों से दूर किया और हमें आशीर्वाद देने के लिए ही मसीह जीवित होकर उठे। क्या हम सब आज इस दिन प्रार्थना कर सकते हैं? हे प्रभु, हमें हमारे संकटों से दूर कर आशीर्वाद दीजिए। हे परमेश्वर, हमें आत्मिक आशीर्वाद दीजिए, हमें सांसारिक आशीर्वाद दीजिए और हमें सभी भलाइयां दीजिए। स्तुति हो प्रभु, हम कृतज्ञता के साथ आपकी स्तुति करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। स्वामी, इस आनंदमय दिन के लिए हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु, आप मृत देवता नहीं हैं। आपने कहा था, मैं मर गया था, फिर भी देखो, मैं सदा सर्वदा जीवित हूं। ये परमेश्वर हमेशा के लिए अनंत काल तक हमारे परमेश्वर हैं, मृत्यु तक हमें मार्गदर्शन करने वाले। प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं, प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं, हम कृतज्ञता के साथ आपकी महिमा करते हैं। यहाँ उपस्थित सभी सभा के लोगों के लिए जिन्हें हम आमने सामने देख रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं सभी को आशीर्वाद दें और सामर्थ्य प्रदान करें। प्रभु, कृपया शांति दें, आनंद दें। प्रभु, चाहे मेरी कोई भी कमजोरी हो, उसे दूर कर दें, जो भी बंधन है उन्हें तोड़ दें, शैतान के सभी कार्यों को नष्ट कर दें। यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं कि सारी बुरी शक्तियां समाप्त हो जाएं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोगों को आशीर्वाद दें और उन्हें ऊंचा उठाएं। हे राजा, हम आपकी स्तुति करते हैं, क्योंकि आप हमें बुराई से दूर रखकर आशीर्वाद देने में सामर्थ्य हैं। प्रभु, आपकी कृपा हमें सशक्त बनाए रखे। हे पिता, किसी भी परिवार पर कोई जादू या टोना असर न करे। यीशु मसीह के नाम से हम सभी बुरी शक्तियों को नष्ट और दूर करते हैं। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने और शत्रु की सारी शक्ति पर अधिकार दिया है, और कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचाएगा, ऐसा आपने कहा था। प्रभु, हम शैतान के सभी कार्यों को नासरी यीशु मसीह के नाम में डांटते, बांधते और दूर करते हैं। प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं। चाहे कोई भी बीमारी हो, आप चंगा करते हैं, चाहे कोई भी रोग हो, आप चंगा करते हैं, चाहे कोई भी कमजोरी हो, आप उसे दूर करते हैं। हे परमेश्वर, आप जादू टोने की सारी बंधनों को तोड़ते हैं, शैतान के कार्यों को नष्ट कर देते हैं। हे राजा, जो लोग बेरोजगार हैं, उन्हें नौकरी दीजिए, जिनका विवाह नहीं हुआ है, उनका विवाह संपन्न हो, जिनके पास संतान का सुख नहीं है, उन्हें संतान का आशीर्वाद दीजिए। हे परमेश्वर, जिनके जीवन में शांति नहीं है, उन्हें शांति दीजिए। जो लोग कर्ज की समस्या, आंसू और पीड़ा में हैं, उन्हें मुक्ति दीजिए। हे पिता, प्रभु, जो परिवार शराब पीते हैं, उन्हें मुक्ति दीजिए। हे पिता, जो परिवार व्यवसाय कर रहे हैं, उन्हें आशीर्वाद दीजिए। जो परिवार व्यापार कर रहे हैं, उन्हें भी आशीर्वाद दीजिए। हे प्रभु, जो लोग केश में हैं, उन्हें विजय प्रदान करें। बिछड़े हुए परिवारों को फिर से एक करें। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, वे ज्ञान, भक्ति, शिक्षा, बुद्धि और क्षमता में उत्कृष्ट बने और चमके। हे प्रभु, सभी बच्चों को स्तुति करने वाले और प्रार्थना करने वाले बच्चों में बदल दें। प्रभु, हमारे छोटे बच्चों पर प्रार्थना की आत्मा उंडेलने वाले परमेश्वर हैं। सभी बच्चों को प्रार्थना करनी चाहिए, स्तुति करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए, प्रभु की कृपा को धारण करना चाहिए। हम प्रार्थना करते हैं कि छोटे बच्चों को आशीर्वाद दें। हे प्रभु, महान कार्य करने वाले प्रभु, चाहे मुझ में कोई भी कमजोरी हो, चंगा करने वाले राजा, दया करे, दया करे, दया करे हर एक कमजोर व्यक्ति पर, और परमेश्वर की सामर्थ उन पर दया करे। हे प्रभु, चंगा करे, चमत्कार करे, अद्भुत कार्य करे। हे राजा, हम आपकी स्तुति करते हैं, हर एक के जीवन में, उनके हृदय में और बाहर अद्भुत कार्य करे। हे प्रभु, मुझे विश्वास है कि आप हर एक की आवश्यकता को जानते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हर एक की आवश्यकता को पूरा करें। हे पिता, जिनके पास घर नहीं है उन्हें घर दें। जो लोग घर बनाते समय बीच में हैं उन्हें घर पूरा करने के लिए अनुग्रह दें। हे प्रभु, हम आपके नाम की महिमा के लिए आपके चरणों में गिरकर विनती करते हैं, जो परमेश्वर सोचने और मांगने से भी बढ़कर कार्य करते हैं। हे प्रभु, आपको धन्यवाद। आपके बच्चे जो कुछ भी प्रार्थना करते हैं वो प्रभु के सामने हर्ष का कारण बने। आपने कहा था कि मैं तुम्हारे हृदय की इच्छाओं को तुम्हें प्रदान करूंगा। हम प्रार्थना करते हैं कि हर किसी की आवश्यकताओं को आप पूरी करें। प्रभु की आशीर्वाद देने वाली और ऊंचा उठाने वाली कृपा, प्रभु की प्रसन्नता, प्रभु की महिमा हर एक पर शासन करे। हे प्रभु, हम सारी स्तुति, आदर, महिमा और महानता आपको ही अर्पित करते हैं, जो जिम्मेदारी लेकर हमारी रक्षा करते हैं। हम ये सब कुछ हमारे प्रिय उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में विनम्रता से मांगते हैं। हे परमपिता, आमीन।
1: इंगलिन एसरिन करम मादांद्र इदलानदे तमिल आंगलम हिंदी मलयालम तेलुगु आगे आर मुलिगलिन कर्तरी कृपयाल वेलिवरिकिंचदु इपत्रिके वेंडोर एंगलद मुगवरी तड़ुबु कोल्लला
2: एंगल मुगवरी एसरिन करम 12 கீழ் 80 அம்பேத்கர் நகர் டார்லிங்டன் பிரிட்ஜ் குன்னூர் 643-101 நீலகிரி மாவட்டம் தென்னிந்தியா. எங்கள் தொலைபேசி எண்கள் 944-30-780-19 மற்றும் 75-98-11-2435. இன் இங்கிலீஷ் ஹேண்ட் ஆஃப் ஜீசஸ் மினிஸ்ட்ரீஸ் 12/80 அம்பேத்கர் நகர் டார்லிங்டன் பிரிட்ஜ் கோனூர் 643-101 நீலகிரி சவுத் இந்தியா. செல்போன் நம்பர்ஸ் 944-30-780-19 and 7598-112435. Our email address aslinkaram@gmail.com. Our website handofjesus.in. God bless you.

0: मसीह में प्रिय, हम आपको हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर बड़े प्रेम से नमस्कार करते हैं। इस दुनिया में आपके पास चाहे कितने भी बड़े घर, संपत्ति और जमीन क्यों ना हो, जब आप इस दुनिया से जाएंगे तो आप इसे अपने साथ नहीं ले जा सकेंगे।
1: इसीलिए प्रेरित पौलुस ने कहा, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है
0: और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने ही बात जो रहे हैं। हमारा निवास स्थान इस संसार का नहीं है, हमारा घर स्वर्ग में है। हमें उस गौरवशाली स्थान पर जाने के लिए तैयार रहना चाहिए।
1: क्या आप जानते हैं कि एक मानव दिवस कैसा होता है? क्योंकि हम तो कल ही के हैं और कुछ नहीं जानते, और पृथ्वी पर हमारे दिन छाया की नाई बीतते जाते हैं।
0: अय्यूब 8:9।
1: इतना ही नहीं, भजनकार कहता है, मेरी आयु ढलती हुई छाया के समान है और मैं आप घास की नाई सूख चला हूँ। भजन संहिता 102:11।
0: प्रेरित याकूब लिखते हैं,
1: और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम तो मानो भाप समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है।
0: याकूब 4:14।
1: इसलिए यह सांसारिक जीवन, इसके खजाने और पृथ्वी स्थाई नहीं है।
0: यीशु ने कहा, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। यूहन्ना 14:3।
1: तो आइए हम उस शानदार शहर, उस शानदार घर में जाने के लिए खुद को प्रतिबद्ध करें।
0: पौलुस लिखता है, और इस संसार के बरतने वाले ऐसे हों कि संसार ही के न हो ले, क्योंकि इस संसार की रीति और व्यवहार बदलते जाते हैं। 1 कुरिन्थियों 7:31।
1: तो फिर उस शानदार शहर तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना होगा? क्या हम थोड़ा ध्यान करें?
0: पहले धर्म ग्रंथ कहता है,
1: पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं, इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता, सो उसने उनके लिए एक नदर तैयार किया है।
0: इब्रानियों 11:16।
1: प्रभु उन लोगों के लिए एक शहर तैयार कर रहे हैं जो शानदार स्वर्गीय भूमि की इच्छा रखते हैं। अगर हम खुद इसकी इच्छा नहीं रखते तो वह हमें यह कैसे देगा? इसलिए स्वर्गीय देश से, उस सनातन नगर से प्रेम रखो। वहां जाने के लिए प्रार्थना करें, तभी प्रभु तुम्हें वह नगर देगा।
0: इसीलिए प्रेरित पौलुस कहता है,
1: सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है।
0: पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ।
1: कुलुसियों 3:1-2। हमें स्वर्ग की चाहत और अभिलाषा की आवश्यकता है।
0: इसीलिए यीशु ने कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य पर जोर होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं।
1: मत्ती 11:12। इसलिए सबसे पहले हमें स्वर्गीय नगर में जाने की इच्छा रखनी चाहिए।
0: प्रेरित पौलुस कहता है,
1: इसलिए हम धाड़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं।
0: 2 कुरिन्थियों 5:8।
1: मसीह में परमेश्वर के प्रिय बच्चों, आपकी प्राथमिकता क्या है?
0: प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम वहां आए।
1: यीशु ने पिता से कहा, हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हों, कि वे मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा।
0: यूहन्ना 17:24।
1: यदि हमारी इच्छा हो तो हम निश्चित रूप से उस शहर में प्रवेश कर सकते हैं।
0: दाऊद कहते हैं, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा।
1: भजन संहिता 23:6।
0: क्या हम भी परमेश्वर के नगर की लालसा करें?
1: दूसरा, पवित्र बाइबल कहती है, क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थिर रहने वाला नगर नहीं, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं।
0: इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाया करें।
1: इब्रानियों 13:14-15।
0: इस दुनिया में हमारा कोई स्थायी शहर नहीं है, हम आने वाले इस राज्य की खोज में हैं।
1: इसलिए बाइबल हमें साफ साफ बताती है कि हमें क्या करना चाहिए।
0: इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान
1: अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाया करें। इब्रानियों 13:15। यदि हम परमेश्वर के नगर में जाना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद करना चाहिए। जिस शहर में हम रहेंगे वह प्रशंसा का शहर है। यदि आप वहां जाना चाहते हैं तो आपको ईश्वर की स्तुति करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। भजनकार कहता है, क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। भजन संहिता 84:4। यदि आप और मैं स्वर्गीय घर में रहना चाहते हैं, हमें ऐसे लोग बनना चाहिए जो परमेश्वर की स्तुति करें। पवित्र बाइबल कहती है, इसके बाद मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना कि हल्लेलुया, उद्धार और महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर ही की है। प्रकाशित वाक्य 19:1। पवित्र बाइबल कहती है, फिर दूसरी बार उन्होंने हल्लेलुया कहा और उसके जलने का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा, और 2400 प्राचीनों और चारों प्राणियों ने गिरकर परमेश्वर को दंडवत किया जो सिंहासन पर बैठा था और कहा, आमीन, हल्लेलुया। प्रकाशित वाक्य 19:3-4। बाइबल हमें एक आदर्श दिखाती है कि हमें कैसे प्रशंसा करनी चाहिए। इतना ही नहीं, और सिंहासन में से एक शब्द निकला कि हे हमारे परमेश्वर से सब डरने वाले दासों, क्या छोटे क्या बड़े, तुम सब उसकी स्तुति करो। प्रकाशित वाक्य 19:5। क्या आप देखते हैं कि परमेश्वर की स्तुति करना कितना महत्वपूर्ण है? हमें प्रभु की स्तुति कैसे करनी चाहिए? पवित्र बाइबल कहती है, और जब तुम यहोवा के लिए धन्यवाद का मेलबलि चढ़ाओ तो उसे इसी प्रकार से करना जिससे वह ग्रहण योग्य ठहरे। इसलिए स्वर्ग प्रशंसा का शहर है। यदि आप वहां जाना चाहते हैं तो आपको ईश्वर की स्तुति करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। पवित्र बाइबल कहती है, और चारों प्राणियों ने आमीन कहा और प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया। तीसरा, प्रेरित याकूब लिखते हैं, हे मेरे प्रिय भाइयों सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हों जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं? याकूब 2:5। इसके बाद हमें उससे प्रेम करना चाहिए। परमेश्वर स्वर्ग में जाने का विशेषाधिकार केवल उन्हीं को देता है जो उससे प्रेम करते हैं। तो क्या हम प्रभु से प्रेम करें? हमें प्रभु से कैसे प्रेम करना चाहिए? यीशु ने कहा, उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। मत्ती 22:37। प्रभु चाहता है कि हम उससे पूरी तरह प्रेम करें। उससे प्रेम करने का क्या अर्थ है? यीशु ने कहा। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। यूहन्ना 14:23। प्रभु से प्रेम करना उनके वचन का पालन करना है। यदि हम उसका वचन मानना चाहते हैं तो हमें उसका वचन अधिक पढ़ना होगा और उसे जानना होगा। हम में से बहुत से लोग बाइबल नहीं पढ़ते, तो फिर हम प्रभु के वचन को कैसे जानें? इसलिए प्रभु के वचन को अधिक बार पढ़ें, प्रभु के वचन पर अधिक मनन करें। इसका ध्यान रखना, प्रभु से प्रेम करने का यही अर्थ है। जब हम प्रभु से पूर्णतः प्रेम करेंगे तो परमेश्वर हमें अपना राज्य देगा। उसने अपना राज्य केवल उन लोगों को देने का वादा किया है जो उससे प्रेम करते हैं। चौथा, प्रभु यीशु ने कहा, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। मत्ती 5:10। क्या आपने इस बात पर गौर किया है कि हमारे अपने लिए कष्ट उठाने की बात नहीं है? उसके वचन के कारण, धार्मिकता के कारण जब हम सताए जाते हैं और कष्ट उठाते हैं तो हम धन्य लोगों में बदल जाते हैं। उसका राज्य भी हमारा हो जाता है। क्लेश निश्चित रूप से मसीही जीवन का एक हिस्सा है। प्रेरित पौलुस यही कहता है कि कोई इन क्लेशों के कारण डगमगा ना जाए, क्योंकि तुम आप जानते हो कि हम इन्हीं के लिए ठहराए गए हैं। क्योंकि पहले भी जब हम तुम्हारे यहाँ थे तो तुमसे कहा करते थे कि हमें क्लेश उठाने पड़ेंगे, और ऐसा ही हुआ है, और तुम जानते भी हो। 1 थिस्सलुनीकियों 3:3-4। इसलिए हमें कभी भी कठिनाइयों का सामना करके हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। उनका सामना करने में संकोच न करें। ईश ने कहा, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझमें शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। यूहन्ना 16:33। इसलिए हमें दुख तकलीफों से निराश नहीं होना चाहिए। स्वर्ग का राज्य तभी हमारा होगा जब हम धार्मिकता के लिए कष्ट उठाएंगे। इसीलिए पौलुस लिखते हैं, और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। प्रेरितों के काम 14:22।
2: क्लेश स्वर्गीय नगर में जाएंगे सीढ़ियां।
1: इसलिए कठिनाइयों से निराश मत होइए। हमारा जीवन इस संसार के साथ खत्म नहीं होता। हमारे पास एक शानदार शहर है। उस गौरवशाली शहर में जाना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमें उस गौरवशाली राष्ट्र को कभी नहीं खोना चाहिए। इसलिए इस संसार पर भरोसा करके धोखा मत खाओ। प्रभु आपको अपना राज्य प्राप्त करने के लिए तैयार करें। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। हम सभी ने इस पर चिंतन किया। ईश्वर स्वयं आपको आशीर्वाद दे और आपको ऐसे महान आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन।
3: करम तमिल आंगलम हिंदी मलयालम तेलुगु आगे 6 मोड़ी कर्तन कृपया इपत्रिकोर
4: मुगवरी करम 12 கீழ் 80 அம்பேத்கர் நகர் டார்லிங்டன் பிரிட்ஜ் குன்னூர் 6431-101 நீலகிரி மாவட்டம் தென்னிந்தியா. எங்கள் தொலைபேசி எண்கள் 9443078019 மற்றும் 7598112435. இன் இங்கிலீஷ் Hand of Jesus Ministries, 12/80, Ambedkar Nagar, Darlington Bridge, Konur, 643101, Nilgiri, South India. Cell phone numbers 944-30-780-19 and 7598-112435. Our email address aslinkaram@gmail.com. Our website handofjesus.in. God bless you.
5: हजार स्तुति। हे अब्बा, हे पिता, आपकी स्तुति हो। प्रेमी पिता, आपकी स्तुति हो। अनंतकाल का पिता, आपकी स्तुति हो। स्वर्गीय पिता, आपकी स्तुति हो। आत्माओं के पिता, आपकी स्तुति हो। ज्योतियों के पिता, आपकी स्तुति हो। दया का पिता, आपकी स्तुति हो। महिमा का पिता, आपकी स्तुति हो। पिता जिसने मुझे मोल लिया है, आपकी स्तुति हो। पिता जिसने मुझे बनाया है, आपकी स्तुति हो। पिता जिसने मुझे स्थिर किया है, आपकी स्तुति हो। मेरा पिता, आपकी स्तुति हो। हम सबों का एक ही पिता, आपकी स्तुति हो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता, आपकी स्तुति हो। धार्मिक पिता, आपकी स्तुति हो। पिता मुक्त में है, आपकी स्तुति हो। धर्म के पिता, आपकी स्तुति हो। इज़राइल के पिता, आपकी स्तुति हो। जीवित पिता, आपकी स्तुति हो। पिता को यह पसंद आया है कि वह तुम्हें राज्य दे, इसलिए आपकी स्तुति हो। परम प्रधान परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। महान परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। ईश्वरों का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। जीवित परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। प्रेमी परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। प्रेम और शांति का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। अनादि परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। सब प्रकार की शांति के परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। धीरज और शांति देने वाले परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। तेजोमय परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। करुणामय परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। परमेश्वर जिसने अपने अनुग्रह से मुझे बुलाया है, आपकी स्तुति हो। अब्राहम का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। ईसा का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। याकोब का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। यशुरून का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। इज़राइल का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। एलिया का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। दाऊद का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। दानियेल का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। शाद्रक, मेशाक और अबेदनगो के परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। परमेश्वर पिता, आपकी स्तुति हो। हमारे पितरों का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। मेरे पूर्वजों के परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। घाटी का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। पहाड़ों का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। सारी पृथ्वी का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। सबके ऊपर युगानुयुग परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। पृथ्वी के सब राज्यों के परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी के परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। याकूब पर वर्णो पृथ्वी की छोर तक प्रभुता करने वाला परमेश्वर आपकी स्तुति हो। आश्चर्य कर्म का परमेश्वर आपकी स्तुति हो। पराक्रमी परमेश्वर आपकी स्तुति हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी स्तुति हो। समुद्र के गर्भ को तोड़ने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। सच्चे परमेश्वर आपकी स्तुति हो। सुच अद्वैत सच्चे परमेश्वर आपकी स्तुति हो। एक ही परमेश्वर पिता आपकी स्तुति हो। अद्वैत परमेश्वर आपकी स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर आपकी स्तुति हो। स्वर्ग के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। पवित्र परमेश्वर आपकी स्तुति हो। सच्चे परमेश्वर आपकी स्तुति हो। कतन के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। वाचा के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। आशा के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। दयालु परमेश्वर आपकी स्तुति हो। दयालु में धनी परमेश्वर आपकी स्तुति हो। धर्ममय परमेश्वर आपकी स्तुति हो। हे अन्याय के प्रति प्रतिशोध के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। आप सच्चा ईश्वर जिसमें कुटिलता नहीं है आपकी स्तुति हो। सेनाओं के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। मेरे परमेश्वर आपकी स्तुति हो। परमेश्वर जिसमें मेरी उत्पत्ति हुई आपकी स्तुति हो। मेरा देखने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। दर्शन देने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। सब प्राणियों की आत्माओं के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। सदा धन्य परमेश्वर आपकी स्तुति हो। अनंत काल के लिए जीवित परमेश्वर आपकी स्तुति हो। सदा राज्य करने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। सब ईश्वरों का ईश्वर आपकी स्तुति हो। वेदों को खोलने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। हे मेरे परमेश्वर, हे राजा, आपकी स्तुति हो। बड़ा परमेश्वर आपकी स्तुति हो। धन के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। हमारी सारे आवश्यकताओं को पूरा करने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। सब कुछ बढ़ाने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। विजय प्रदान करने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। शांति का परमेश्वर आपकी स्तुति हो। अधर्मी से क्रोध करने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। जलन रखने वाला परमेश्वर आपकी स्तुति हो। क्षमा करने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। अद्भुत काम करने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। सब कुछ करने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। उदार करने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर आपकी स्तुति हो। मेरे सुख की चमक के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। मेरे अति आनंद के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। परम धन्य परमेश्वर आपकी स्तुति हो।

क्या आप लोग तैयार हैं नाचने के लिए? यदि आप तैयार हैं तो आप आगे आ सकते हैं। यदि आप अपने आप को जवान मानते हैं तो आगे आके नाचते हुए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। अपने दोनों हाथ को उठाकर बोलो यीशु मसीह की। अपने स्थान में आप खड़े हो सकते हैं। हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे।

चाहे आपके माँ आपको भूल जाए, चाहे आपके दोस्त आपको भूल जाए, मैं परमेश्वर आपको कभी नहीं भूलेगा, वह आपके साथ हमेशा बना रहेगा। ताली बजा कर उसको महिमा दे प्रियो। आमीन, आमीन। लोग तुझको भूल जाए माँ क्यों ना भूल जाए, वो तुझको ना भूलेगा। दोस्त तुझको भूल जाए रिश्ते क्यों ना भूल जाए, वो तुझको ना भूलेगा। दोस्त तुझको भूल जाए रिश्ते क्यों ना भूल जाए, वो तुझको ना भूलेगा। दोस्त तुझको भूल जाए माँ क्यों ना भूल जाए, वो तुझको ना

खुशखबरी हूँ ताली बजा कर उसके नाम पर महिमा करें, आत्मा सच्चाई के साथ उसकी आराधना करें। यस लॉर्ड, उसने ना सोना मांगा ना चांदी मांगा है, सोना उसने मांगा नहीं, चांदी उसने मांगा नहीं, दिल उसने मांगा मेरा, जाति उसने पूछा नहीं, भाषा उसने पूछा नहीं, मन उसने मांगा मेरा, सोना उसने मांगा नहीं, चांदी उसने मांगा नहीं, दिल उसने मांगा मेरा, जाति उसने पूछा नहीं, भाषा मैंने पूछा नहीं, दिल

मसीह में प्रिय, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं। क्या आपने देखा है कि समय कितनी तेजी से उड़ता है? यह ऐसा था जैसे ये पिछले साल शुरू हुआ हो, ये कितनी जल्दी खत्म हो गया। प्रभु ने दयालुता पूर्वक हमारा नेतृत्व किया है, वो हमारा हाथ पकड़कर हमें इस नए साल में ले आया है। इस नए साल में प्रभु हमारे साथ रहें, वो अपनी आंख के तारे की तरह हमारी रक्षा करेगा। निराश मत होइए, आइए एक नज़र डालते हैं कि इस नए साल में हमें क्या करना है। इस नए वर्ष में प्रभु हम पर दृष्टि डालते हैं और कहते हैं, प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 शब्द 11, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। दुनिया में जो कुछ भी चल रहा है उससे ये स्पष्ट है कि प्रभु का आगमन बहुत निकट है ना? इसलिए हमें सावधान रहना होगा। प्रभु शीघ्र आते हैं, इसलिए प्रभु हमें स्पष्ट रूप से बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 शब्द 11, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। हमारे पास जो कुछ है हमें उसे पकड़कर रखना चाहिए ताकि कोई हमारे मुकुट न ले सके। हमारे मुकुट कौन लेगा? ईश ने कहा, यूहन्ना अध्याय 10 शब्द 10, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। शैतान हमेशा धोखा देने के लिए तैयार रहता है, वो हमारा मुकुट चुराने की कोशिश करेगा, इसलिए प्रभु के बच्चों को सावधान रहना चाहिए। ताज क्या है? इसका मतलब क्या है? अब हम इस पर चिंतन करने जा रहे हैं कि इसकी सुरक्षा कैसे की जाए। पहले देखते हैं ताज का क्या मतलब है। प्रभु कहते हैं, लेवी व्यवस्था अध्याय 21 शब्द 12, क्योंकि वह अपने परमेश्वर के अभिषेक का तेल रूपी मुकुट धारण किए हुए है, मैं यहोवा हूँ। मुकुट पवित्र आत्मा के अभिषेक का प्रतिनिधित्व करता है। प्रेरित पौलुस कहते हैं, 2 कुरिन्थियों अध्याय 1 शब्द 21, और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिसने हमें अभिषेक किया वही परमेश्वर है। प्रभु हमारा अभिषेक करते हैं। क्या होता है जब भगवान का अभिषेक हमारे पास आता है? यूहन्ना लिखते हैं, 1 यूहन्ना अध्याय 2 शब्द 27, और तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। जब प्रभु का अभिषेक हमारे पास आता है तो ये हमें सब कुछ सिखाता है। फिर से प्रेरित यूहन्ना लिखता है, 1 यूहन्ना अध्याय 2 शब्द 20, और तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। जब प्रभु का अभिषेक हम पर आता है तो हमें सब कुछ जानने का सौभाग्य मिलता है। शैतान इस विशेषाधिकार को हमसे छीनने की कोशिश करता है, इसलिए शास्त्र कहते हैं, 1 पत्रस अध्याय 5 शब्द 8, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। इसलिए यहोवा कहता है, अपना मुकुट दृढ़ रखो कि कोई उसे छीन न सके। इसलिए पौलुस लिखते हैं, 2 कुरिन्थियों अध्याय 11 शब्द 3, परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाएं। तो सावधान रहो, शैतान को कभी रास्ता मत दो। इसलिए शास्त्र कहते हैं, इफिसियों अध्याय 4 शब्द 27, और न शैतान को अवसर दो। आइए दूसरी बात देखें। बाइबल कहती है, एस्तेर अध्याय 2 शब्द 17, और राजा ने एस्तेर को और सब स्त्रियों से अधिक प्यार किया, और सब कुवारियों से अधिक उसके अनुग्रह और कृपा की दृष्टि उसी पर हुई, इस कारण उसने उसके सिर पर राजमुकुट रखा और उसको वशती के स्थान पर रानी बनाया।
यीशु हमसे वैसे ही प्रेम करते हैं जैसे राजा क्षयर्ष ने एस्तेर से प्रेम किया था, इसलिए शास्त्र कहते हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 1:6, और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया, उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे, आमीन। यीशु ने हमारे लिए अपना खून बहाया और हमारे सभी पापों को माफ कर दिया और हमें परमपिता परमेश्वर के सामने राजा और रानी बनाया। वो हमें राजा और रानी के रूप में ताज पहनाता है। यह मुकुट क्या दर्शाता है? ताकत का प्रतिनिधित्व करता है। ये किस प्राधिकार का प्रतिनिधित्व करता है? जब फिरौन ने यूसुफ को अधिकारी बनाया तो उसने क्या कहा? उत्पत्ति अध्याय 41:44, फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, फिरौन तो मैं हूँ, और सारे मिस्र देश में कोई भी तेरी आज्ञा के बिना हाथ पांव न हिलाएगा। इसका क्या मतलब है? ताकत को दर्शाता है। इसी तरह यीशु मसीह अपने खून से हमें राजा और रानी बनाते हैं और हमारे सिर पर अधिकार का ताज रखते हैं। हाँ परमेश्वर के बच्चे, यीशु हमें अपना अधिकार देता है। यीशु कहते हैं, लूका अध्याय 10:19, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। आप कितने धन्य हैं। शैतान इस शक्ति को हमसे छीनने का प्रयास करेगा। शैतान हमें पाप करने के लिए प्रलोभित करने का प्रयास करता है, तो सावधान रहो। वस्ती लापरवाह थी, वह ताज हार गई। राजा ने वस्ती को लाने के लिए प्रजा भेजी। एस्तेर अध्याय 1:10-12। परंतु वशती ने कहा कि वह नहीं आएगी। तब राजा क्रोधित हुआ और भीतर ही भीतर क्रोधित हुआ। यीशु राजा हमें कई बार बुलाते हैं। यीशु हमें प्रार्थना करने के लिए बुलाते हैं, हमें अपने सामने अंतराल में खड़े होने के लिए बुलाते हैं, हमें सेवा करने के लिए बुलाते हैं। जब हम उस आह्वान को अनदेखा करते हैं तो राजा यीशु का क्रोध हम पर आता है। रानी वशती का क्या हुआ? एस्तेर अध्याय 1:19, यदि राजा सहमत हो तो उसके सामने से एक शाही आदेश जारी किया जाना चाहिए कि वशती राजा क्षयर्ष के सामने दोबारा न आए, और इसे फौसियों और मेदियों के शाही धर्म में लिखा जाना चाहिए ताकि इसे बदला न जाए, और राजा को उसका राजपद उससे बेहतर किसी व्यक्ति को सौंप देना चाहिए। आपने देखा, अपने अभिमान और अवज्ञा के कारण वशती ने अपनी शाही गरिमा और अधिकार खो दिया। यह उपाधि एस्तेर को दी गई जो उससे बेहतर थी। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, अवज्ञा, घमंड और जिद जैसी चीजों को जगह न दें। सत्ता और राजसी गौरव का ताज मत खोना। तीसरा, आइए देखें, पवित्र पुस्तक कहती है, भजन संहिता अध्याय 65:11, अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट धर दिया है, तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। प्रभु हर साल आशीर्वाद देते हैं और अच्छाई देते हैं। वह साल को अच्छाइयों से सराबोर करता है। अच्छाई एक मुकुट है, आइए हम इस ताज को न खोएं। बाइबल कहती है, भजन संहिता अध्याय 85:12, फिर यहोवा उत्तम पदार्थ देगा और हमारी भूमि अपनी उपज देगी। हमें इन मुकुटों की रक्षा करनी चाहिए, अच्छी चीजों को न चूकें। पवित्र शास्त्र कहता है, सभोपदेशक अध्याय 9:18, परंतु एक पापी बहुत भलाई नाश करता है। यदि हम पाप को जगह देंगे तो हम खराब हो जाएंगे और कई लाभ खो देंगे, तो सावधान रहो। सावधान रहें कि जो लोग पाप कर रहे हैं उनके साथ न मिलें। बाइबल कहती है, नीतिवचन अध्याय 22:24-25, क्रोधी मनुष्य का मित्र न होना और झट क्रोध करने वाले के संग न चलना। कहीं ऐसा न हो कि तू उसकी चाल सीखे और तेरा प्राण फंदे में फंस जाए। गलत लोगों से दोस्ती न करें, उसके कारण हम वह अच्छाई खो देंगे जो हमारे परमेश्वर ने हमें दी है। पाप में फंसे लोगों के लिए प्रार्थना करें। यदि हम उनके साथ जुड़ते हैं तो हम उन लाभों को खो देंगे जो ईश्वर ने हमें दिए हैं। प्रभु ने हमें जो दिया है उसे हम खो देंगे, तो सावधान रहो, अपना ताज रखो। आइए चौथे पर नजर डालें,
शास्त्र कहता है, भजन संहिता अध्याय 103 शब्द 4, वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। इसके बाद ईश्वर की कृपा और दया हमें मुकुट के रूप में दी गई है। हमें उन मुकुटों की रक्षा करनी चाहिए। इसलिए बाइबल चेतावनी देती है, इब्रानियों अध्याय 12 शब्द 15, और ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए, या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। प्रभु का आशीर्वाद खो जाने की संभावना है, इसलिए कड़वाहट को जगह न दें। दूसरों को क्षमा करें, दूसरों से प्यार करो, अनुग्रह मत खोना। पौलुस तीमुथियुस को लिखता है, 2 तीमुथियुस अध्याय 2 शब्द 1, इसलिए ही मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। अनुग्रह से मजबूत होने के बजाय हमें इसे खोना नहीं चाहिए। जब हम ईश्वर की स्तुति करते हैं तो कृपा प्रचुर मात्रा में मिलती है, पौलुस ने कहा, 2 कुरिन्थियों अध्याय 4 शब्द 15, क्योंकि सब वस्तुएं तुम्हारे लिए हैं, ताकि अनुग्रह बहुतों के द्वारा अधिक होकर परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद भी बढ़ाए। जब हम प्रभु की स्तुति करते हैं तो अनुग्रह प्रचुर मात्रा में होता है। इतना ही नहीं, प्रेरित याकूब लिखते हैं, याकूब अध्याय 4 शब्द 6, वो तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण ये लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए हमें उस अनुग्रह को बनाए रखने के लिए सावधान रहना चाहिए जो ईश्वर हमें देता है। प्रभु की कृपा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। पौलुस कहते हैं, 1 कुरिन्थियों अध्याय 15 शब्द 10, परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, और उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वो व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, तो अभी यह मेरी ओर से नहीं हुआ परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। इसके अलावा ये ईश्वर की कृपा है जो हमें जीवित रखती है और कड़ी मेहनत करती है। भविष्यवक्ता यिर्मयाह कहते हैं, विलापगीत अध्याय 3 शब्द 22, हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। इसलिए हमें उस अनुग्रह और दया की रक्षा करनी चाहिए जो हमें मुकुट के रूप में मिली है। आइए 5वें पर नजर डालें। सेंट पौलुस ने थिसलुनीके के लोगों से कहा, 1 थिसलुनीकियों अध्याय 2 शब्द 19-20, भला हमारी आशा या आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु के सम्मुख उसके आने के समय तुम ही न होगे? हमारी बड़ाई और आनंद तुम ही हो। मुकुट उन आत्माओं का प्रतिनिधित्व करता है जो प्रभु हमें मंत्रालय में देते हैं। हमें आत्माओं की रक्षा करनी चाहिए। फिर जब प्रेरित पौलुस ने फिलिप्पी के विश्वासियों को लिखा, फिलिप्पियों अध्याय 4 शब्द 1, इसलिए मेरे प्रिय और अभिलाषित भाइयों, मेरे आनंद और मुकुट, इस प्रकार प्रभु में बने रहो। प्रिय ताज चच के लोग हैं जो प्रभु हमें देते हैं। मुकुट उन आत्माओं का प्रतिनिधित्व करता है जो प्रभु हमें मंत्रालय में देते हैं। हमें उन्हें सुरक्षित रखना चाहिए। इन अंतिम दिनों में झूठे मंत्री, झूठे शिक्षक और झूठे भविष्यवक्ता आत्माओं को भटकाने के लिए उठ खड़े होंगे। पवित्र पुस्तक कहती है, 2 तीमुथियुस अध्याय 3 शब्द 6-7, इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और छिछोरे स्त्रियों को वश में कर लेते हैं, जो पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में हैं, और सदा सीखती तो रहती हैं पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। इसलिए हमें लोगों चर्च की रक्षा करने का ध्यान रखना चाहिए जो उस मुकुट की तरह हैं जो प्रभु ने हमें दिया है। आत्माओं को खोना नहीं चाहिए। पौलुस तीमुथियुस को लिखता है, 1 तीमुथियुस

झूठों और झूठी शपथ खाने वालों और इनको छोड़ खरे उद्देश्य के सब विरोधियों के लिए ठहराई गई है। इसलिए हमें अपने हाथ में सौंपे गए मंत्रालय की सावधानी पूर्वक रक्षा करने की जरूरत है। इसलिए प्रभु कहते हैं, यहेजकेल अध्याय 38 शब्द 7, इसलिए तू तैयार हो जा, तू और जितनी भीड़ तेरे पास इकट्ठी हो, तैयार रहना और तू उनका अगुवा बनना। हमें हमारी देखभाल के लिए सौंपी गई आत्माओं के लिए जमानत बनना चाहिए, उनकी रक्षा की जानी चाहिए। प्रभु यही चाहते हैं। इन समयों में कुछ मंत्री लापरवाह होते हैं और उस चर्च को खो देते हैं जो प्रभु ने उन्हें सौंपा है। वे अपना मंत्रालय खो रहे हैं और हमें जो मंत्रालय सौंपा गया है उससे सावधान रहना चाहिए। पौलुस आर्चिपोस को लिखता है, कुलुसियों अध्याय 4 शब्द 17, फिर अखिप्पुस से कहना कि जो सेवा प्रभु में तुझे सौंपी गई है उसे सावधानी के साथ पूरी करना। हमें जो काम सौंपा गया है उसे सावधानी से करना चाहिए। हमें उन लोगों का भी ख्याल रखना होगा जो हमें दिए गए हैं। कुलुसियों अध्याय 1 शब्द 9, पौलुस ने उन लोगों के लिए बिना रुके प्रार्थना की जिन्हें उसे सौंपा गया था। हमें इसी प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। जब हम लापरवाह होंगे तो इस अंत समय में आत्माएं ठोकर खाएंगी। इसलिए पत्रस लिखते हैं, एक पत्रस अध्याय 5 शब्द 1-3, मैं जो प्राचीन है, मैं उनकी नई प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें ये समझाता हूँ कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और ये दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। और जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। हमें आत्माओं के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए। यिर्मयाह कहते हैं, यिर्मयाह अध्याय 10 शब्द 21, क्योंकि चरवाहे पशु सरीखे हैं और वे यहोवा को नहीं पुकारते, इसी कारण वे बुद्धि से नहीं चलते और उनकी सब भेड़ें तितर बितर हो गई हैं। परमेश्वर के सेवक वे होने चाहिए जो परमेश्वर को खोजते हैं। यदि हम ईश्वर को नहीं खोजते तो हम सफल नहीं हो सकते। हमारे लोग तितर बितर हो जाएंगे। तो सावधान रहो, यहोवा उन लोगों की रक्षा करेगा जिन्हें हमारे हाथों में सौंपा गया है। प्रभु कहते हैं, यशाया अध्याय 60 शब्द 3-5, और अन्य जातियां तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। अपनी आंखें चारों ओर उठाकर देख, वे सबके सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं। तेरे पुत्र दूर से आ रहे हैं और तेरी पुत्रियां हाथों हाथ पहुंचाई जा रही हैं। तब तू इसे देखेगी और तेरा मुख चमकेगा, तेरा हृदय थरथराएगा और आनंद से भर जाएगा, क्योंकि समुद्र का सारा धन और अन्य जातियों की धन संपत्ति तुझको मिलेगी। यदि हम उस मंत्रालय में वफादार हैं जो प्रभु ने हमें दिया है, तो परमेश्वर हमें जो आत्माएं दी हैं उनके संरक्षण के कारण प्रभु तट की भीड़ को हमारे पास भेज देंगे। इसलिए प्रभु इस वर्ष हमें बताते हैं, प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 शब्द 11, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। आमीन।

भूल जाए, चाहे आपके दोस्त आपको भूल जाए, वह परमेश्वर आपको कभी नहीं भूलेगा, वह आपके साथ हमेशा बना रहेगा। ताली बजा के उसको महिमा दे प्रियो। आमीन, आमीन। लोग तुझको भूल जाए माँ क्यों ना भूल जाए, वो तुझको ना भूलेगा। दोस्त तुझको भूल जाए, रिश्ते क्यों ना भूल जाए, वो तुझको ना भूलेगा। दोस्त तुझको भूल जाए, रिश्ते क्यों ना भूल जाए, वो तुझको ना भूलेगा। दोस्त तुझको भूल जाए माँ क्यों ना भूल जाए, वो तुझको ना

सच्चाई वाले प्रियम है, ताली बजा कर उसके नाम की महिमा करें, आत्मा सच्चाई के साथ उसकी आराधना करें। यस लॉर्ड, उसने ना सोना मांगा ना चांदी मांगा है, सोना उसने मांगा नहीं, चांदी उसने मांगा नहीं, दिल उसने मांगा मेरा, जाति उसने पूछा नहीं, भाषा उसने पूछा नहीं, मन उसने मांगा।

0: आगे बढ़ो, पीछे मुड़कर मत देखो।
1: स्टेशन गिर रहा है,
2: पीछे मुड़कर मत देखो, स्टेशन गिर रहा है।
3: सभी लोग अभी तुरंत सीढ़ियों से ऊपर जाएं।
4: आगे बढ़ो, पीछे मुड़कर मत देखो,
5: स्टेशन गिर रहा है।

दौड़ना हमारे शरीर के लिए एक बहुत ही बेहतरीन व्यायाम माना जाता है, जो न केवल हमारे हृदय को स्वस्थ रखता है बल्कि हमारी मांसपेशियों को भी मजबूती प्रदान करता है और हमें दिन भर ऊर्जावान बनाए रखने में मदद करता है।

सारा रुको, मैं आ रहा हूं। आप जहां हैं वहीं रहेंगे।

0: चल दर।
1: धमकाना
0: सारा।
1: एलेक्स क्या हो रहा है? पूरी इमारत झंस रही है।
0: जब हेम्पटोड गिर रहा है तब चट्टान भी गिर रही है। हमें इस टावर के गिरने से पहले 10 मिनट में निकलना होगा। अब

0: उन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। इस मंजिल पर अभी भी सैकड़ों लोग हैं।
1: अगर तुम 10,000 टन कंक्रीट के नीचे दब गए तो उन्हें बचा नहीं पाओगे। दौड़ो,

0: देखो पानी चला गया है, सब चला गया है।
1: ये एक ब्रॉकेट है, लहर आ रही है। रुको,
2: ये टूट रहा है क्या?
3: ट्रांसपोर्ट छत पर क्यों नहीं है? अगर मैं मर गया तो तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा।
4: चुप रहो, मूवर शेयरिंग। इमारत कट रही है। आखिरी बचे हुए इंसान बनने के नाम मैंने कहा था निवेश काम आएगा।
5: क्या तुमने वो महसूस किया

0: आखिरी बचे हुए इंसान बनने के नाम। मैंने कहा था निवेश काम आएगा।
1: क्या तुमने वो महसूस किया?
2: हमें तो ग्रेनाइट के 400 फीट नीचे होना चाहिए था।

0: ये चला गया। एलेक्स न्यूयॉर्क अब बस खत्म हो गया है।
1: पीछे मत देखो, हमें पश्चिम की ओर बढ़ते रहना होगा। पानी अभी रुका नहीं है।

0: हमारे पास एक सिग्नल है।
1: ये बहुत तेजी से फैल रहा है। कृपया मुझे वो सैटेलाइट फीड्स तुरंत ऑनलाइन चाहिए। आंदोलन को ट्रैक करो और पुष्टि करो कि पानी किस दिशा में जा रहा है।
2: मास मीडिया की प्लेटें खिसक रही हैं।
3: प्लेटें खिसक रही हैं।
4: गहराई की निगरानी कर रहा हूं।

0: एलेक्स इन्हें देखो,
1: हम जबरदस्ती अपना रास्ता नहीं बना सकते।
2: उन कारों में लोग हैं,
3: अगर हम रुक गए तो लहर हमें बहा ले जाएगी। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। यातायात जाम, पकड़ना।

प्रिवी को बंद करें। मुझे सेकेंडरी मैनिफेस्ट की परवाह नहीं है। अगर वे अभी यहां नहीं है तो वे बोझ मात्र हैं।

0: नमस्कार, मेरा नाम है
1: मैं एक हूँ मैं एक हूँ मैं एक हूँ मैं एक हूँ मैं एक हूँ मैं एक हूँ

सिखाऊंगी कि कैसे सुंदर और बनाने में आसान, बनाने में आसान, बनाने में आसान, बनाने में आसान, बनाने में आसान, बनाने में आसान, बनाने में आसान, बनाने में आसान, बनाने में आसान।

0: नमस्ते टेल, धन्यवाद। 1-2.5 अभियान याद है, कैटलिस्ट से खुशी हुई।
1: टीम ये दिलचस्प है, इंटरमीडिया क्रिएशन और प्रॉम्प्ट आधारित काम मेरे सिनेमैटिक एआई कंटेंट के लिए सटीक रहेगा। यूट्यूब और 4,500 में शामिल है लोग।

हमें बड़े पैमाने पर हिंसा बढ़ने की पुष्ट रिपोर्टें मिल रही हैं। सिग्नल, ये प्रतियोगिता से बाहर हो रहा है। यदि आप मुझे पसंद करते हैं तो आपको क्षेत्र और प्रासंगिकता की समस्या का सामना करना पड़ता है। हे भगवान।

0: इलेक्स हीटर से ठंडी हवा आ रही है। मैं नहीं कर सकता, मुझे अपने हाथों में कोई संवेदना नहीं है।
1: दबाव, वह चला गया।
2: वातावरण में रिसाव हो रहा है,

0: जगह में 101.3 एफए एक सिग्नल खराब हो रहा है। जल्दी करो, हमें उस पेट्रोल की जरूरत है।
1: ट्रंक की जांच करें, जल्दी करो।
0: मदद करो, हमें अंदर आने दो, दरवाजे से दूर रहो, मैं इसे खोल नहीं सकता।
1: एलेक्स, बस जाओ जाओ,

0: वो क्या था? ऐसा लगा जैसे पूरा पहाड़ ही उछल गया।
1: प्लेट, ये अभी भी फिसल रही है।
2: ये मेंटल की धड़कन है। हमें अगले झटके से पहले चलते रहना होगा।

ये भूकंप नहीं है, ये बस जम रहा है। पूरी प्लेट अपना नया ठिकाना ढूंढ रही है। ये हो रहा है सारा।

आपातकालीन सेवाएं रिवर कीक और स्टेबल के साथ बड़े व्यवधान की रिपोर्ट कर रही हैं। तटीय निगरानी स्टेशन असामान्य समुद्री हलचल की रिपोर्ट कर रहे हैं। सिग्नल बार बार गायब हो रहे हैं। हर जगह कुछ न कुछ हो रहा है।

0: इन्हें अंदर ले जाओ, इन्हें मेडिकल टेंट के अंदर ले जाओ, अभी के अभी। चलते रहो, उन्हें अंदर ले आओ।
1: और मुझे डीसी से आने वाले आदेशों की परवाह नहीं है। डीसी पानी के नीचे है। हम आखिरी मछली के मिलने तक इस पहाड़ी पर डटे रहेंगे। उन लाइट्स को और ऊपर करो।
0: इधर आओ, चलते रहो, तुम लगभग पहुंच ही गए हो। मजबूती से पकड़ कर रखिए, लाइन को पूरी तरह से स्थिर कर दीजिए और उस फ्लैप को सावधानी से बंद कर दें। हमारी शारीरिक शक्ति बहुत तेजी से कम हो रही है और हम धीरे धीरे अपनी पूरी तापीय ऊर्जा को इस ठंडे वातावरण में खोते जा रहे हैं।

0: हवा वह चली गई है।
1: हम नीचे हैं, हम दब गए हैं सारा। क्या आपको सच में लगता है कि यह सच है?

0: ध्रुव 40 डिग्री शिफ्ट हो गया है। हम संरक्षित हैं अर्जमिज, वे सतह के नीचे हैं, वे और भी आर्कटिक की तरह हैं।
1: वे कह रहे हैं कि उत्तरी ध्रुव 40 डिग्री खिसक गया है, ग्रह पलट गया है।

मैं अब भी मॉनिटर्स की आवाज सुन सकता हूँ। एलेक्स ट्रायर्स वार्ड में मैं बीपिंग की आवाज और फिर कांच की आवाज सुन सकता हूँ।

0: सुनो, हवा रुक गई है, बर्फ अब दरवाजे तक पूरी तरह से आ गई है,
1: हम इसके नीचे दब गए हैं

0: सिलेक्स। धूल बहुत घनी है,
1: हम सांस ले रहे हैं
2: पहाड़ की।

संरचनात्मक अखंडता शून्य। मैनहट्टन में

0: अरे रुको, पेड़ों को मजबूती से पकड़ लो। मैं नहीं कर सकता,
1: मैं हवा को फिल्टर नहीं कर सकता।
0: ये सांस लेने जैसा है।
1: कांच,
0: पकड़ना।

0: सारा पुरानी दुनिया बर्फ के नीचे दबी हुई है,
1: लेकिन हम अभी भी यहीं हैं।
2: वह चला गया।
3: हमें फिर से शुरू करना होगा,
1: हमें फिर से निर्माण करना होगा।

प्रभु सभी सत्य की ओर मार्गदर्शन करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रभु क्या करेंगे, वे हमें सिखाएंगे, और अगर हम उनकी कही बातों को भूल जाएं, तो वे हमें याद दिलाएंगे। यदि पवित्र आत्मा हमारे भीतर है तो किसी और को हमें सिखाने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। इसी कारण पवित्र आत्मा को हम पर उंडेला गया है। सबसे पहले प्रभु ने क्या किया, पुनरुत्थान के बाद वह हमें आशीर्वाद देते हैं। दूसरे, उन्होंने हमें पश्चाताप और पापों की क्षमा प्रदान की। तीसरे, उन्होंने पवित्र आत्मा को हम पर उंडेला, उन्होंने हम पर पवित्र आत्मा का अभिषेक उंडेला। चौथे, वे हमारे लिए मध्यस्थता करते हैं। पढ़कर देखिए रोमियों को लिखे गए पत्र में अध्याय 8:34, दोषी ठहराने वाला कौन है? मसीह ही है जो मरा, बल्कि जो जी भी उठा है वही परमेश्वर के दाहिने और विराजमान है, और हमारे लिए विनती कर रहे हैं। वही हैं। हालेलुया। उन्होंने केवल हमारे लिए मरण ही नहीं सहा, हमारे लिए वे क्या कर रहे हैं? वे हमारे लिए विनती कर रहे हैं। प्रभु हमारे लिए निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं। क्या हमने नहीं गाया था? हमने गाया था कि मेरा उद्धारकर्ता जीवित है। तीसरी बात, उन्होंने हम पर पवित्र आत्मा उंडेला। चौथी बात, हमारे लिए वे क्या कर रहे हैं? वे हमारे लिए विनती कर रहे हैं। हालेलुया। वे किस बात के लिए विनती कर रहे हैं? योहन रचित सुसमाचार अध्याय 70:21 में लिखा है, वे सब एक हूं और हमें भी कैसे रहना चाहिए, हमें एक दूसरे से अलग नहीं रहना चाहिए, वे सब एक हूं जैसे हे पिता आप मुझ में हैं और मैं आप में हूं, वैसे ही वे भी हम में एक हूं, ताकि दुनिया ये विश्वास करे कि आपने मुझे भेजा है। मैं प्रार्थना करता हूं कि वे सब हम में एक हों। हालेलुया। उन्होंने क्या प्रार्थना की? कि हम सब एक हों। हालेलुया। हमारे बीच कोई विभाजन नहीं आना चाहिए, हमारे बीच कोई भ्रम नहीं आना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? हमें एकजुट रहना चाहिए। जानते हैं इसका कारण क्या है? प्रभु ने हम सबको एक ही रक्त से उत्पन्न किया है। उस वचन को पढ़कर देखिए, प्रेरितों के काम अध्याय 17:26। क्या आपने देखा कि मानव जाति की सभी जातियों को उन्होंने एक ही रक्त से उत्पन्न किया है? देखिए, हम सबको उन्होंने कैसे उत्पन्न किया है। प्रभु ने हम सबको एक ही रक्त से उत्पन्न किया है। हमें एक दूसरे से प्रेम पूर्वक रहना चाहिए, हर किसी को स्थिर रहना चाहिए। यही उन्होंने प्रार्थना की। हालेलुया। हमारे लिए वो क्या कर रही है? वे पिता के दाहिने और खड़े होकर हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। उन्होंने हमें एक ही रक्त से उत्पन्न किया है। हम ही हैं जिन्होंने जाति के नाम पर खुद को अलग अलग कर लिया है। तुम कौन सी जाति, मैं कौन सी जाति, हमने ही जाति का भेद बनाया। प्रभु ने क्या किया? उन्होंने हम सभी को एक ही रक्त से उत्पन्न किया। हालेलुया। इतना ही नहीं, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 17:15, मैं ये प्रार्थना नहीं करता कि तू उन्हें संसार से उठा ले, बल्कि ये कि तू उन्हें बुराई से बचाए रख। परमेश्वर ने हमारे लिए प्रार्थना की कि वो हमें बुराई से बचाए। हालेलुया। देखिए परमेश्वर कितना प्रेमी है। प्रभु यीशु मसीह जैसा प्रेमी व्यक्ति संसार में कहीं और नहीं मिल सकता। इतने प्रेमी हैं हमारे परमेश्वर। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 17:24, हे पिता जैसे तूने मुझे संसार की उत्पत्ति से पहले प्रेम किया था, वैसे ही तूने जो महिमा मुझे दी है, वे जिन्हें तूने मुझे दिया है वे भी उसे देख सके। इसीलिए मैं चाहता हूं कि जहां मैं हूं वे भी मेरे साथ हों। हालेलुया। ये परमेश्वर ने हमारे लिए कहा है। उन्होंने प्रार्थना की कि जहां मैं हूं वे भी वहां रहे, मेरे साथ, मेरे निकट, मेरे पास। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जीवित होकर उठे और उन्होंने कहा, मैं मर गया था, फिर भी देखो मैं सदा सर्वदा जीवित हूं, हमेशा के लिए, अनंत काल तक। सबसे पहले वे क्या करते हैं जब वे पुनर्जीवित होकर प्रकट होते हैं? वे हमें बुराई से बचाकर आशीर्वाद देते हैं। दूसरे, वे हमें पापों की क्षमा और मन फिराव का वरदान देते हैं। तीसरे, उन्होंने हम पर पवित्र आत्मा उंडेला।
चौथे वे हमारे लिए मध्यस्थता करते हैं। हालेलुया। क्या हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे? प्रभु आपको मेरे हृदय में आना चाहिए, हमारे भीतर वास करें, मेरे अंदर निवास करें, आपको मेरे भीतर रहना चाहिए। हम संघर्ष करके प्रार्थना करेंगे, प्रभु निश्चित रूप से हमें आशीर्वाद देंगे। कई साल पहले ही अय्यूब ने भविष्यवाणी की थी कि मेरा उद्धारकर्ता जीवित है और अंतिम दिन वो पृथ्वी पर खड़ा होगा, ये मैं जानता हूँ। इसलिए आज के दिन हमारा उद्धारकर्ता जीवित है। हमने संदेश के माध्यम से सुना कि जीवित होकर उठे यीशु मसीह हमें क्या भलाई देते हैं। अभी भी वही अच्छे चरवाहे की उपस्थिति हमारे हृदय को भर दे। ऐसी प्रार्थना है कि उनकी उपस्थिति हमारे भीतर उतर आए। हम सब प्रभु की ओर देखकर जो वचन हमने सुने हैं उन्हें समर्पित करके प्रार्थना करने जा रहे हैं। यीशु राजा हमारे साथ हैं, वे हमें सामर्थ्य देने आए हैं, वे हमें जीवन देने आए हैं। इस दिन हम सब अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। क्या हम सुनी गई बातों के लिए प्रार्थना करें? यीशु ने क्यों पुनर्जीवित हुए? सबसे पहले वे हमें आशीर्वाद देने के लिए पुनर्जीवित हुए हैं। दूसरा, यीशु पुनर्जीवित होकर हमें क्या देते हैं? वे हमें पापों की क्षमा और मन परिवर्तन देते हैं। वे हमें धर्मी बनाते हैं। हमें धर्मी बनाकर वे क्या करते हैं? वे न केवल हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं बल्कि स्वर्ग में पिता के राज्य में हमें सूर्य की तरह चमकने योग्य भी बनाते हैं। देखिए ये कितनी बड़ी आशीर्वाद है। तीसरी बात, यीशु जीवित होकर क्या करते हैं? वे हम पर पवित्र आत्मा को उंडेलते हैं। जब पवित्र आत्मा हमारे भीतर आते हैं तो वे हमें सत्य की ओर ले जाते हैं। वे हमें समझाते और प्रबुद्ध करते हैं। वे हमें सब कुछ सिखाते हैं। इसलिए पुनर्जीवित मसीह ने अपने शिष्यों पर पवित्र आत्मा को फूंका। उन्होंने कहा, पवित्र आत्मा को प्राप्त करो। आज भी क्या हम ये प्रार्थना करेंगे? हे प्रभु, मुझे आशीर्वाद दो। प्रभु, मुझे मेरी बुराइयों से दूर रखो और मुझे आशीर्वादित करो। क्या हम प्रभु की ओर देखकर ये प्रार्थना कर सकते हैं? मुझे पश्चाताप की आत्मा दो, मुझे धर्मी बनाओ, मेरे सारे पापों को क्षमा करो और अपने लहू से मेरे हृदय को शुद्ध करो। हम कहेंगे, हे परमेश्वर, मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक दो। केवल इतना ही नहीं कि हे आत्मा मेरे भीतर आओ। पुनरुत्थित मसीह हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर प्रार्थना कर रहे हैं कि हम एक हों। वे प्रार्थना करते हैं कि हमारे बीच कोई विभाजन ना हो। वे प्रार्थना करते हैं कि हम बुराई से सुरक्षित रहें। वे प्रार्थना करते हैं कि जहां वे हैं हम भी वहीं हों। क्या हम ऐसी आशीषों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं? क्या हम प्रभु की ओर देखकर प्रार्थना कर सकते हैं? हे प्रभु, मुझे आशीर्वाद दो और बुराई से बचाओ। हे भगवान, मुझे अलग करके आशीर्वाद दो। हे पिता, हमें मन फिराने की आत्मा दो। हे प्रभु, हमारे सारे पापों को क्षमा करो। हे प्रभु, हमें अपनी पवित्र आत्मा दो। प्रभु यीशु मसीह, हमें एकता में रहने के लिए अपनी कृपा दो। आप कहाँ हैं? क्या हम प्रार्थना कर सकते हैं कि जहां आप हैं वहां हम भी रहे और आप हमारी सहायता करें? प्रभु, हम धन्यवाद और सच्चाई के साथ आपकी स्तुति करते हैं। स्वर्ग में विराजमान पवित्र प्रभु, हम आपकी स्तुति और महिमा करते हैं। हे प्रभु, आज के इस दिन भी आपने जो वचन दिए हैं उसके लिए धन्यवाद। मेरा उद्धारकर्ता जीवित है। हे जीवित उद्धारकर्ता, हम आपकी स्तुति करते हैं। चाहे कोई मर जाए या कोई हमें छोड़कर चला जाए, यीशु जीवित है। हे पिता, आप हमें आशीर्वाद दें और हर बुराई से दूर रखें। इसी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, जैसे याकूब ने प्रार्थना की वैसे ही हमें भी प्रार्थना करनी चाहिए। प्रभु, हमें भी आशीर्वाद दें। आपने कहा है कि प्रभु का आशीर्वाद समृद्धि लाता है। प्रभु, हम सभी को आशीर्वाद दें और हमें पश्चाताप की आत्मा दें। प्रभु, हमें पश्चाताप की आत्मा दें। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे सभी पापों को दया करके क्षमा करें। हे पिता, आपने पवित्र आत्मा को बिना माप के प्राप्त किया था।
हमें भी अपनी अभिषेक को बिना माप के प्रदान करें। हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी अभिषेक का संपूर्ण तेल हम पर उंडेला जाए, ताकि हम आपकी अभिषेक को प्राप्त कर सकें। प्रभु, हमें एकता में रहना चाहिए, हमारे बीच में कोई विभाजन या कड़वाहट ना आए, हमें बुराई से बचाए रखा जाए। प्रभु, आप जहां भी हैं, हमें भी वही रहने का वो अनुग्रह दें। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, आपके वचन को सुनकर अपने आप को समर्पित कर रहे हर परिवार के लोगों को आशीर्वाद दें। प्रभु, आप ही हैं जो बहन को सामर्थ्य के साथ उपयोग करते हैं। इसके लिए, जैसा कि आपने किया है, हम लाखों बार धन्यवाद देते हैं। जैसे हमने मांगा, वैसे ही आपने हमें हमारे संकटों से दूर किया और हमें आशीर्वाद देने के लिए ही मसीह जीवित होकर उठे। क्या हम सब आज इस दिन प्रार्थना कर सकते हैं? हे प्रभु, हमें हमारे संकट स्वामी, इस आनंदमय दिन के लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। हम आपकी स्तुति

0: करते हैं, मेरे परमेश्वर। प्रभु, आप मृत देवता नहीं हैं। आपने कहा था मैं मर गया था, फिर भी देखो मैं सदा सर्वदा जीवित हूँ। ये परमेश्वर हमेशा के लिए अनंत काल तक हमारे परमेश्वर हैं, मृत्यु तक हमें मार्गदर्शन करने वाले। प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं। हम कृतज्ञता के साथ आपकी महिमा करते हैं। यहाँ उपस्थित सभी सभा के लोगों के लिए जिन्हें हम आमने सामने देख रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं सभी को आशीर्वाद दें और सामर्थ्य प्रदान करें। प्रभु, कृपया शांति दें, आनंद दें। प्रभु, चाहे मेरी कोई भी कमजोरी हो उसे दूर कर दें, जो भी बंधन है उन्हें तोड़ दें, शैतान के सभी कार्यों को नष्ट कर दें। यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं कि सारी बुरी शक्तियां समाप्त हो जाएं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोगों को आशीर्वाद दें और उन्हें ऊंचा उठाएं। हे राजा, हम आपकी स्तुति करते हैं क्योंकि आप हमें बुराई से दूर रखकर आशीर्वाद देने में सामर्थ्य हैं। प्रभु, आपकी कृपा हमें सशक्त बनाए रखे। हे पिता, किसी भी परिवार पर कोई जादू या टोना असर न करे। यीशु मसीह के नाम से हम सभी बुरी शक्तियों को नष्ट और दूर करते हैं। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने और शत्रु की सारी शक्ति पर अधिकार दिया है और कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचाएगा, ऐसा आपने कहा था। प्रभु, हम शैतान के सभी कार्यों को नासरी यीशु मसीह के नाम में डांटते, बांधते और दूर करते हैं। प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं। चाहे कोई भी बीमारी हो आप चंगा करते हैं, चाहे कोई भी रोग हो आप चंगा करते हैं, चाहे कोई भी कमजोरी हो आप उसे दूर करते हैं। हे परमेश्वर, आप जादू टोने की सारी बंधनों को तोड़ते हैं, शैतान के कार्यों को नष्ट कर देते हैं। हे राजा, जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें नौकरी दीजिए, जिनका विवाह नहीं हुआ है उनका विवाह संपन्न हो, जिनके पास संतान का सुख नहीं है उन्हें संतान का आशीर्वाद दीजिए। हे परमेश्वर, जिनके जीवन में शांति नहीं है उन्हें शांति दीजिए, जो लोग कर्ज की समस्या, आंसू और पीड़ा में हैं उन्हें मुक्ति दीजिए। हे पिता, प्रभु, जो परिवार शराब पीते हैं उन्हें मुक्ति दीजिए। हे पिता, जो परिवार व्यवसाय कर रहे हैं उन्हें आशीर्वाद दीजिए, जो परिवार व्यापार कर रहे हैं उन्हें भी आशीर्वाद दीजिए।
1: हे प्रभु, जो लोग केश में हैं उन्हें विजय प्रदान करें, बिछड़े हुए परिवारों को फिर से एक करें, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वे ज्ञान, भक्ति, शिक्षा, बुद्धि और क्षमता में उत्कृष्ट बने और चमके। हे प्रभु, सभी बच्चों को स्तुति करने वाले और प्रार्थना करने वाले बच्चों में बदल दें। प्रभु, हमारे छोटे बच्चों पर प्रार्थना की आत्मा उंडेलने वाले परमेश्वर हैं। सभी बच्चों को प्रार्थना करनी चाहिए, स्तुति करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए, प्रभु की कृपा को धारण करना चाहिए। हम प्रार्थना करते हैं कि छोटे बच्चों को आशीर्वाद दें। हे प्रभु, महान कार्य करने वाले प्रभु, चाहे मुझ में कोई भी कमजोरी हो, चंगा करने वाले राजा, दया करे, दया करे, दया करे हर एक कमजोर व्यक्ति पर, और परमेश्वर की सामर्थ उन पर दया करे। हे प्रभु, चंगा करे, चमत्कार करे, अद्भुत कार्य करे। हे राजा, हम आपकी स्तुति करते हैं। हर एक के जीवन में, उनके हृदय में और बाहर अद्भुत कार्य करे। हे प्रभु, मुझे विश्वास है कि आप हर एक की आवश्यकता को जानते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हर एक की आवश्यकता को पूरा करें। हे पिता, जिनके पास घर नहीं है उन्हें घर दें, जो लोग घर बनाते समय बीच में हैं उन्हें घर पूरा करने के लिए अनुग्रह दें। हे प्रभु, हम आपके नाम की महिमा के लिए आपके चरणों में गिरकर विनती करते हैं, जो परमेश्वर सोचने और मांगने से भी बढ़कर कार्य करते हैं। हे प्रभु, आपको धन्यवाद। आपके बच्चे जो कुछ भी प्रार्थना करते हैं वो प्रभु के सामने हर्ष का कारण बने। आपने कहा था कि मैं तुम्हारे हृदय की इच्छाओं को तुम्हें प्रदान करूंगा। हम प्रार्थना करते हैं कि हर किसी की आवश्यकताओं को आप पूरी करें। प्रभु की आशीर्वाद देने वाली और ऊंचा उठाने वाली कृपा, प्रभु की प्रसन्नता, प्रभु की महिमा हर एक पर शासन करे। हे प्रभु, हम सारी स्तुति, आदर, महिमा और महानता आपको ही अर्पित करते हैं, जो जिम्मेदारी लेकर हमारी रक्षा करते हैं। हम ये सब कुछ हमारे प्रिय उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में विनम्रता से मांगते हैं। हे परमपिता,
2: தமிழ், ஆங்கிலம், ஹிந்தி, மலையாளம், தெலுங்கு ஆகிய ஆறு மொழிகளில் கர்த்தரின் கிருபையால் வெளிவருகின்றது. இப்பத்திரிகை வேண்டோர் எங்களது முகவரியை தொடர்பு கொள்ளலாம்.
3: எங்கள் முகவரி இயேசுவின் கரம், 12-80 அம்பேத்கர் நகர், டார்லிங்டன் பிரிட்ஜ், குன்னூர், 643-101, நீலகிரி மாவட்டம், தென்னிந்தியா. எங்கள் தொலைபேசி எண்கள் 944-30-780-19 மற்றும் 75-98-11-2435. இன் இங்கிலீஷ், ஹேண்ட் ஆஃப் ஜீசஸ் மினிஸ்ட்ரிஸ், 12-80 அம்பேத்கர் நகர், டார்லிங்டன் பிரிட்ஜ், கூனூர், 643-101, நீலகிரி, சவுத் இந்தியா. செல்போன் நம்பர்ஸ் 9443079 and 7598112435. Our email address is asinkaram@gmail.com. Our website handofjesus.in. God bless you.

0: मसीह में प्रिय, हम आपको हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर बड़े प्रेम से नमस्कार करते हैं। इस दुनिया में आपके पास चाहे कितने भी बड़े घर, संपत्ति और जमीन क्यों ना हो, जब आप इस दुनिया से जाएंगे तो आप इसे अपने साथ नहीं ले जा सकेंगे।
1: इसीलिए प्रेरित पौलुस ने कहा,
0: पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने ही बात जो रहे हैं। हमारा निवास स्थान इस संसार का नहीं है, हमारा घर स्वर्ग में है। हमें उस गौरवशाली स्थान पर जाने के लिए तैयार रहना चाहिए।
1: क्या आप जानते हैं कि एक मानव दिवस कैसा होता है? क्योंकि हम तो कल ही के हैं और कुछ नहीं जानते, और पृथ्वी पर हमारे दिन छाया की नाई बीतते जाते हैं।
0: अय्यूब 8:9।
1: इतना ही नहीं, भजनकार कहता है, मेरी आयु ढलती हुई छाया के समान है और मैं आप घास की नाई सूख चला हूँ। भजन संहिता 102:11।
0: प्रेरित याकूब लिखते हैं,
1: और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा, सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम तो मानो भाप समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है।
0: याकूब 4:14।
1: इसलिए यह सांसारिक जीवन, इसके खजाने और पृथ्वी स्थाई नहीं है।
0: यीशु ने कहा, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। यूहन्ना 14:3।
1: तो आइए हम उस शानदार शहर, उस शानदार घर में जाने के लिए खुद को प्रतिबद्ध करें।
0: पौलुस लिखता है, और इस संसार के बरतने वाले ऐसे हों कि संसार ही के न हो ले, क्योंकि इस संसार की रीति और व्यवहार बदलते जाते हैं। 1 कुरिन्थियों 7:31।
1: तो फिर उस शानदार शहर तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना होगा? क्या हम थोड़ा ध्यान करें?
0: पहले धर्म ग्रंथ कहता है,
1: पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं, इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता, सो उसने उनके लिए एक नदर तैयार किया है। इब्रानियों 11:16।
0: प्रभु उन लोगों के लिए एक शहर तैयार कर रहे हैं जो शानदार स्वर्गीय भूमि की इच्छा रखते हैं। अगर हम खुद इसकी इच्छा नहीं रखते तो वह हमें यह कैसे देगा? इसलिए स्वर्गीय देश से, उस सनातन नगर से प्रेम रखो, वहां जाने के लिए प्रार्थना करें, तभी प्रभु तुम्हें वह नगर देगा।
1: इसीलिए प्रेरित पौलुस कहता है,
0: सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है।
1: पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ।
0: कुलुसियों 3:1-2।
1: हमें स्वर्ग की चाहत और अभिलाषा की आवश्यकता है।
0: इसीलिए यीशु ने कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य पर जोर होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं।
1: मत्ती 11:12। इसलिए सबसे पहले हमें स्वर्गीय नगर में जाने की इच्छा रखनी चाहिए।
0: प्रेरित पौलुस कहता है,
1: इसलिए हम धाड़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं।
0: 2 कुरिन्थियों 5:8।
1: मसीह में परमेश्वर के प्रिय बच्चों, आपकी प्राथमिकता क्या है?
0: प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम वहां आएं।
1: यीशु ने पिता से कहा,
0: हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हों, कि वे मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा।
1: यूहन्ना 17:24।
0: यदि हमारी इच्छा हो तो हम निश्चित रूप से उस शहर में प्रवेश कर सकते हैं।
1: दाऊद कहते हैं, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा।
0: भजन संहिता 23:6।
1: क्या हम भी परमेश्वर के नगर की लालसा करें?
0: दूसरा, पवित्र बाइबल कहती है,
1: क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थिर रहने वाला नगर नहीं, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं।
0: इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाया करें।
1: इब्रानियों 13:14-15।
0: इस दुनिया में हमारा कोई स्थायी शहर नहीं है, हम आने वाले इस राज्य की खोज में हैं।
1: इसलिए बाइबल हमें साफ साफ बताती है कि हमें क्या करना चाहिए।
0: इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाया करें। इब्रानियों 13:15। यदि हम परमेश्वर के नगर में जाना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद करना चाहिए। जिस शहर में हम रहेंगे वह प्रशंसा का शहर है। यदि आप वहां जाना चाहते हैं तो आपको ईश्वर की स्तुति करने वाला व्यक्ति होना चाहिए।
1: भजनकार कहता है, क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। भजन संहिता 84:4। यदि आप और मैं स्वर्गीय घर में रहना चाहते हैं, हमें ऐसे लोग बनना चाहिए जो परमेश्वर की स्तुति करें। पवित्र बाइबल कहती है, इसके बाद मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना कि हल्लेलुया, उद्धार और महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर ही की है। प्रकाशित वाक्य 19:1। पवित्र बाइबल कहती है, फिर दूसरी बार उन्होंने हल्लेलुया कहा और उसके जलने का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा, और 2400 प्राचीनों और चारों प्राणियों ने गिरकर परमेश्वर को दंडवत किया जो सिंहासन पर बैठा था और कहा, आमीन, हल्लेलुया। प्रकाशित वाक्य 19:3-4। बाइबल हमें एक आदर्श दिखाती है कि हमें कैसे प्रशंसा करनी चाहिए। इतना ही नहीं, और सिंहासन में से एक शब्द निकला कि हे हमारे परमेश्वर से सब डरने वाले दासो, क्या छोटे क्या बड़े, तुम सब उसकी स्तुति करो। प्रकाशित वाक्य 19:5। क्या आप देखते हैं कि परमेश्वर की स्तुति करना कितना महत्वपूर्ण है? हमें प्रभु की स्तुति कैसे करनी चाहिए? पवित्र बाइबल कहती है, और जब तुम यहोवा के लिए धन्यवाद का मेलबलि चढ़ाओ तो उसे इसी प्रकार से करना जिससे वह ग्रहण योग्य ठहरे। इसलिए स्वर्ग प्रशंसा का शहर है। यदि आप वहां जाना चाहते हैं तो आपको ईश्वर की स्तुति करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। पवित्र बाइबल कहती है, और चारों प्राणियों ने आमीन कहा और प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया। तीसरा, प्रेरित याकूब लिखते हैं, हे मेरे प्रिय भाइयों सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हों जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं? याकूब 2:5। इसके बाद हमें उससे प्रेम करना चाहिए। परमेश्वर स्वर्ग में जाने का विशेषाधिकार केवल उन्हीं को देता है जो उससे प्रेम करते हैं। तो क्या हम प्रभु से प्रेम करें? हमें प्रभु से कैसे प्रेम करना चाहिए? यीशु ने कहा, उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। मत्ती 22:37। प्रभु चाहता है कि हम उससे पूरी तरह प्रेम करें। उससे प्रेम करने का क्या अर्थ है? यीशु ने कहा, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। यूहन्ना 14:23। प्रभु से प्रेम करना उनके वचन का पालन करना है। यदि हम उसका वचन मानना चाहते हैं तो हमें उसका वचन अधिक पढ़ना होगा और उसे जानना होगा। हम में से बहुत से लोग बाइबल नहीं पढ़ते, तो फिर हम प्रभु के वचन को कैसे जाने? इसलिए प्रभु के वचन को अधिक बार पढ़ें, प्रभु के वचन पर अधिक मनन करें। इसका ध्यान रखना, प्रभु से प्रेम करने का यही अर्थ है। जब हम प्रभु से पूर्णतः प्रेम करेंगे तो परमेश्वर हमें अपना राज्य देगा। उसने अपना राज्य केवल उन लोगों को देने का वादा किया है जो उससे प्रेम करते हैं। चौथा, प्रभु यीशु ने कहा, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। मत्ती 5:10। क्या आपने इस बात पर गौर किया है कि हमारे अपने लिए कष्ट उठाने की बात नहीं है? उसके वचन के कारण, धार्मिकता के कारण, जब हम सताए जाते हैं और कष्ट उठाते हैं तो हम धन्य लोगों में बदल जाते हैं। उसका राज्य भी हमारा हो जाता है। क्लेश निश्चित रूप से मसीही जीवन का एक हिस्सा है। प्रेरित पौलुस यही कहता है कि कोई इन क्लेशों के कारण डगमगा ना जाए, क्योंकि तुम आप जानते हो कि हम इन्हीं के लिए ठहराए गए हैं। क्योंकि पहले भी जब हम तुम्हारे यहाँ थे तो तुमसे कहा करते थे
0: कि हमें क्लेश उठाने पड़ेंगे और ऐसा ही हुआ है और तुम जानते भी हो। 1 थिस्सलुनीकियों 3:3-4। इसलिए हमें कभी भी कठिनाइयों का सामना करके हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, उनका सामना करने में संकोच न करें।
1: ईश ने कहा, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझमें शांति मिले।
0: संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। यूहन्ना 16:33।
1: इसलिए हमें दुख तकलीफों से निराश नहीं होना चाहिए।
0: स्वर्ग का राज्य तभी हमारा होगा जब हम धार्मिकता के लिए कष्ट उठाएंगे।
1: इसीलिए पौलुस लिखते हैं,
0: और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। प्रेरितों के काम 14:22।
2: क्लेश स्वर्गीय नगर में जाएंगे सीढ़ियां।
0: इसलिए कठिनाइयों से निराश मत होइए। हमारा जीवन इस संसार के साथ खत्म नहीं होता।
1: हमारे पास एक शानदार शहर है। उस गौरवशाली शहर में जाना हमारा लक्ष्य होना चाहिए।
0: हमें उस गौरवशाली राष्ट्र को कभी नहीं खोना चाहिए।
1: इसलिए इस संसार पर भरोसा करके धोखा मत खाओ।
0: प्रभु आपको अपना राज्य प्राप्त करने के लिए तैयार करें। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। हम सभी ने इस पर चिंतन किया। ईश्वर स्वयं आपको आशीर्वाद दे और आपको ऐसे महान आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन।
3: எங்களின் ஏசுவின் கரம் மாதாந்திர இதழானது தமிழ், ஆங்கிலம், ஹிந்தி, மலையாளம், தெலுங்கு ஆகிய 6 மொழிகளில் கர்த்தரின் கிருபையால் வெளிவருகின்றது. இப்பத்திரிகை வேண்டோர் எங்களது முகவரியை தொடர்பு கொள்ளலாம்.
4: எங்கள் முகவரி ஏசுவின் கரம், 12-80 அம்பேத்கர் நகர், டார்லிங்டன் பிரிட்ஜ், குன்னூர், 643-101, நீலகிரி மாவட்டம், தென்னிந்தியா. உங்கள் தொலைபேசி எண்கள் 944-30-780-19 மற்றும் 7598-11-2435. In English, Hand of Jesus Ministries, 12/80, அம்பேத்கர் நகர், டார்லிங்டன் பிரிட்ஜ், கூனூர், 643-101, நீலகிரி, South India. Cell phone numbers 944-30-780-19 and 7598-112435. Our email address islinkaram@gmail.com. Our website handofjesus.in. God bless you.

0: आज का वादा। हाँ प्यारे लोगों, मैं आप सभी को मेरी ओर से नवंबर वर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ। सपयाह की पुस्तक अध्याय 3 पद 15। यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया और तेरा शत्रु भी दूर किया गया है। इसराइल का राजा यहोवा तेरे बीच में है, इसलिए तू फिर विपत्ति न भोगेगी। अब आप नुकसान नहीं देखेंगे। चाहे कितने ही लोग काम से बाहर हों, चाहे वे कितनी भी मेहनत कर लें, यहोवा ने कहा था कि वो 2022 में आपके बीच होगा। प्रभु को अपने बीच रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हागाई की पुस्तक अध्याय 2 पद 5। तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय जो वाचा मैंने तुमसे बांधी थी, उसी वाचा के अनुसार मेरा आत्मा तुम्हारे बीच में बना है, इसलिए तुम मत डरो। मिस्र का क्या मतलब है? व्यवस्था विवरण अध्याय 6 श्लोक 12। तब सावधान रहना, कहीं ऐसा न हो कि तू यहोवा को भूल जाए, जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। गुलामी का क्या मतलब है? पाप उन दासता को संदर्भित करता है, इसलिए हमें पाप के बंधन से बाहर आना चाहिए, तब परमेश्वर हमारे बीच रहेगा, कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। क्या हम निश्चित रूप से पाप से बाहर आने के लिए प्रतिबद्ध हैं? क्या हम प्रार्थना करें? स्वर्गीय पवित्र पिता, हम धन्यवाद के साथ आपकी स्तुति करते हैं। पिछले वर्ष के कई खतरों और विपत्तियों के दौरान हमारी रक्षा करने, दृढ़ करने और दृढ़ करने के लिए मेरे परमेश्वर यहोवा का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु इस पूरे वर्ष सभी के साथ रहें। पीछे हटने से बचना चाहिए और सभी चिंताओं, आंसुओं, पीड़ाओं को बदलना चाहिए। हम आपको सारी महिमा देते हैं। हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं।
1: भजन संहिता अध्याय 16 पद की पुस्तक।
0: मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है। हाँ प्यारे लोगों, हमें प्रभु को हर चीज से पहले रखना चाहिए। हमें हर चीज में प्रभु को अपने सामने रखना चाहिए, चाहे वह व्यवसाय हो या परिवार। क्या आपको क्रेडिट की समस्या है? चिंता मत करो, यीशु से प्रार्थना करें। इस कर्ज को चुकाने में मेरी मदद करने के लिए परमेश्वर से पूछो। हे प्रभु, मुझे यह ऋण स्वयं चुका दो और प्रभु के हाथ में पूर्ण समर्पण के साथ प्रार्थना करो कि मैं कुछ नहीं कर सकता। तब प्रभु निश्चय हमें प्रतिफल देगा। वह हमारी दुर्दशा बदल देगा, वह समस्या को बदल देगा और आपके काम, परिवार, व्यवसाय में आपके साथ रहेगा। चिंता मत करो। भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 138 पद 8। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हाँ प्यारे लोगों, जब हम उसे अपने सामने रखेंगे तो यहोवा हमारे लिए सब कुछ करेगा। चाहे कोई भी समस्या हो, अगर हम अपने परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो वह निश्चित रूप से हमारे लिए कुछ भी करेगा। चिंता है कि मेरे पास नौकरी नहीं है। परमेश्वर तुम्हें अच्छी नौकरी देगा, वह तुम्हारे आंसू पोंछेगा और तुम्हें ऊंचा उठाएगा। क्या हम प्रार्थना करें? हमारे स्वर्गीय पवित्र पिता, जो हमें प्यार करते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हम कृतज्ञता पूर्वक आपकी स्तुति करते हैं। धन्यवाद पिताजी। अब हम उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस शो को सुन रहे हैं। सबका भला करो और उन्हें मजबूत करो। हर क्रेडिट समस्या को बदलें। अब कर्जदारों को चुकाना होगा। उन्हें वो सब कुछ दें जो उन्हें चाहिए और आंसू पोंछ दें। जिन लोगों को काम में परेशानी हो रही है, उनके लिए काम पर समस्या बदलें और उन सभी को काम पर पदोन्नति दें। उनकी रक्षा करें। ईश्वरीय उपस्थिति हमेशा सबके साथ रहे। पारिवारिक समस्याओं को बदलना चाहिए और परिवार में बड़ी शांति लाना चाहिए। झगड़े सब कुछ बदल देते हैं। उनके आंसू पोंछे और परिवार में दिव्य शांति और खुशियां दे। ऐसा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब आपकी स्तुति और महिमा करते हैं। हम विनम्रता पूर्वक प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं।
1: अय्यूब अध्याय 42 पद 2 की पुस्तक।
0: मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है। वह सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर तुम्हारा ऋण अवश्य चुकाएगा। परमेश्वर आप

चिंता बदल देगा आपकी समस्या को दूर कर सकता है। आपको क्या लगता है कि आपके बच्चे कैसे पढ़ सकते हैं? परमेश्वर तुम्हारे बच्चों को अच्छी बुद्धि देगा, प्रभु ज्ञान देंगे, वे अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहेंगे। किसी बात की चिंता मत करो। आपको क्या लगता है कि पैसा कैसे चुका सकता है? भगवान सब कुछ करेगा। वह सर्वशक्तिमान ईश्वर है जो सब कुछ कर सकता है। वह जो भी फैसला करेगा उसे कोई रोकने वाला नहीं है। वह जो सोच रहा है उसे बाधित किए बिना वे निश्चित रूप से आपका जीवन करेगा। प्रभु के द्वारा सब कुछ संभव है। इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसे नहीं करना चाहिए। चिंता मत करो, निश्चय ही वो तुम्हारे आंसू पोंछ देगा। योएल की पुस्तक अध्याय 2:21। हे देश, तुम मत डर, तुम मगन हो और आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। यहोवा क्यों कहता है मत डरो और आनंद करो? हम सोचते हैं और हमारी आत्मा में बहुत भ्रम पैदा करते हैं। पूरा शरीर कमजोर हो जाता है तो वह हमें दिलासा देता है। हे देश, तुम मत डर, तुम मगन हो और आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ करेगा। हमें आनंदित होना चाहिए कि हमारे प्रभु यीशु मसीह सब कुछ संभाल लेंगे। परमेश्वर निश्चय ही तुम्हारे जीवन में महान कार्य करेगा। हमें आश्चर्य है कि ऐसा कैसे हो सकता है, परंतु परमेश्वर बड़े बड़े काम करेगा। चिंता मत करो, अपने आंसू पोंछ लो। क्या अब हम प्रार्थना करें? हमारे स्वर्गीय पवित्र पिता जो हमें प्यार करते हैं और मार्गदर्शन करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। हम आपके आभारी हैं। आपको उन लोगों का कर्ज चुकाना होगा जो कर्ज की समस्या से जूझ रहे हैं। बीमार लोगों को चंगा करना चाहिए, कमजोरों को अच्छी रिहाई दें। अपने नाम की महिमा करो। हम यीशु की स्तुति करते हैं। जो लोग शैतान की शक्ति में फंस गए हैं और भय और पीड़ा से पीड़ित हैं, उन्हें अच्छा उद्धार दें। समस्याओं और चिंताओं को दूर करें, भगवान की कृपा उन्हें घेर ले। ऐसा करने के लिए धन्यवाद। आप सभी की जय हो। हम आपकी प्रशंसा करते हैं। मैं विनम्रता पूर्वक इस प्रार्थना को यीशु के नाम से 2:10 की पुस्तक आमीन। हे सिय्योन, ऊंचे स्वर से गा और आनंद कर, क्योंकि देख, मैं आकर तेरे बीच में निवास करूंगा, यहोवा की यही वाणी है। हाँ प्यारे लोगों, जब हम परमेश्वर का भजन गाएंगे तब वह आकर हमारे बीच वास करेगा। वह हमें वास करेगा। जब वो हमारे बीच आता है तो वह कितना खुश होता है। हम कितने खुश होते अगर इस दुनिया में डॉक्टर या महान अधिकारी हमारे अपने होते। हम में से कितने लोग उनकी प्रशंसा करते हैं। परंतु ये क्या ही बड़े सौभाग्य की बात है कि स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु मसीह आकर हम में वास करें। हमें उसके लिए गाना चाहिए। उसने कहा है कि वह आकर हम में वास करेगा। वह कह रहा है कि वह तुम्हारे बीच आएगा। ये क्या ही बड़ा आनंद है, क्या ही बड़ा आनंद है। प्यारों, प्रतिदिन प्रभु की स्तुति करो। बाइबल कहती है 1 कुरिन्थियों अध्याय 14:15, मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। हमें पूरे जोश और सोच के साथ गाना चाहिए। जब हम ऐसा गाएंगे तो यहोवा आकर हम में वास करेगा। वह हमेशा हमारे साथ रहेगा। आपने कितनी बड़ी खुशी। ये क्या ही आनंद की बात है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता, समुद्र और फव्वारे का निर्माता हमारे भीतर है। और आपको प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु आपकी पूरी आत्मा और दिमाग से गाने में आपकी मदद करे। बेशक वह आकर हम में वास करेगा। क्या अब हम उससे प्रार्थना कर सकते हैं? हमारे स्वर्गीय पिता जो हमें प्यार करते हैं और मार्गदर्शन करते हैं, हम आपकी सराहना करते हैं। धन्यवाद। अपनी स्तुति गाने में मेरी मदद करें। पिताजी, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। आपके लिए हमारे साथ थाना और रहना कितना बड़ा सौभाग्य है। प्रभु यीशु, हमें हमारी पूरी आत्मा और हमारे पूरे दिल से गाने में मदद करें। अपने नाम की महिमा करने में हमारी मदद करें। पिताजी, हम आपकी सराहना करते हैं।
आपको जीवित वचनों को सुनने वाले प्रत्येक व्यक्ति के हृदय की चिंताओं और दुखों को बदलने की आवश्यकता है। हर आंसू पोंछे और अपार खुशी दें, उन्हें आशीर्वाद दें और उन्हें ऊंचा करें। ये करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं।

0: A product from Gino Kunambarat Music Factory.
1: और तेरी आयु मैं पूरी करूंगा। प्रिय भाइयों और प्रिय बहनों, क्या डॉक्टरों ने आपको छोड़ दिया? क्या उन्होंने कहा कि हम नहीं कर सकते? क्या उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते? चिंता मत करो, मुझे अक्सर कमजोरी होती है, मुझे अस्थमा की कमजोरी होती है, मुझे हाथ और पैर में दर्द है, मेरे दिल में कमजोरी है, मेरे गर्भाशय में कमजोरी है। क्या आप चिंतित हैं? चिंता मत करो, प्रभु यीशु मसीह को देखो, वह तुम्हें अवश्य चंगा करेगा। इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यीशु नहीं कर सकता। वह निश्चय ही तुम्हें चंगा करेगा और तुम्हें ऊपर उठाएगा। चिंता मत करो, नीति वचन की पुस्तक अध्याय 9:10-11। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। प्रिय भाइयों और प्रिय बहनों, हमें यहोवा का भय परमेश्वर चाहिए। यदि हम सवेरे उठकर परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर के पास रहें, तो परमेश्वर हमारे दिन को बढ़ा देगा। हमें अपने बुरे कर्मों से छुटकारा पाना चाहिए और पश्चाताप करना चाहिए, तब हमारी जीवन प्रत्याशा निश्चित रूप से बढ़ेगी। चिंता मत करो, क्या हम अभी प्रार्थना कर सकते हैं? हमारे स्वर्गीय पिता जो हमें प्यार करते हैं और मार्गदर्शन करते हैं, हम आपकी सराहना करते हैं। धन्यवाद। इस वचन को सुनने वाले सभी पर अपनी कृपा करें। डॉक्टर आपको बता सकते हैं कि उनकी उम्र खत्म हो गई है, लेकिन आप सब कुछ कर सकते हैं। डॉक्टरों ने शायद हार मान ली हो कि इस बीमारी का इलाज संभव नहीं है। परमेश्वर उन्हें चंगा करना चाहिए और उनके जीवन को लंबा खींचना चाहिए। महान कार्य करें, उन पर कृपा बनी रहे। अपने बच्चों को बुरी चीजों से दूर रहने में मदद करें। हम महिमा करते हैं और धन्यवाद देते हैं। हम अपने प्यारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। अच्छा पिता, आमीन।

0: है डेंटिस्ट पर सत्या। यहोवा ने मूसा से कहा, मैं ये काम भी जिसकी चर्चा तूने की है करूँगा, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। हाँ मेरे प्यारे लोग, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा सब नाम जानता है। कितनी बार हम बड़बड़ाते थे कि भगवान मेरी समस्या नहीं जानता, वह मेरी चिंताओं को नहीं जानता। आप में से कितने लोगों ने बड़बड़ाया है। आज भगवान से क्षमा मांगे। प्रभु मेरे पाप को क्षमा कर और अपने पवित्र लहू से मुझे शुद्ध कर। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा सब नाम जानता है और आपकी जरूरत भी जानता है। वह आपकी कमियों और जरूरतों के बारे में सब जानता है। इसलिए हमें कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए, गपशप नहीं करनी चाहिए। प्रतिदिन हमें उससे कहना चाहिए कि वह आपको शुद्ध करे और उसके चरणों में आंसुओं के साथ आपके पाप को स्वीकार करे। निश्चय ही वो तुम्हें आशीष देगा। इतना ही नहीं, यशाया अध्याय 43 पद 1 की पुस्तक, हे इसराइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। क्या तुमने मेरे प्यारे लोगों को देखा? भगवान ने आपको नाम से बुलाया है, तो डरो मत, तुम भगवान के हो। भगवान कहते हैं, तुम मेरे हो। हाँ हम भगवान के हैं। एक दिन जब मैंने अपने माता पिता को खो दिया तो मैं रोया कि कोई नहीं है, लेकिन भगवान ने कहा, रो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तेरा छुड़ाने वाला जीवित है, परमेश्वर ने मुझसे कहा। तो उस दिन से वे मेरे पिता माता बन गए और मेरी सभी जरूरतों को पूरा किया। वह मेरा हाथ पकड़कर आज तक मेरा मार्गदर्शन करता आ रहा है। हर जरूरत को भगवान ने मेरी मदद करने के लिए एक व्यक्ति दिया है। मेरे प्यारे लोगों, क्या वह तुम्हारे लिए वह नहीं करेगा जो परमेश्वर ने मेरे लिए किया है? तो रो मत। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे प्यारे स्वर्गीय पिता, हम विनम्रता पूर्वक आपकी उपस्थिति में आते हैं। जो आपके जीवित वचनों को सुनते हैं उनके आंसू पोंछते हैं, चिंताओं को दूर करते हैं और अपने जीवन में चमत्कार करते हैं, उनकी समस्याओं को बदलते। भगवान आप उनकी ताकत, आश्रय, छाया, शरण और गढ़ बनो। उनका नेतृत्व करो हे प्रभु। आपकी कृपा हम पर बनी रहे। तेरी महिमा उन्हें उनके लिए अग्निगढ़ के समान खेले। महिमा में परमेश्वर बड़े बड़े काम करेगा। हम जितना प्रार्थना करते हैं उससे कहीं अधिक परमेश्वर हमें देगा। उन्हें आशीर्वाद दें, उनका पालन पोषण करें, उन्हें ताज पहनाएं और उनकी रक्षा करें। मैं आपको सारी स्तुति, महिमा और सम्मान देता हूँ। मैं विनम्रता पूर्वक इस प्रार्थना
1: भजन संहिता अध्याय 107 पद 20, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। हाँ प्रिय लोगों, क्या डॉक्टरों ने हार मान ली कि बीमारी दूर नहीं होगी? आपको कब लगता है कि ये सही होगा?

0: यीशु मसीह ने आपको चंगा करने और विनाश से बचाने के लिए अपना वचन भेजा है। हाँ प्रिय लोगों, परमेश्वर चंद भेजता है और चंगा करता है। केवल वही आपको ठीक कर सकता है। अपनी कमजोरी चाहे जो भी हो, अपने आंसू पोछो। केवल प्रभु यीशु मसीह ही आपको चंगा कर सकते हैं। केवल प्रभु यीशु मसीह को देखो, निश्चय ही वो तुम्हें चंगा करने में समर्थ है और तुम्हें विनाश से बचाएगा। वह निश्चय ही तुम्हें विनाश से बचाएगा। परेशान मत होइए, अपने आंसू पोंछ लो। शायद डॉक्टर ने हार मान ली। आपको कैसे लगता है कि ये सही है? हमारे प्रभु यीशु मसीह, वह निश्चय ही तुम्हें चंगा करेगा और आशीष देगा। वह आपको दिव्यानंद देगा। आंसू पोंछ लो। जॉन अध्याय 6 का सुसमाचार, श्लोक 63। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं, वे आत्मा है और जीवन भी है। जब परमेश्वर का वो वचन आपके पास आएगा, तो आपकी आत्मा बहुत पुनर्जीवित हो जाएगी। उनके श्लोक कैसे हैं? ये जीवित है। ये हमारे अंदर आने पर हमारी आत्मा को पुनर्जीवित करेगा। जब उसका जीवन हम में आता है, तो हम शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। वह ठीक कर सकता है। परमेश्वर आपके जीवन में कई चमत्कार और संकेत करने में सक्षम है। क्या हम उसकी ओर देखें? वह यहोवा तक दया करेगा। वह सब विनाश से बचाएगा। आओ प्रार्थना करते हैं। प्रिय पिता, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। शुक्रिया। कितने लोग इस बीमारी से प्रभावित हैं? परमेश्वर, हमें उन्हें ठीक करने और दर्द को ठीक करने, कमजोरी को ठीक करने, कैंसर पीड़ितों को ठीक करने, डेंगू बुखार पीड़ितों को ठीक करने की आवश्यकता है। कृपया कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों को ठीक करें। आने वाले नए साल को आशीर्वाद दें और इसे अच्छाई से भर दें। आपका नाम गौरवान्वित करता है भगवान। आप जिस प्यार के लिए ऐसा करने जा रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको सारी महिमा देते हैं। हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं।
1: एक शमूएल
0: प्यारे पिता, आमीन। आमीन।
1: मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है।
0: हाँ प्यारे लोगों, इस दुनिया में कितने बोझ हैं, कितनी चिंताएं हैं, कितनी थकान है। क्या करें? हमें अपनी सारी चिंताओं को मनुष्य को बताना बंद कर देना चाहिए और अपने प्रभु यीशु मसीह को बताना चाहिए। हमारे दिल में जो भी चिंताएं, बोझ, दुख और दर्द है, उन्हें हमारे प्रभु समुदाय में बताया और प्रार्थना की जानी चाहिए। हमें किसी बात का पछतावा नहीं करना चाहिए। हन्ना स्त्री ने वैसा ही किया। न जाने कितने लोगों ने संतान न होने पर उनके बारे में अभद्र बातें की होंगी। हो सकता है कि उन्हें बहुत सी पीड़ाएं, दुख और चिंताएं हुई हों, लेकिन उन्होंने किसी को नहीं बताया। हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं कि उन्होंने प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना की। उन्होंने अपनी सारी चिंताओं को परमेश्वर के चरणों में डाल दिया और उसके बाद शोक नहीं किया। हमें यही करना चाहिए। किसी के पास जाकर बताने का कोई मतलब नहीं है। हर दिन हमें अपने बोझ, अपनी चिंताएं, अपने दुख, सब कुछ प्रभु की उपस्थिति में डालना चाहिए। तब परमेश्वर हमारी चिंता दूर करेगा और निश्चय ही हमारे आंसू बदल देगा। चिंता मत करो। भजन संहिता अध्याय 62 पद 8। उसे अपने अपने मन की बातें खुलकर कहो। हाँ प्यारे लोगों, क्या आप जानते हैं कि वे यह समुदाय में क्या करना चाहता है? हमारे दिलों में चाहे कितने भी बोझ और चिंताएं हों, हमें उनके चरणों में कहना चाहिए। जितना चाहो उससे कहो। परमेश्वर ये नहीं पूछेंगे कि आप इतने लंबे समय से ऐसा क्यों कह रहे हैं। वह हमें नहीं छोड़ेगा। वह हमारी प्रार्थनाओं को तब सुनता है जब हम हृदय के बोझ और चिंताओं को उसके सामने रखते हैं। इसलिए लोगों को बताना बंद करो। परमेश्वर को अपनी चिंता बताओ। प्रभु निश्चित रूप से आपके सभी आंसुओं को बदल देंगे, आपके सभी दुखों को बदल देंगे और आपकी सभी ऋण समस्याओं, बीमारियों, कमजोरियों, बीमारियों को बदलकर आपको आशीर्वाद देंगे। क्या आप चिंतित हैं कि आपके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं?
1: क्या आप चिंतित हैं कि आपको बच्चा पैदा करने का सौभाग्य नहीं मिलेगा? प्रभु यीशु मसीह निश्चय ही आप पर चमत्कार करेगा। निराश मत होना। क्या हम प्रार्थना कर सकते हैं? हमारे स्वर्गीय पिता जो हमें प्यार करते हैं और मार्गदर्शन करते हैं, हम आपकी सराहना करते हैं। धन्यवाद पापा। विभिन्न ऋण समस्याओं वाले परिवारों की ऋण समस्याओं को बदलें। आप ही हैं जिसके पास दौलत है। जिनके बच्चे नहीं हैं, उन्हें संतान होने का सौभाग्य मिलना चाहिए। हमें पढ़ने वाले छात्रों को ज्ञान प्रदान करने की आवश्यकता है। हमें बारिश से प्रभावित लोगों के लिए बेहतर घर बनाने की जरूरत है। हम आपसे इस बारिश की बाढ़ से प्रभावित लोगों के आंसू पोंछने के लिए कहते हैं। बस अपने नाम की महिमा करो। हर परिवार को आशीर्वाद और प्रगति दें। हम आपको सारी महिमा देते हैं। हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, प्यारे पापा। आमीन, आमीन।
2: थिस्सलुनीकियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री। थिस्सलुनीकियों की पत्रियों में पौलुस अपना अधिकार नहीं जताता, वरन प्रेम पूर्ण मित्र भाव से लिखता है। यह इस पत्री की विशेषता है। पौलुस ने यह पत्री एक घनिष्ठ मित्र वे आध्यात्मिक सलाहकार के रूप में लिखी है। यह नए मसीहों को प्रोत्साहन देने एवं विश्वासियों को दृढ़ करने वाली पत्री है। थिस्सलुनीकी कलीसिया के लोग दुख और कष्ट से जकड़े हुए थे। उनकी समझ में नहीं आता था कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अतः यह पत्री दुखी एवं कष्टप्रद लोगों को विश्वास दिलाती है कि उनकी ऐसी दशा में परमेश्वर उन्हें विशेष सुरक्षा प्रदान करता है। अन्य धर्मावलंबी मृत्यु के बाद के जीवन पर विश्वास नहीं करते, परंतु इस पत्री में मृत्यु के बाद के जीवन के विषय में बताया गया है कि प्रभु के वचन के अनुसार प्रोत्साहित करें। प्रभु यीशु मसीह का पुनरागमन निश्चित है, अतः विश्वासी का आचरण मसीह के योग्य बना रहे और वह दूसरों को भी इसकी चेतावनी देते हुए उन्हें प्रोत्साहन देता रहे। इस पत्री में पौलुस ऐसे नए विश्वासियों को विश्वास में दृढ़ एवं अटल रहने के लिए प्रोत्साहित करता है कि अनंत्य उनकी आत्मा, प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु के आगमन तक पूरी रीति से निर्दोष और सुरक्षित रहे। प्रस्तुत है थिस्सलुनीकियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री, कुल अध्याय 5, अध्याय 1, कुल पद 10।
3: पौलुस और सिल्वानुस और तिमोथियुस की ओर से थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम, जो परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह में है, अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे। हम अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करते और सदा तुम सब के विषय में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की धीरता को लगातार स्मरण करते हैं। हे भाइयों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो, क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल शब्द मात्र ही में, वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा में और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है। जैसा तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम्हारे बीच में कैसे बन गए थे, तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे, यहाँ तक कि मकिदुनिया और अखिया के सब विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बने, क्योंकि तुम्हारे यहाँ से न केवल मकिदुनिया और अखिया में प्रभु का वचन सुनाया गया, पर तुम्हारे विश्वास की, जो परमेश्वर पर है, हर जगह ऐसी चर्चा फैल गई है कि हमें कहने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ और तुम कैसे मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे, ताकि जीवते और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोहते रहो। जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है।

पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 कुल पद 20। हे भाइयों, तुम आप ही जानते हो कि हमारा तुम्हारे पास आना व्यर्थ न हुआ, वरन तुम आप ही जानते हो कि पहले फिलिप्पी में दुख उठाने और उपद्रव सहने पर भी हमारे परमेश्वर ने हमें ऐसा साहस दिया कि हम परमेश्वर का सुसमाचार भारी विरोधों के होते हुए भी तुम्हें सुनाए, क्योंकि हमारा उपदेश ना भ्रम से है और ना अशुद्धता से और ना छल के साथ है, पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर सुसमाचार सौंपा हम वैसा ही वर्णन करते हैं, और इसमें मनुष्यों को नहीं परंतु परमेश्वर को जो हमारे मनों को जांचता है प्रसन्न करते हैं। क्योंकि तुम जानते हो कि हम ना तो कभी चापलूसी की बातें किया करते थे और ना लोभ के लिए बहाना करते थे, परमेश्वर गवाह है। और यद्यपि हम मसीह के प्रेरित होने के कारण तुम पर बोझ डाल सकते थे, तो भी हम मनुष्यों से आदर नहीं चाहते थे और ना तुमसे ना और किसी से, परंतु जिस तरह माता अपने बालकों का पालन पोषण करती है वैसे ही हमने भी तुम्हारे बीच में रहकर कोमलता दिखाई है, और वैसे ही हम तुम्हारी लालसा करते हुए ना केवल परमेश्वर का सुसमाचार पर अपना अपना प्राण भी तुम्हें देने को तैयार थे, इसलिए कि तुम हमारे प्रिय हो गए थे। क्योंकि हे भाइयों, तुम हमारे परिश्रम और कष्ट को स्मरण रखते हो। हमने इसलिए रात दिन काम धंधा करते हुए तुम में परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार किया कि तुम में से किसी पर भार न हो। तुम आप ही गवाह हो और परमेश्वर भी गवाह है कि तुम विश्वासियों के बीच में हमारा व्यवहार कैसा पवित्र और धार्मिक और निर्दोष रहा। तुम जानते हो कि जैसा पिता अपने बालकों के साथ व्यवहार करता है वैसे ही हम भी तुम में से हर एक को उपदेश करते और शांति देते और समझाते थे कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा तो तुमने उसे मनुष्यों का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर और सचमुच यह ऐसा ही है ग्रहण किया, और वह तुम विश्वासियों में जो विश्वास रखते हो प्रभावशील है। इसलिए तुम हे भाइयों परमेश्वर की उन कलीसियाओं की सी चाल चलने लगे जो यहूदिया में मसीह यीशु में हैं, क्योंकि तुमने भी अपने लोगों से वैसा ही दुख पाया जैसा उन्होंने यहूदियों से पाया था जिन्होंने प्रभु यीशु को और भविष्यवक्ताओं को भी मार डाला और हमको सताया, और परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं, और वे सब मनुष्यों का विरोध करते हैं, और वे अन्य जातियों से उनके उद्धार के लिए बातें करने से हमें रोकते हैं कि सदा अपने पापों का नपुआ भरते रहें, पर उन पर परमेश्वर का भयानक प्रकोप आ पहुंचा है। हे भाइयों, जब हम थोड़ी देर के लिए मन में नहीं वरन प्रकट में तुमसे अलग हो गए थे तो हमने बड़ी लालसा के साथ तुम्हारा मुंह देखने के लिए और भी अधिक यत्न किया। इसलिए हमने अर्थात मुझ पौलुस ने एक बार नहीं वरन दो बार तुम्हारे पास आना चाहा, परंतु शैतान हमें रोके रहा। भला हमारी आशा या आनंद या बढ़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु के सम्मुख उसके आने के समय तुम ही ना होगे? हमारी बढ़ाई और आनंद तुम ही हो।

पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 3 कुल पद 13। इसलिए जब हमसे और ना रहा गया तो हमने यह ठहराया कि एथेंस में अकेले रह जाएं, और हमने तिमुथियुस को, जो मसीह के सुसमाचार में हमारा भाई और परमेश्वर का सेवक है, इसलिए भेजा कि वह तुम्हें स्थिर करे और तुम्हारे विश्वास के विषय में तुम्हें समझाए कि कोई इन क्लेशों के कारण डगमगा ना जाए, क्योंकि तुम आप जानते हो कि हम इन ही के लिए ठहराए गए हैं। क्योंकि पहले ही जब हम तुम्हारे यहाँ थे तो तुमसे कहा करते थे कि हमें क्लेश उठाने पड़ेंगे, और ऐसा ही हुआ है, जैसा कि तुम जानते भी हो। इस कारण जब मुझसे और ना रहा गया तो तुम्हारे विश्वास का हाल जानने के लिए भेजा कि कहीं ऐसा ना हो कि परीक्षा करने वाले ने तुम्हारी परीक्षा की हो और हमारा परिश्रम व्यर्थ हो गया हो। पर अभी तिमुथियुस ने, जो तुम्हारे पास से हमारे यहाँ आया है, तुम्हारे विश्वास और प्रेम का सुसमाचार सुनाया, और इस बात को भी सुनाया कि तुम सदा प्रेम के साथ हमें स्मरण करते हो और हमारे देखने की लालसा रखते हो, जैसा हम भी तुम्हें देखने की। इसलिए हे भाइयों, हमने अपने सारे दुख और क्लेश में तुम्हारे विश्वास से तुम्हारे विषय में शांति पाई, क्योंकि अब यदि तुम प्रभु में स्थिर रहो तो हम जीवित हैं, और जैसा आनंद हमें तुम्हारे कारण अपने परमेश्वर के सामने है, उसके बदले तुम्हारे विषय में हम किस रीति से परमेश्वर का धन्यवाद करें। हम रात दिन बहुत ही प्रार्थना करते रहते हैं कि तुम्हारा मुंह देखें और तुम्हारे विश्वास की घटी पूरी करें। अब हमारा परमेश्वर और पिता आप ही और हमारा प्रभु यीशु तुम्हारे यहाँ आने में हमारी अगुवाई करें, और प्रभु ऐसा करे कि जैसा हम तुमसे प्रेम रखते हैं, वैसा ही तुम्हारा प्रेम भी आपस में और सब मनुष्यों के साथ बढ़े और उन्नति करता जाए, ताकि वह तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे कि जब हमारा प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए तो वे हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरें।

पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 कुल पद 18। इसलिए हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है और जैसा तुम चलते भी हो वैसे ही और भी बढ़ते जाओ, क्योंकि तुम जानते हो कि हमने प्रभु यीशु की ओर से तुम्हें कौन कौन सी आज्ञा पहुंचाई, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो अर्थात व्यभिचार से बचे रहो, और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने, और यह काम अभिलाषा से नहीं और ना उन जातियों के समान जो परमेश्वर को नहीं जानती, कि इस बात में कोई अपने भाई को ना ठगे और ना उस पर दांव चलाए, क्योंकि प्रभु इन सब बातों का पलटा लेने वाला है, जैसा कि हमने पहले ही तुमसे कहा और चेताया भी था, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। इस कारण जो इसे तुच्छ जानता है वह मनुष्यों को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है, जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। किंतु भाईचारे की प्रीति के विषय में यह आवश्यक नहीं कि मैं तुम्हारे पास कुछ लिखूं, क्योंकि आपस में प्रेम रखना तुमने आप ही परमेश्वर से सीखा है, और सारे मकिदुनिया के सब भाइयों के साथ ऐसा करते भी हो। परंतु हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि और भी बढ़ते जाओ, और जैसी हमने तुम्हें आज्ञा दी है वैसे ही चुपचाप रहने और अपना अपना काम काज करने और अपने अपने हाथों से कमाने का प्रयत्न करो, ताकि बाहर वालों से आदर प्राप्त करो और तुम्हें किसी वस्तु की घटी ना हो। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो, ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो।

पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 कुल पद 28। पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है, वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है, जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से ना बचेंगे। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम ना रात के हैं ना अंधकार के हैं, इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहें, पर जागते और सावधान रहें, क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं। पर हम जो दिन के हैं, विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं, परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। वह हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हों चाहे सोते हों, सब मिलकर उसी के साथ जिए। इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी हो। हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो। आपस में मेल मिलाप से रहो। हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ, कायरों को ढाढ़स दो, निर्बलों को संभालो, सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो। आपस में और सबसे भी भलाई ही की चेष्टा करो। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आत्मा को ना बुझाओ, भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो, सब बातों को परखो, जो अच्छी हैं उसे पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना करो। सब भाइयों को पवित्र चुंबन से नमस्कार करो। मैं तुम्हें प्रभु की शपथ देता हूँ कि यह पत्री सब भाइयों को पढ़कर सुनाई जाए। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता है।

0: बड़े घर, संपत्ति और जमीन क्यों न हो, जब आप इस दुनिया से जाएंगे तो आप इसे अपने साथ नहीं ले जा सकेंगे।
1: इसीलिए प्रेरित पौलुस ने कहा, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है
0: और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने ही बात जो रहे हैं।
1: हमारा निवास स्थान इस संसार का नहीं है, हमारा घर स्वर्ग में है। हमें उस गौरवशाली स्थान पर जाने के लिए तैयार रहना चाहिए।
0: क्या आप जानते हैं कि एक मानव दिवस कैसा होता है?
1: क्योंकि हम तो कल ही के हैं और कुछ नहीं जानते, और पृथ्वी पर हमारे दिन छाया की नाई बीतते जाते हैं।
0: अय्यूब 8:9।
1: इतना ही नहीं, भजनकार कहता है, मेरी आयु ढलती हुई छाया के समान है और मैं आप घास की नाई सूख चला हूँ। भजन संहिता 102:11।
0: प्रेरित याकूब लिखते हैं, और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम तो मानो भाप समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती है, फिर लोप हो जाती है। याकूब 4:14।
1: इसलिए यह सांसारिक जीवन, इसके खजाने और पृथ्वी स्थाई नहीं है।
0: यीशु ने कहा, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। यूहन्ना 14:3।
1: तो आइए हम उस शानदार शहर, उस शानदार घर में जाने के लिए खुद को प्रतिबद्ध करें।
0: पौलुस लिखता है, और इस संसार के बरतने वाले ऐसे हों कि संसार ही के न हो ले, क्योंकि इस संसार की रीति और व्यवहार बदलते जाते हैं। 1 कुरिन्थियों 7:31।
1: तो फिर उस शानदार शहर तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना होगा? क्या हम थोड़ा ध्यान करें?
0: पहले धर्म ग्रंथ कहता है, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं, इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता, सो उसने उनके लिए एक नदर तैयार किया है। इब्रानियों 11:16।
1: प्रभु उन लोगों के लिए एक शहर तैयार कर रहे हैं जो शानदार स्वर्गीय भूमि की इच्छा रखते हैं।
0: अगर हम खुद इसकी इच्छा नहीं रखते तो वह हमें यह कैसे देगा? इसलिए स्वर्गीय देश से, उस सनातन नगर से प्रेम रखो, वहां जाने के लिए प्रार्थना करें, तभी प्रभु तुम्हें वह नगर देगा।
1: इसीलिए प्रेरित पौलुस कहता है,
0: सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है।
1: पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ।
0: कुलुसियों 3:1-2।
1: हमें स्वर्ग की चाहत और अभिलाषा की आवश्यकता है।
0: इसीलिए यीशु ने कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य पर जोर होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं।
1: मत्ती 11:12।
0: इसलिए सबसे पहले हमें स्वर्गीय नगर में जाने की इच्छा रखनी चाहिए।
1: प्रेरित पौलुस कहता है,
0: इसलिए हम धाड़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। 2 कुरिन्थियों 5:8।
1: मसीह में परमेश्वर के प्रिय बच्चों, आपकी प्राथमिकता क्या है?
0: प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम वहां आएं।
1: यीशु ने पिता से कहा, हे पिता, मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूं वहां वे भी मेरे साथ हों, कि वे मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा।
0: यूहन्ना 17:24।
1: यदि हमारी इच्छा हो तो हम निश्चित रूप से उस शहर में प्रवेश कर सकते हैं।
0: दाऊद कहते हैं, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। भजन संहिता 23:6।
1: क्या हम भी परमेश्वर के नगर की लालसा करें?
0: दूसरा, पवित्र बाइबल कहती है,
1: क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थिर रहने वाला नगर नहीं, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं।
0: इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाया करें।
1: इब्रानियों 13:14-15।
0: इस दुनिया में हमारा कोई स्थायी शहर नहीं है, हम आने वाले इस राज्य की खोज में हैं।
1: इसलिए बाइबल हमें साफ साफ बताती है कि हमें क्या करना चाहिए।
0: इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाया करें। इब्रानियों 13:15।
1: यदि हम

0: परमेश्वर के नगर में जाना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद करना चाहिए। जिस शहर में हम रहेंगे वह प्रशंसा का शहर है। यदि आप वहां जाना चाहते हैं तो आपको ईश्वर की स्तुति करने वाला व्यक्ति होना चाहिए।
1: भजनकार कहता है, क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे।
0: भजन संहिता 84:4। यदि आप और मैं स्वर्गीय घर में रहना चाहते हैं, हमें ऐसे लोग बनना चाहिए जो परमेश्वर की स्तुति करे। पवित्र बाइबल कहती है, इसके बाद मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना कि हल्लेलुया, उद्धार और महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर ही की है। प्रकाशित वाक्य 19:1। पवित्र बाइबल कहती है, फिर दूसरी बार उन्होंने हल्लेलुया कहा और उसके जलने का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा और 2400 प्राचीनों और चारों प्राणियों ने गिरकर परमेश्वर को दंडवत किया जो सिंहासन पर बैठा था और कहा, आमीन, हल्लेलुया। प्रकाशित वाक्य 19:3-4। बाइबल हमें एक आदर्श दिखाती है कि हमें कैसे प्रशंसा करनी चाहिए। इतना ही नहीं, और सिंहासन में से एक शब्द निकला कि हे हमारे परमेश्वर से सब डरने वाले दासों, क्या छोटे क्या बड़े, तुम सब उसकी स्तुति करो। प्रकाशित वाक्य 19:5। क्या आप देखते हैं कि परमेश्वर की स्तुति करना कितना महत्वपूर्ण है? हमें प्रभु की स्तुति कैसे करनी चाहिए? पवित्र बाइबल कहती है, और जब तुम यहोवा के लिए धन्यवाद का मेलबलि चढ़ाओ तो उसे इसी प्रकार से करना जिससे वह ग्रहण योग्य ठहरे। इसलिए स्वर्ग प्रशंसा का शहर है। यदि आप वहां जाना चाहते हैं तो आपको ईश्वर की स्तुति करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। पवित्र बाइबल कहती है, और चारों प्राणियों ने आमीन कहा और प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया। तीसरा, प्रेरित याकूब लिखते हैं, हे मेरे प्रिय भाइयों सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हों जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं? याकूब 2:5। इसके बाद हमें उससे प्रेम करना चाहिए। परमेश्वर स्वर्ग में जाने का विशेषाधिकार केवल उन्हीं को देता है जो उससे प्रेम करते हैं। तो क्या हम प्रभु से प्रेम करें? हमें प्रभु से कैसे प्रेम करना चाहिए? यीशु ने कहा, उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। मत्ती 22:37। प्रभु चाहता है कि हम उससे पूरी तरह प्रेम करें। उससे प्रेम करने का क्या अर्थ है? यीशु ने कहा। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। यूहन्ना 14:23। प्रभु से प्रेम करना उनके वचन का पालन करना है। यदि हम उसका वचन मानना चाहते हैं तो हमें उसका वचन अधिक पढ़ना होगा और उसे जानना होगा। हम में से बहुत से लोग बाइबल नहीं पढ़ते,
1: तो फिर हम प्रभु के वचन को कैसे जाने?
0: इसलिए प्रभु के वचन को अधिक बार पढ़े, प्रभु के वचन पर अधिक मनन करें। इसका ध्यान रखना, प्रभु से प्रेम करने का यही अर्थ है। जब हम प्रभु से पूर्णतः प्रेम करेंगे तो परमेश्वर हमें अपना राज्य देगा। उसने अपना राज्य केवल उन लोगों को देने का वादा किया है जो उससे प्रेम करते हैं।
1: चौथा, प्रभु यीशु ने कहा, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है।
0: मत्ती 5:10। क्या आपने इस बात पर गौर किया है कि हमारे अपने लिए कष्ट उठाने की बात नहीं है? उसके वचन के कारण, धार्मिकता के कारण, जब हम सताए जाते हैं और कष्ट उठाते हैं तो हम धन्य लोगों में बदल जाते हैं। उसका राज्य भी हमारा हो जाता है। क्लेश निश्चित रूप से मसीही जीवन का एक हिस्सा है। प्रेरित पौलुस यही कहता है कि कोई इन क्लेशों के कारण डगमगा ना जाए, क्योंकि तुम आप जानते हो कि हम इन्हीं के लिए ठहराए गए हैं।
1: क्योंकि पहले भी जब हम तुम्हारे यहाँ थे तो तुमसे कहा करते थे कि हमें क्लेश उठाने पड़ेंगे, और ऐसा ही हुआ है, और तुम जानते भी हो।
0: 1 थिस्सलुनीकियों 3:3
1: 4. इसलिए हमें कभी भी कठिनाइयों का सामना करके हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। उनका सामना करने में संकोच न करें। ईश ने कहा, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। यूहन्ना 16:33। इसलिए हमें दुख तकलीफों से निराश नहीं होना चाहिए। स्वर्ग का राज्य तभी हमारा होगा जब हम धार्मिकता के लिए कष्ट उठाएंगे। इसीलिए पौलुस लिखते हैं, और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। प्रेरितों के काम 14:22।
2: क्लेश स्वर्गीय नगर में जाएंगे सीढ़ियां।
1: इसलिए कठिनाइयों से निराश मत होइए। हमारा जीवन इस संसार के साथ खत्म नहीं होता। हमारे पास एक शानदार शहर है। उस गौरवशाली शहर में जाना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमें उस गौरवशाली राष्ट्र को कभी नहीं खोना चाहिए। इसलिए इस संसार पर भरोसा करके धोखा मत खाओ। प्रभु आपको अपना राज्य प्राप्त करने के लिए तैयार करें। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। हम सभी ने इस पर चिंतन किया। ईश्वर स्वयं आपको आशीर्वाद दे और आपको ऐसे महान आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन।
3: எங்களின் ஏசிரும் கரம் மாதாந்திர இதழானது தமிழ், ஆங்கிலம், ஹிந்தி, மலையாளம், தெலுங்கு ஆகிய 6 மொழிகளில் கர்த்தரின் கிருபையால் வெளிவருகின்றது. இப்பத்திரிகை வேண்டோர் எங்களது முகவரியை தொடர்பு கொள்ளலாம்.
4: எங்கள் முகவரி ஏசிரின் கரம், 12/80 அம்பேத்கர் நகர், டார்லிங்டன் பிரிட்ஜ், குன்னூர், 643-101, நீலகிரி மாவட்டம், தென்னிந்தியா. எங்கள் தொலைபேசி எண்கள் 944-30-780-19 மற்றும் 75-98-11-2435. இன் இங்கிலீஷ் ஹேண்ட் ஆஃப் ஜீசஸ் மினிஸ்ட்ரிஸ், 12/80 அம்பேத்கர் நகர், டார்லிங்டன் பிரிட்ஜ், கூனூர், 643-101 நீலகிரி, சவுத் இந்தியா. செல்போன் நம்பர்ஸ் 944-30-780-19 அண்ட் 75-98-11-2435. அவர் இமெயில் அட்ரஸ் aslinkaram@gmail.com. அவர் வெப்சைட் handofjesus.in. God bless you.
5: हजार स्तुति। हे अब्बा, हे पिता, आपकी स्तुति हो। प्रेमी पिता, आपकी स्तुति हो। अनंतकाल का पिता, आपकी स्तुति हो। स्वर्गीय पिता, आपकी स्तुति हो। आत्माओं के पिता, आपकी स्तुति हो। ज्योतियों के पिता, आपकी स्तुति हो। दया का पिता, आपकी स्तुति हो। महिमा का पिता, आपकी स्तुति हो। पिता जिसने मुझे मोल लिया है, आपकी स्तुति हो। पिता जिसने मुझे बनाया है, आपकी स्तुति हो। पिता जिसने मुझे स्थिर किया है, आपकी स्तुति हो। मेरा पिता, आपकी स्तुति हो। हम सबों का एक ही पिता, आपकी स्तुति हो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता, आपकी स्तुति हो। धार्मिक पिता, आपकी स्तुति हो। पिता मुक्त में है, आपकी स्तुति हो। धर्म के पिता आपकी स्तुति हो। इज़राइल के पिता आपकी स्तुति हो। जीवित पिता आपकी स्तुति हो। पिता को यह पसंद आया है कि वह तुम्हें राज्य दे, इसलिए आपकी स्तुति हो। परम प्रधान परमेश्वर आपकी स्तुति हो। महान परमेश्वर आपकी स्तुति हो। ईश्वरों का परमेश्वर आपकी स्तुति हो। जीवित परमेश्वर आपकी स्तुति हो। प्रेमी परमेश्वर आपकी स्तुति हो। प्रेम और शांति का परमेश्वर आपकी स्तुति हो। अनादि परमेश्वर आपकी स्तुति हो। सब प्रकार की शांति के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। धीरज और शांति देने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। तेजोमय परमेश्वर आपकी स्तुति हो। करुणामय परमेश्वर आपकी स्तुति हो। परमेश्वर जिसने अपने अनुग्रह से मुझे बुलाया है, आपकी स्तुति हो। अब्राहम का परमेश्वर आपकी स्तुति हो। ईसाक का परमेश्वर आपकी स्तुति हो। याकोब का परमेश्वर आपकी स्तुति हो। यशुरून का परमेश्वर आपकी स्तुति हो। इज़राइल का परमेश्वर आपकी स्तुति हो। एलिया का परमेश्वर आपकी स्तुति हो। दाऊद का परमेश्वर आपकी स्तुति हो। दानियेल का परमेश्वर आपकी स्तुति हो। शाद्रक मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। परमेश्वर पिता आपकी स्तुति हो। हमारे पितरों का परमेश्वर आपकी स्तुति हो। मेरे पूर्वजों के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। घाटी का परमेश्वर आपकी स्तुति हो। पहाड़ों का परमेश्वर आपकी स्तुति हो। सारी पृथ्वी का परमेश्वर आपकी स्तुति हो। सबके ऊपर युगानुयुग परमेश्वर आपकी स्तुति हो। पृथ्वी के सब राज्यों के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। याकूब पर वर्णों पृथ्वी की चोर तक प्रभुता करने वाला परमेश्वर आपकी स्तुति हो। आश्चर्य कर्म का परमेश्वर आपकी स्तुति हो। पराक्रमी परमेश्वर आपकी स्तुति हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी स्तुति हो। समुद्र के गर्व को तोड़ने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। सच्चे परमेश्वर आपकी स्तुति हो। सुच अद्वैत सच्चे परमेश्वर आपकी स्तुति हो। एक ही परमेश्वर पिता आपकी स्तुति हो। अद्वैत परमेश्वर आपकी स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर आपकी स्तुति हो। स्वर्ग के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। पवित्र परमेश्वर आपकी स्तुति हो। सच्चे परमेश्वर आपकी स्तुति हो। कतन के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। वाचा के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। आशा के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। दयालु परमेश्वर आपकी स्तुति हो। दयालु में धनी परमेश्वर आपकी स्तुति हो। धर्ममय परमेश्वर आपकी स्तुति हो। हे अन्याय के प्रति प्रतिशोध के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। आप सच्चा ईश्वर जिसमें कुटिलता नहीं है आपकी स्तुति हो। सेनाओं के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। मेरे परमेश्वर मेरे परमेश्वर आपकी स्तुति हो। परमेश्वर जिसमें मेरी उत्पत्ति हुई आपकी स्तुति हो। मेरा देखने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। दर्शन देने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। सब प्राणियों की आत्माओं के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। सदा धन्य परमेश्वर आपकी स्तुति हो। अनंत काल के लिए जीवित परमेश्वर आपकी स्तुति हो। सदा राज्य करने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। सब ईश्वरों का ईश्वर आपकी स्तुति हो। वेदों को खोलने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। हे मेरे परमेश्वर हे राजा आपकी स्तुति हो। बड़ा परमेश्वर आपकी स्तुति हो। धन के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। तुम्हारी सारे आवश्यकताओं को पूरा करने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो।

अधर्मी से क्रोध करने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। जलन रखने वाला परमेश्वर आपकी स्तुति हो। क्षमा करने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। अद्भुत काम करने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। सब कुछ करने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। उदार करने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर आपकी स्तुति हो। मेरे सुख की चमक के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। मेरे अति आनंद के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। परम धन्य परमेश्वर आपकी स्तुति हो।

क्या आप लोग तैयार हैं नाचने के लिए? यदि आप तैयार हैं तो आप आगे आ सकते हैं। यदि आप अपने आप को जवान मानते हैं तो आगे आके नाचते हुए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, अपने दोनों हाथ को उठाकर बोलो यीशु मसीह की। अपने स्थान में आप खड़े हो सकते हैं, हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। Come on, church. अपने दोनों हाथ को ऊपर वाले, अपने दोनों हाथ को

लगे। आई लव दिस, आई लव दिस। आप लोग आगे नाच सकते हैं, दोनों हाथ उड़े।

मैं आशिक तेरा, ये तू

चाहे आपके माँ आपको भूल जाए, चाहे आपके दोस्त आपको भूल जाए, मैं परमेश्वर आपको कभी नहीं भूलेगा, वह आपके साथ हमेशा बना रहेगा। ताली बजा कर उसको महिमा देते हो। आमीन, आमीन। लोग तुझको भूल जाए माँ क्यों ना भूल जाए, वो तुझको ना भूलेगा। दोस्त तुझको भूल जाए रिश्ते क्यों ना भूल जाए, वो तुझको ना भूलेगा। दोस्त तुझको भूल जाए रिश्ते क्यों ना भूल जाए, वो तुझको ना भूलेगा। दोस्त तुझको भूल जाए माँ क्यों ना भूल जाए, वो तुझको ना भूले।

प्रिय ताले बजा कर उसके नाम में करे आत्मा सच्चाई के साथ उसके आराधना करे। यस लॉर्ड, उसने न सोना मांगा न चांदी मांगा है, सोना उसने मांगा नहीं, चांदी उसने मांगा नहीं, दिल उसने मांगा मेरा, जाति उसने पूछा नहीं, भाषा उसने पूछा नहीं, मन

मसीह में प्रिय, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं। क्या आपने देखा है कि समय कितनी तेजी से उड़ता है? यह ऐसा था जैसे ये पिछले साल शुरू हुआ हो, ये कितनी जल्दी खत्म हो गया। प्रभु ने दयालुता पूर्वक हमारा नेतृत्व किया है, वो हमारा हाथ पकड़कर हमें इस नए साल में ले आया है। इस नए साल में प्रभु हमारे साथ रहें, वो अपनी आंख के तारे की तरह हमारी रक्षा करेगा। निराश मत होइए, आइए एक नज़र डालते हैं कि इस नए साल में हमें क्या करना है। इस नए वर्ष में प्रभु हम पर दृष्टि डालते हैं और कहते हैं, प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 शब्द 11, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। दुनिया में जो कुछ भी चल रहा है उससे ये स्पष्ट है कि प्रभु का आगमन बहुत निकट है ना? इसलिए हमें सावधान रहना होगा। प्रभु शीघ्र आते हैं, इसलिए प्रभु हमें स्पष्ट रूप से बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 शब्द 11, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। हमारे पास जो कुछ है हमें उसे पकड़ कर रखना चाहिए ताकि कोई हमारे मुकुट न ले सके। हमारे मुकुट कौन लेगा? ईश ने कहा। यूहन्ना अध्याय 10 शब्द 10, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। शैतान हमेशा धोखा देने के लिए तैयार रहता है, वो हमारा मुकुट चुराने की कोशिश करेगा। इसलिए प्रभु के बच्चों को सावधान रहना चाहिए। ताज क्या है, इसका मतलब क्या है? अब हम इस पर चिंतन करने जा रहे हैं कि इसकी सुरक्षा कैसे की जाए। पहले देखते हैं ताज का क्या मतलब है। प्रभु कहते हैं, लेव्य व्यवस्था अध्याय 21 शब्द 12, क्योंकि वह अपने परमेश्वर के अभिषेक का तेल रूपी मुकुट धारण किए हुए हैं, मैं यहोवा हूँ। मुकुट पवित्र आत्मा के अभिषेक का प्रतिनिधित्व करता है। प्रेरित पौलुस कहते हैं, 2 कुरिन्थियों अध्याय 1 शब्द 21, और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिसने हमें अभिषेक किया वही परमेश्वर है। प्रभु हमारा अभिषेक करते हैं। क्या होता है जब भगवान का अभिषेक हमारे पास आता है? यूहन्ना लिखते हैं, 1 यूहन्ना अध्याय 2 शब्द 27, और तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। जब प्रभु का अभिषेक हमारे पास आता है तो ये हमें सब कुछ सिखाता है। फिर से प्रेरित यूहन्ना लिखता है, 1 यूहन्ना अध्याय 2 शब्द 20, और तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। जब प्रभु का अभिषेक हम पर आता है तो हमें सब कुछ जानने का सौभाग्य मिलता है। शैतान इस विशेषाधिकार को हमसे छीनने की कोशिश करता है, इसलिए शास्त्र कहते हैं, 1 पत्रस अध्याय 5 शब्द 8, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। इसलिए यहोवा कहता है, अपना मुकुट दृढ़ रखो कि कोई उसे छीन न सके। इसलिए पौलुस लिखते हैं, 2 कुरिन्थियों अध्याय 11 शब्द 3, परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाएं। तो सावधान रहो, शैतान को कभी रास्ता मत दो। इसलिए शास्त्र कहते हैं, इफिसियों अध्याय 4 शब्द 27, और न शैतान को अवसर दो। आइए दूसरी बात देखें। बाइबल कहती है, एस्तेर अध्याय 2 शब्द 17, और राजा ने एस्तेर को और सब स्त्रियों से अधिक प्यार किया, और सब कुवारियों से अधिक उसके अनुग्रह और कृपा की दृष्टि उसी पर हुई, इस कारण उसने उसके सिर पर राजमुकुट रखा और उसको वशती के स्थान पर रानी बनाया।
यीशु हमसे वैसे ही प्रेम करते हैं जैसे राजा क्षयर्ष ने एस्तेर से प्रेम किया था। इसलिए शास्त्र कहते हैं, प्रकाशित वाक्य अध्याय 1:6, और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया, उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे। आमीन। यीशु ने हमारे लिए अपना खून बहाया और हमारे सभी पापों को माफ कर दिया और हमें परमपिता परमेश्वर के सामने राजा और रानी बनाया। वो हमें राजा और रानी के रूप में ताज पहनाता है। यह मुकुट क्या दर्शाता है? ताकत का प्रतिनिधित्व करता है। ये किस प्राधिकार का प्रतिनिधित्व करता है? जब फिरौन ने यूसुफ को अधिकारी बनाया तो उसने क्या कहा? उत्पत्ति अध्याय 41:44। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, फिरौन तो मैं हूँ, और सारे मिस्र देश में कोई भी तेरी आज्ञा के बिना हाथ पांव न हिलाएगा। इसका क्या मतलब है? ताकत को दर्शाता है। इसी तरह यीशु मसीह अपने खून से हमें राजा और रानी बनाते हैं और हमारे सिर पर अधिकार का ताज रखते हैं। हाँ, परमेश्वर के बच्चे, यीशु हमें अपना अधिकार देता है। यीशु कहते हैं, लूका अध्याय 10:19, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। आप कितने धन्य हैं। शैतान इस शक्ति को हमसे छीनने का प्रयास करेगा। शैतान हमें पाप करने के लिए प्रलोभित करने का प्रयास करता है। तो सावधान रहो। वस्ती लापरवाह थी, वह ताज हार गई। राजा ने वस्ती को लाने के लिए प्रजा भेजी। एस्तेर अध्याय 1:10-12। परंतु वशती ने कहा कि वह नहीं आएगी। तब राजा क्रोधित हुआ और भीतर ही भीतर क्रोधित हुआ। यीशु राजा हमें कई बार बुलाते हैं। यीशु हमें प्रार्थना करने के लिए बुलाते हैं, हमें अपने सामने अंतराल में खड़े होने के लिए बुलाते हैं, हमें सेवा करने के लिए बुलाते हैं। जब हम उस आह्वान को अनदेखा करते हैं तो राजा यीशु का क्रोध हम पर आता है। रानी वशति का क्या हुआ? एस्तेर अध्याय 1:19। यदि राजा सहमत हो तो उसके सामने से एक शाही आदेश जारी किया जाना चाहिए कि वशति राजा क्षयर्ष के सामने दोबारा न आए, और इसे फौसियों और मेदियों के शाही धर्म में लिखा जाना चाहिए ताकि इसे बदला न जाए, और राजा को उसका राजपद उससे बेहतर किसी व्यक्ति को सौंप देना चाहिए। आपने देखा, अपने अभिमान और अवज्ञा के कारण वशति ने अपनी शाही गरिमा और अधिकार खो दिया। यह उपाधि एस्तेर को दी गई जो उससे बेहतर थी। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, अवज्ञा, घमंड और जिद जैसी चीजों को जगह न दें। सत्ता और राजसी गौरव का ताज मत खोना। तीसरा, आइए देखें, पवित्र पुस्तक कहती है, भजन संहिता अध्याय 65:11, अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट धर दिया है, तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। प्रभु हर साल आशीर्वाद देते हैं और अच्छाई देते हैं। वह साल को अच्छाइयों से सराबोर करता है। अच्छाई एक मुकुट है। आइए हम इस ताज को न खोएं। बाइबल कहती है, भजन संहिता अध्याय 85:12, फिर यहोवा उत्तम पदार्थ देगा और हमारी भूमि अपनी उपज देगी। हमें इन मुकुटों की रक्षा करनी चाहिए। अच्छी चीजों को न चूकें। पवित्र शास्त्र कहता है, सभोपदेशक अध्याय 9:18, परंतु एक पापी बहुत भलाई नाश करता है। यदि हम पाप को जगह देंगे तो हम खराब हो जाएंगे और कई लाभ खो देंगे। तो सावधान रहो। सावधान रहें कि जो लोग पाप कर रहे हैं उनके साथ न मिलें। बाइबल कहती है, नीतिवचन अध्याय 22:24-25, क्रोधी मनुष्य का मित्र न होना और झट क्रोध करने वाले के संग न चलना। कहीं ऐसा ना हो कि तू उसकी चाल सीखे और तेरा प्राण फंदे में फंस जाए। गलत लोगों से दोस्ती न करें। उसके कारण हम वह अच्छाई खो देंगे जो हमारे परमेश्वर ने हमें दी है। पाप में फंसे लोगों के लिए प्रार्थना करें। यदि हम उनके साथ जुड़ते हैं तो हम उन लाभों को खो देंगे जो ईश्वर ने हमें दिए हैं। प्रभु ने हमें जो दिया है उसे हम खो देंगे। तो सावधान रहो, अपना ताज रखो। आइए चौथे पर नजर डालें। शास्त्र कहता है,
भजन संहिता अध्याय 103, शब्द 4। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। इसके बाद ईश्वर की कृपा और दया हमें मुकुट के रूप में दी गई है। हमें उन मुकुटों की रक्षा करनी चाहिए। इसलिए बाइबल चेतावनी देती है। इब्रानियों अध्याय 12, शब्द 15। और ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए, या कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। प्रभु का आशीर्वाद खो जाने की संभावना है, इसलिए कड़वाहट को जगह न दें। दूसरों को क्षमा करें, दूसरों से प्यार करो, अनुग्रह मत खोना। पौलुस तीमुथियुस को लिखता है। 2 तीमुथियुस अध्याय 2, शब्द 1। इसलिए ही मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। अनुग्रह से मजबूत होने के बजाय हमें इसे खोना नहीं चाहिए। जब हम ईश्वर की स्तुति करते हैं तो कृपा प्रचुर मात्रा में मिलती है, पौलुस ने कहा। 2 कुरिन्थियों अध्याय 4, शब्द 15। क्योंकि सब वस्तुएं तुम्हारे लिए हैं, ताकि अनुग्रह बहुतों के द्वारा अधिक होकर परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद भी बढ़ाए। जब हम प्रभु की स्तुति करते हैं तो अनुग्रह प्रचुर मात्रा में होता है। इतना ही नहीं, प्रेरित याकूब लिखते हैं, याकूब अध्याय 4, शब्द 6। वो तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण ये लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है, पर दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए हमें उस अनुग्रह को बनाए रखने के लिए सावधान रहना चाहिए जो ईश्वर हमें देता है। प्रभु की कृपा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। पौलुस कहते हैं, 1 कुरिन्थियों अध्याय 15, शब्द 10। परंतु मैं जो कुछ भी हूँ, परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, और उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वो व्यर्थ नहीं हुआ। परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। इसके अलावा ये ईश्वर की कृपा है जो हमें जीवित रखती है और कड़ी मेहनत करती है। भविष्यवक्ता यिर्मयाह कहते हैं, विलापगीत अध्याय 3, शब्द 22। हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। इसलिए हमें उस अनुग्रह और दया की रक्षा करनी चाहिए जो हमें मुकुट के रूप में मिली है। आइए 5वें पर नजर डालें। सेंट पौलुस ने थिसलुनीके के लोगों से कहा, 1 थिसलुनीकियों अध्याय 2, शब्द

सलुनिकियों अध्याय दो शब्द 19-20। भला हमारी आशा या आनंद या बढ़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु के सम्मुख उसके आने के समय तुम ही न होगे? हमारी बढ़ाई और आनंद तुम ही हो। मुकुट उन आत्माओं का प्रतिनिधित्व करता है जो प्रभु हमें मंत्रालय में देते हैं। हमें आत्माओं की रक्षा करनी चाहिए। फिर जब प्रेरित पौलुस ने फिलिप्पी के विश्वासियों को लिखा, फिलिप्पियों अध्याय 4:1, इसलिए मेरे प्रिय और अभिलाषित भाइयों, मेरे आनंद और मुकुट, इस प्रकार प्रभु में बने रहो। प्रिय ताज चच के लोग हैं जो प्रभु हमें देते हैं। मुकुट उन आत्माओं का प्रतिनिधित्व करता है जो प्रभु हमें मंत्रालय में देते हैं। हमें उन्हें सुरक्षित रखना चाहिए। इन अंतिम दिनों में झूठे मंत्री, झूठे शिक्षक और झूठे भविष्यवक्ता आत्माओं को भटकाने के लिए उठ खड़े होंगे। पवित्र पुस्तक कहती है, 2 तीमुथियुस अध्याय 3:6-7, इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और छिछोरे स्त्रियों को वश में कर लेते हैं, जो पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में हैं, और सदा सीखती तो रहती हैं पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। इसलिए हमें लोगों चर्च की रक्षा करने का ध्यान रखना चाहिए जो उस मुकुट की तरह हैं जो प्रभु ने हमें दिया है। आत्माओं को खोना नहीं चाहिए। पौलुस तीमुथियुस को लिखता है, 1 तीमुथियुस अध्याय 1:10, व्याभिचारियों, पुरुषगामियों, मनुष्य के बेचने वालों, झूठों और झूठी शपथ खाने वालों और इनको छोड़ खरे उपदेश के सब विरोधियों के लिए ठहराई गई है। इसलिए हमें अपने हाथ में सौंपे गए मंत्रालय की सावधानी पूर्वक रक्षा करने की जरूरत है। इसलिए प्रभु कहते हैं, यहेजकेल अध्याय 38:7, इसलिए तू तैयार हो जा, तू और जितनी भीड़ तेरे पास इकट्ठी हो, तैयार रहना और तू उनका अगुवा बनना। हमें हमारी देखभाल के लिए सौंपी गई आत्माओं के लिए जमानत बनना चाहिए। उनकी रक्षा की जानी चाहिए। प्रभु यही चाहते हैं। इन समयों में कुछ मंत्री लापरवाह होते हैं और उस चर्च को खो देते हैं जो प्रभु ने उन्हें सौंपा है। वे अपना मंत्रालय खो रहे हैं और हमें जो मंत्रालय सौंपा गया है उससे सावधान रहना चाहिए। पौलुस आर्चिपोस को लिखता है, 4:17, फिर अखिरपुस से कहना कि जो सेवा प्रभु में तुझे सौंपी गई है उसे सावधानी के साथ पूरी करना। हमें जो काम सौंपा गया है उसे सावधानी से करना चाहिए। हमें उन लोगों का भी ख्याल रखना होगा जो हमें दिए गए हैं। 9 पौलुस ने उन लोगों के लिए बिना रुके प्रार्थना की जिन्हें उसे सौंपा गया था। हमें इसी प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। जब हम लापरवाह होंगे तो इस अंत समय में आत्माएं ठोकर खाएंगी। इसलिए पत्रस लिखते हैं, 1 पत्रस अध्याय 5:1-3, मम में जो प्राचीन है मैं उनकी नाई प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें ये समझाता हूँ कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और ये दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। और जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। हमें आत्माओं के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए। यिर्मयाह कहते हैं, 10:21, क्योंकि चरवाहे पशु सरीखे हैं और वे यहोवा को नहीं पुकारते, इसी कारण वे बुद्धि से नहीं चलते और उनकी सब भेड़े तितर बितर हो गई हैं। परमेश्वर के सेवक वे होने चाहिए जो परमेश्वर को खोजते हैं। यदि हम ईश्वर को नहीं खोजते तो हम सफल नहीं हो सकते। हमारे लोग तितर बितर हो जाएंगे। तो सावधान रहो, यहोवा उन लोगों की रक्षा करेगा जिन्हें हमारे हाथों में सौंपा गया है। प्रभु कहते हैं, 7:3-5, और अन्य जातियां तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। अपनी आंखें चारों ओर उठाकर देख, वे सब के सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं। तेरे पुत्र दूर से आ रहे हैं और तेरी पुत्रियां हाथों हाथ पहुंचाई जा रही हैं। तब तू इसे देखेगी और तेरा मुख चमकेगा।

तेरा हृदय थरथराएगा और आनंद से भर जाएगा, क्योंकि समुद्र का सारा धन और अन्य जातियों की धन संपत्ति तुझको मिलेगी। यदि हम उस मंत्रालय में वफादार हैं जो प्रभु ने हमें दिया है, तो परमेश्वर हमें जो आत्माएं दी हैं, उनके संरक्षण के कारण प्रभु तट की भीड़ को हमारे पास भेज देंगे। इसलिए प्रभु इस वर्ष हमें बताते हैं, प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 शब्द 11, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। आमीन।

चाहे आपके माँ आपको भूल जाए, चाहे आपके दोस्त आपको भूल जाए, वह परमेश्वर आपको कभी नहीं भूलेगा, वह आपके साथ हमेशा बना रहेगा। ताली बजा कर उसको महिमा देती हूँ। आमीन। लोग तुझको भूल जाए माँ क्यों ना भूल जाए, वो तुझको ना भूलेगा। दोस्त तुझको भूल जाए रिश्ते क्यों ना भूल जाए, वो तुझको ना भूलेगा। दोस्त तुझको भूल जाए रिश्ते क्यों ना भूल जाए, वो तुझको ना भूलेगा। दोस्त तुझको भूल जाए माँ क्यों ना भूल जाए, वो तुझको ना भूलेगा। हाथों को थामेगा और तुझको चला

प्रियम ताले बजा कर उसके नाम को महिमा करे, आत्मा सच्चाई के साथ उसकी आराधना करे। यस लॉर्ड, उसने ना सोना मांगा ना चांदी मांगा है, सोना उसने मांगा नहीं, चांदी उसने मांगा नहीं, दिल उसने मांगा मेरा, जाति उसने पूछा नहीं, भाषा उसने पूछा नहीं, मन

0: आगे बढ़ो, पीछे मुड़कर मत देखो।
1: स्टेशन गिर रहा है, पीछे मुड़कर मत देखो, स्टेशन गिर रहा है।
2: सभी लोग अभी तुरंत सीढ़ियों से ऊपर जाएं।
3: आगे बढ़ो, पीछे मुड़कर मत देखो,
4: स्टेशन गिर रहा है।

दौड़ना हमारे शरीर के लिए एक बहुत ही बेहतरीन व्यायाम माना जाता है, जो न केवल हमारे हृदय को स्वस्थ रखता है बल्कि हमारी मांसपेशियों को भी मजबूती प्रदान करता है और हमें दिन भर ऊर्जावान बनाए रखने में मदद करता है।

सारा रुको, मैं आ रहा हूं। आप जहां हैं वहीं रहें।

0: चल दर।
1: धमकाना
0: सारा।
1: एलेक्स क्या हो रहा है? पूरी इमारत धंस रही है।
0: जब हेम्पटोट गिर रहा है तब चट्टान भी गिर रही है। हमें इस टावर के गिरने से पहले 10 मिनट में निकलना होगा। अब

0: उन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। इस मंजिल पर अभी भी सैकड़ों लोग हैं।
1: अगर तुम 10,000 टन कंक्रीट के नीचे दब गए तो उन्हें बचा नहीं पाओगे। दौड़ो,

0: देखो पानी चला गया है, सब चला गया है।
1: ये एक ड्रॉकेट है, लहर आ रही है। रुको,
2: ये टूट रहा है क्या?
3: ट्रांसपोर्ट छत पर क्यों नहीं है? अगर मैं मर गया तो तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा।
4: चुप रहो, मूवर शेयरिंग। इमारत कट रही है।
5: आखिरी बचे हुए इंसान बनने के नाम मैंने कहा था निवेश काम आएगा।
6: क्या तुमने वो महसूस किया?
7: हमें तो ग्रेनाइट के 400

0: आखिरी बचे हुए इंसान बनने के नाम। मैंने कहा था निवेश काम आएगा।
1: क्या तुमने वो महसूस किया?
2: हमें तो ग्रेनाइट के 400 फीट नीचे होना चाहिए था।

0: ये चला गया। एलेक्स न्यूयॉर्क अब बस खत्म हो गया है।
1: पीछे मत देखो, हमें पश्चिम की ओर बढ़ते रहना होगा। पानी अभी रुका नहीं है,

0: हमारे पास एक सिग्नल है।
1: ये बहुत तेजी से फैल रहा है। कृपया मुझे वो सैटेलाइट फीड्स तुरंत ऑनलाइन चाहिए। आंदोलन को ट्रैक करो और पुष्टि करो कि पानी किस दिशा में जा रहा है।
2: मास मीडिया की प्लेटें खिसक रही हैं।
3: प्लेटें खिसक रही हैं।
4: गहराई की निगरानी कर रहा हूं।

0: एलेक्स इन्हें देखो,
1: हम जबरदस्ती अपना रास्ता नहीं बना सकते।
2: उन कारों में लोग हैं,
3: अगर हम रुक गए तो लहर हमें बहा ले जाएगी। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। यातायात जाम,

0: नमस्कार, मेरा नाम है
1: मैं आप सभी

आसान, बनाने में आसान, बनाने में आसान, बनाने में आसान।

0: नमस्ते टेल, धन्यवाद। 1-2.5 अभियान याद है, कैटलिस्ट से खुशी हुई।
1: टीम, ये दिलचस्प है। इंटरमीडिया क्रिएशन और प्रॉम्प्ट आधारित काम मेरे सिनेमैटिक एआई कंटेंट के लिए सटीक रहेगा। यूट्यूब और 4,500 में शामिल है लोग।

हमें बड़े पैमाने पर हिंसा बढ़ने की पुष्ट रिपोर्टें मिल रही हैं। सिग्नल, ये प्रतियोगिता से बाहर हो रहा है। ले सिग्नो किंचित्सा है चितो। यदि आप मुझे पसंद करते हैं तो आपको क्षेत्र और प्रासंगिकता की समस्या का सामना करना पड़ता है। हे भगवान,

0: इलेक्स हीटर से ठंडी हवा आ रही है। मैं नहीं कर सकता, मुझे अपने हाथों में कोई संवेदना नहीं है।
1: दबाव, वह चला गया। वातावरण में रिसाव हो रहा है।

0: जगह में 101.3 FA सिग्नल खराब हो रहा है। जल्दी करो, हमें उस पेट्रोल की जरूरत है।
1: ट्रंक की जांच करें, जल्दी करो।
0: मदद करो, हमें अंदर आने दो, दरवाजे से दूर रहो, मैं इसे खोल नहीं सकता।
1: एलेक्स, बस जाओ जाओ,

0: वो क्या था? ऐसा लगा जैसे पूरा पहाड़ ही उछल गया।
1: प्लेट, ये अभी भी फिसल रही है।
2: ये मेंटल की धड़कन है। हमें अगले झटके से पहले चलते रहना होगा।

ये भूकंप नहीं है, ये बस जम रहा है। पूरी प्लेट अपना नया ठिकाना ढूंढ रही है। ये हो रहा है सारा।

0: गायब हो गया एलेक्स, सूरज गायब हो गया है। इतना अंधेरा पहले कभी नहीं हुआ। मैं अपने ही हाथ नहीं देख पा रहा हूँ।
1: उस रोशनी को कम रखो, हमें बैटरियों को बचाना होगा। राख सब कुछ बंद कर रही है।

आपातकालीन सेवाएं रिवर कीक और स्टेबल के साथ बड़े व्यवधान की रिपोर्ट कर रही हैं। तटीय निगरानी स्टेशन असामान्य समुद्री हलचल की रिपोर्ट कर रहे हैं। सिग्नल बार बार गायब हो रहे हैं। हर जगह कुछ ना कुछ हो रहा है।

0: अंदर ले जाओ, इन्हें मेडिकल टेंट के अंदर ले जाओ अभी के अभी। चलते रहो, उन्हें अंदर ले आओ।
1: टिकोर, मुझे डीसी से आने वाले आदेशों की परवाह नहीं है। डीसी पानी के नीचे है, हम आखिरी मछली के मिलने तक इस पहाड़ी पर डटे रहेंगे। उन लाइट्स को और ऊपर करो।

इधर आओ, चलते रहो, तुम लगभग पहुंच ही गए हो। उसे मजबूती से पकड़ कर रखिए, लाइन को पूरी तरह से स्थिर कर दीजिए और उस फ्लैप को सावधानी से बंद कर दें। हमारी शारीरिक गति बहुत तेजी से कम हो रही है और हम धीरे धीरे अपनी पूरी तापीय ऊर्जा को इस ठंडे वातावरण में खोते जा रहे हैं।

0: हवा वह चली गई है।
1: हम नीचे हैं, हम दब गए हैं सारा। क्या आपको सच में लगता है कि यह सच है?

0: ध्रुव 40 डिग्री शिफ्ट हो गया है। हम संरक्षित हैं अर्जमिज, वे सतह के नीचे हैं, वे और भी आर्कटिक की तरह हैं।
1: वे कह रहे हैं कि उत्तरी ध्रुव 40 डिग्री खिसक गया है, ग्रह पलट गया है।

मैं अब भी मॉनिटर्स की आवाज सुन सकता हूँ। एलेक्स ट्रायर्स वार्ड में मैं बीपिंग की आवाज और फिर कांच की आवाज सुन सकता हूँ।

0: सुनो, हवा रुक गई है, बर्फ अब दरवाजे तक पूरी तरह से आ गई है।
1: हम इसके नीचे दब गए हैं,

0: सिलेक्स।
1: धूल बहुत घनी है,
0: हम सांस ले रहे हैं
2: पहाड़ की।

0: अरे रुको, पेड़ों को मजबूती से पकड़ लो। मैं नहीं कर सकता,
1: मैं हवा को फिल्टर नहीं कर सकता,
0: ये सांस लेने जैसा है।
1: कांच,
0: पकड़ना।

0: सारा पुरानी दुनिया बर्फ के नीचे दबी हुई है,
1: लेकिन हम अभी भी यहीं हैं।
2: वह चला गया।
3: हमें फिर से शुरू करना होगा,
1: हमें फिर से निर्माण करना होगा।

0: प्रभु सभी सत्य की ओर मार्गदर्शन करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रभु क्या करेंगे, वे हमें सिखाएंगे, और अगर हम उनकी कही बातों को भूल जाएं, तो वे हमें याद दिलाएंगे। यदि पवित्र आत्मा हमारे भीतर है तो किसी और को हमें सिखाने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। इसी कारण पवित्र आत्मा को हम पर उंडेला गया है। सबसे पहले प्रभु ने क्या किया, पुनरुत्थान के बाद वे हमें आशीर्वाद देते हैं। दूसरे, उन्होंने हमें पश्चाताप और पापों की क्षमा प्रदान की। तीसरे, उन्होंने पवित्र आत्मा को हम पर उंडेला। उन्होंने हम पर पवित्र आत्मा का अभिषेक उंडेला। चौथे, वे हमारे लिए मध्यस्थता करते हैं। पढ़कर देखिए रोमियो को लिखे गए पत्र में अध्याय 8 वचन 34। दोषी ठहराने वाला कौन है? मसीह ही है जो मरा, बल्कि जो जी भी उठा है वही परमेश्वर के दाहिने और विराजमान है और हमारे लिए विनती कर रहे हैं। वही है, हालेलुया। उन्होंने केवल हमारे लिए मरण ही नहीं सहा, हमारे लिए वे क्या कर रहे हैं? वे हमारे लिए विनती कर रहे हैं। प्रभु हमारे लिए निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं। क्या हमने नहीं गाया था? हमने गाया था कि मेरा उद्धारकर्ता जीवित है। तीसरी बात, उन्होंने हम पर पवित्र आत्मा उंडेला। चौथी बात, हमारे लिए वे क्या कर रहे हैं? वे हमारे लिए विनती कर रहे हैं। हालेलुया। वे किस बात के लिए विनती कर रहे हैं? योहन रचित सुसमाचार अध्याय 70 वचन 21 में लिखा है, वे सब एक हूं और हमें भी कैसे रहना चाहिए? हमें एक दूसरे से अलग नहीं रहना चाहिए। वे सब एक हों जैसे हे पिता आप मुझ में हैं और मैं आप में हूं, वैसे ही वे भी हम में एक हों, ताकि दुनिया ये विश्वास करे कि आपने मुझे भेजा है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि वे सब हम में एक हों। हालेलुया। उन्होंने क्या प्रार्थना की कि हम सब एक हों? हालेलुया। हमारे बीच कोई विभाजन नहीं आना चाहिए, हमारे बीच कोई भ्रम नहीं आना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? हमें एकजुट रहना चाहिए। जानते हैं इसका कारण क्या है? प्रभु ने हम सबको एक ही रक्त से उत्पन्न किया है। उस वचन को पढ़कर देखिए, प्रेरितों के काम अध्याय 17 वचन 26। क्या आपने देखा कि मानव जाति की सभी जातियों को उन्होंने एक ही रक्त से उत्पन्न किया है? देखिए, हम सबको उन्होंने कैसे उत्पन्न किया है। प्रभु ने हम सबको एक ही रक्त से उत्पन्न किया है। हमें एक दूसरे से प्रेम पूर्वक रहना चाहिए, हर किसी को स्थिर रहना चाहिए। यही उन्होंने प्रार्थना की। हालेलुया। हमारे लिए वो क्या कर रही है? वे पिता के दाहिने और खड़े होकर हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। उन्होंने हमें एक ही रक्त से उत्पन्न किया है। हम ही हैं जिन्होंने जाति के नाम पर खुद को अलग अलग कर लिया है। तुम कौन सी जाति, मैं कौन सी जाति, हमने ही जाति का भेद बनाया। प्रभु ने क्या किया? उन्होंने हम सभी को एक ही रक्त से उत्पन्न किया। हालेलुया। इतना ही नहीं, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 17 वचन 15। मैं ये प्रार्थना नहीं करता कि तू उन्हें संसार से उठा ले, बल्कि ये कि तू उन्हें बुराई से बचाए रख। परमेश्वर ने हमारे लिए प्रार्थना की कि वो हमें बुराई से बचाए। हालेलुया। देखिए परमेश्वर कितना प्रेमी है। प्रभु यीशु मसीह जैसा प्रेमी व्यक्ति संसार में कहीं और नहीं मिल सकता। इतने प्रेमी हैं हमारे परमेश्वर। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 17 वचन 24। हे पिता, जैसे तूने मुझे संसार की उत्पत्ति से पहले प्रेम किया था, वैसे ही तूने जो महिमा मुझे दी है, वे जिन्हें तूने मुझे दिया है वे भी उसे देख सके। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जहाँ मैं हूँ वे भी मेरे साथ हों। हालेलुया। ये परमेश्वर ने हमारे लिए कहा है। उन्होंने प्रार्थना की कि जहाँ मैं हूँ वे भी वहाँ रहे, मेरे साथ, मेरे निकट, मेरे पास। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जीवित होकर उठे और उन्होंने कहा, मैं मर गया था, फिर भी देखो मैं सदा सर्वदा जीवित हूँ, हमेशा के लिए, अनंत काल तक। सबसे पहले वे क्या करते हैं जब वे पुनर्जीवित होकर प्रकट होते हैं? वे हमें बुराई से बचाकर आशीर्वाद देते हैं। दूसरे, वे हमें पापों की क्षमा और मन फिराव का वरदान देते हैं। तीसरे, उन्होंने हम पर पवित्र आत्मा उंडेला। चौथे वे हमारे लिए मध्यस्थता करते हैं। हालेलुया। क्या हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे? प्रभु आपको मेरे हृदय में आना चाहिए, हमारे भीतर वास करें, मेरे अंदर निवास करें, आपको मेरे भीतर रहना चाहिए। हम संघर्ष करके प्रार्थना करेंगे, प्रभु निश्चित रूप से हमें आशीर्वाद देंगे। कई साल पहले ही अय्यूब ने भविष्यवाणी की थी कि मेरा उद्धारकर्ता जीवित है और अंतिम दिन वो पृथ्वी पर खड़ा होगा, ये मैं जानता हूँ। इसलिए आज के दिन हमारा उद्धारकर्ता जीवित है। हमने संदेश के माध्यम से सुना कि जीवित होकर उठे यीशु मसीह हमें क्या भलाई देते हैं। अभी भी वही अच्छे चरवाहे की उपस्थिति हमारे हृदय को भर दे। ऐसी प्रार्थना है कि उनकी उपस्थिति हमारे भीतर उतर आए। हम सब प्रभु की ओर देखकर जो वचन हमने सुने हैं उन्हें समर्पित करके प्रार्थना करने जा रहे हैं। यीशु राजा हमारे साथ हैं, वे हमें सामर्थ्य देने आए हैं, वे हमें जीवन देने आए हैं। इस दिन हम सब अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। क्या हम सुनी गई बातों के लिए प्रार्थना करें? यीशु ने क्यों पुनर्जीवित हुए? सबसे पहले वे हमें आशीर्वाद देने के लिए पुनर्जीवित हुए हैं। दूसरा, यीशु पुनर्जीवित होकर हमें क्या देते हैं? वे हमें पापों की क्षमा और मन परिवर्तन देते हैं। वे हमें धर्मी बनाते हैं। हमें धर्मी बनाकर वे क्या करते हैं? वे ना केवल हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं बल्कि स्वर्ग में पिता के राज्य में हमें सूर्य की तरह चमकने योग्य भी बनाते हैं। देखिए ये कितनी बड़ी आशीर्वाद है। तीसरी बात, यीशु जीवित होकर क्या करते हैं? वे हम पर पवित्र आत्मा को उंडेलते हैं। जब पवित्र आत्मा हमारे भीतर आते हैं तो वे हमें सत्य की ओर ले जाते हैं। वे हमें समझाते और प्रबुद्ध करते हैं। वे हमें सब कुछ सिखाते हैं। इसलिए पुनर्जीवित मसीह ने अपने शिष्यों पर पवित्र आत्मा को फूंका। उन्होंने कहा, पवित्र आत्मा को प्राप्त करो। आज भी क्या हम ये प्रार्थना करेंगे? हे प्रभु, मुझे आशीर्वाद दो। प्रभु, मुझे मेरी बुराइयों से दूर रखो और मुझे आशीर्वादित करो। क्या हम प्रभु की ओर देखकर ये प्रार्थना कर सकते हैं? मुझे पश्चाताप की आत्मा दो, मुझे धर्मी बनाओ, मेरे सारे पापों को क्षमा करो और अपने लहू से मेरे हृदय को शुद्ध करो। हम कहेंगे, हे परमेश्वर, मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक दो। केवल इतना ही नहीं कि हे आत्मा मेरे भीतर आओ। पुनरुत्थित मसीह हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर प्रार्थना कर रहे हैं कि हम एक हों। वे प्रार्थना करते हैं कि हमारे बीच कोई विभाजन ना हो। वे प्रार्थना करते हैं कि हम बुराई से सुरक्षित रहें। वे प्रार्थना करते हैं कि जहां वे हैं हम भी वहीं हों। क्या हम ऐसी आशीषों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं? क्या हम प्रभु की ओर देखकर प्रार्थना कर सकते हैं? हे प्रभु, मुझे आशीर्वाद दो और बुराई से बचाओ। हे भगवान, मुझे अलग करके आशीर्वाद दो। हे पिता, हमें मन फिराने की आत्मा दो। हे प्रभु, हमारे सारे पापों को क्षमा करो। हे प्रभु, हमें अपनी पवित्र आत्मा दो। प्रभु यीशु मसीह, हमें एकता में रहने के लिए अपनी कृपा दो। आप कहाँ हैं? क्या हम प्रार्थना कर सकते हैं कि जहां आप हैं वहां हम भी रहे और आप हमारी सहायता करें? प्रभु, हम धन्यवाद और सच्चाई के साथ आपकी स्तुति करते हैं। स्वर्ग में विराजमान पवित्र प्रभु, हम आपकी स्तुति और महिमा करते हैं। हे प्रभु, आज के इस दिन भी आपने जो वचन दिए हैं उसके लिए धन्यवाद। मेरा उद्धारकर्ता जीवित है। हे जीवित उद्धारकर्ता, हम आपकी स्तुति करते हैं। चाहे कोई मर जाए या कोई हमें छोड़कर चला जाए, यीशु जीवित है। हे पिता, आप हमें आशीर्वाद दें और हर बुराई से दूर रखें। इसी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, जैसे याकूब ने प्रार्थना की, वैसे ही हमें भी प्रार्थना करनी चाहिए। प्रभु, हमें भी आशीर्वाद दें। आपने कहा है कि प्रभु का आशीर्वाद समृद्धि लाता है। प्रभु, हम सभी को आशीर्वाद दें और हमें पश्चाताप की आत्मा दें। प्रभु, हमें पश्चाताप की आत्मा दें। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे सभी पापों को दया करके क्षमा करें। हे पिता, आपने पवित्र आत्मा को बिना माप के प्राप्त किया था। हमें भी अपनी अभिषेक को बिना माप के प्रदान करें। हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी अभिषेक का संपूर्ण तेल हम पर उंडेला जाए, ताकि हम आपकी अभिषेक को प्राप्त कर सकें। प्रभु, हमें एकता में रहना चाहिए, हमारे बीच में कोई विभाजन या कड़वाहट ना आए, हमें बुराई से बचाए रखा जाए। प्रभु, आप जहां भी हैं, हमें भी वही रहने का वो अनुग्रह दें। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, आपके वचन को सुनकर अपने आप को समर्पित कर रहे हर परिवार के लोगों को आशीर्वाद दें। प्रभु, आप ही हैं जो बहन को सामर्थ्य के साथ उपयोग करते हैं। इसके लिए जैसा कि आपने किया है, हम लाखों बार धन्यवाद देते हैं। जैसे हमने मांगा, वैसे ही आपने हमें हमारे संकटों से दूर किया और हमें आशीर्वाद देने के लिए ही मसीह जीवित होकर उठे। क्या हम सब आज इस दिन प्रार्थना कर सकते हैं? हे प्रभु, हमें हमारे संकटों से दूर कर आशीर्वाद दीजिए। हे परमेश्वर, हमें आत्मिक आशीर्वाद दीजिए, हमें सांसारिक आशीर्वाद दीजिए और हमें सभी भलाइयां दीजिए। स्तुति हो प्रभु, हम कृतज्ञता के साथ आपकी स्तुति करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। स्वामी, इस आनंदमय दिन के लिए हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु, आप मृत देवता नहीं हैं। आपने कहा था, मैं मर गया था, फिर भी देखो, मैं सदा सर्वदा जीवित हूं। ये परमेश्वर हमेशा के लिए अनंत काल तक हमारे परमेश्वर हैं, मृत्यु तक हमें मार्गदर्शन करने वाले। प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं, प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं, हम कृतज्ञता के साथ आपकी महिमा करते हैं। यहाँ उपस्थित सभी सभा के लोगों के लिए, जिन्हें हम आमने सामने देख रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं सभी को आशीर्वाद दें और सामर्थ्य प्रदान करें। प्रभु, कृपया शांति दें, आनंद दें। प्रभु, चाहे मेरी कोई भी कमजोरी हो, उसे दूर कर दें। जो भी बंधन है, उन्हें तोड़ दें। शैतान के सभी कार्यों को नष्ट कर दें। यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं कि सारी बुरी शक्तियां समाप्त हो जाएं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोगों को आशीर्वाद दें और उन्हें ऊंचा उठाएं। हे राजा, हम आपकी स्तुति करते हैं, क्योंकि आप हमें बुराई से दूर रखकर आशीर्वाद देने में सामर्थ्य हैं। प्रभु, आपकी कृपा हमें सशक्त बनाए रखे। हे पिता, किसी भी परिवार पर कोई जादू या टोना असर न करे। यीशु मसीह के नाम से हम सभी बुरी शक्तियों को नष्ट और दूर करते हैं। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने और शत्रु की सारी शक्ति पर अधिकार दिया है, और कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचाएगा, ऐसा आपने कहा था। प्रभु, हम शैतान के सभी कार्यों को नासरी यीशु मसीह के नाम में डांटते, बांधते और दूर करते हैं। प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं। चाहे कोई भी बीमारी हो, आप चंगा करते हैं। चाहे कोई भी रोग हो, आप चंगा करते हैं। चाहे कोई भी कमजोरी हो, आप उसे दूर करते हैं। हे परमेश्वर, आप जादू टोने की सारी बंधनों को तोड़ते हैं, शैतान के कार्यों को नष्ट कर देते हैं। हे राजा, जो लोग बेरोजगार हैं, उन्हें नौकरी दीजिए। जिनका विवाह नहीं हुआ है, उनका विवाह संपन्न हो। जिनके पास संतान का सुख नहीं है, उन्हें संतान का आशीर्वाद दीजिए। हे परमेश्वर, जिनके जीवन में शांति नहीं है, उन्हें शांति दीजिए। जो लोग कर्ज की समस्या, आंसू और पीड़ा में हैं, उन्हें मुक्ति दीजिए। हे पिता, प्रभु, जो परिवार शराब पीते हैं, उन्हें मुक्ति दीजिए। हे पिता, जो परिवार व्यवसाय कर रहे हैं, उन्हें आशीर्वाद दीजिए। जो परिवार व्यापार कर रहे हैं, उन्हें भी आशीर्वाद दीजिए। हे प्रभु, जो लोग केश में हैं, उन्हें विजय प्रदान करें। बिछड़े हुए परिवारों को फिर से एक करें। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, वे ज्ञान, भक्ति, शिक्षा, बुद्धि और क्षमता में उत्कृष्ट बने और चमके। हे प्रभु, सभी बच्चों को स्तुति करने वाले और प्रार्थना करने वाले बच्चों में बदल दे। प्रभु, हमारे छोटे बच्चों पर प्रार्थना की आत्मा उंडेलने वाले परमेश्वर हैं। सभी बच्चों को प्रार्थना करनी चाहिए, स्तुति करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए, प्रभु की कृपा को धारण करना चाहिए। हम प्रार्थना करते हैं कि छोटे बच्चों को आशीर्वाद दें। हे प्रभु, महान कार्य करने वाले प्रभु, चाहे मुझ में कोई भी कमजोरी हो, चंगा करने वाले राजा, दया करे, दया करे, दया करे हर एक कमजोर व्यक्ति पर, और परमेश्वर की सामर्थ उन पर दया करे। हे प्रभु, चंगा करे, चमत्कार करे, अद्भुत कार्य करे। हे राजा, हम आपकी स्तुति करते हैं। हर एक के जीवन में, उनके हृदय में और बाहर अद्भुत कार्य करे। हे प्रभु, मुझे विश्वास है कि आप हर एक की आवश्यकता को जानते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हर एक की आवश्यकता को पूरा करें। हे पिता, जिनके पास घर नहीं है उन्हें घर दें। जो लोग घर बनाते समय बीच में हैं, उन्हें घर पूरा करने के लिए अनुग्रह दें। हे प्रभु, हम आपके नाम की महिमा के लिए आपके चरणों में गिरकर विनती करते हैं, जो परमेश्वर सोचने और मांगने से भी बढ़कर कार्य करते हैं। हे प्रभु, आपको धन्यवाद। आपके बच्चे जो कुछ भी प्रार्थना करते हैं वो प्रभु के सामने हर्ष का कारण बने। आपने कहा था कि मैं तुम्हारे हृदय की इच्छाओं को तुम्हें प्रदान करूंगा। हम प्रार्थना करते हैं कि हर किसी की आवश्यकताओं को आप पूरी करें। प्रभु की आशीर्वाद देने वाली और ऊंचा उठाने वाली कृपा, प्रभु की प्रसन्नता, प्रभु की महिमा हर एक पर शासन करे। हे प्रभु, हम सारी स्तुति, आदर, महिमा और महानता आपको ही अर्पित करते हैं, जो जिम्मेदारी लेकर हमारी रक्षा करते हैं। हम ये सब कुछ हमारे प्रिय उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में विनम्रता से मांगते हैं। हे परमपिता, आमीन।
1: எங்களின் ஏசுவின் கரம் மாதாந்திர இதழானது தமிழ், ஆங்கிலம், ஹிந்தி, மலையாளம், தெலுங்கு ஆகிய 6 மொழிகளில் கர்த்தரின் கிருபையால் வெளிவருகின்றது. இப்பத்திரிகை வேண்டோர் எங்களது முகவரியை தொடர்பு கொள்ளலாம்.
2: எங்கள் முகவரி இயேசுவின் கரம், 12-80 அம்பேத்கர் நகர், டார்லிங்டன் பிரிட்ஜ், குன்னூர், 643-101, நீலகிரி மாவட்டம், தென்னிந்தியா. எங்கள் தொலைபேசி எண்கள் 944-30-780-19 மற்றும் 75-98-11-2435. In English, Hand of Jesus Ministries, 12/80, அம்பேத்கர் நகர், டார்லிங்டன் பிரிட்ஜ், கோனூர், 643-101, நீலகிரி, சவுத் இந்தியா. செல்போன் நம்பர்ஸ் 944-30-780-19 and 75-98-11-2435. Our email address aslinkaram@gmail.com. Our website handofjesus.in. God bless you.

0: मसीह में प्रिय, हम आपको हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर बड़े प्रेम से नमस्कार करते हैं। इस दुनिया में आपके पास चाहे कितने भी बड़े घर, संपत्ति और जमीन क्यों न हो, जब आप इस दुनिया से जाएंगे तो आप इसे अपने साथ नहीं ले जा सकेंगे।
1: इसीलिए प्रेरित पौलुस ने कहा, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है
0: और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने ही बात जो रहे हैं।
1: हमारा निवास स्थान इस संसार का नहीं है, हमारा घर स्वर्ग में है। हमें उस गौरवशाली स्थान पर जाने के लिए तैयार रहना चाहिए।
0: क्या आप जानते हैं कि एक मानव दिवस कैसा होता है? क्योंकि हम तो कल ही के हैं और कुछ नहीं जानते, और पृथ्वी पर हमारे दिन छाया की नाई बीतते जाते हैं। अय्यूब 8:9।
1: इतना ही नहीं, भजनकार कहता है, मेरी आयु ढलती हुई छाया के समान है और मैं आप घास की नाई सूख चला हूँ।
0: भजन संहिता 102:11।
1: प्रेरित याकूब लिखते हैं, और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा, सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम तो मानो भाप समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है।
0: याकूब 4:14।
1: इसलिए यह सांसारिक जीवन, इसके खजाने और पृथ्वी स्थाई नहीं है।
0: यीशु ने कहा, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। यूहन्ना 14:3।
1: तो आइए हम उस शानदार शहर, उस शानदार घर में जाने के लिए खुद को प्रतिबद्ध करें।
0: पौलुस लिखता है, और इस संसार के बरतने वाले ऐसे हों कि संसार ही के न हो ले, क्योंकि इस संसार की रीति और व्यवहार बदलते जाते हैं।
1: 1 कुरिन्थियों 7:31। तो फिर उस शानदार शहर तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना होगा? क्या हम थोड़ा ध्यान करें?
0: पहले धर्म ग्रंथ कहता है,
1: पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं, इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता, सो उसने उनके लिए एक नदर तैयार किया है।
0: 11:16। प्रभु उन लोगों के लिए एक शहर तैयार कर रहे हैं जो शानदार स्वर्गीय भूमि की इच्छा रखते हैं। अगर हम खुद इसकी इच्छा नहीं रखते तो वह हमें यह कैसे देगा? इसलिए स्वर्गीय देश से, उस सनातन नगर से प्रेम रखो, वहां जाने के लिए प्रार्थना करें, तभी प्रभु तुम्हें वह नगर देगा।
1: इसीलिए प्रेरित पौलुस कहता है,
0: सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है।
1: पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ।
0: कुलुसियों 3:1-2।
1: हमें स्वर्ग की चाहत और अभिलाषा की आवश्यकता है।
0: इसीलिए यीशु ने कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य पर जोर होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं।
1: मत्ती 11:12। इसलिए सबसे पहले हमें स्वर्गीय नगर में जाने की इच्छा रखनी चाहिए।
0: प्रेरित पौलुस कहता है,
1: इसलिए हम धाड़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं।
0: 2 कुरिन्थियों 5:8।
1: मसीह में परमेश्वर के प्रिय बच्चों, आपकी प्राथमिकता क्या है?
0: प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम वहां आएं।
1: यीशु ने पिता से कहा, हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हों, कि वे मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा।
0: यूहन्ना 17:24।
1: यदि हमारी इच्छा हो तो हम निश्चित रूप से उस शहर में प्रवेश कर सकते हैं।
0: दाऊद कहते हैं, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा।
1: भजन संहिता 23:6।
0: क्या हम भी परमेश्वर के नगर की लालसा करें?
1: दूसरा, पवित्र बाइबल कहती है, क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थिर रहने वाला नगर नहीं, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं।
0: इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाया करें।
1: 13:14-15।
0: इस दुनिया में हमारा कोई स्थायी शहर नहीं है, हम आने

0: प्रकाशित वाक्य 19:5। क्या आप देखते हैं कि परमेश्वर की स्तुति करना कितना महत्वपूर्ण है? हमें प्रभु की स्तुति कैसे करनी चाहिए? पवित्र बाइबल कहती है, और जब तुम यहोवा के लिए धन्यवाद का मेलबलि चढ़ाओ तो उसे इसी प्रकार से करना जिससे वह ग्रहण योग्य ठहरे। इसलिए स्वर्ग प्रशंसा का शहर है। यदि आप वहां जाना चाहते हैं तो आपको ईश्वर की स्तुति करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। पवित्र बाइबल कहती है, और चारों प्राणियों ने आमीन कहा और प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया। तीसरा, प्रेरित याकूब लिखते हैं, हे मेरे प्रिय भाइयों सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हों जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं? याकूब 2:5। इसके बाद हमें उससे प्रेम करना चाहिए। परमेश्वर स्वर्ग में जाने का विशेषाधिकार केवल उन्हीं को देता है जो उससे प्रेम करते हैं। तो क्या हम प्रभु से प्रेम करें? हमें प्रभु से कैसे प्रेम करना चाहिए? यीशु ने कहा, उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। मत्ती 22:37। प्रभु चाहता है कि हम उससे पूरी तरह प्रेम करें। उससे प्रेम करने का क्या अर्थ है? यीशु ने कहा। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। यूहन्ना 14:23। प्रभु से प्रेम करना उनके वचन का पालन करना है। यदि हम उसका वचन मानना चाहते हैं तो हमें उसका वचन अधिक पढ़ना होगा और उसे जानना होगा। हम में से बहुत से लोग बाइबल नहीं पढ़ते,
1: तो फिर हम प्रभु के वचन को कैसे जाने?
0: इसलिए प्रभु के वचन को अधिक बार पढ़ें, प्रभु के वचन पर अधिक मनन करें। इसका ध्यान रखना, प्रभु से प्रेम करने का यही अर्थ है। जब हम प्रभु से पूर्णतः प्रेम करेंगे तो परमेश्वर हमें अपना राज्य देगा। उसने अपना राज्य केवल उन लोगों को देने का वादा किया है जो उससे प्रेम करते हैं।
2: चौथा, प्रभु यीशु ने कहा, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है।
0: मत्ती 5:10। क्या आपने इस बात पर गौर किया है कि हमारे अपने लिए कष्ट उठाने की बात नहीं है? उसके वचन के कारण, धार्मिकता के कारण, जब हम सताए जाते हैं और कष्ट उठाते हैं तो हम धन्य लोगों में बदल जाते हैं। उसका राज्य भी हमारा हो जाता है। क्लेश निश्चित रूप से मसीही जीवन का एक हिस्सा है। प्रेरित पौलुस यही कहता है कि कोई इन क्लेशों के कारण डगमगा ना जाए, क्योंकि तुम आप जानते हो कि हम इन्ही के लिए ठहराए गए हैं।
1: क्योंकि पहले भी जब हम तुम्हारे यहाँ थे तो तुमसे कहा करते थे कि हमें क्लेश उठाने पड़ेंगे, और ऐसा ही हुआ है, और तुम जानते भी हो।
0: 1 थिस्सलुनीकियों 3:3-4। इसलिए हमें कभी भी कठिनाइयों का सामना करके हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। उनका सामना करने में संकोच न करें।
2: ईश ने कहा, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझमें शांति मिले।
0: संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। यूहन्ना 16:33। इसलिए हमें दुख तकलीफों से निराश नहीं होना चाहिए। स्वर्ग का राज्य तभी हमारा होगा जब हम धार्मिकता के लिए कष्ट उठाएंगे। इसीलिए पौलुस लिखते हैं, और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। प्रेरितों के काम 14:22।
1: क्लेश स्वर्गीय नगर में जाएंगे सीढ़ियां।
0: इसलिए कठिनाइयों से निराश मत होइए। हमारा जीवन इस संसार के साथ खत्म नहीं होता।
2: हमारे पास एक शानदार शहर है। उस गौरवशाली शहर में जाना हमारा लक्ष्य होना चाहिए।
0: हमें उस गौरवशाली राष्ट्र को कभी नहीं खोना चाहिए।
2: इसलिए इस संसार पर भरोसा करके धोखा मत खाओ।
0: प्रभु आपको अपना राज्य प्राप्त करने के लिए तैयार करें। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। हम सभी ने इस पर चिंतन किया। ईश्वर स्वयं आपको आशीर्वाद दे और आपको ऐसे महान आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन।

0: ஏசிரிங்கரம் மாதாந்திர இதழானது தமிழ் ஆங்கிலம் ஹிந்தி மலையாளம் தெலுங்கு ஆகிய ஆறு மொழிகளில் கர்த்தனை கிருபையால் வெளிவருகின்றது. இப்பத்திரிகை வேண்டோர் எங்களது முகவரியை தொடர்பு கொள்ளலாம்.
1: எங்கள் முகவரி இயேசுவின் கரம், 12-80 அம்பேத்கர் நகர், டார்லிங்டன் பிரிட்ஜ், குன்னூர், 643-101, நீலகிரி மாவட்டம், தென்னிந்தியா. எங்கள் தொலைபேசி எண்கள் 944-30-780-19 மற்றும் 75-98-11-2435. In English, Hand of Jesus Ministries, 12-80, Ambedkar Nagar, Darlington Bridge, Kurnool, 643-101, Nilgiri, South India. Cell phone numbers 944-30-780-19 and 7598-112435. Our email address asvinkaram@gmail.com. Our website handofjesus.in. God bless you.
2: हजार स्तुति. हे अब्बा, हे पिता, आपकी स्तुति हो. प्रेमी पिता, आपकी स्तुति हो. अनंतकाल का पिता, आपकी स्तुति हो. स्वर्गीय पिता, आपकी स्तुति हो. आत्माओं के पिता, आपकी स्तुति हो. ज्योतियों के पिता, आपकी स्तुति हो. दया का पिता, आपकी स्तुति हो. महिमा का पिता, आपकी स्तुति हो. पिता जिसने मुझे मोल लिया है, आपकी स्तुति हो. पिता जिसने मुझे बनाया है, आपकी स्तुति हो. पिता जिसने मुझे स्थिर किया है, आपकी स्तुति हो. मेरा पिता, आपकी स्तुति हो. हम सबों का एक ही पिता, आपकी स्तुति हो. हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता, आपकी स्तुति हो. धार्मिक पिता, आपकी स्तुति हो. पिता मुक्त में है, आपकी स्तुति हो. धर्म के पिता, आपकी स्तुति हो. इज़राइल के पिता, आपकी स्तुति हो. जीवित पिता, आपकी स्तुति हो. पिता को यह पसंद आया है कि वह तुम्हें राज्य दे, इसलिए आपकी स्तुति हो. परम प्रधान परमेश्वर, आपकी स्तुति हो. महान परमेश्वर, आपकी स्तुति हो. ईश्वरों का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो. जीवित परमेश्वर, आपकी स्तुति हो. प्रेमी परमेश्वर, आपकी स्तुति हो. प्रेम और शांति का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो. अनादि परमेश्वर आपकी स्तुति हो। सब प्रकार की शांति के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। धीरज और शांति देने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। तेजोमय परमेश्वर आपकी स्तुति हो। करुणामय परमेश्वर आपकी स्तुति हो। परमेश्वर जिसने अपने अनुग्रह से मुझे बुलाया है आपकी स्तुति हो। अब्राहम का परमेश्वर आपकी स्तुति हो। ईसा का परमेश्वर आपकी स्तुति हो। याकोब का परमेश्वर आपकी स्तुति हो। यशुरून का परमेश्वर आपकी स्तुति हो। इज़राइल का परमेश्वर आपकी स्तुति हो। एलिया का परमेश्वर आपकी स्तुति हो। दाऊद का परमेश्वर आपकी स्तुति हो। दानियेल का परमेश्वर आपकी स्तुति हो। शाद्रक मेशाक और अबेदनगो के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। परमेश्वर पिता आपकी स्तुति हो। हमारे पितरों का परमेश्वर आपकी स्तुति हो। मेरे पूर्वजों के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। घाटी का परमेश्वर आपकी स्तुति हो। पहाड़ों का परमेश्वर आपकी स्तुति हो। सारी पृथ्वी का परमेश्वर आपकी स्तुति हो। सबके ऊपर युगानुयुग परमेश्वर आपकी स्तुति हो। पृथ्वी के सब राज्यों के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। याकूब पर वरनों पृथ्वी की छोर तक प्रभुता करने वाला परमेश्वर आपकी स्तुति हो। आश्चर्य कर्म का परमेश्वर आपकी स्तुति हो। पराक्रमी परमेश्वर आपकी स्तुति हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी स्तुति हो। समुद्र के गर्भ को तोड़ने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। सच्चे परमेश्वर आपकी स्तुति हो। सुच अद्वैत सच्चे परमेश्वर आपकी स्तुति हो। एक ही परमेश्वर पिता आपकी स्तुति हो। अद्वैत परमेश्वर आपकी स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर आपकी स्तुति हो। स्वर्ग के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। पवित्र परमेश्वर आपकी स्तुति हो। सच्चे परमेश्वर आपकी स्तुति हो। कतन के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। वाचा के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। आशा के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। दयालु परमेश्वर आपकी स्तुति हो। दयालु में धनी परमेश्वर आपकी स्तुति हो। धर्ममय परमेश्वर आपकी स्तुति हो। हे अन्याय के प्रति प्रतिशोध के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। आप सच्चा ईश्वर जिसमें कुटिलता नहीं है आपकी स्तुति हो। सेनाओं के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। मेरे परमेश्वर, मेरे परमेश्वर आपकी स्तुति हो। परमेश्वर जिसमें मेरी उत्पत्ति हुई आपकी स्तुति हो। मेरा देखने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। दर्शन देने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। सब प्राणियों की आत्माओं के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। सदा धन्य परमेश्वर आपकी स्तुति हो। अनंत काल के लिए जीवित परमेश्वर आपकी स्तुति हो। सदा राज्य करने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। सब ईश्वरों का ईश्वर आपकी स्तुति हो। वेदों को खोलने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। हे मेरे परमेश्वर, हे राजा आपकी स्तुति हो। बड़ा परमेश्वर आपकी स्तुति हो। धन के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। तुम्हारी सारे आवश्यकताओं को पूरा करने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। सब कुछ बढ़ाने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। विजय प्रदान करने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। शांति का परमेश्वर आपकी स्तुति हो। अधर्मी से क्रोध करने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। जलन रखने वाला परमेश्वर आपकी स्तुति हो। क्षमा करने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। अद्भुत काम करने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। सब कुछ करने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। उदार करने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर आपकी स्तुति हो। मेरे सुख की चमक के परमेश्वर। परमेश्वर आपकी स्तुति हो। मेरे अति आनंद के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। परम धन्य परमेश्वर आपकी स्तुति हो।

क्या आप लोग तैयार हैं नाचने के लिए? यदि आप तैयार हैं तो आप आगे आ सकते हैं। यदि आप अपने आप को जवान मानते हैं तो आगे आके नाचते हुए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। अपने दोनों हाथ को उठाकर बोलो यीशु मसीह की। अपने स्थान में आप खड़े हो सकते हैं। हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। Come on, church. अपने दोनों हाथ को ऊपर वाले अपने दोनों हाथ

सारे लोग अपने दोनों हाथों को तकें। आई लव दिस, आई लव दिस। आप लोग आगे नाच सकते हैं, दोनों हाथ उठे। एवरीबॉडी लिफ्ट योर हैंड्स।

0: आशिक आप अपना सकते हैं।
1: मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा।

चाहे आपके माँ आपको भूल जाए, चाहे आपके दोस्त आपको भूल जाए, मैं परमेश्वर आपको कभी नहीं भूलेगा, वह आपके साथ हमेशा बना रहेगा। ताली बजा कर उसको महिमा देती हूँ। आमीन। आमीन। लोग तुझको भूल जाए माँ क्यों ना भूल जाए, वो तुझको ना भूलेगा। दोस्त तुझको भूल जाए, रिश्ते क्यों ना भूल जाए, वो तुझको ना भूलेगा। दोस्त तुझको भूल जाए, रिश्ते क्यों ना भूल जाए, वो तुझको ना भूलेगा। दोस्त तुझको भूल जाए माँ क्यों ना भूल जाए, वो तुझको ना

प्रियम है, ताली बजा कर उसके नाम में करें, आत्मा सच्चाई के साथ उसकी आराधना करें। यस लॉर्ड, उसने ना सोना मांगा ना चांदी मांगा है, सोना उसने मांगा नहीं, चांदी उसने मांगा नहीं, दिल उसने मांगा मेरा, जाति उसने पूछा नहीं, भाषा उसने पूछा नहीं।

मसीह में प्रिय, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं। क्या आपने देखा है कि समय कितनी तेजी से उड़ता है? यह ऐसा था जैसे ये पिछले साल शुरू हुआ हो, ये कितनी जल्दी खत्म हो गया। प्रभु ने दयालुता पूर्वक हमारा नेतृत्व किया है, वो हमारा हाथ पकड़कर हमें इस नए साल में ले आया है। इस नए साल में प्रभु हमारे साथ रहें, वो अपनी आंख के तारे की तरह हमारी रक्षा करेगा। निराश मत होइए, आइए एक नज़र डालते हैं कि इस नए साल में हमें क्या करना है। इस नए वर्ष में प्रभु हम पर दृष्टि डालते हैं और कहते हैं, प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 शब्द 11, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। दुनिया में जो कुछ भी चल रहा है उससे ये स्पष्ट है कि प्रभु का आगमन बहुत निकट है ना? इसलिए हमें सावधान रहना होगा। प्रभु शीघ्र आते हैं, इसलिए प्रभु हमें स्पष्ट रूप से बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 शब्द 11, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। हमारे पास जो कुछ है हमें उसे पकड़कर रखना चाहिए ताकि कोई हमारे मुकुट न ले सके। हमारे मुकुट कौन लेगा? ईश ने कहा, यूहन्ना अध्याय 10 शब्द 10, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। शैतान हमेशा धोखा देने के लिए तैयार रहता है, वो हमारा मुकुट चुराने की कोशिश करेगा। इसलिए प्रभु के बच्चों को सावधान रहना चाहिए। ताज क्या है, इसका मतलब क्या है? अब हम इस पर चिंतन करने जा रहे हैं कि इसकी सुरक्षा कैसे की जाए। पहले देखते हैं ताज का क्या मतलब है। प्रभु कहते हैं, लेव्य व्यवस्था अध्याय 21 शब्द 12, क्योंकि वह अपने परमेश्वर के अभिषेक का तेल रूपी मुकुट धारण किए हुए है, मैं यहोवा हूँ। मुकुट पवित्र आत्मा के अभिषेक का प्रतिनिधित्व करता है। प्रेरित पौलुस कहते हैं, 2 कुरिन्थियों अध्याय 1 शब्द 21, और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिसने हमें अभिषेक किया वही परमेश्वर है। प्रभु हमारा अभिषेक करते हैं। क्या होता है जब भगवान का अभिषेक हमारे पास आता है? यूहन्ना लिखते हैं, 1 यूहन्ना अध्याय 2 शब्द 27, और तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। जब प्रभु का अभिषेक हमारे पास आता है तो ये हमें सब कुछ सिखाता है। फिर से प्रेरित यूहन्ना लिखता है, 1 यूहन्ना अध्याय 2 शब्द 20, और तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। जब प्रभु का अभिषेक हम पर आता है तो हमें सब कुछ जानने का सौभाग्य मिलता है। शैतान इस विशेषाधिकार को हमसे छीनने की कोशिश करता है, इसलिए शास्त्र कहते हैं, 1 पत्रस अध्याय 5 शब्द 8, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। इसलिए यहोवा कहता है, अपना मुकुट दृढ़ रखो कि कोई उसे छीन न सके। इसलिए पौलुस लिखते हैं, 2 कुरिन्थियों अध्याय 11 शब्द 3, परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाएं। तो सावधान रहो, शैतान को कभी रास्ता मत दो। इसलिए शास्त्र कहते हैं, इफिसियों अध्याय 4 शब्द 27, और न शैतान को अवसर दो। आइए दूसरी बात देखें। बाइबल कहती है, एस्तेर अध्याय 2 शब्द 17, और राजा ने एस्तेर को और सब स्त्रियों से अधिक प्यार किया, और सब कुवारियों से अधिक उसके अनुग्रह और कृपा की दृष्टि उसी पर हुई, इस कारण उसने उसके सिर पर राजमुकुट रखा और उसको वशती के स्थान पर रानी बनाया।
यीशु हमसे वैसे ही प्रेम करते हैं जैसे राजा क्षयर्ष ने एस्तेर से प्रेम किया था। इसलिए शास्त्र कहते हैं, प्रकाशित वाक्य अध्याय 1:6, और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया, उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे, आमीन। यीशु ने हमारे लिए अपना खून बहाया और हमारे सभी पापों को माफ कर दिया और हमें परमपिता परमेश्वर के सामने राजा और रानी बनाया। वो हमें राजा और रानी के रूप में ताज पहनाता है। यह मुकुट क्या दर्शाता है? ताकत का प्रतिनिधित्व करता है। ये किस प्राधिकार का प्रतिनिधित्व करता है? जब फिरौन ने यूसुफ को अधिकारी बनाया तो उसने क्या कहा? उत्पत्ति अध्याय 41:44। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, फिरौन तो मैं हूँ, और सारे मिस्र देश में कोई भी तेरी आज्ञा के बिना हाथ पांव न हिलाएगा। इसका क्या मतलब है? ताकत को दर्शाता है। इसी तरह यीशु मसीह अपने खून से हमें राजा और रानी बनाते हैं और हमारे सिर पर अधिकार का ताज रखते हैं। हाँ, परमेश्वर के बच्चे, यीशु हमें अपना अधिकार देता है। यीशु कहते हैं, लूका अध्याय 10:19, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। आप कितने धन्य हैं। शैतान इस शक्ति को हमसे छीनने का प्रयास करेगा। शैतान हमें पाप करने के लिए प्रलोभित करने का प्रयास करता है, तो सावधान रहो। वस्ती लापरवाह थी, वह ताज हार गई। राजा ने वस्ती को लाने के लिए प्रजा भेजी। एस्तेर अध्याय 1:10-12। परंतु वशती ने कहा कि वह नहीं आएगी। तब राजा क्रोधित हुआ और भीतर ही भीतर क्रोधित हुआ। यीशु राजा हमें कई बार बुलाते हैं। यीशु हमें प्रार्थना करने के लिए बुलाते हैं, हमें अपने सामने अंतराल में खड़े होने के लिए बुलाते हैं, हमें सेवा करने के लिए बुलाते हैं। जब हम उस आह्वान को अनदेखा करते हैं तो राजा यीशु का क्रोध हम पर आता है। रानी वशती का क्या हुआ? एस्तेर अध्याय 1:19। यदि राजा सहमत हो तो उसके सामने से एक शाही आदेश जारी किया जाना चाहिए कि वशती राजा क्षयर्ष के सामने दोबारा न आए, और इसे फौसियों और मेदियों के शाही धर्म में लिखा जाना चाहिए ताकि इसे बदला न जाए, और राजा को उसका राजपद उससे बेहतर किसी व्यक्ति को सौंप देना चाहिए। आपने देखा, अपने अभिमान और अवज्ञा के कारण वशती ने अपनी शाही गरिमा और अधिकार खो दिया। यह उपाधि एस्तेर को दी गई जो उससे बेहतर थी। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, अवज्ञा, घमंड और जिद जैसी चीजों को जगह न दें। सत्ता और राजसी गौरव का ताज मत खोना। तीसरा, आइए देखें, पवित्र पुस्तक कहती है, भजन संहिता अध्याय 65:11, अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट धर दिया है, तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। प्रभु हर साल आशीर्वाद देते हैं और अच्छाई देते हैं। वह साल को अच्छाइयों से सराबोर करता है। अच्छाई एक मुकुट है। आइए हम इस ताज को न खोएं। बाइबल कहती है, भजन संहिता अध्याय 85:12, फिर यहोवा उत्तम पदार्थ देगा और हमारी भूमि अपनी उपज देगी। हमें इन मुकुटों की रक्षा करनी चाहिए। अच्छी चीजों को न चूकें। पवित्र शास्त्र कहता है, सभोपदेशक अध्याय 9:18, परंतु एक पापी बहुत भलाई नाश करता है। यदि हम पाप को जगह देंगे तो हम खराब हो जाएंगे और कई लाभ खो देंगे, तो सावधान रहो। सावधान रहें कि जो लोग पाप कर रहे हैं उनके साथ न मिलें। बाइबल कहती है, नीतिवचन अध्याय 22:24-25, क्रोधी मनुष्य का मित्र न होना और झट क्रोध करने वाले के संग न चलना। कहीं ऐसा न हो कि तू उसकी चाल सीखे और तेरा प्राण फंदे में फंस जाए। गलत लोगों से दोस्ती न करें, उसके कारण हम वह अच्छाई खो देंगे जो हमारे परमेश्वर ने हमें दी है। पाप में फंसे लोगों के लिए प्रार्थना करें। यदि हम उनके साथ जुड़ते हैं तो हम उन लाभों को खो देंगे जो ईश्वर ने हमें दिए हैं। प्रभु ने हमें जो दिया है उसे हम खो देंगे, तो सावधान रहो, अपना ताज रखो। आइए चौथे पर नजर डालें। शास्त्र कहता है,
भजन संहिता अध्याय 103, शब्द 4। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। इसके बाद ईश्वर की कृपा और दया हमें मुकुट के रूप में दी गई है। हमें उन मुकुटों की रक्षा करनी चाहिए। इसलिए बाइबल चेतावनी देती है। इब्रानियों अध्याय 12, शब्द 15। और ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए, या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। प्रभु का आशीर्वाद खो जाने की संभावना है, इसलिए कड़वाहट को जगह न दें। दूसरों को क्षमा करें, दूसरों से प्यार करो, अनुग्रह मत खोना। पौलुस तीमुथियुस को लिखता है, 2 तीमुथियुस अध्याय 2, शब्द 1। इसलिए ही मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। अनुग्रह से मजबूत होने के बजाय हमें इसे खोना नहीं चाहिए। जब हम ईश्वर की स्तुति करते हैं तो कृपा प्रचुर मात्रा में मिलती है, पौलुस ने कहा। 2 कुरिन्थियों अध्याय 4, शब्द 15। क्योंकि सब वस्तुएं तुम्हारे लिए हैं, ताकि अनुग्रह बहुतों के द्वारा अधिक होकर परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद भी बढ़ाए। जब हम प्रभु की स्तुति करते हैं तो अनुग्रह प्रचुर मात्रा में होता है। इतना ही नहीं, प्रेरित याकूब लिखते हैं, 2 याकूब अध्याय 4, शब्द 6। वो तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण ये लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है, पर दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए हमें उस अनुग्रह को बनाए रखने के लिए सावधान रहना चाहिए जो ईश्वर हमें देता है। प्रभु की कृपा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। पौलुस कहते हैं, 1 कुरिन्थियों अध्याय 15, शब्द 10। परंतु मैं जो कुछ भी हूँ, परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, और उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वो व्यर्थ नहीं हुआ। परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। इसके अलावा ये ईश्वर की कृपा है जो हमें जीवित रखती है और कड़ी मेहनत करती है। भविष्यवक्ता यिर्मयाह कहते हैं, विलप गीत अध्याय 3, शब्द 22। हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। इसलिए हमें उस अनुग्रह और दया की रक्षा करनी चाहिए जो हमें मुकुट के रूप में मिली है। आइए 5वें पर नजर डालें। सेंट पौलुस ने थिसलुनीके के लोगों से कहा, 1 थिसलुनीकियों अध्याय 2, शब्द 19-20। भला हमारी आशा या आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु के सम्मुख उसके आने के समय तुम ही न होगे? हमारी बड़ाई और आनंद तुम ही हो। मुकुट उन आत्माओं का प्रतिनिधित्व करता है जो प्रभु हमें मंत्रालय में देते हैं। हमें आत्माओं की रक्षा करनी चाहिए। फिर जब प्रेरित पौलुस ने फिलिप्पी के विश्वासियों को लिखा, 4 फिलिप्पियों अध्याय 4, शब्द 1। इसलिए मेरे प्रिय और अभिलाषित भाइयों, मेरे आनंद और मुकुट, इस प्रकार प्रभु में बने रहो। प्रिय ताज चच के लोग हैं जो प्रभु हमें देते हैं। मुकुट उन आत्माओं का प्रतिनिधित्व करता है जो प्रभु हमें मंत्रालय में देते हैं। हमें उन्हें सुरक्षित रखना चाहिए। इन अंतिम दिनों में झूठे मंत्री, झूठे शिक्षक और झूठे भविष्यवक्ता आत्माओं को भटकाने के लिए उठ खड़े होंगे। पवित्र पुस्तक कहती है, 2 तीमुथियुस अध्याय 3, शब्द 6-7। इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और छिछोरे स्त्रियों को वश में कर लेते हैं, जो पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में हैं, और सदा सीखती तो रहती हैं पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। इसलिए हमें लोगों, चर्च की रक्षा करने का ध्यान रखना चाहिए जो उस मुकुट की तरह हैं जो प्रभु ने हमें दिया है। आत्माओं को खोना नहीं चाहिए। पौलुस तीमुथियुस को लिखता है, 1 तीमुथियुस अध्याय 1, शब्द 10। व्याभिचारियों, पुरुषगामियों, मनुष्य के बेचने वालों, झूठों और झूठी शपथ खाने वालों, और इनको छोड़ खरे उपदेश के सब विरोधियों के लिए ठहराई गई है। इसलिए हमें अपने हाथ में सौंपे गए मंत्रालय की सावधानी पूर्वक रक्षा करने की जरूरत है। इसलिए प्रभु कहते हैं, यहेजकेल अध्याय 38, शब्द 7। इसलिए तू तैयार हो जा,
तू और जितनी भीड़ तेरे पास इकट्ठी हो, तैयार रहना और तू उनका अगुवा बनना। हमें हमारी देखभाल के लिए सौंपी गई आत्माओं के लिए जमानत बनना चाहिए, उनकी रक्षा की जानी चाहिए। प्रभु यही चाहते हैं। इन समयों में कुछ मंत्री लापरवाह होते हैं और उस चर्च को खो देते हैं जो प्रभु ने उन्हें सौंपा है। वे अपना मंत्रालय खो रहे हैं और हमें जो मंत्रालय सौंपा गया है उससे सावधान रहना चाहिए। पौलुस आर्चिपोस को लिखता है, कुलुसियों अध्याय 4 शब्द 17। फिर अखिप्पुस से कहना कि जो सेवा प्रभु में तुझे सौंपी गई है उसे सावधानी के साथ पूरी करना। हमें जो काम सौंपा गया है उसे सावधानी से करना चाहिए। हमें उन लोगों का भी ख्याल रखना होगा जो हमें दिए गए हैं। कुलुसियों अध्याय 1 शब्द 9। पौलुस ने उन लोगों के लिए बिना रुके प्रार्थना की जिन्हें उसे सौंपा गया था। हमें इसी प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। जब हम लापरवाह होंगे तो इस अंत समय में आत्माएं ठोकर खाएंगी। इसलिए पत्रस लिखते हैं, 1 पत्रस अध्याय 5 शब्द 1-3। मैं जो प्राचीन है, मैं उनकी नई प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें ये समझाता हूँ कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और ये दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। और जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। हमें आत्माओं के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए। यिर्मयाह कहते हैं, यिर्मयाह अध्याय 10 शब्द 21। क्योंकि चरवाहे पशु सरीखे हैं और वे यहोवा को नहीं पुकारते, इसी कारण वे बुद्धि से नहीं चलते और उनकी सब भेड़ें तितर बितर हो गई हैं। परमेश्वर के सेवक वे होने चाहिए जो परमेश्वर को खोजते हैं। यदि हम ईश्वर को नहीं खोजते तो हम सफल नहीं हो सकते। हमारे लोग तितर बितर हो जाएंगे। तो सावधान रहो, यहोवा उन लोगों की रक्षा करेगा जिन्हें हमारे हाथों में सौंपा गया है। प्रभु कहते हैं, यशायाह अध्याय 60 शब्द 3-5। और अन्य जातियां तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। अपनी आंखें चारों ओर उठाकर देख, वे सबके सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं। तेरे पुत्र दूर से आ रहे हैं और तेरी पुत्रियां हाथों हाथ पहुंचाई जा रही हैं। तब तू इसे देखेगी और तेरा मुख चमकेगा, तेरा हृदय थरथराएगा और आनंद से भर जाएगा, क्योंकि समुद्र का सारा धन और अन्य जातियों की धन संपत्ति तुझको मिलेगी। यदि हम उस मंत्रालय में वफादार हैं जो प्रभु ने हमें दिया है, तो परमेश्वर हमें जो आत्माएं दी हैं उनके संरक्षण के कारण प्रभु तट की भीड़ को हमारे पास भेज देंगे। इसलिए प्रभु इस वर्ष हमें बताते हैं, प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 शब्द 11। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। आमीन।

0: आगे बढ़ो, पीछे मुड़कर मत देखो।
1: स्टेशन गिर रहा है, पीछे मुड़कर मत देखो, स्टेशन गिर रहा है।
2: सभी लोग अभी तुरंत सीढ़ियों से ऊपर जाएं।
3: आगे बढ़ो, पीछे मुड़कर मत देखो, स्टेशन गिर रहा है।

दौड़ना हमारे शरीर के लिए एक बहुत ही बेहतरीन व्यायाम माना जाता है, जो न केवल हमारे हृदय को स्वस्थ रखता है बल्कि हमारी मांसपेशियों को भी मजबूती प्रदान करता है और हमें दिन भर ऊर्जावान बनाए रखने में मदद करता है।

0: चल दर।
1: धमकाना
0: सारा।
1: एलेक्स क्या हो रहा है? पूरी इमारत धंस रही है।
0: जब हेम्पटोट गिर रहा है तब चट्टान भी गिर रही है। हमें इस टावर के गिरने से पहले 10 मिनट में निकलना होगा। अब

0: मैं उन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। इस मंजिल पर अभी भी सैकड़ों लोग हैं।
1: अगर तुम 10,000 टन कंक्रीट के नीचे दब गए तो उन्हें बचा नहीं पाओगे। दौड़ो,

0: एलेक्स देखो पानी चला गया है, सब चला गया है।
1: ये एक ड्रॉकेट है, लहर आ रही है। रुको,
2: ये टूट रहा है क्या?
3: ट्रांसपोर्ट छत पर क्यों नहीं है? अगर मैं मर गया तो तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा।
4: चुप रहो, मूवर शेयरिंग। इमारत कट रही है।
5: आखिरी बचे हुए इंसान बनने के नाम मैंने कहा था निवेश काम आएगा।
6: क्या तुमने वो महसूस किया

0: आखिरी बचे हुए इंसान बनने के नाम। मैंने कहा था निवेश काम आएगा।
1: क्या तुमने वो महसूस किया?
2: हमें तो ग्रेनाइट के 400 फीट नीचे होना चाहिए था।

0: लेके चला गया। एलेक्स न्यूयॉर्क अब बस खत्म हो गया है।
1: पीछे मत देखो, हमें पश्चिम की ओर बढ़ते रहना होगा। पानी अभी रुका नहीं है।

0: हमारे पास एक सिग्नल है।
1: ये बहुत तेजी से फैल रहा है। कृपया मुझे वो सैटेलाइट फीड्स तुरंत ऑनलाइन चाहिए। आंदोलन को ट्रैक करो और पुष्टि करो कि पानी किस दिशा में जा रहा है।
2: मास मीडिया की प्लेटें खिसक रही हैं।
3: प्लेटें खिसक रही हैं।
4: गहराई की निगरानी कर रहा हूं।

0: एलेक्स इन्हें देखो,
1: हम जबरदस्ती अपना रास्ता नहीं बना सकते।
2: उन कारों में लोग हैं,
3: अगर हम रुक गए तो लहर हमें बहा ले जाएगी। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। यातायात जाम, पकड़ना।

परिधि को बंद करो। मुझे सेकेंडरी मैनिफेस्ट की परवाह नहीं है। अगर वे अभी यहाँ नहीं है तो वे बोझ मात्र हैं।

नमस्कार, मेरा नाम है बनाने में आसान।

0: नमस्ते टेल, धन्यवाद। 1-2.5 अभियान याद है, कैटलिस्ट से खुशी हुई।
1: टीम ये दिलचस्प है, इंटरमीडिया क्रिएशन और प्रॉम्प्ट आधारित काम मेरे सिनेमैटिक एआई कंटेंट के लिए सटीक रहेगा। यूट्यूब और 4,500 में शामिल है लोग।

हमें बड़े पैमाने पर हिंसा बढ़ने की पुष्ट रिपोर्टें मिल रही हैं। सिग्नल, ये प्रतियोगिता से बाहर हो रहा है। यदि आप मुझे पसंद करते हैं तो आपको क्षेत्र और प्रासंगिकता की समस्या का सामना करना पड़ता है। हे भगवान।

0: एलेक्स, हीटर से ठंडी हवा आ रही है। मैं नहीं कर सकता, मुझे अपने हाथों में कोई संवेदना नहीं है।
1: दबाव, वह चला गया।
2: वातावरण में रिसाव हो रहा है,

0: आश्रय जगह में 101.3 एफए एक सिग्नल खराब हो रहा है। जल्दी करो, हमें उस पेट्रोल की जरूरत है।
1: ट्रंक की जांच करें, जल्दी करो।
0: मदद करो, हमें अंदर आने दो, दरवाजे से दूर रहो, मैं इसे खोल नहीं सकता।
1: एलेक्स, बस जाओ जाओ।

0: वो क्या था? ऐसा लगा जैसे पूरा पहाड़ ही उछल गया।
1: प्लेट, ये अभी भी फिसल रही है। ये मेंटल की धड़कन है। हमें अगले झटके से पहले चलते रहना होगा।

ये भूकंप नहीं है, ये बस जम रहा है। पूरी प्लेट अपना नया ठिकाना ढूंढ रही है। ये हो रहा है सारा।

0: गायब हो गया एलेक्स, सूरज गायब हो गया है। इतना अंधेरा पहले कभी नहीं हुआ। मैं अपने ही हाथ नहीं देख पा रहा हूँ।
1: उस रोशनी को कम रखो, हमें बैटरियों को बचाना होगा। राख सब कुछ बंद कर रही है।

आपातकालीन सेवाएं रिवर कीक और स्टेबल के साथ बड़े व्यवधान की रिपोर्ट कर रही हैं। तटीय निगरानी स्टेशन असामान्य समुद्री हलचल की रिपोर्ट कर रहे हैं। सिग्नल बार बार गायब हो रहे हैं। हर जगह कुछ ना कुछ हो रहा है।

0: इन्हें अंदर ले जाओ, इन्हें मेडिकल टेंट के अंदर ले जाओ, अभी के अभी। चलते रहो, उन्हें अंदर ले आओ।
1: और मुझे डीसी से आने वाले आदेशों की परवाह नहीं है। डीसी पानी के नीचे है। हम आखिरी मछली के मिलने तक इस पहाड़ी पर डटे रहेंगे। उन लाइट्स को और ऊपर करो।
0: इधर आओ, चलते रहो, तुम लगभग पहुंच ही गए हो। मजबूती से पकड़ कर रखिए, लाइन को पूरी तरह से स्थिर कर दीजिए और उस फ्लैप को सावधानी से बंद कर दें। हमारी शारीरिक गति बहुत तेजी से कम हो रही है और हम धीरे धीरे अपनी पूरी तापीय ऊर्जा को इस ठंडे वातावरण में खोते जा रहे हैं।

0: हवा वह चली गई है।
1: हम नीचे हैं, हम दब गए हैं सारा। क्या आपको सच में लगता है कि यह सच है?

0: ध्रुव 40 डिग्री शिफ्ट हो गया है। हम संरक्षित हैं अर्जमिच, वे सतह के नीचे हैं, वे और भी आर्कटिक की तरह हैं।
1: वे कह रहे हैं कि उत्तरी ध्रुव 40 डिग्री खिसक गया है, ग्रह पलट गया है।

मैं अब भी मॉनिटर्स की आवाज सुन सकता हूँ। एलेक्स ट्रायर्स वार्ड में मैं बीपिंग की आवाज और फिर कांच की आवाज सुन सकता हूँ।

सुनो, हवा रुक गई है, बर्फ अब दरवाजे तक पूरी तरह से आ गई है, हम इसके नीचे दब गए हैं

संरचनात्मक अखंडता शून्य। मैनहट्टन